0: इंसान पतला हो या फिर मोटा हो, सबके मन में एक ही सवाल होता है, अरे भैया मैं फिट कब होऊंगा, कब होगा, कैसे होगा। लेकिन भैया जैसे भी होगा, योगा से ही होने वाला है। आंजी कितना सुने हो, दिस इज आरजे गौतम, शो चल रहा है गपशप जंक्शन। लेकिन आज इस शो पे एक बड़ी खास बात है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे, और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जिनको लगभग 35 साल का एक्सपीरियंस है योगा सिखाने का, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे कि IIT रुड़की, RIMC, IIMA जैसे इंस्टीट्यूट में इन्होंने योगा सिखाया है। मिस्टर LS रावत, लाल सिंह रावत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉक टॉक रेडियो पर।
1: थैंक यू सर।
0: सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो इस दिन की
1: जी,
0: और आज का दिन आपने कैसे सेलिब्रेट करा, कैसे आपका दिन शुरू हुआ, और कैसे आपके लिए दिन अलग है बाकी दिनों से?
1: आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के अनुकूल है। हमें अपना स्वास्थ्य साल में एक दिन तो बिल्कुल 100% ध्यान देना है कि हमें अपना स्वास्थ्य फिजिकली मेंटली बोथ साइड अच्छा बनाना है, तरोताजा बनाना है। तो इसके लिए इंटरनेशनल योगा डे जो 21 जून का दिन है, वेरी महत्वपूर्ण।

0: हेलो जी, मैं हूं राजीव ठाकुर और आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर द बेटर लाइफ।
1: वॉक टॉक रेडियो।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Tune in for a better life. Tune in for a better life.
1: हाय हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार मैं हूं शान और आप सुन रहे हैं मेरे गाने ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो एंजॉय द म्यूजिक एंड

0: सर, एक बात हमने हमेशा से सुनी है कि अगर हम वर्जिश करते हैं, मतलब एक्सरसाइज करते हैं, तो बाहर का शरीर बनता है, लेकिन हम जब योगा करते हैं तो हमारे अंदर के शरीर में शुद्धि हो जाती है। वो कैसे होती है सर?
1: बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात कही आपने। स्थूल शरीर से बड़ा है सूक्ष्म शरीर, तो जो अंदर का शरीर है उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का डेवलपमेंट होगा तो हमारे स्थूल शरीर का और अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो भीतर के जो सूक्ष्म शरीर है इसकी कुछ क्रियाएं हैं, प्रैक्टिकल भी है, जैसे कुंजल क्रिया है, सूत्र नीति है, जल नीति है, और उसके बाद लगभग 48 लाइट माइक्रो एक्सरसाइज है।
0: अच्छा,
1: जो हमारे सूक्ष्म शरीर का डेवलपमेंट करती हैं। और जो ये हमारे सूक्ष्म शरीर हैं, प्रत्येक पार्ट्स हमारी बॉडी के जितने भी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स 48 हैं, और 48 ही एक्सरसाइज हैं, उन्हीं पे ध्यान लगाते हुए फिर ब्रीथिंग के साथ वो एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं। तो जैसे जैसे वहाँ ब्रीथिंग पहुँचेगी, ध्यान पहुँचेगा, उस शरीर का डेवलपमेंट होगा। जैसे वोकल कार्ड्स है, इम्प्रूवमेंट योर मेमोरी है, फॉर डेवलपमेंट योर इंटेलिजेंसी है, फॉर इम्प्रूवमेंट योर आईसाइट है, फॉर डेवलपमेंट योर चीक मसल्स है, फॉर डेवलपमेंट पावर ऑफ हियरिंग है, कर्ण शक्ति विकास है, संस्कृत में बोलते हैं उसको, तो उनका डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये एक्सरसाइज किसी अनुभवी योगचार्य की देख रेख में ही करें।
0: अच्छा, कोई भी इनमें से एक क्रियाएं जो आपने बताई, कोई भी अगर एक छोटी सी क्रिया आप करके दिखा सके अभी हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए?
1: बिल्कुल दिखा सकते हैं। इसमें आप ऐसा करें कि खड़े होके, खड़े हो सकते हैं, अगर बैठे बैठे भी करें तो बैठे बैठे भी हो सकते हैं, लेकिन खड़े होके करेंगे तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
0: अच्छा,
1: इसमें जैसे मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, दोनों पैर मिला के खड़े होना पड़ता है, दोनों पंजों में बराबर वेट, और दोनों हाथ थाइस पे चिपका के, जैसे पहली एक्सरसाइज है उच्चारण शक्ति स्थल विशेषज्ञ के लिए, यानी फॉर इम्प्रूवमेंट योर ट्रीटमेंट योर वोकल कार्ड्स, वोकल कार्ड की एक्सरसाइज पे ध्यान लगाते हुए, अपने विशुद्ध चक्र पे ध्यान लगाते हुए 25 टाइम्स क्विकली ब्रीथिंग इस तरह से। फिर सेकंड एक्सरसाइज फॉर इम्प्रूवमेंट योर मेमोरी पावर, लुक अप आईब्रो को देखते हुए 25 टाइम्स क्विकली ब्रीथिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर डेवलपमेंट योर इंटेलिजेंसी पावर, चिन को थॉट पे लगा के एंड डीप ब्रीथिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी फॉर इम्प्रूवमेंट योर आई साइट, लुक अप ऊपर देखते हुए एक जगह पे पलके नहीं झपकानी है और सांस नॉर्मल। एक मिनट तक इस एक्सरसाइज को अगर 40 डेज आप रेगुलर कर लें तो आपके जो लगा हुआ चश्मा है वो उतर सकता है और आपकी आंखें 6x6 की हो जाएंगी।
0: क्या बात है,
1: बिल्कुल। इसमें आप अपना न्यूज़पेपर वगैरह आराम से बिना चश्मे के पढ़ सकते हो, लेकिन 40 डेज आपको ये एक्सरसाइज करनी है,
0: लगातार करनी है।
1: फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है फॉर डेवलपमेंट योर चीक मसल्स, आपके जो गाल हैं ये एकदम रसीले रहेंगे और पिचके हुए नहीं रहेंगे। इसके लिए हाथ को ऐसे करिए, मुंह से सांस को पीना है यूं, और फिर मुंह फुलाना है, सांस रोकनी है मुंह के अंदर, और फिर थोड़ी देर बाद नाक से सांस छोड़नी है। ये चीक मसल्स की एक्सरसाइज है। हियरिंग पावर के लिए दोनों कान आपके बंद रहेंगे, सांस लेंगे मुंह से, फिर मुंह फुलाएंगे, सांस रोकेंगे, कान आंख बिल्कुल बंद, इस तरह से प्रैक्टिकली भी देखते जाए, धीरे धीरे नाक से छोड़ेंगे, तो आपकी जो हियरिंग पावर है उसका इम्प्रूवमेंट होगा, इनका जो सुनने की शक्ति है वो बढ़ेगी।
0: मतलब सांस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आप आराम से थोड़ा सा बैठें, आपसे एक आधा सवाल और करें, और मुझे लगता है दर्शकों ने काफी सीख ली होंगी एक्सरसाइज।
1: बिल्कुल, नेक और नेक से ऊपर की एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट।

सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: दोस्तों, हमारी जिंदगी कभी भी कुछ मिनटों की मेहमान नहीं होती जो गिनती के पलों में बदल जाए। पर हाँ, अगर आप अपने फैसले कुछ मिनटों के आधार पर लेते हैं तो वो आपकी जिंदगी को बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है, अपनी लाइफ के छोटे या बड़े फैसले हमेशा सोच समझ कर लेने चाहिए, तभी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।
1: अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कुछ बातों का ध्यान रख के कैसे आप अपनी सॉफ्ट स्किल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो सुनिए सॉफ्ट स्किल डेवलपर मानिक कौर को सिर्फ और सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक
2: रेडियो। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम ऐसा क्या करें प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हों और हम लोगों को बहुत इजीली इम्प्रेस कर सके। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, बी योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स। आप ये मत सोचिए कि कोई और बहुत सक्सेसफुल है, मुझे उसके जैसे चलना है, उसके जैसे बात करनी है, उसके जैसे पॉइंट ड्रेसअप होना है। बिल्कुल नहीं। हैव योर ओन यूनिक सेंस ऑफ स्टाइल, बी कॉन्फिडेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं शेयर करना चाहूंगी वो ये है दैट समथिंग लाइक इंग्लिश, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक आर्स, इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज बट इट इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। लेट्स फेस इट, ये सच्चाई है कि इंग्लिश एक बहुत बड़ा टूल बन चुका है, बट एट द एंड ऑफ द डे एक लैंग्वेज ही है। ये हम सबको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट नहीं है तो प्रोफेशनली आप उसे यूज कम करिए। आप हिंदी बोलिए या कोई भी ऐसी लैंग्वेज बोलिए जो आपके ऑफिस में इजिली एक्सेप्टेबल है, रादर देन मेकिंग इट यू नो लाइक मेकिंग इट टू ऑब्वियस दैट यू नॉट गुड विद द लैंग्वेज। उससे आपका नुकसान हो सकता है। आप हिंदी यूज कीजिए या कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज करिए, लेकिन अगर इंग्लिश इज रिक्वायर्ड इन दैट केस, आप इन अ प्रोफेशनल सेटअप इंग्लिश इन टर्म्स ऑफ वॉट काइंड ऑफ यूजेज इज देयर इन योर प्रोफेशन, आप उन फ्रेजेस को याद करिए और उसमें अपनी मास्टरी कीजिए। इट्स अ वेरी बिग टिप। वॉक टॉक रेडियो।

0: टॉक रेडियो।
1: जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है।
0: टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: इश्क तेरा तड़पावे।
3: Hi everyone, this is Sukhbir और आप सुन रहे हैं

0: रोएलियो।
1: हमेशा से ही एक बात हमें बहुत सताती है कि हमारा फ्यूचर कब ब्राइट होगा, हमारे सपने कब पूरे होंगे। लेकिन उससे पहले अगर ये समझा जाए कि तुम्हारे सपने क्या हैं और तुम प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, तो जिंदगी के आधे मसले यहीं पर खत्म हो जाएंगे।
0: वॉक टॉक रेडियो।

0: हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर भानुशाली यानी कि आपका देवानंद जूनियर। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला इंस्पिरेशनल ऐप वॉक टॉक रेडियो। जल्दी से जाओ और गूगल पे डाउनलोड करो प्ले स्टोर से।
1: अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कुछ बातों का ध्यान रख के कैसे आप अपनी सॉफ्ट स्किल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो सुनिए सॉफ्ट स्किल डेवलपर मानिक कौर को सिर्फ और सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक
2: रेडियो। ये सोचना चाहिए कि हम जब लोगों के लिए मीन बातें बोलते हैं या उनके बारे में गॉसिप करते हैं बिहाइंड देयर बैक्स, या फेस पे उनके अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं लेकिन थोड़े टाइम के बाद पता लगता है कि दे हैव चीटेड ऑन यू और दे वर टॉकिंग बैड अबाउट यू और यू शेयर्ड समथिंग विद देम एंड इट्स ऑल ओवर द टाउन। सो ये सब बातें दे आर बैड प्रैक्टिसेस। द स्किल्स इन्वॉल्वड हियर आर एज सिंपल एज बेसिक ह्यूमैनिटी। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट स्पेशल स्किल्स। आई जस्ट फील दैट बेसिक ह्यूमैनिटी इज गोइंग मिसिंग। We need to revive that and have good conduct with people. अगर आपको कोई पसंद नहीं भी है तो भी आप उनके साथ politely बात करें, कम बात कीजिए। अगर आपको कोई इंसान पसंद नहीं है, आपको जरूरी नहीं है उसको बताना है कि आपको that you don't like him or her. Be polite in your conduct. Be careful in your conduct. Be mindful in your conduct. Don't gang up with other people and insult that person. आज जितनी सोशल एंजाइटी है कभी नहीं थी। 10 लोगों के ग्रुप में से 9 लोगों को बुला के एक लोग बंदे को छोड़ देते हैं। पीपल हैव बिकम सो इनसेंसिटिव। लेकिन कोई 10 लोगों में आपको छोड़ के बाकी 9 को बुला ले तो आपको कैसा लगेगा? दिस इज समथिंग वेरी वेरी कॉमन अगेन इन सोशल सर्कल्स दैट इज हैपनिंग। पीपल आर फीलिंग, पीपल आर डूइंग दिस टू देम पर्पसली।

आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: कई लोगों को जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। अपनी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी प्यारी लगती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो वो भी करते हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।
1: हाय गाइस, मेरा नाम है खुसरो AKA टेक नाइट और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। वेल, जॉब और पैशन दोनों ही चीजें ऐसी हैं कि इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वेल, जॉब से आपका ब्रेड एंड बटर चलता है और पैशन जो है वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है, जिसको मैं बोलता हूँ। तो अगर आप जॉब के साथ साथ अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जॉब के साथ पैशन फॉलो करना, लेकिन अगर आपके अंदर सच में एक आग है अपने पैशन को फॉलो करने की, आप सच में अपने पैशन को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप किसी ना किसी तरह से अपने पैशन को फॉलो कर पाएंगे। चाहे आप भले ही कितना भी थके हुए हो, चाहे आपको नींद आ रही हो, आप भले ही एक घंटा कम सोएंगे, लेकिन आप अपने पैशन को टाइम जरूर दे पाएंगे। तो मैं भी अपने जॉब के साथ अपने पैशन यानी कि टेक कंटेंट क्रिएशन को कैसे मैनेज करता हूँ, तो मेरा भी यही सीन है। मैं ऑफिस से आने के बाद सबसे पहले, फ्रेश होने के बाद सबसे पहले अपना काम लेके बैठता हूँ, वीडियोस की प्लानिंग करता हूँ अगली वीडियोस की, कि क्या स्क्रिप्टिंग करना है, किस टॉपिक पर वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले मैं वो वीडियो स्क्रिप्ट करने के बाद अगर हो सकता है तो रिकॉर्ड कर लेता हूँ अगर टाइम होता है। उसके बाद फिर सोने के बाद जब मैं वापस उठता हूँ ऑफिस जाने से पहले, तब मैं उस वीडियो को एडिट करने के बाद अपलोड करता हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने जॉब के साथ अपना पैशन मैनेज कर पाता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप सच में अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ ही लेंगे।
2: वॉक

0: हेलो जी, मैं हूं राजीव ठाकुर और आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर द बेटर लाइफ।
1: दोस्तों, हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ के सक्सेस का इंतजार करने लगते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और कोशिश करना छोड़ देते हैं। पर हमेशा याद रखिए, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप भी सपनों का खिताब जीतना चाहते हो तो मेहनत के मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आजकल के दौर में तो सलाह भी यानी एडवाइस भी फ्री में नहीं मिलती। हो सकता है बिना मांगे दी जा रही फ्री की एडवाइस आपको रास्ते में भटकाने के लिए हो, या हो सकता है कि वो फ्री की एडवाइस आपके द्वारा अपना काम निकालने की कोशिश में हो रही हो। और ये भी जरूरी नहीं कि जो सलाह वो दे रहे हैं क्या वो सही भी है। दोस्तों, सही एडवाइस हमें वही देते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। ढूंढना है तो परवाह करने वाले को ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले तो खुद ही आपको ढूंढ लेंगे।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो।
2: हाय गाइस, मेरा नाम है खुसरो, AKA टेक नाइट, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। सो टेक कंटेंट क्रिएटर जो होता है वो एक्चुअली जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स वगैरह आती हैं, जैसे कोई नया गैजेट आया तो उसके बारे में ऑडियंस को बताना, या कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नया अपडेट आया जैसे कि कोई वेबसाइट है जो कि आपके काम आ सकती है, या कोई ऐसी चीज जो कि आपकी डेली लाइफ में हेल्प कर सकती है आपकी लाइफ को आसान बनाने में, तो उसके बारे में बताना टेक कंटेंट क्रिएटर कहा जाता है। मतलब जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरा जो चैनल है वो पेज है वो सब टेक्नोलॉजी के ऊपर है। सारी टेक से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ मैं, जिसमें वेबसाइट, गैजेट्स, टेक न्यूज, इस तरह की चीजें मैं कवर करता हूँ। वेल, नॉलेज इम्पोर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि नॉलेज अगर नहीं होगी तो आपको पता नहीं होगा कि आप क्या करने वाले हैं अपनी लाइफ में। नॉलेज से आपकी लाइफ आसान होती है, आपका डिसीजन मेकिंग का नजरिया बदल जाता है, आप काफी क्रिएटिव चीजें कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और अगर बिना नॉलेज के तो आप एक तरीके से भटके हुए तीर की तरह हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको जाना कहाँ है। तो नॉलेज, किसी भी चीज की नॉलेज होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, और मेरा मानना यह है कि इंसान को लगातार नॉलेज गेन करते रहना चाहिए जहां से भी उसे मिले।
1: जिंदगी में दो चीजों का घमंड कभी भी मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती, और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। इसीलिए घमंड कभी भी ना करें।

0: थैंक्सगिविंग के बारे में जानते हैं ना आप? थैंक्सगिविंग डे एक बहुत ही स्पेशल मौका, जिस दिन आप उन चीजों के लिए थैंकफुल होते हो जो आपको दुनिया में मिली, जिंदगी में मिली, और चाहते हो आपके यार शुक्रिया अदा किया जाए। तो ये थैंक्सगिविंग डे आने वाला था। फर्स्ट ग्रेड टीचर जो थी, उसने अपनी क्लास को एक फन असाइनमेंट दिया। उसने कहा कि एक ऐसी पिक्चर, ऐसी तस्वीर बनाओ जिसे तुम थैंकफुल हो या जिसको थैंक्स कहना चाहते हो। मोस्ट ऑफ द क्लास माइट बी कंसिडर्ड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड, बट स्टिल मेनी वुड सेलिब्रेट द हॉलीडे विद टर्की एंड अदर ट्रेडिशनल गुडीज ऑफ द सीजन। टीचर ने उनको सिखाया था कि मोस्ट ऑफ हर स्टूडेंट्स वर ऑफ आर्ट्स, एंड सब जने ये चीज जानते थे कि किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे हो या ना हो, हर शख्स इस चीज का थैंकफुल होना चाहिए कि उसके पास कुछ तो है। ये उस टीचर ने अपने सारे स्टूडेंट्स को सिखाया। उसके सारे स्टूडेंट्स जो थे वो ये बात मानते भी थे, लेकिन एक लड़का जरा अलग था। उसने एक अलग तरह की तस्वीर ड्रॉ करी, डगलस। डगलस एक अलग बच्चा था। ही वॉज द टीचर्स ट्रू चाइल्ड ऑफ मिजरी, फ्रेल एंड अनहैप्पीनेस। बाकी लोग जब रिसेस में खेला करते थे, डगलस वॉज लाइकली टू स्टैंड क्लोज बाय हर साइड। डगलस को जो दर्द था वो उसकी आंखों में साफ नजर आता था। वो अपने घर की कंडीशन से, अपने पेरेंट्स की कंडीशन से बहुत ज्यादा दुखी था। उसे पता था कि उसके पास उतने पैसे नहीं, उतनी खुशियां नहीं है, पर उसने एक पिक्चर बनाई थैंक्सगिविंग के लिए, एक स्पेशल पिक्चर बनाई एज एन असाइनमेंट। इट वॉज डिफरेंट। जब इस तस्वीर को दिखाया गया सबको, तो उसने एक हाथ बनाया था, नथिंग एल्स, सिर्फ एक खाली हाथ। ये एब्स्ट्रैक्ट इमेज थी जिसे देखकर उसके साथी जो थे वो इमेजिन करने लगे, Whose hand could it be? किसी को लगा ये किसी फार्मर का हाथ है, क्योंकि वो हमारे लिए टर्कीज को रेस करता है, उन्हें बड़ा करता है। दूसरे ने कहा नहीं, पुलिस ऑफिसर का है, क्योंकि पुलिस हमें प्रोटेक्ट करती है। तीसरे ने कहा नहीं, भगवान का हाथ है जो हमें खाना देता है। जब चिल्ड्रंस अपना असाइनमेंट देकर चले गए, तो उस टीचर ने डगलस से पूछा कि डगलस ये किसका हाथ है। डगलस ने दूसरी तरफ देखा, बच्चों की तरफ देखा, और धीरे से बोला, ये आपका हाथ है टीचर। उस टीचर को याद आया कि कैसे वो उसका हाथ पकड़कर ही यहाँ वहां चला करता था। वो हमेशा कहती थी कि टेक माय हैंड डगलस, वी विल गो आउटसाइड, लेट मी शो यू हाउ टू होल्ड योर पेंसिल, लेट्स डू दिस टुगेदर। डगलस थैंकफुल था कि उसकी टीचर ने उसका हाथ पकड़ा, उसे सिखाया, और उसकी आंखों से आंसू पहुंचे। अगर वो ना होती तो शायद चीजें उसके लिए बहुत मुश्किल होती। सो इट्स सेड दैट कीप रीचिंग आउट बिकॉज यू मे हेल्प पुल समवन आउट ऑफ डार्कनेस एंड गाइड देम इनटू द लाइट। ये भी एक बहुत बड़ा काम है, किसी को उस अंधेरे से बाहर निकाल लेना। ये कहानी कहलाती है द टीचर्स हैंड। टीचर्स के हाथ भी बहुत जरूरी हैं, चाहे वो कॉपी पर हो या आपके गाल पर, हर तरह से टीचर्स हैंड आर रियली इंपॉर्टेंट। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ कहानी वाला रजत।
1: हाय, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हूँ शान, और आप सुन रहे हैं मेरे गाने ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो। एंजॉय द म्यूजिक एंड

सपनों के पीछे भागते हैं, उनके सपने में सपने बने रह जाते हैं। पर कोई बात नहीं, जो होता था अच्छे के लिए होता था।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप सब? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूं गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक दिन जब बारिश हो रही थी तो एक 15 साल का लड़का जिसका नाम जॉन गोडार्ड था, वो अपने घर में अपनी किचन टेबल पे बैठा लॉस एंजलिस के अंदर, और उसने एक येलो कलर का पैड लिया जिसके टॉप पे उसने लिखा माई लाइफ लिस्ट, और उस लिस्ट के नीचे उसने 127 गोल्स लिखे। जी हाँ, 127 गोल्स उसने लिखे। हम कहेंगे कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, लोग ऐसे गोल्स लिखते ही रहते हैं, खास तौर पे बच्चों में तो ये बहुत शौक होता है। लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं था। इस इंसान ने अपनी जिंदगी में उन 127 में से मोर देन 109 यानी 109 से भी ज्यादा गोल्स पूरे कर लिए। अब आप कहेंगे ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग गोल्स लिखते हैं उन्हें पूरा भी कर लेते हैं। लेकिन आपको ये सुन के तब आश्चर्य होगा जब आपको पता चलेगा कि जो गोल्स उसने लिखे थे वो कोई सिंपल या इजी गोल्स नहीं थे। उनमें ऐसे ऐसे गोल्स थे जो कहते थे कि मेरे को दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन्स पर चढ़ना है, मेरे को दुनिया के जो बड़े से बड़े रिवर्स हैं, जो नदियां हैं, उनको सोर्स से लेकर उनके एंड तक एक्सप्लोर करना है, मेरे को दुनिया के जो बड़े से बड़े, जो सबसे तेज चलने वाले एयरक्राफ्ट्स हैं, हवाई जहाज हैं, उनको चलाना है, यानी ही वांट्स टू बिकम अ पायलट आल्सो, मेरे को 1 मील 5 मिनट से भी कम समय में भागना है, और मेरे को पूरी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़नी है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा, ये जो इंसान था, ये जो लड़का था, इसका नाम था जॉन गोडार्ड, और बाद में लॉस एंजलिस टाइम्स ने इसको रियल लाइफ इंडियाना जोन्स का खिताब दिया। जी हाँ मित्रों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इनको ही हैज बिकम एक्चुअली, ये जॉन गोडार्ड जो थे बाद में वर्ल्ड रिनोन्ड एडवेंचरर बने, एक्सप्लोरर बने, ऑथर बने, लेक्चरर बने। इन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर बहुत से लोगों को प्रेरित किया, मोटिवेट किया, 2 किताबें भी लिखी। 2013 में इनकी डेथ हो गई, लेकिन ये दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाल छोड़ गए जो हम सबको हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हमारे अंदर कितनी पावर है और हम क्या कर सकते हैं अगर हम करने पर आए तो। मैं यहाँ पर आपको उनके गोल्स की लिस्ट नहीं बताने वाला क्योंकि वो बहुत लंबी है और मेरा सारा टाइम उसी में निकल जाएगा, वो आप गूगल पे जाकर कभी भी देख सकते हैं। आप जॉन गोडार्ड टाइप कीजिए, आपके सामने उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी जो 127 गोल्स उन्होंने लिखे थे। आप कहेंगे हम सब लोग अब गोल्स लिखते रहते हैं। देखिए, लिखने की पावर बहुत ज्यादा है। आप गोल्स अपने मन में रखते हैं या उसे लिखते हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। गुड मॉर्निंग अमेरिका एक शो है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमारी सबकी आदत होती है कि नया साल आते ही हम लोग नए नए गोल्स बनाते हैं, रिजोल्यूशन, हमने उसको नाम दिया है अपना कि इस साल मैं ये चीज अचीव करूंगा, इस साल मैं हर रोज जिम जाऊंगा, अपनी बॉडी बनाऊंगा, या खाना ठीक से खाऊंगा, सिगरेट छोड़ दूंगा, वॉट एवर इट इज। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि 15 फरवरी के आसपास यानी हार्डली आफ्टर 45 डेज, उन्होंने ऐसे लोगों को इंटरव्यू किया जिन्होंने अपने रिजोल्यूशंस बनाए थे। तो उन्होंने देखा कि जो लोग सिर्फ अपने मन में सोचकर रिजोल्यूशंस बनाए हुए थे कि हमने ऐसा करना है इस साल, उसमें से सिर्फ 4% पीपल यानी 4% लोग ही ऐसे थे जो कंटिन्यू कर रहे थे, बाकी 96% लोग छोड़ चुके थे। लेकिन जिन लोगों ने अपने गोल्स नोट डाउन किए हुए थे, यानी जिन्होंने ये लिखा हुआ था कि हमने इस साल ऐसा ऐसा करना है, यानी ठीक वही काम जो जॉन गोडार्ड ने किया था 15 साल की उम्र में जब उसने 127 गोल्स की लिस्ट बनाई थी, तो जिन लोगों ने भी लिख रखे थे अपने गोल्स को, उसमें से मोर देन 46% वर स्टिल कंटिन्यूइंग। जी हाँ, 46% लोग उस समय भी कंटिन्यू कर रहे थे जो गोल्स उन्होंने लिखे हुए थे। तो रिसर्चर्स शॉक्ड रह गए जानकर कि आपके सिर्फ किसी गोल को लिख लेने से उसके पूरे होने की संभावना 1100% तक बढ़ जाती है। इट इज वेरी पावरफुल थिंग। तो एक बहुत सरल टेक्निक मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब भी आप अपने गोल्स लिखें, पहली बात तो प्रेजेंट टेंस में लिखें, और उनको लिखने के बाद उसकी एक कॉपी आप अपनी पॉकेट में जरूर रखें और दिन में कम से कम 3 बार उसको जरूर पढ़ें। तब आपको पता चलेगा कि एक फोकस्ड लाइफ को जीने का क्या मतलब होता है। एक्चुअली अगर आपने गोल्स लिख भी दिए और आप दोबारा उसको खोल कर नहीं देखते कई महीनों तक, तो उसके लिखे या ना लिखे होने का कोई बहुत ज्यादा महत्व रह नहीं जाता। हम अगर किसी गोल को लिखते हैं तो हमें उसको दिन में कम से कम 3 बार उसे खोलकर देखना है और उसे पढ़ना है। उससे होगा क्या कि आप तीर की तरह से फोकस रहोगे उस गोल की तरफ जिधर आपको जाना है, और बाकी वो सारी अनवांटेड चीजें जो आपको खींचती रहती हैं और आपकी एनर्जी को और आपके टाइम को खाती रहती हैं, उनसे आप बचते रहेंगे। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि जॉन गॉडर्ड की लाइफ से हम लोग इस इंस्पिरेशन को लें, हम ये देखें कि अगर एक इंसान अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर सकता है। मैं चाहूंगा आप लोग गूगल पे जाएं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, एक दो पेज में ही आपको उसकी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर कोई इंसान इतने टफ गोल्स को अचीव कर सकता है अपनी एक ही जीवन काल में, तो हमारे तो जो गोल्स हैं वो इतने टफ भी नहीं है, बहुत आसान गोल्स हैं हमारे। उसको देखकर आपको बहुत हिम्मत मिलेगी, बहुत ताकत मिलेगी और आप पूरी ताकत से अपने गोल्स पे लग जाएंगे। आपको बहुत आशा मिलेगी, बहुत होप मिलेगी कि अगर वो ये सब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और होप इज एक्चुअली प्लेइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स द अचीविंग ऑफ गोल्स। बातें जारी रहेंगी, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं बोल रहा हूँ गिरेंद्र भारती, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
0: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: मजबूत होने का मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। अपने आसपास बहुत लोग हो सकते हैं आपके जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हो, डरा रहे हो, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। क्या फर्क पड़ता है, शायद वो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाए या उसी सिचुएशन में उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी सोच और ऐसे लोगों से अपने आप को सतर्क रखिए, क्योंकि उनसे सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिविटी, डराना यही मिल सकता है। अगर किसी के पास सॉल्यूशन है तो वो आप खुद हैं। खुद से बात करिए, खुद की सोच और खुद के निर्णय पे यकीन करिए, उस पे आगे बढ़िए और देखिए आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी आपके खुद के भरोसे से, जो आपका खुद पे होगा।
0: वॉक टॉक रेडियो।

0: Your first workout will be bad. Your first podcast will be bad. Your first speech will be bad. Your first video will be bad. Your first anything will be bad. But you can't make it 100 without making your first. So put everything aside and just start doing it. No matter what happens, no matter what the consequences will be, just keep doing it without the fear of failure.
1: जो आदमी हमेशा कूल रहता हो, काम रहता हो और एक दिन आपको बहुत टेंस दिखे तो आपको क्या होगा? ऑब्वियसली हंसी आएगी. आप सुन रहे हैं रेडियो वॉक टॉक, ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ. मैं हूं मुस्कान और ये शो है अनसंग चैंपियंस का, जिसमें हम और आप बात करते हैं उन चैंपियंस की जो अपनी लाइफ में ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, मेडल ला रहे हैं और साथ ही साथ हमें ऐसा लगता है कि आखिर भारत अब खेलों में कितना आगे बढ़ चुका है. सो आज बात कर रहे हैं पुलेला गोपीचंद की और एक इंटरव्यू में साइना नेहवाल ने बताया कि जब कॉमनवेल्थ गेम 2018 हो रहा था तब उन्होंने देखा कि वो किस तरह से पुलेला गोपीचंद को इतना टेंस्ड देख रही थी. यहां तक कि कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पुलेला गोपीचंद बीच में से ऐसा कह रही हो कि ये क्या कर रहे हो, नहीं ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है. बट उस गेम में पुलेला गोपीचंद एक्चुअली बहुत टेंस थे और बिल्कुल एज पर बैठे हुए थे कि ये क्या हो रहा है आखिर. और जब गेम है तब मलेशिया के बिल्कुल अगेंस्ट चल रहा था और साइना नेहवाल खेल रही थी और साइना नेहवाल ने देखा कि पहली बार पुलेला गोपीचंद इतने टेंस थे. इंडिया ने अपना पहली बार फर्स्ट एवर मतलब मिक्स टीम इवेंट था जिसमें गोल्ड लेकर आए थे कॉमनवेल्थ गेम्स में और जिसमें इंडिविजुअल्स इवेंट में साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, कादम्बी श्रीकांत, अश्विनी और एन सिक्की रेड्डी एंड सात्विक साईराज सब लोग लौटे थे मेडल्स के साथ. और साइना एंड सिंधु ने तो फाइनल में खेला था वुमेन सिंगल में एंड वेयर साइना वॉन द गोल्ड मेडल. बट गोपीचंद टोल्ड इंडिया टुडे दैट ही डिड नॉट सी द गेम क्योंकि वो बहुत टेंस्ड थे. सैटरडे ही था उस दिन और साइना ने बताया कि गोपीचंद वॉज एट द एज ऑफ हिज सीट. साइना उस टाइम मलेशिया की प्लेयर सोनिया के अगेंस्ट खेल रही थी और इस टाइम पे जो फीलिंग वो शेयर कर रही थी और उनको लग रहा था कि गोपीचंद बिल्कुल सोच के बैठे हैं कि आज तो हम हार जाएंगे और वो इतना टेंस थे. मतलब ये पहली बार ऐसा हो रहा था क्योंकि इससे पहले उन्होंने हमेशा उनको कूल देखा था, काम देखा था, पर कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पर ही वॉज डिफरेंट, मतलब बिल्कुल अलग दिख रहे थे. गोपीचंद की एक कहावत मुझे आज भी याद है. उन्होंने कहा था कि विनर को कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, विनर शुड नॉट सेटिस्फाइड, और लूजर को कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए. इन दोनों बातों को जब आप बारीकी से सोचते हैं तब आपको लगता है कितनी गहरी बात है. मतलब अगर आप जीत भी जाते हो तब आपको सोचना चाहिए कि अभी सीखने के लिए और बहुत कुछ बाकी है, अभी जीतने के लिए और बहुत कुछ बाकी है. और अगर आप किसी खेल में हार भी जाते हो तब आपको लगना चाहिए कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस आपका डगमगाना नहीं चाहिए क्योंकि खेल में एक की जीत होना तय है और एक की हार होना तय है. तो ऑब्वियसली कभी आप जीतोगे, कभी आप हारोगे, लेकिन कभी कभी जब आपने बहुत सारे सपने देखे होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है तब आप आगे नहीं बढ़ पाते हो. तो इस बात का ध्यान रखना है. और अगर आपने जस्ट अभी खेलना शुरू किया है तो ट्रस्ट मी, सिर्फ कॉन्फिडेंट रहिए और अपने आप को बस लगातार उस काम के लिए झोंक दीजिए. उसके बाद देखिएगा कि क्या रिजल्ट आएंगे. और अभी के लिए बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि थोड़ी देर के लिए जा रही हूं, लौट कर आऊंगी. सुनते रहिए रेडियो वॉक टॉक. मैं हूं मुस्कान. ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ.

0: Walk Talk Radio.
1: Come, shall we do a radio talk with a radio called Say What? Walk Talk. Hi, मैं हूँ अनुष्का. I'm a singer, songwriter and rapper. और आप मुझे सुन रहे हैं Walk Talk Radio पर.
0: Walk Talk Radio.
2: हाय, मेरा नाम है शार्दुल कोटियाल और आज मैं आया हूँ वॉक टॉक रेडियो में. सो बेसिकली मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है थोड़ा बहुत अब ट्रैवलिंग की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है. सो मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूँ, जो मतलब मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो 2 लाख प्लस हैं फिलहाल, और ये मैंने कमाए हैं सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर पे. और कैसे कमाई है तो मुझे खुद भी नहीं पता. खैर, बस कर रहा हूँ जो लोगों को पसंद आ रहा है और उसी वजह से मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो मुझे काफी ज्यादा मिल रहे हैं. बेसिकली मैं अगर आपको सच बताऊं ना, तो आइडिया तो मुझे 2015 में आ गया था, जब मैं कॉलेज में था. तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था बेसिकली, और मतलब था भैया कुछ ऐसा करना है कि मतलब मुझे फेमस होना है, बस कुछ भी करूं, चाहे मुझे और मतलब कुछ भी ऐसा काम करना है जिससे मैं फेमस हो जाऊं बस. तो उस टाइम पे दिमाग में सिर्फ आया रैप, क्योंकि उस टाइम पे चला था रैप वाला ट्रेंड, तो रैप करने का बड़ा शौक चढ़ा था मुझे. तो लिखता था मैं, और लिखने के बाद फिर गाता था, रैप करता, लेकिन फ्लॉप हो गया भैया मैं तो. फिर उसके बाद जैसे ही मेरा मैकेनिकल कंप्लीट हुआ, उसके बाद जॉब वाली जिंदगी में आया, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं भैया हम. तो मिडिल क्लास फैमिली वालों का क्या होता है ना, बस जॉब के अलावा कुछ नहीं होता भाई. सुबह उठो, निकल जाओ जॉब पे, शाम को आओ, खाना खाओ और सुबह फिर से निकल जाओ जॉब पे. तो बेसिकली ऐसी जिंदगी देखी, लेकिन कुछ टाइम बाद ना ये जिंदगी मुझे झंड से लगने लग गई थी पूरी की पूरी. तब दिमाग में आया भैया कि ट्रैवलिंग तो कर ही रहे, तो क्यों ना ट्रैवल व्लॉगर बना जाए, क्योंकि अब ट्रैवल व्लॉग वाला ट्रेंड आने लग गया ना. तो सोचा अब चलो ट्रैवल व्लॉगर ही बनते हैं. लेकिन जो मेरी ट्रैवल व्लॉगिंग की जर्नी थी बेसिकली, वो स्टार्ट हुई थी 2019 नवंबर में. 1 साल हो गया, कंप्लीट हो गया, बहुत खर्चा वर्चा कर लिया भैया, घूम लिया, लाखों रुपए उड़ा दिए, गोप्रो ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन कुछ नहीं, सब्सक्राइबर कुछ नहीं मिले हमें. मतलब 1000 से 1500 सब्सक्राइबर हुए. तो अभी बेसिकली ये है कि जैसी हमारा मतलब 1 साल कंप्लीट हो गया, तो मतलब अब दिमाग में आया कि भैया अब क्या करें, बढ़ तो रहे नहीं हम, मतलब क्या हम इसके लिए भी नहीं बने हुए क्या, तो बने किस चीज के लिए, वही नौकरी करने के लिए बने क्या 9 से 6 वाली. तब दिमाग में आया, मतलब कई हमने वीडियोस वगैरह देखी जिसमें लोग बता रहे हैं कि मतलब लोगों को बोलने का तरीका अच्छा लगता था मुझे कई कुछ वीडियोस में, और क्या हो पा रहा था कि हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे बेस. लेकिन ये चीज समझ में आ गई थी कि भैया कई लोगों को ट्रैवल करना है और पर कर वहां तक पहुंचना कैसा है वो किसी को पता नहीं है बेसिकली. तब मेरे दिमाग में प्लान आया कि भैया चलो एक काम करते हैं, हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे, लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे, तो हम वीडियो उठाते हैं भैया और बताते हैं, लेकिन अपने स्टाइल में.
0: Walk Talk Radio.

हाय, मेरा नाम है शार्दुल कोटियाल और आज मैं आया हूँ वॉक टॉक रेडियो में। मैं आपको सच बताऊँ, 2022 गया अभी ना, तो 2022 दिसंबर में ना हमें कुछ नहीं पता था। 2022 दिसंबर में हमारे जो चैनल पे ना 2000 सब्सक्राइबर थे, वो भी रोध होके। हमने एक चैलेंज चलाया था 30 दिन का, तो उसमें हमने मतलब 2000 गेन कर लिए थे। तो हमें लगा भैया कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन इस चीज को, जो ये शॉर्ट बनाने वाली चीज है ना, इसको रेगुलर रखते हैं। मतलब भाई जनवरी के बाद से जैसे हमने कंटेंट डालना शुरू करा, एकदम से हाइप। भाई मैं अगले से पूछ रहा कहीं ये मतलब फेक तो नहीं है भैया, देख ले ढंग से। मुझे तो क्योंकि फेक लग रहे, एकदम से रातों रात कहां से आ गए उठ के। तो वो चीज सच बताऊं तो हमने ना प्लान करी थी ना सोची थी, और मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि भैया सच में 2 लाख है हमारे। मुझे अभी भी वो जैसे सपना जैसा ही लगता है, भैया ये फर्जी तो नहीं है कुछ। तो मैं कुछ ऐसा, क्योंकि अब मैं वही रेगुलर चीज डालता ना, तो मुझे पता था कि भाई चलने वाला है नहीं, क्योंकि मुझ जैसे तो पता नहीं कितने हर गली और नुक्कड़ में बैठे हुए, हर घर में ऐसा कॉन्टेंट क्रिएटर तो बैठा है। तो मैं अपनी उस रैप वाली चीज को जो मैं लिखता था उसको और इस ट्रैवल को मिक्स करना चाह रहा था बेसिकली, लेकिन अपने अंदाज में। कई लोगों ने मुझे बोला है कि भाई मैं बोलता बड़ा प्यारा हूँ, अब पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, पर कई लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। तब मेरे दिमाग में था कि भाई मैं लिखता भी अच्छा हूँ और बोलता भी अच्छा हूँ, एडिटर तो मेरे पे है ही बढ़िया वाला। तो फिर उस चीज से मतलब कई वीडियोस देखी मैंने कई लोगों की, तो वो मेरे दिमाग में बैठी और मैंने उसको करना शुरू कर दिया। थोड़ा वो मजाक करने वाला ह्यूमर भी है मेरे अंदर, तो स्क्रिप्ट में वो मजाक भी डाली, नॉलेज भी डाला, मजाक नॉलेज को मिक्स करके मैंने कॉन्टेंट बना दिया।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: मैं कर्नल अजय कोटिया हूँ। अगर आपके पास कोई अपनी स्टोरी होती है, कोई एक्सक्लूसिव फीलिंग होती है, तो आप वॉक टॉक रेडियो में आए और यहाँ पे आकर के अपना आइडिया शेयर करें और डाउनलोड करें वॉक टॉक रेडियो, बहुत सारे लोगों की अच्छी जानकारियों को जानने के लिए।
0: वॉक टॉक रेडियो,
2: वॉक टॉक रेडियो,
0: वॉक टॉक रेडियो।
3: मेरा नाम सिद्धार्थ है और आप मुझको सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पे। मैं बेसिकली अपैरल इंडस्ट्री में काम करता हूँ। कोरोना काल में लोग वापस उन जगहों पे गए, उन चीजों में गए, उन हैबिट्स में गए जो हम छोड़ चुके थे। तो मैंने भी कोविड के दौरान ही ये साइकिलिंग का एक दौर मेरा शुरू हुआ, जहाँ मैंने बहुत ही निचले स्तर से शुरू करा, बिकॉज साइकिलिंग बिल्कुल छोड़ चुका था मैं। तो बस तब से साइकिलिंग करना स्टार्ट करा और मुझे साइकिलिंग करते अभी आई थिंक 1.5 साल के आसपास हुए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन 1.5 साल में मैंने इतनी जगहों को एक्सप्लोर कर लिया है अपने देहरादून सिटी के अंदर ही। अभी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ शहर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे इतने हिडन स्पॉट्स हैं, इतने अच्छे ट्रेल्स हैं, जहाँ आप जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, आप नेचर के करीब जाते हैं। और चाहे वो मन की शांति हो, चाहे इंस्पिरेशनल, आप खुद एक इंस्पिरेशन बन जाते हो काफी लोगों के लिए और लोगों से इंस्पिरेशन लेके। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा 1.5 साल का, और मुझे एक बहुत बड़ा फोमो बोल सकते हैं ये रहेगा और है, जो कभी टाइम वापस नहीं आ सकता, कि मैंने साइकिलिंग और जल्दी शुरू क्यों नहीं करी। तो मैं अभी यहाँ पे हूँ, तो आप सबको एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहूंगा कि आप लोगों को ऐसा फोमो ना हो, तो देर आए दुरुस्त आए, जल्दी से अगर साइकिलिंग नहीं है आपके पास तो लीजिए, परचेस कीजिए, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट्स में आती है, कोई बहुत महंगी साइकिल भी नहीं आती, आप ले सकते हैं और अपनी जर्नी साइकिलिंग की स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर यू विल बी रियली हैप्पी आफ्टर डूइंग सर्टेन साइकिल ग्रुप राइड्स और सोलो राइड्स, आपको बहुत अच्छा लगेगा 4-5 राइड करने के बाद। एक वो एक्सपीरियंस ही बहुत ही अच्छा होता है जब आप सुबह सुबह 4 बजे उठ के घर से निकलते हैं और आपको खाली सड़क दिखती है, सूर्य उदय हो रहा होता है या अंधेरा होता है, तारों की छाँव में आप साइकिलिंग चला रहे होते हैं, वो एक एक्सपीरियंस जो है वो शायद हमें अपने कमरे में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के, टीवी के सामने शायद हमें कभी वो लुत्फ और वो एक्सपीरियंस कभी नहीं मिलेगा। और भी आपसे बातें करेंगे बस जरा सी देर में।
0: वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो।
4: इस दुनिया में सबसे अलग दिखोगे, अभी जितना अंधेरे में हो कल उतना ही उजाले में रहोगे।
0: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: मेरा नाम सिद्धार्थ है और आप मुझको सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पे। मोटिवेशन मुझे बहुत सारी चीजों से आया, बट अगर मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बोलूं तो मैं बहुत मोटिवेटेड स्पेशली साइकिलिंग के लिए, कि मुझे साइकिलिंग ही करनी है। मैं थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हूं, आई हैव बीन वर्किंग आउट ऑन एंड ऑफ, बट हैवी वेट्स वगैरह नहीं, बट नॉर्मल कुछ ना कुछ मेरा रूटीन रहता है। लाइक आई एम मोर इन टू डांस ऑल्सो, मैं डांस वगैरह करता हूँ। तो मेरे बर्थडे में मेरे भाई ने बोला कि साइकिल लेनी है या ट्रेडमिल लेनी है, तो मेरा आंसर था कि ट्रेडमिल लेंगे तो फिर हम घर तक सीमित रहेंगे, और अगर हमने साइकिल ली तो हम साइकिलिंग तो करेंगे, नेचर के करीब जाएंगे, अलग अलग रूट्स फॉलो करेंगे। सेकंड, हमारी रोजाना जिंदगी में जो हमारे कुछ छोटे मोटे काम होते हैं, जो हम एक या तो टू व्हीलर या कार पे या वॉक करते जाते हैं, वॉक तो फॉर श्योर कर सकते हैं, बट वो टू व्हीलर या कार भी हम ट्रैफिक ऐड करते हैं अपनी सिटी में, अपनी सोसाइटी में, अपने एनवायरमेंट में, तो हम वो फुटप्रिंट्स कम कर सकते हैं और हम साइकिल को फॉलो कर सकते हैं। तो ये मेन मेरे दिमाग में ये था कि हम साइकिल लेके बहुत सारे फायदे हैं। दूसरा, देहरादून सिटी में हमारे ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे लोग साइकिलिंग से जुड़े हुए हैं। तो अभी इंस्टाग्राम एक अगर बोलें कि यहाँ से लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो वो थोड़ा देख के मुझे इंस्पिरेशन सा मिला, मोटिवेशन सा मिला कि यार जब हमारे रिटायर्ड लोग, 60 साल से प्लस लोग ये सब कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो जो लोग ये सुनेंगे उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी जो हैं, उन्होंने अपना एक लंबी उम्र तक साइकिल ही चलाई है, और उन्होंने वैष्णो देवी जैसे टूर 3 बार साइकिल पर ही करे हैं, और उन्होंने भी अपनी लाइफ में सब स्ट्रगल किया है। तो उनकी जब 25th वेडिंग एनिवर्सरी थी, तब हमने उनको पहली बार एक टू व्हीलर विच इज एक्टिवा गिफ्ट करी थी। उससे पहले वो अप्रॉक्स 50 साल की एज तक अपनी रोजाना जिंदगी में जो दौड़ भाग करते थे वो सिर्फ साइकिल पे करते थे। और आज मुझे इस बात का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पश्चाताप बोल सकते हैं, कि एक पीयर प्रेशर बोल सकते हैं, स्कूलिंग एनवायरमेंट बोल सकते हैं, कि मुझे कहीं ना कहीं शर्म सी आती थी कि मेरे स्कूल में मेरे पिताजी मुझको साइकिल पे छोड़ने आ रहे हैं, जबकि औरों के पिताजी मे भी कार में आ रहे हैं या टू व्हीलर में आ रहे हैं। तो मेरी पेरेंट्स मीटिंग होती थी या स्कूल की कोई एक्टिविटी होती थी, मैं कहीं ना कहीं प्रेफर करता था कि मेरी मदर आए। मेरी मदर ऑब्वियसली साइकिल पे नहीं आ रही है, बट वो चाहे पैदल आ रही है, बट वो साइकिल कहीं ना कहीं गायब है उस सीन से। तो वो मैं अवॉइड करता था कि साइकिल वहां पे ना आ रहे, क्योंकि तब थोड़ी सोच हमारी उतनी मैच्योर नहीं रहती, हम छोटे बच्चों की तरह ही होते हैं 12th स्टैंडर्ड तक। तो पीयर प्रेशर में जो दिख रहा है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो वो मैं आज के जो भी हमारे यूथ हैं, स्कूल गोइंग यूथ हैं, तो ये तो ऑलमोस्ट बहुत ही कोई इक्का दुक्का ऐसा बच्चा स्कूल का निकलेगा जिसके पिताजी अभी तक साइकिल यूज कर रहे हैं। मेन शहर में आपको नहीं दिखेगा कि उनकी फैमिली में किसी का साइकिल है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप खुद तो प्लीज यूज करें, और अगर आपके बुजुर्ग लोग जो पहले कभी यूज करते थे वो यूज करना चाहते हैं, और आपने कभी उनको ये बोल के कि साइकिल साइड रखवा दे कि शर्म आती है, हमारा स्टैंडर्ड लो होता है, ऐसा कुछ भी आपकी सोच थी, मुझे गारंटी नहीं पता बट शायद हो सकती है, तो प्लीज आप रिक्वेस्ट कीजिए उनको कि आप वापस साइकिलिंग करना स्टार्ट करें, और आप खुद भी अपने घर में, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, फ्रेंड्स, फैमिली, सब जगह पे साइकिलिंग का मैसेज लाएं और साइकिल यूज करें।
0: वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो।
2: जिंदगी में देखा जाए तो टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है।
0: वॉक टॉक।

0: जमीन जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।
1: मेरा नाम उपासना चौहान है एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। बेसिकली आई एम फ्रॉम पानीपत, डिस्ट्रिक्ट पानीपत एंड बोर्न एंड ब्रॉट अप इन गुरुग्राम हरियाणा। सो आई डिड माय स्कूलिंग कॉलेज एंड ऑल फ्रॉम हेयर एंड बाय द टाइम स्टार्टिंग मैंने अपनी जर्नी जो है ग्रेजुएशन की वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी थी क्योंकि उस टाइम पे क्रेज़ था कि हाँ भाई डी यू में जाना है, डी यू में जाना है, तो हम उसको बहुत हाई मानते थे। तो उस टाइम पे सारा फोकस जो था वो ये था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो वो मैंने ले लिया, तो वो मेरे लिए एक फर्स्ट सक्सेस पॉइंट था। एंड देन जब बीकॉम एडमिशन लिया तो फिर ये सोचा है कि चलो कुछ अपने ही फील्ड का मतलब हाई कुछ करते हैं, लाइक अपना प्रोफेशन में हाई माना जाता है CA, CS, कोस्ट अकाउंटेंसी। सो मैंने भी सोचा कि चलो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स लेते हैं क्योंकि मेरी थ्योरी बहुत अच्छी है, तो मैंने वो स्टार्ट किया। तो जब स्टार्ट किया तो मेरा फर्स्ट लेवल क्लियर हो गया, करते करते साइड में मेरा बीकॉम भी चल रहा था और बीकॉम के मैं सेकंड ईयर में भी आ गई थी, तो कॉलेज में और इंटरेस्ट भी आधा चला गया और इधर मतलब कि मैंने दोनों हाथों पे ले लिया, इधर से बीकॉम इधर से कंपनी सेक्रेटरी। तो मुझे ऐसे लगा कि हाँ मतलब कि एक टाइम पे एक चीज़ ही करनी चाहिए, तो मैंने थोड़ा उसको गैप दिया कि ठीक है कंपनी सेक्रेटरी अपना आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं। तो उस टाइम पे फिर सेकेंड ईयर पे मैं कॉलेज में हमारे हुए थे यूनियन का, मैं पार्ट बन गई थी और मैं कॉलेज की वाइस प्रेसिडेंट बनी थी, तो वो भी एक फन पार्ट था। आप जब कॉलेज की को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हो तो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ कॉलेज में कैसे क्या होता है, फेस्ट कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, टीचर्स के साथ कैसे रहते हैं, वाइस चांसलर्स के साथ बैठ के हम मीटिंग कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो लाइफ होती है हमने वो इंजॉय करी है। स्टडीज़ भी की है, ऐसा नहीं कि मस्ती एंड ऑल वगैरह की है, तो साइड बाय साइड वो भी किया है। तो जैसे जैसे अपना डिग्री ख़त्म होता चला गया फिर सोचा चलो लाइफ के बारे में और सीरियस हो जाते हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स मैंने कंटिन्यू किया तो मेरा फिर सेकंड लेवल भी हो गया। तो सेकंड लेवल होते होते मेरी साइड बाय साइड एमकॉम भी हो गई कि बस करते चलना है। तो जब कोविड आया तो उसके बाद मतलब कि अपना स्टडीज़ वगैरह था तो साइकोलॉजिकली वो माइंड में आ गया था, बस सबकॉन्शियसली मतलब कि वो कहता था अंदर से कि मतलब कि पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल थिंग जो होती है, वर्किंग स्टाइल जो होती है वो नहीं आ रही, प्रोफेशनलिज्म लैक कर रहा है नॉर्मल उसमें। सो मैंने डिसाइड किया कि ये तो चल ही रहा है, तो साइड बाय साइड एक होता है कि अपना कॉर्पोरेट के लिए जो कहते हैं कि सी एस प्लस LLB बहुत अच्छा माना जाता है, तो मैंने ठीक है बीकॉम हो गया एमकॉम हो गया अब अपना CS चल ही रहा है, LLB भी स्टार्ट कर देते हैं। ग्रेजुअली जब मैं CS करती थी तो मैं कंपनी लॉ जो था वो हमारे लिए प्रायोरिटी होता था CS प्रोफेशन में, तो एक लॉ से गो थ्रू हो गए थे। जब मैंने वो लॉ पढ़ा, उसकी इंटरप्रिटेशन की, उसको अंडरस्टैंड किया कहाँ कैसे क्या रिलेट करते हैं, तो मुझे समझ में आया कि लॉ तो इससे भी ज़्यादा वाइड स्कोप का है। तो अगर मैं कुछ चीज़ अगर करती हूँ तो मेरी आदत है, हैबिट है कि मैं उसको इन डेप्थ करती हूँ, मतलब डीप स्टडी करती हूँ। मैंने मतलब लॉ में एडमिशन लिया तो ये नहीं कि जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, मैंने उसको लिया, मैंने बुक्स एंड ऑल वगैरह ली, तो मैंने इन डेप्थ स्टडी करी। जब मैंने इन डेप्थ स्टडी करी मुझे अच्छा लगा पढ़ना, पढ़ते पढ़ते मुझे इंटरेस्ट आ गया कि मैं डेस्टिनी जो है मुझे करते करते वहाँ तक ले आई। और जिससे मैंने मतलब कि कोर्ट में एंट्री की, मतलब कि अगर मेरे को ये होता है कि समझ लो कि मैं अपने पैशन के पास, अपनी डेस्टिनी के पास सही डायरेक्शन में खुद को लेते हुए मैं सही टाइम पे और अब राइट प्लेस पे आई हूँ, ऐसा मुझे अंदर से फील होता है। चाहे सामने से पब्लिक कुछ भी बोले कि आप कहाँ आ गए हो, किस प्रोफेशन में आ गए हो, इसमें बहुत स्ट्रगल्स है, चैलेंजेस है, वो उनकी बात है, लेकिन आप अंदर से मतलब कि खुश जब फील करते हो ना, हैप्पी फील करते हो कि हाँ भाई आप अपने लिए कर रहे हो, वो मैटर ज़्यादा करता है। ये नहीं कि आप जस्ट फॉर्मेलिटी करने जा रहे हो, तो मेरे लिए ये बेस्ट जो मैं अपने लिए मानती हूँ कि हाँ कोई बात नहीं कि ऐसे ऐसे स्टेज से मैं आई हूँ, लेकिन जो मेरी ये जर्नी रही है उसने मुझे यही सिखाया कि मेरे डिसीजन बिल्कुल सही है।

0: पता है, बड़े बड़े लोगों के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो हम सबको इंस्पायर करती है। जैसे वो हमेशा आने वाले 10 साल की प्लानिंग पहले ही कर देते हैं। वो इस तरह से काम करते हैं कि उन्हें आने वाले 5 या 10 साल में कहाँ जाना है वो पहले से ही पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। अगर यही क्वालिटी आपके अंदर या हमारे अंदर आ जाए, सोचो उसके बाद क्या होगा। जिन्होंने बड़े बड़े एम्पायर खड़े करे हैं, जो जीरो से हीरो बने हैं, उनके अंदर भी तो यही क्वालिटी थी।
1: हाय, मेरा नाम उपासना चौहान है एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। सोशलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, एक कॉलेज लाइफ के बाद की जो होती है वो मैंने कभी नहीं देखी। जब मैंने कोर्ट में जाके देखा, मेरे लिए फर्स्ट क्वेश्चन यही आया था, ऐसी भी दुनिया होती है, ऐसे भी लोग होते हैं। मैंने जाके घर पे पापा से डिस्कस किया, मेरे को पापा, क्योंकि उनको तो पता है, वो तो देखते हुए आ रहे हैं। हमारे लिए न्यू थिंग थी कि पैर तो रख दिया है जर्नी में, उस प्रोफेशन में, अब इन्हें भी देखो। तो वहाँ पे हम एक तरफ कहते हैं अपने कोर्ट से बाहर की जो लाइफ होती है कि हम इतने मॉडर्न हो गए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और लेकिन ये सारी चीजें जस्ट एक ना कहीं वर्बल हैं। मतलब कि आप अगर इनको मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखोगे तो वहां पे तो ठीक है, ये मॉडर्नाइजेशन, हम सही हैं, हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज़। लेकिन जब आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज से अगर बाहर जाके देखोगे, गांव में जाओगे, बैकवर्ड उसमें जाओगे, विलेजेस वगैरह जाओगे, आज भी कहीं ना कहीं वहां पे वो चीज़ नहीं पहुंची है जो कि हम अपने थॉट्स में कहते हैं या फिर हम एक मैसेज पहुंचा रहे हैं मतलब लोगों तक कि लाइफ में मतलब कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो मतलब कि बहुत ही डिफरेंट थिंग है। कोर्ट के अंदर जो लोग आते हैं, जो एक सिस्टम है काम करने का तरीका, वो आज भी कहीं ना कहीं वो ही सिस्टम है जो एक अपना पहले हुआ करता था। तो समझने की बात तो ये है कि वो चीज मतलब पीक पॉइंट पे नहीं आए कि लोग आपस में समझ रहे हैं एक दूसरे को, वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी वाली थिंग है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हम बहुत हाई लेवल पे पहुंच गए हैं, ऐसा नहीं, अभी तो बहुत टाइम लगेगा उसके लिए। मतलब कि एक, अगर आप 10 जने हो तो 10 में से हार्डली एक या दो जने, अगर एक या दो जने को अगर थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज हो जाती है, वो अगर अपनी एजुकेशन दिखाता है तो उसको पागल बोल दिया जाता है। देखिए तो पागल बन रहा है, पागल है, कुछ नहीं है। ये एक चीज होता है अगर बोलते हैं कि चीजें अपनी देसी तरीके से चलती है। हरियाणा है, हरियाणा के अंदर चलो हम हैं, हम कॉर्पोरेट मतलब कि एजुकेटेड अपनी थोड़ी सी थिंकिंग लेवल मैच कर देते हैं। लेकिन जब बारी आ जाती है कि हाँ भाई एक एजुकेटेड इंसान है और एक अपना नॉर्मल इंसान है, देसी टाइप वाला है, वो तो अपनी चीज़ों से ही चलेगा। ये एक जनरेशन गैप भी जिसे हम कह देते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया है। कहाँ कौन क्या कह रहा है, बस चल रहे हैं, दिन निकल रहा है, फिर नेक्स्ट डे आ जाता है, नए गोल आ जाते हैं, फिर दिन निकल जाता है, फिर नए गोल आ जाते हैं। कभी कोई कहता है कि आप ठीक है, क्योंकि हमारी आदत क्या है ना कि हम औरों को सुनना पसंद करते हैं। हमारी आदत है कि हम 3 जने बैठे हैं, 4 जने बैठे हैं, हम हर एक से वही क्वेश्चन पूछेंगे, या तू बता दे कि क्या सोल्यूशन है। वो एक आदत, हैबिट हो गई है पूछने की ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप सुनो सबकी, करो मन की, ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर आप 10 जने कहेंगे, आप 10 डायरेक्शन में चले जाओगे, उनका कुछ नहीं जाएगा, जाएगा आपका, आपकी लाइफ मैस हो जाएगी, आप डायरेक्शन लेस हो जाओगे, आपको नहीं समझ में आएगा क्या हो जाएगा। चाहे जो मैंने अपनी जर्नी से ये सीखा है कि चाहे टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन अपनी गट फीलिंग ही फॉलो करनी चाहिए, ये मैंने देखा है।

0: रिक्रूटिंग हम में से बहुत लोगों को बहुत ही बोरिंग एस्पेक्ट लगता है। पता है क्यों? टाइम नहीं है यार, बहुत कुछ करने का है। बिजनेस है, फोन है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें करनी है और लोगों से बातें करनी है, जगहें देखनी है। किसी सफर पे अकेले निकलना, हम सब लोग ग्रुप में निकलते हैं, दोस्तों के साथ निकलते हैं, परिवार के साथ निकलते हैं, बट खुद के साथ नहीं निकलते क्योंकि डर लगता है। हम अपने दोस्त थोड़े ना है, हमें अपना अकेलापन कहा जाता है। अगर खुद को फील करना है तो अकेले निकलिए सफर पे और एक किताब लेके निकलिए। लेकिन एक जो रीडिंग हैबिट होती है ना, वो आपको आपसे कनेक्ट करती है।
1: कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से।
0: किसी इंसान ने अपने 60 साल 70 साल का तजुर्बा 60 से 150 पन्ने की किताब में डाल दिया आपके लिए। अगर आप उस किताब के साथ दोस्ती कर लेंगे तो यकीन मानिए ये दोस्ती आपकी खुद से हो जाएगी, क्योंकि ये समय आप

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: कई बार हम लाइफ में बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि किसके ऊपर भरोसा किया जाए और किसके ऊपर नहीं किया जाए, लेकिन दोस्तों भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी तीन बातें जान सके, हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का वो प्यार और आपके चुप रहने की वो वजह।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: हम सबके बचपन में कुछ फेवरेट सुपर हीरोज होते थे, जैसे कि सुपरमैन, बैटमैन। हमें लगता था यार इनके जैसी पावर्स चाहिए, लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हुए तो पता चला ये सब एक दिखावा है। असली हीरोज तो बॉर्डर पे हैं, हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ना शहर में रहते हुए भी हीरोज जैसा काम करते हैं। ऐसे ही एक हीरोज का ग्रुप है वेस्ट वॉरियर्स। वेस्ट वॉरियर्स ने पूरे शहर का, पूरी स्टेट का, पूरे हिमालय पर्वत का बेड़ा उठा रखा है, इनकी साफ सफाई का बेड़ा उठा रखा है। और आज वेस्ट वॉरियर से हमारे साथ हैं नवीन जी। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर।
3: थैंक यू गौतम, थैंक यू वेरी मच।
2: वॉक टॉक रेडियो में आप आए हैं, तो कैसा आपको लग रहा है यहाँ पर आके?
3: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आज इन्वाइट किया और मुझे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और पब्लिक तक ये बात पहुंचेगी, इस चीज की मुझे बहुत खुशी है।
2: सर, वेस्ट वॉरियर्स के वर्ड खुद ही में इतना अट्रैक्टिव है, तो जो कि वेस्ट वॉरियर्स की जर्नी है, आपका मिशन है हिमालयस को साफ करने का, क्या चीज आपको इंस्पायर करती है और कितने टाइम से ये काम चल रहा है, ये सफाई का अभियान चल रहा है?
3: बताना चाहूंगा आपको कि 2012 में वेस्ट वॉरियर सोसाइटी जो है फॉर्म की गई थी। जोडी अंडरहिल और ताशी पारिक, ये दो लेडीज थी, महिलाएं थी, जिन्होंने मिल करके इसको पूरा फॉर्म किया। और उद्देश्य यही था कि जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, जो आप देखा जाए कि जहां पर से मेन जो पानी का स्रोत है हमारा, जो जंगल है, जो पर्वत है, उसमें कचरा जो है एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही थी, और उसी को ठीक करने के लिए, उस प्रबंधन के लिए ही जो है वेस्ट वॉरियर सोसाइटी को फॉर्म किया गया। और 2012 से इसकी शुरुआत की गई और आज 2023 हो चुका है, लगातार इस पे काम चल रहा है।
2: सर, बहुत ही अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, और इसमें ना, इस काम में लोकल कम्युनिटीज का बड़ा साथ चाहिए होता है, तो उनके साथ आप कैसे एंगेजमेंट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं उनके साथ आप?
3: देखिए, कचरा प्रबंधन जब कहा जाता है या किस पे कुछ काम किया जाता है, तो लोगों में कहता है कि कचरे की जिम्मेदारी तो यार सरकार की है। लोगों का बस ये होता है कि हमने तो कचरा घर से अलग कर दिया, अब सरकार की, हाँ, अब सरकार की जिम्मेदारी है, इसको अपने आप लेकर के जाएंगे, जैसे मर्जी इसको मैनेज करें। लेकिन आज ये एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, क्योंकि कचरा जो है वो एक मिश्रित, मिक्स फॉर्म में आ रहा है, और मिक्स होने के कारण जो है उसका कोई समाधान मिल नहीं पा रहा है। तो हम लोगों ने कम्युनिटी के साथ जाकर के उनको अवेयर करना स्टार्ट किया, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से लोगों को बताया कि भाई कैसे इसको ठीक किया जा सकता है और कैसे ये गंभीर समस्या बनता जा रहा है, इसका समाधान क्या होना चाहिए, इसका प्रबंधन कैसे होना चाहिए। पब्लिक तक वो सब चीजें पहुंचाई, कम्युनिटी ने इसका बहुत साथ दिया। देहरादून में अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर 97 हर्रावाला जिसे कहा जाता है, वहां के पूरे वार्ड का प्रबंधन अभी वेस्ट वॉरियर्स अपने आप कर रहा है, जहां पे हर घर के द्वारा जो है कूड़ा अलग करके दिया जाता है, और वो कचरा अलग होने के बाद सीधा हमारा जो स्वच्छता केंद्र हर्रावाला पे स्थापित है वहां पर पहुंचता है। तो जब कचरा अलग होके जाता है तो उसका प्रबंधन भी उस तरह से अच्छे से किया जा पाता है। इसके साथ ही सेंसधारा हो गया, उसके लगते हुए गांव हो गए, मुनी की रेती हो गया, आपका कैंटी फॉल एरिया हो गया, हर की दून ट्रैक हो गया पूरा आपका, वहां के गांव हो गए, रामनगर, जिम कॉर्बेट हो गया, तो उत्तराखंड में इन तमाम जगहों पर जो है हम लोग काम कर रहे हैं। और ये काम तभी सफल हो पा रहा है कि इसमें जो लोग हैं उनकी भागीदारी पूरी हमें मिल पा रही है।

0: महाभारत में द्रौपदी के स्वयंवर की कहानी हम सब ने सुनी है। अर्जुन ने मछली की आंख को निशाना बनाकर स्वयंवर जीत लिया था। इतने सारे योद्धा थे लेकिन सिर्फ अर्जुन ही क्यों जीते? इसका कारण है कि अर्जुन अपने गोल, अपने एम को लेकर बहुत फोकस्ड थे। उन्हें उस मछली की आंख के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखा। ऐसा ही कुछ हमें अपने जीवन में करने की जरूरत है। जो भी आपका एम है, जो भी आपका गोल है, सिर्फ और सिर्फ उस पे फोकस करें, बाकी सब भूल जाएं। उस एम को पाने में क्या चैलेंज आएंगे, कितना टाइम लगेगा, इस बारे में सोचो ही मत, बस फोकस, फिर आपको जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता।
1: आपने अभी बात करी कचरा अलग रखने की। काफी लोगों को ना कचरे को सेग्रीगेट करने का मतलब नहीं पता, मतलब उनके लिए गीला कचरा भी एक ही बात है, सूखा कचरा भी एक ही बात है, तो इन दोनों को क्यों सेग्रीगेट करना चाहिए, ये आप बता दें।
2: एक शब्द जो कूड़े के लिए अक्सर इस्तेमाल होता है वो है कूड़ादान। तो हम लोगों से इसकी परिभाषा के लिए बात करते हैं कि कूड़ादान वर्ड क्यों बना है। और दान तभी होता है जब वो किसी अच्छे के भले के लिए होता है। तो जैसे आप नेत्र दान करते हैं, अंग दान करते हैं, रक्त दान करते हैं, कन्या दान करते हैं, गौ दान करते हैं, वैसे ही आप कूड़ा दान भी करते हैं। तो केवल कूड़े को इकट्ठा करके देना इज नॉट द दान, वो दान नहीं कहलाएगा। कूड़ा अगर अलग होगा तभी वो दान कहलाएगा। और अलग हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमें नेचर ने दी हैं, जो चीज़ें प्रकृति ने दी हैं, जिसमें आपका खाना हो गया, फल हो गए, सब्जियां हो गई, या फूल हो गए, पत्ते हो गए, ये वो चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं जो अपने आप डीकम्पोज हो जाती हैं, अपने आप जो है वो नेचर में ख़त्म हो जाती हैं। उसको अगर अलग किया जाए और वापस नेचर को दे दिया जाए, इन द सेंस कि मिट्टी में उसको दफना दिया जाए, तो अपने आप वो खाद बन जाती है। और जितना भी रिसाइकलेबल है, जो कि मैन मेड है, जिसमें प्लास्टिक खासकर आता है, पेपर आता है, कार्डबोर्ड आता है, मेटल आता है, ग्लास आता है, उसको अगर ढंग से अलग किया जाए और रिसाइकलिंग कंपनी को दिया जाए तो वापस एक नई चीज़ बन जाती है। तो लोगों तक हमने इस चीज़ को, मैसेज को बहुत क्लियरली पहुंचाया कि कूड़ादान केवल कूड़े देने से नहीं होगा, कूड़े को विभाजित करके सही तरीके से देना ही कूड़ादान कहलाएगा।
1: आपने बात करी कि 2012 में आपने शुरुआत की थी
2: जी,
1: तो उस टाइम पे लोगों की क्या मानसिकता थी, और आज जब आप 2023 में बैठे हैं, आपने इतना काम करा है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं, तो लोगों में क्या बदलाव देखते हैं आप?
2: 2012 में भी समस्या थी और आज हम 2023 में, तो तब भी समस्या यही है।
1: बिल्कुल।
2: और समस्या अब बहुत गंभीर हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जिस तरह से उत्तराखंड में टूरिस्ट हमारा जो है इंक्रीज हुआ है, क्योंकि चारधाम यात्रा पे आपको पता है कि हर साल लाखों जो है पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं, और वैसे भी ये पर्यटक नगरी कही जाती है, देवों की नगरी कहा जाता है उत्तराखंड को, तो तमाम पूरे प्रदेश से, पूरे देश से जो है लोग यहाँ पहुँचते हैं, तो उसी तेजी से जो है यहाँ पर कचरा भी यहाँ पर पहुँच रहा है। तो उसके प्रबंधन के लिए जो है हमने काम करना शुरू किया। समस्या गंभीर है और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, साथ में मुझे खुशी है कि सरकार भी इसमें हमारा बहुत सहयोग कर रही है, जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो भी इसमें हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। और लोगों में अब ये मैसेज बहुत क्लियरली जा रहा है कि कूड़े को अलग करके जब आप देंगे तो ही इसका प्रबंधन हो पाएगा, नहीं तो कूड़े के पहाड़ बनते जाएंगे।
1: बिल्कुल, कूड़े के पहाड़ों की बात करी आपने, ये पहाड़ आज भी हैं और कल भी शायद होंगे, लेकिन आने वाले समय में वेस्ट वॉरियर और वेस्ट मैनेजमेंट मिलकर फ्यूचर में क्या ऐसा चेंज लाने वाले हैं, या क्या आपका ऐसा गोल है फ्यूचर में?
2: दो चीजों पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। पहला तो है कि मॉडल वार्ड बनाना और साथ में MRF को सेटअप करना। MRF मतलब हुआ कि मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, या इसको कह सकते हैं तो स्वच्छता केंद्र, मतलब कि जहां पर भी आप कूड़े को बात करते हैं अलग करने की, तो जब तक आपको अलग करने के बाद उसका समाधान आप नहीं दे पाएंगे, तो फिर वो उसका कुछ अलग करने का जो पर्पस है वो सब खत्म हो जाएगा। हर्रावाला में ही, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कि एक स्वच्छता केंद्र का निर्माण किया गया है, जो कि नगर निगम देहरादून के साथ मिलकर के किया गया है, वहां पर लोगों द्वारा अलग जो कूड़ा किया जाता है वो लेकर आया जाता है, गीले कचरे से वहां पर खाद बनाई जाती है, और जितना भी सूखा कचरा है उसको अलग अलग और विभाजित करने के बाद जो रिसाइकलर्स हैं वहां तक उनको पहुंचाया जाता है। तो हमारी पूरी कोशिश, पूरा प्रयास है कि ऐसे मॉडल्स को पूरे उत्तराखंड में, ना केवल पूरे भारत में, ऐसा एस्टैब्लिश किया जाए, ताकि जितना भी कूड़े का प्रबंधन है वो अच्छे तरीके, बेहतर तरीके से हो पाए। और कूड़ा जब तक एक मटेरियल रिकवरी सेंटर पे नहीं पहुंच पाएगा, या लोगों द्वारा अलग से उसको अलग नहीं किया जाएगा, तो ये कूड़े के पहाड़ जो है लगातार बनते जाएंगे। आने वाले समय में हम लोग इस पे ज्यादा काम करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक नया प्रोग्राम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम युवा है। युवा प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इसमें कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और जो हमारे स्कूल्स हैं उसमें इंटर कॉम्पिटिशन हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। अभी तक केवल वेस्ट वॉरियर्स या फिर ऐसे तमाम एनजीओस थे जो सफाई अभियान चलाया करते थे या फिर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया करते थे, बट अब एक नई पहल हम लोग करने जा रहे हैं कि कॉलेज इंस्टीट्यूट्स और जो हमारे स्कूल्स हैं वहाँ के जो बच्चे हैं उनको इतना मोटिवेट करें, उनको इतना एम्पावर करें कि वो खुद से अपने आप उठ करके आएं और अपने आप से वो सफाई अभियान चलाएं, अपने आप से वो लोग नुक्कड़ नाटक करें, इतने वो उनके अंदर इतनी पावर आ जाए कि वो अपने आप से जान सकें कैसे पीएल फाइल करनी है, कैसे आरटीआई फाइल करनी है, और उनकी आवाज़ इतनी बुलंद हो कि वो जो भी समस्याएं हैं खासकर कचरा प्रबंधन को लेकर के या पर्यावरण को लेकर जो भी चिंताएं जो व्यक्त की जा रही हैं उसको लेकर वो लोग काम कर सकें। तो 1 सितंबर से 1 सितंबर से पूरा प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है और मार्च 2024 तक ये पूरे के पूरे क्षेत्र में जो है प्रोग्राम चलाया जाएगा।

0: इन सभी के बीच में थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा ईमान बचा पाया हूँ। ये क्या कम है कि मैं अपनी पहचान बचा पाया हूँ, कुछ उम्मीदें, कुछ सपने, कुछ महकती यादें बचा पाया हूँ। जीने के लिए बस इतना ही सामान बचा पाया हूँ, इसीलिए मटेरियलिस्टिक चीजों से अच्छा अपनी रियलिस्टिक चीजों के लिए भागिए। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ रियलिस्टिक चीजें काम आती है, मटेरियलिस्टिक तो थोड़े दिन में खराब हो जाती है। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।
1: हाय दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कपरवान, वन ऑफ द मेंबर ऑफ कॉमेडी क्लब देहरादून, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पे। दो तीन बेरोजगारों ने सोचा क्यों ना कुछ करा जाए। कॉमेडी देहरादून में नहीं था, स्टैंड अप कॉमेडी आर्ट फॉर्म आई नहीं थी, पोइट्री चल रहा था, सिंगिंग चल रहा था, बट कॉमेडी की बड़ी जरूरत थी हम लोगों को। तो उसके बाद डिसाइड करा कि क्यों ना मिलके कुछ करा जाए। तो ऐसे ही कलेक्टिवली सब लड़के मिलके एक क्लब खोल दिया, उसको कॉमेडी क्लब देहरादून बोलते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी का तो देखो सिंपल है, अगर आपको अपनी इज्जत से बहुत प्यार है तब तो मत ही करो तो अच्छी बात है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्टेज में जाते हो और कोई नहीं हंसता, तो आपको तब अपने पे डाउट होने लग जाता है कि बेकार पढ़ाई करी, प्यार भी करा लड़की से, सब चीज में धोखा खाया और स्टैंड अप कॉमेडी भी खराब जा रही है। ये उसके लिए आई थिंक आपको बहुत फेलियर से इस पे फेस करना पड़ता है। आप 10 जोक लेके जाओगे स्टेज में और एक चलेगा, कभी एक भी नहीं चलेगा, तो आपको ऐसे उतरना पड़ेगा और बार बार ऐसे ओपन माइक करके आपके पास एक सेट बनता है, हम उसे 5 मिनट सेट कहते हैं। 5 मिनट के लिए आपके जोक्स बनते हैं जिसे हम टाइट 5 बोलते हैं, फिर वो आप जाके स्टेज पे करते हो। फिर इसमें भी गारंटी नहीं है कि 100% के लिए होगा, 95 समथिंग का रेशियो रहता है ये टाइम, तो इतना ईजी नहीं है, वो ट्राई करके ही पता चलेगा। जो भी एक बार आएगा स्टेज पे उसे पता चल जाएगा कि ये ऐसा करना है या नहीं करना है, या पढ़ाई पे ही ध्यान देना है।

0: रेडियो।
1: समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भाग्य का निर्माता नहीं बन पाते।
0: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

रेडियो। हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना। वॉक टॉक रेडियो।

स्ट्रक्चर होता है, एक राइटिंग स्ट्रक्चर होता है, तब जाके वो क्लिक होता है, तब लोग हंसते हैं। तो ऐसा रैंडम तो बहुत टफ हो जाता है। फिर मैंने तो घर वालों की उम्मीद पहले ही तोड़ दी थी, पढ़ाई से ही तोड़ दी थी मैंने, ऐसी ज़्यादा उम्मीद बना के नहीं रखी उनसे। मेरे पापा खुद स्टेज से रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन ही रहे हैं, आर्मी में वो करते थे, अभी भी करते हैं, स्टेज बहुत करते हैं, तो उनको पता है कि स्टेज में कैसा होता है क्या होता है। वो खुद मानते हैं बहुत टफ होता है आपको स्टेज में जाके किसी को हंसाना, तो पहले बोल देते हैं कि बहुत बड़ी बात है, कर रहे हो तो ये वैसे ही बहुत बड़ी बात है, इसका आगे हम इतना नहीं सोचेंगे। मेरा तो बहुत सपोर्ट करते हैं, एंड शायद यहाँ पे जितने हैं सबका ही करते हैं, ऑडियंस का थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। अपने बहुत से ऐसे शोज भी देखे, मुझे याद है एक शोज कर रहा था मैं, यहाँ पे 600 की ऑडियंस थी। अब मिडिल ऑफ द शो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, साइड से एक मैनेजमेंट का आदमी आया, मुझे कहता है कि भाई अनाउंस कर दो कि गर्मा गर्म चाय और नमकीन कुरकुरे आपका इंतजार कर रहे हैं, और मेरे को मिड ऑफ द परफॉर्मेंस ही बोलना पड़ा। और देहरादून की जनता इतनी प्यारी है, सब उठ के चले गई चाय पीने, ऐसे लोग। एंड देन उसके बाद मेरे को बोलते कि लाओ स्टार्ट करो। तो मैं कह रही यार यूट्यूब पे थोड़ी देख रहे हो तुम, कि सब पॉज कर दिया फिर स्टार्ट कर दिया। तो बहुत होता है कॉमेडी में, लाइक अप्स एंड डाउन, आपको कुछ शो बहुत अच्छे जाते हैं, कुछ शो बहुत खराब जाते हैं, ऑडियंस पे डिपेंड करता है। जोक्स बेसिकली सब ऑडियंस पे ही डिपेंड करता है। सरकैज़म क्या ऑडियंस को समझ में आ रहा है, अवेयर भी होना चाहिए ना ऑडियंस। मैंने बात में किसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, उनको कोई फर्क ही नहीं है, तो 50% गेम ऑडियंस का है। अगर वो अवेयर नहीं है, उनको कुछ चीज़ पता नहीं है, किसी को समझ में नहीं आते जोक्स। जैसे अगर मैं किसी को बोलूँ कि यार मैं एक हॉन्टेड हाउस गया था, तो लोग सीरियस हो जाते हैं कि क्यों गए थे आप, कि वहाँ नहीं जाना चाहिए था, वो इतने सीरियस हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि आगे सुन ले क्या कह रहे हैं, नहीं कॉन्टेक्स्ट से कोई मतलब नहीं, बहुत सीरियस होकर सुनते हैं लोग कॉमेडी। कुछ कुछ है ऑडियंस, कुछ कुछ नहीं है, तो जो है हम उनके पास पहुँचने की कोशिश करते हैं फिलहाल।

रेडियो। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूं आप सभी के साथ किरण, और पॉडकास्ट की सीरीज में आज एक और गेस्ट के साथ मैं हाजिर हो चुकी हूं आप सभी के बीच में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊं रीजन के नाम से बहुत ज्यादा जाना जाता है। हालांकि बहुत सारी बोली भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको ये देखने को मिले कि एक गढ़वाली मुंडा जो है, अब मैं मुंडा यूज क्यों कर रही हूँ वो आपको पता चल जाएगा, एक गढ़वाली मुंडा जो है वो भांगड़ा कर रहा है और इतना गजब का

0: झगड़ा कर रहा है, तो थोड़ा सा हम अचंभित हो जाते हैं ना, थोड़ा सा हमें सरप्राइजिंग लगता है। हालांकि लगना नहीं चाहिए, कोई भी डांस फॉर्म कोई भी कर सकता है, बट यूजुअली हमें ऐसे देखने के लिए नहीं मिलता है। तो आज के जो गेस्ट है ना, वो भी थोड़ा सा हटके है, क्योंकि है तो ये गढ़वाली, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि ये गढ़वाली है, क्योंकि ये पंजाब की तरह इनकी पर्सनैलिटी है, पंजाबी लोगों की तरह पर्सनैलिटी है, पंजाबी भांगड़ा डांस फॉर्म ये इतनी बेहतरीन तरीके से करते हैं, लोगों को सिखाते भी हैं। तो बिना किसी देरी के आप सभी से मुलाकात करवाती हूँ अजय की, जो कि ये फाउंडर है देहरादून भांगड़ा क्लब की। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल अप करने के लिए देहरादून भांगड़ा क्लब को। बेसिकली मेरा नाम तो आपने बता दिया अजय, लेकिन इस डीबीसी के पीछे बहुत सारे लोग हैं, मतलब इंक्लूडिंग 50+ मेंबर्स हैं। तो उन सब की तरफ से मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि काफी लोगों को हमारे बारे में जानने को मिलेगा, और मोटिव जो हमारे इसके पीछे है तो वो आज जानने को मिलेगा। तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल से हमें एक मीडियम मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जहाँ से हम लोगों को चीजें बता सकते हैं।
0: बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, हर पॉडकास्ट से मिलता भी है। और जैसे कि आपने बताया कि आज जो है हम लोगों के बीच में ये रखेंगे कि हमारा डीबीसी का मोटिव क्या है, हम क्या चाहते हैं, उन सारी बातों से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके बारे में पहले जानना चाहेंगे। अजय कौन है, कहाँ से आता है, क्या करता है, डीबीसी यानी कि देहरादून भांगड़ा क्लब कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बारे में बताइए।
1: बेसिकली अगर जर्नी देखे जाए और मेरे बारे में देखा जाए, तो मैं डिफेंस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो अब एक डिफेंस फैमिली जब बिलोंग करती है, तो वो हर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हम लोग देख के आए, और इस पंजाब से कनेक्टिविटी जब हुई थी, जब मेरे फादर जो थे वो पोस्टेड थे पंजाब में, तो वहां से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, एक वाइब जो है वो मेरे अंदर आ गई है। और मेरी मम्मी की भी पढ़ाई पंजाबी लैंग्वेज में हुई है।
0: अच्छा,
1: यस। तो
0: कैसे?
1: ये क्योंकि मेरे नाना जो थे वो एयरफोर्स में थे, तो अच्छा। उस समय वो चंडीगढ़ में पोस्टेड थे, तो वहां से मम्मी की पढ़ाई हुई, और मेरी मम्मी को पंजाबी में बोलना लिखना सब कुछ आता है।
0: अच्छा।
1: तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एक वायरस तो नहीं कहूंगा मैं, एक छोटा सा कीड़ा कह सकते हैं, हाँ, जीन में आ जाता है वो चीज। जर्नी मेरी भांगड़ा को लेके हुई थी जब मैं ग्राफिकेरा में मैंने एडमिशन लिया था, ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी में, और हमारा पहला बैच था, मतलब 2011 का। उस समय फेस्ट होता था ग्राफिकेरा डीम्ड में, तो हिल में बस एक डिसीजन लिया गया कि यार चलो एक भांगड़ा भी हमारे यहाँ होना चाहिए। तो दो तीन चार लोग हम लोग दोस्त थे, तो उन्होंने बोला यार अजय चलो भांगड़ा करते हैं, एक ग्रुप है वो हमें सिखा देगा, बाकी हम वीडियो को देख के सीख लेंगे।
0: अच्छा।
1: तो मैंने यार चलो ठीक है, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, और क्योंकि भांगड़े को सुन के ही सबके अंदर एक एनर्जी ऑलमोस्ट वो आई जाती है।
0: हाँ।
1: तो हमने वहां से इसको स्टार्ट किया, और बस ऐसे ही किया था कि चलो फेस्ट आउट कर लेते हैं, और बस यही था हमारी जर्नी स्टार्ट भांगड़े के साथ कनेक्टिविटी। बट धीरे धीरे जैसे कॉलेज में हम लोग करते गए, तो वो चीजें और आती गई कि हाँ यार अब तो और करना है। तो जब कोई चीज कनेक्टिविटी बन जाती है एक डांस फॉर्म के साथ, तो डेफिनेटली इंसान उसको करने में पीछे हटता नहीं है, क्योंकि हमें भी करने में उसको अच्छा लगता था, लोगों को भी धीरे धीरे पसंद आ रहा था। तो मेरी जो जर्नी है वो भांगड़ा का लेके यहाँ से स्टार्ट हुई है।

हम सभी यहाँ एक मंजिल तक पहुँचने के लिए आए हैं जो पूरी तरह हमारी होगी। कुछ लोग इसे लक्ष्य कहते हैं, कुछ इसे प्रसिद्धि कहते हैं और कुछ इसे केवल जीवन कहते हैं। किसी भी तरह याद रखने वाली यह एक बात है कि भले ही अपने समय में यह कोई दौड़ नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है, यह जो कुछ है एक क्षण है और जब आप पहुँचेंगे तो क्षणों का यह संचय आपके पास होगा। मैं स्वीकार करती हूँ कि कई बार निराशा चरम पर होती है और मेरा एक हिस्सा उस उन्मादी समय के मुंबई लोकल पर रहना चाहता है, लेकिन जिस चीज के लिए मैं सबसे अधिक आभारी हूँ वह यह है कि जब वह क्षण शांत हो जाता है और मैं खाली सुनसान मंच को देखती हूँ तो मुझे शांति का एहसास होता है कि जो मुझे सही चुनाव करने का आश्वासन देता है। मैं अपने आप को कहानीकार नहीं कहूंगी क्योंकि वास्तव में मैं सिर्फ एक कहानी हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझ में देखने और सुनने की उतनी ही क्षमता है जितनी मुझे देखने और सुनने की क्षमता है। इन द एंड ऑल आई रियली वॉन्ट टू से इज आई एब्सोल्यूटली लव द फैक्ट दैट यू एज माई लिसनर एम्पावर मी जस्ट एज मच एज आई एम्पावर यू एज योर स्पीकर।

0: तो आप इन शॉर्ट हमें भी थोड़ा सा बताना चाहोगे, क्योंकि बहुत सारे आम लोगों को सिर्फ ये पता है कि ठीक है जो है भांगड़ा ऐसे होता है, ऐसे होता है, हाई बीट पे होता है, ऐसे होता है, लेकिन उन्हें डांस फॉर्म के बारे में डिटेल में नहीं पता। बट इन शॉर्ट अगर आप थोड़ा सा उस पे लाइट डालना चाहो कि कितनी फॉर्म्स में होता है।
1: हाँ, अगर मैं वैसे देखूं, क्योंकि टेक्निकलिटी भी इसमें जा सकते हैं टेक्निकल, लेकिन मैं जाते हैं हम हमेशा देखते हैं कि ऑडियंस व्यू से, क्योंकि ऑडियंस एक भंगड़े को अलग अलग तरीके से देखना चाहता है
0: जी।
1: और जब भी हम कहीं परफॉर्म करते हैं तो हम उसी चीज को देखते हैं कि हमारी ऑडियंस क्या देखना चाहती है।
0: हाँ।
1: तो कई बार कई ऑडियंस, जैसे कि मोस्टली सबको ये पता है भंगड़ा गाना बजेगा, पंजाबी सॉन्ग बजेगा और नाचना है बस खुल के।
0: हाँ।
1: ठीक है, एक वो चीज होती है तो लोगों को वो भी पसंद है।
0: हाँ।
1: तो वो हम कॉन्सर्ट कराते हैं।
0: अच्छा।
1: ठीक है, बेसिकली अगर आप एक टेक्निकल उसमें जाओ तो भंगड़े के अंदर काफी स्टेप्स है। अब ऐसे ऐसे नाम है, पटाखा, फुल्का, आप कोई फुलके को देख के सोचता है कि रोटी है।
0: हाँ।
1: तो उसी से लेके वो स्टेप बना है,
0: आई थिंक फुलकारी जैसे दुपट्टा।
1: हाँ, राइट
0: है।
1: तो वैसी है, गिद्दा है, मलवाई गिद्दा है, झूमर है। तो ये टेक्निकल वर्ड्स हैं और एक टेक्निकल सेगमेंट्स होता है। तो
0: अच्छा।
1: जब भी हम कंपटीशन में जाते हैं तो इंडिया के अंदर एक इंटरनेशनल भंगड़ा कंपटीशन होता है।
0: अच्छा।
1: तो उसमें भी हम कॉम्पीट करते हैं और वहां पे ये सारी चीजें यूज करते हैं, लेकिन इससे मैटर नहीं है। मैंने बताया कि लोग भंगड़े को किस तरीके से देखते हैं,
0: आपकी ऑडियंस,
1: ऑडियंस मैटर करती है कि ऑडियंस जिस तरीके से डीबीसी को देखना चाहता है हम उनको वही भंगड़ा जो है उस फॉर्म पे उनको दिखाते हैं।
0: तो अभी तक जैसे आपने बताया कि कॉलेज में आप बीसीए कर रहे थे, तो जब आपने ये स्टार्ट किया, चलो ठीक है उस टाइम पे तो ये होता है कि आप पढ़ रहे हो कॉलेज में, एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो घर वालों को उस चीज से इतनी तकलीफ नहीं होती है। उनका बस ये रहता है कि ठीक है पढ़ाई पे भी ध्यान रखना और एक्टिविटी भी कर लो। बट उसके बाद जब आपका इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया, आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ती गई होगी, आप बहुत ज्यादा इंडल्ज उस चीज में हो रहे होंगे, तो घर वालों को लग रहा होगा कि ये गया तो उस चीज के लिए था, अभी क्या कर रहा है या किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो थोड़ा सा उन्होंने कुछ बोला इस चीज पे?
1: हाँ, मतलब फैमिली का अगर देखा जाए तो सपोर्ट इतना नहीं था, और हमारे भी काफी मेंबर्स होते, क्योंकि हमारे इंडिया में देखा जाता है कि हर कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब इन चीजों में फोकस करता है, लेकिन काफी ऐसे बच्चे होते हैं जिनपे बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट है लेकिन सपोर्ट नहीं मिलने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते।
0: हाँ।
1: मैं अपनी बात करूं और कि जैसे कि मैं ये चीजें करता था, तो मैं अपने कॉलेज टाइम पे बीसीए और एमसीए में मैं टॉपर लिस्ट में रहा हूं।
0: अच्छा।
1: तो मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से उस चीज को मैनेज कर रहे हो। तो जब आप उस चीज को मैनेज करने लग जाते हो तो डेफिनेटली आपके पेरेंट को कोई इशू नहीं होता है। हाँ, ये तो था कि यार आप डांस क्यों कर रहे हो, क्यों करना है भंगड़ा, ठीक है, लेकिन कैसे समझाए कि यार अब कनेक्टिविटी बन गई है तो वो चीज तो छूट नहीं सकती है। तो बस मेरी पढ़ाई को लेके तो कभी वो नहीं रहा। बीसीए और एमसीए के बाद मेरे प्लेसमेंट भी हुए हैं, मैं डिफेंस फोर्सेस के लिए भी मैंने ट्राई किया, नौवार में एसएसबी में गया हूँ।
0: अच्छा।
1: तो ये सारी डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से मैनेज करते हो। बट हाँ, फैमिली बिल्कुल भी सपोर्ट अभी भी नहीं करती है।
0: अच्छा।
1: तो कहीं ना कहीं ताने मारते हैं काफी, मतलब हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, लेकिन अब डिसीजन हमारा है और लाइफ में जब हमने डिसीजन लिया है कि इसमें कुछ करना है तो डेफिनेटली उस चीज को प्रूफ भी हमें करके दिखाना है।

0: Radio.
1: Boss has a title, but a leader has the people. हर कंपनी में, हर बिजनेस में एक बॉस यानी कि हेड ऑफ द कंपनी जरूर होता है. बाकी सारे एम्प्लॉयज उसके अंडर काम करते हैं. बॉस का टाइटल तो सब हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा लीडर वही होता है जो ना कि सिर्फ ऑर्डर्स दे बल्कि खुद एक एग्जाम्पल सेट करे, अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करे, एक पॉजिटिविटी का एनवायरमेंट क्रिएट करे. और ऐसा लीडर टाइटल के साथ साथ अपनी टीम का

हाय, मैं हूं अंशुल भट्ट, फाउंडर एंड सीईओ फॉरेस्ट इको रिजॉर्ट ग्रुप, और आप मेरे को सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। जब हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की और एंटरप्रेन्योरशिप की, तो बेसिकली स्टार्टअप, जब हम कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब हमारी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है किसी भी काम को करने में, और कुछ इनोवेशंस की वजह से किसी एंटरप्रेन्योर की कुछ काम करने के तरीके से अगर सोसाइटी की वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो वो बेसिकली एक स्टार्टअप होता है। ऑब्वियसली अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है सोसाइटी के किसी भी सेगमेंट में, किसी भी चीज में, तो ऑब्वियसली वो वहां से अर्न भी करता है, और जिसके वजह से वो धीरे धीरे ग्रो करता है। हमने देखा है क्या, इतने टाइम में इंडिया में ही काफी स्टार्टअप सब आ रहे हैं, 2014-13 के बाद से लेके कंटिन्यूस स्टार्टअप्स ग्रो कर ही रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, और खास तौर पे सर्विस सेक्टर में तो स्टार्टअप की एक तरीके से अब बाढ़ आ रही है। ये लोग अलग अलग तरीके के सेक्टर में टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने अपने जो उनके आइडियाज हैं, जो उन्होंने सोचा हुआ है कि हम इस सेक्टर में ऐसे करके काम करेंगे, तो उसको ग्रो करवा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं तो हर किसी का कभी ना कभी सपना रहता है कि वो कुछ बड़ा करे, वो कुछ स्टार्ट करे जिसके वजह से लोग उसको याद रखें, लोग उसको रिकॉग्नाइज करें, और इसी मोटिवेशन के साथ हर कोई कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करता है। लेकिन काम स्टार्ट करना एक अलग है, और उस काम को एक बड़े लेवल पे ले जाना ये एक पूरा ही अलग, मतलब अगर आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, आपने एक शॉप स्टार्ट कर दी, कुछ भी ऐसा कि जिससे आपको अर्निंग हो रही, तो आप एक एंटरप्रेन्योर हो। लेकिन उस एंटरप्रेन्योरशिप को आप उस लेवल पे लेके जाओ जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल का, नहीं लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल का फायदा हो, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, बहुत सारे लोग जो आपकी टेक्नोलॉजी है या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे फायदा ले पा रहे हैं, तो उसके बाद ही आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ, ये इसने ये स्टार्ट किया और इसका ये आइडिया था और ये बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा है। तो इस पूरे जो जर्नी में बहुत सारी चीजें हैं कि जिसको आपको ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज तो अगर मैं, क्योंकि मैं भी खुद एक एंटरप्रेन्योर हूं और मैंने 2019 में स्टार्ट किया उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया में, क्योंकि मैं पहाड़ों से ही बिलोंग करता हूं। मैं यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन में पास आउट होने के बाद जो मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मेरे को दिखा और जहां पे अपॉर्चुनिटी भी दिखी, वो उत्तराखंड में ट्रैवल एंड टूरिज्म था, और मैं उत्तराखंड से बाहर भी जाके कुछ स्टार्ट नहीं करना चाहता था। तो मैंने देखा कि जिस फील्ड में यहाँ पे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म में कोई काम नहीं कर रहे हैं या स्टार्टअप्स नहीं है, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं ट्रैवल या टूरिज्म में, उत्तराखंड का कोई अपना ब्रांड हो, ऐसा ब्रांड हो क्या, अगर कोई भी उत्तराखंड जा रहा है तो उसके दिमाग में सिर्फ वही चीज चले, तो ऐसा कुछ यहाँ पे था नहीं। तो एक अपॉर्चुनिटी भी थी राज्य के लिए, अपने ही होम टाउन के लिए आप कुछ कर सकते हो। तो मैंने 2019 में जनवरी में स्टार्ट किया कंपनी जिसका नाम था फॉरेस्ट इको रिजॉर्ट ग्रुप, और जो इसकी थीम थी वो ये थी कि हम सिर्फ एक अकोमोडेशन चेन नहीं होंगे, बट हम एक यूनिक अकोमोडेशन चेन होंगे। हम सिर्फ लोगों को कमरा नहीं बेचेंगे, हम सिर्फ लोगों को पैकेज नहीं बेचेंगे, बल्कि हम हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा वो एक्सपीरियंस देना रहेगा किसी भी ट्रैवलर को। तो इस थीम के साथ हमने स्टार्ट किया, और 2019 से 21 तक अभी हमारी 5 प्रॉपर्टीज उत्तराखंड में ऑपरेशनल है, 2 अभी विद इन अ मंथ शायद हम लोग कर लेंगे, ऑपरेशनल कर देंगे। तो ये वो था कि हमने मतलब कैसे करके स्टार्ट किया, इस बीच बहुत सारे चैलेंजेस भी आए। तो आई होप स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको हल्का सा आइडिया आया होगा कि क्या ये पूरी जर्नी होती है, कैसे करके आप कर सकते हो। तो दोस्तों, जल्द मुलाकात होगी नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

हाय, मेरा नाम है अंशुल भट्ट और मैं फॉरेस्टिको रिजॉर्ट ग्रुप का फाउंडर एंड सीईओ हूं और आज आप मेरे को सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। तो लास्ट एपिसोड में जो हमने बात की थी वो थी क्या स्टार्टअप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और कैसे ये पूरी जर्नी रहती है। आज आपको मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा क्या कैसे करके मैंने जो फॉरेस्टिको रिजॉर्ट ग्रुप है उसको स्टार्ट किया है और कैसे करके हमारे जो स्टार्टअप ने एक तरीके से रेस पकड़ी है, कैसे करके हमने अपनी ही ग्रोथ देखी है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। 2019 में हमने स्टार्ट किया था फॉरेस्टिको रिजॉर्ट ग्रुप। हमारा जो मेन मोटिव था वो था कि हम उत्तराखंड में जितने ट्रैवलर आ रहे हैं उनको एक एक्सपीरियंस दें, क्योंकि हम जितने भी सारे ब्रांड यहाँ पे इंडिया में हैं जो हॉस्पिटैलिटी में टॉप के ब्रांड हैं वो अलग अलग तरीके से रूम सेल कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। तो हमारा ये था कि हम एक तो जो हमारी प्रॉपर्टीज होंगी वो कहीं ना कहीं से एक यूनिक अकोमोडेशन होगा, क्या वो नॉर्मल कोई लॉज नहीं होगा या नॉर्मल कोई कमरा हम सेल नहीं करेंगे, हम एक एक्सपीरियंस सेल करेंगे। तो ऐसे करके हमने स्टार्ट किया। 2019 में हमने चोपता तुंगनाथ जो एक लोकेशन है वहाँ पे हमने अपनी एक यूनिट खोली और धीरे धीरे करके केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, नैनीताल, अलग अलग जगह पे हमने यूनिट्स स्टार्ट करी हैं और अभी दो यूनिट हमारी उत्तराखंड के चमोली और टिहरी में हो जाएंगी। इसके अलावा जितने भी ट्रैवल से रिलेटेड पैकेजेस होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट भी हम लोग सेल कर रहे हैं। बस ये चीज को हम मेन वो लेके चल रहे हैं जो हमारा यूएसपी है कि हम एक्सपीरियंसेस ही सेल करें। जो भी आ रहा है वो सिर्फ, क्योंकि जितना भी ट्रैवलर उत्तराखंड में आता है वो कहीं ना कहीं अपने पूरे साल भर की कुछ छुट्टियां बचा के आता है, बहुत जगह से पैसे अरेंज करके आता है, अपने बच्चों के स्कूल की छुट्टियां देख के आता है, तो उसका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, उसके पैसे बहुत ज्यादा कीमती है। और हमारा जो मेन मोटिव है क्या एज अ सिटीजन ऑफ हिल्स उत्तराखंड, क्या हम उसके जो पैसे का उसका पूरा वैल्यू उसको दे। तो बात करते हैं क्या हमारे स्टार्टअप ने कैसे रेस पकड़ी। तो स्टार्टअप में सबसे जो जरूरी है वो आपके लिए लोग हैं, लोग भी वो लोग जो आपके टीम में हैं, क्योंकि अगर आपकी टीम स्ट्रांग है और आपके टीम में अलग अलग माइंडसेट के साथ लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग फील्ड के लोग जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका स्टार्टअप स्पीड अप करेगा ग्रोथ को लेके। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, हमारे साथ कॉर्पोरेट से हमारे साथ अलग अलग फील्ड के कुछ लोग हमारी टीम में आना स्टार्ट किया और इससे ये हुआ कि हमें जो फंडिंग चाहिए थी स्टार्टअप के लिए वो फंडिंग हमें इजिली मिलने लगी, क्योंकि टीम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी स्टार्टअप के लिए। और जब कोई भी आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो सिर्फ आपका आइडिया देख के इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आइडिया बहुत सारे हैं। हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं इस कमरे में भी मतलब हवा में ही इतने सारे आइडिया होंगे, लेकिन किसी भी आइडिया के ऊपर कोई भी ऐसा इन्वेस्ट नहीं करता है। कोई भी इन्वेस्टर है वो आपकी टीम देखता है, आपका मिशन देखता है, आपका विजन देखता है, आप किस फील्ड में इन्वेस्ट करवा रहे हो उससे और उसको कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, सारी चीजें कैलकुलेट करके ही कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। तो हमारे साथ भी जब हमारी लोगों ने टीम देखी और ये देखा कि ये फास्ट ग्रोथ कर रहे हैं तो लोगों ने धीरे धीरे धीरे धीरे करके हम पे पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करा। और जैसे जैसे हमारे पास फंडिंग आई तो हमें ऑब्वियसली हमने आईटी में इम्प्रूवमेंट करे, हमने अपने टेक्नोलॉजी से लेके ऑपरेशन तक हमने हर चीज में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करे। हमने जो फील्ड के एक्सपीरियंस लोग हैं उनको लेके आना शुरू किया टीम में और यहाँ से हमारे पूरे स्टार्टअप को एक पेस मिला। जो अभी हम अपने आप को कहते हैं वो हम कहते हैं कि हम इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिक अकोमोडेशन चेन है और जो हमारा मिशन है वो है कि हम इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट यूनिक अकोमोडेशन चेन बने, क्योंकि लार्जेस्ट अकोमोडेशन चेन बहुत सारी हैं लेकिन हम अपने आप को जो अपनी हमारी यूएसपी है वो है कि हम लार्जेस्ट यूनिक अकोमोडेशन चेन हो, क्योंकि हम सिर्फ रूम या सिर्फ होटल सेल नहीं कर रहे हैं, हम ट्रैवलर को एक एक्सपीरियंस उसको दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरे स्टार्टअप की ये जर्नी रही है और जो मैंने आपसे बातें शेयर करी हैं इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: कोई टूटे तो उसे बनाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। सीखो, रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। अगर ये आपको आ गया ना, तो आपके रिश्ते बहुत आगे तक जाएंगे।
0: वॉक टॉक रेडियो।
2: हाय, दिस इज अनुकृति गुसाई रावत और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। ऐसा जो कंपैरिजन है कि वुमेन आर स्ट्रॉन्गर, मेन आर स्ट्रॉन्गर, आई डोंट थिंक सो कि ये कंपैरिजन होना चाहिए। वुमेन आर स्ट्रॉन्गर इन देयर ओन वे, मेन आर स्ट्रॉन्गर इन देयर ओन एस्पेक्ट्स। बिकॉज अगर आप देखोगे एक महिला के लिए जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय मैं कहूंगी, हर पूरी जीवन परिस्थितियां अलग अलग रहती हैं। एंड यस, आई विल से देर आर सम थिंग्स, सम इंस्टेंसेस वेयर वी कैन से कि हाँ, फीमेल्स आर वेरी स्ट्रांग। फॉर एग्जांपल, जब एक महिला माँ बनती है एंड व्हेन शी गिव्स बर्थ, देन वी फील कि हाँ यार, शी हैज सच अ स्ट्रांग यू नो जील। और जब आप मतलब दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील ऑल्सो विद मेन, आई फील दैट मेन आर स्ट्रांगर, क्योंकि वो कई बार जब आप ज्वाइंट फैमिलीज को अंडरस्टैंड करेंगे या इंडियन जो कल्चर फैमिली का रहा है व्हेन, और इंडियन कल्चर क्या, आई थिंक अराउंड द वर्ल्ड, कि जब हम मेन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारी घर का जो बोझ है अपने कंधे पे रखे, मेन शुड बी अर्निंग मोर एंड ऑल ऑफ दैट, एंड दे टेक केयर ऑफ द फैमिली ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि दे आर लेस और वुमेन आर लेस, बोथ आर इक्वल एंड शुड बी ट्रीटेड इक्वल।
1: वॉक टॉक रेडियो।

Walk Talk Radio. Hi, this is Anukriti Gusai Rawat और आप मुझे सुन रहे हैं Walk Talk Radio पर. I've been hearing lot of cases कि यार ये बच्चा डिप्रेस हो गया, इस बच्चे को मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझको ये हो रहा है. देर आर केसेस एंड आई थिंक यू नो इसमें कोई बुरा लगने वाली बात नहीं. एंड आई अंडरस्टैंड कि कई बार ऐसा होता है कि फैमिलीज भी इस चीज को नहीं अंडरस्टैंड कर पाती, क्योंकि उनको लगता है कि अरे क्या होता है डिप्रेशन, मतलब ये एक जनरल लेमन चीज है, अरे क्या फालतू बात है. नहीं, डिप्रेशन इज सीरियसली बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट भी है. बट आई एम सेइंग कि उसमें जाना या ना जाना कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ में नहीं होता. बट यू नो सी, आई वांट टू टेल यू कि ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कोई ऐसा फील्ड हो जिसमें कम हार्डवर्क लगे. हर जगह स्ट्रगल्स है और हर आदमी का अपना स्ट्रगल होता है, हर किसी की अपनी स्टोरी होती है. एवरीबडी, कई बार लगता है अरे यार इसका तो आसानी से हो गया, इसका थोड़ा मुश्किल हो गया. नो, वी डू नॉट नो, हमें नहीं पता होता कि किसकी जिंदगी में कितना स्ट्रगल है और होता है. तो ओनली फैक्टर, मैंने जैसे पहले भी कहा, द ओनली थिंग इज यार अपने पे भरोसा करना चाहिए बिफोर ट्रस्टिंग एनीबडी. कई बार ऐसा होता है, डिप्रेशन भी अलग अलग टाइप के हो गए आजकल. कई बार डिप्रेशन इसलिए कि गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, कई बार डिप्रेशन इसलिए जॉब नहीं मिली. ठीक है यार, इफ रिलेशन वर्क्स आउट गुड, नहीं चला तो डिप्रेशन पे थोड़ी जाना है.

0: दोस्तों, कई बार हम अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हर चीज के लिए किस्मत पर निर्भर होते हैं। उन्हें लगता है कि वही होगा जो किस्मत में या हमारे हाथों की लकीरों में लिखा हुआ है। पर मैं आपको बता दूं कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है। किस्मत की आजमाइश तो जुआ खेलने वाले भी करते हैं, इसीलिए अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखें और उसके बाद ही किस्मत पर निर्भर हो। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहे वॉक टॉक रेडियो।
1: हेलो, मैं सर नीरज भंडारी और मैं हूँ अभी वॉक टॉक रेडियो देहरादून उत्तराखंड में। सो, आज तक टीवी में देखता आता था, आज तक यूट्यूब में देखता आ रहा था ये चीजें, बट आज ये अपने साथ एक्सपीरियंस करने वाला था। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। सो मैं हूँ नीरज भंडारी और मैं हूँ उत्तराखंड देहरादून से। मैं हूँ एक साइकिल एडवेंचरस गाय, यानी कि मैं साइकिल में करता हूँ टूरिंग। स्पेशल अबाउट मी इज दैट कि मुझे घूमना तो पसंद है, बट मेरे घूमने का जो मेरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, जो कि है साइकिल। तो मैं पहले मतलब मुझे एडवेंचर का बहुत शौक था, मैं नॉर्मल ट्रैकिंग वगैरह में जाता था और स्पोर्ट्स का मुझे पहले से शौक था काफी, स्कूल टाइम से लेके। आई वाज अ स्कूल कैप्टन एंड आई वाज अ एथलीट ऑफ द ईयर ऑफ माय स्कूल। सो जब मैं कॉलेज गया, आई हैव डन माय स्टडीज फ्रॉम एसजीआरआई यूनिवर्सिटी देहरादून। तो जब मैं सेकंड ईयर में था तो मेरे स्कूल के मेरे जो कॉलेज के सीनियर थे तो वो साइकिल में आया करते थे, मतलब वो मेरे साथ टेबल टेनिस खेलते थे पहले। तो मैंने उनको देखा कि वो साइकिल में आ रहे कॉलेज, तो कहीं ना कहीं मुझे मतलब लगा कि यार मजे तो हैं साइकिल में, ऑब्वियसली फ्यूल भी बच रहा है, यू आर सेविंग योर मनी। तो उसी दिन मैं घर गया और मैंने पापा से रिक्वेस्ट करी कि पापा मुझे आज साइकिल चाहिए किसी भी हाल में। तो माय फादर वाज इन आर्मी एंड फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन मैंने साइकिल ली उसके नेक्स्ट डे मैं अपने कॉलेज गया। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैंने साइकिल लिया एंड वहाँ पे मैंने अपने कॉलेज के जो मेरे फ्रेंड्स थे वो साइकिल से बिल्कुल भी मतलब इंट्रोड्यूस नहीं थे। तो मैंने उनको बस इतना बोला, देखो गाइस हम कल घूमने जा रहे हैं सहस्त्रधारा, जो हमारी देहरादून का एक फेमस पिकनिक स्पॉट है। तो मैंने उनको कहा हम घूमने जा रहे हैं सहस्त्रधारा। मैंने उनको पूछा नहीं, मैंने उनको सीधा ऑर्डर दिया कि कल हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग अपनी बाइक लेकेंगे, हम लोग अपनी स्कूटी लेकेंगे। मैंने कहा ये सब नहीं है, अपनी अपनी साइकिल लेकर आओगे। फिर देवाला एक साइकिल क्यों? तब मैंने उनको बताया कि मैंने एक साइकिल ली है। अच्छा, तभी तू प्लान बना रहा है कि साइकिल में चलना है।

0: जिस दिन आपको पता चल गया कि आप कर सकते हैं तो फिर आप कर लेंगे।
1: Walk Talk Radio, tune in for a better life. Walk Talk Radio.
2: क्योंकि मैं साइकिल से पहले अपने घर से मेरा जो सर्कल था अराउंड 15 किलोमीटर्स के बाहर मैं कभी नहीं गया अपनी लाइफ में। 12 जब मैं कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में था, साइकिलिंग इंट्रोड्यूस जब मेरे से हुई उससे पहले से, तो जब हमने प्लान बनाया कि चलो ऋषिकेश चलते हैं, देन हम तीन लोग थे, हम लोग सुबह 4 बजे हम लोग ऋषिकेश के निकले अंधेरे में जंगल के रास्ते से। बहुत मज़ा आया, भले ही ऋषिकेश से जब वापस देहरादून आ रहे थे हमारी वाट लग गई थी फुल, बिकॉज वी हैड नो आइडिया कि कैसे पैडलिंग होती है, धूप में कैसे चलाते हैं, क्या क्या खाना पड़ता है। हम लोग खा रहे छोले भटूरे और हमें सुस्ती आ गई आते वक्त, बट जैसे तैसे हम लोग घर आए। देन मुझे फिल्म मेकिंग का तो शौक था, फोटोग्राफी पिक्चर्स एंड ऑल, घर आते सारी फोटोज क्लिक करना, फोटोज एडिट करना, फोटोज अपलोड करना शुरू हो गया। जो रिस्पॉन्स मिला वो बहुत अमेजिंग था, मतलब मुझे खुद नहीं पता लग रहा था कि यार मैं ऋषिकेश गया साइकिल से और ऋषिकेश से वापस आ रहा हूँ। मेरे से पहले बहुत लोग थे देहरादून के जो मतलब मेरे से 3-4-5 साल पहले से साइकिलिंग करते आ रहे, देहरादून ऋषिकेश और धनौल्टी सब जाते रहते थे, बट मैंने कभी खुद देखा नहीं था, बिकॉज लोग करते तो थे बट दिखा नहीं पाते थे, है ना, दिखाएंगे तो ही दूसरों को पता चलेगा, जो दिखता है वही बिकता है, ये वही सेंस आ गया। तो जब मैंने किसी का देखा ही था तो मुझे पता कैसे चलता। यहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ कि मैं ऋषिकेश गया तो लोगों के रिस्पॉन्स आ रही, नीरज तू ऋषिकेश ला गया, तूने एक दिन में 80

जो हार्ड है उसको आपने डायरेक्टली बाइट नहीं करना। आपको नॉनवेज खाना है आप जरूर खाइए, मगर आप लेग पीस या चिकन ब्रेस्ट या मटन के पीस में डायरेक्टली बाइट मत कीजिए, उसके छोटे टुकड़े कर लीजिए और निवाले के साथ खा लीजिए, मतलब बोनलेस छोटे टुकड़ों में खा लीजिए। आप किसी पार्टी में जाते हैं, वहाँ पे आपको पिज्जा मिलता है, आपको वहाँ पे बर्गर मिलता है, आप उसमें डायरेक्टली बाइट मत कीजिए, छोटे हिस्से करके उसको रोटी की तरह खा लीजिए। आप मूवी देखने गए हैं, वहाँ पे पॉपकॉर्न है, तो जरा सॉफ्ट वाला पॉपकॉर्न खा लीजिए, वो जो हार्ड पॉपकॉर्न कर्नल होता है उसको मत खाइए। दीज आर द वे यू मॉडिफाई। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू ब्रश मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड यू हैव टू डू रिंसिंग आफ्टर एवरी मील।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: दोस्तों, ऐसे बहुत से काम हैं जिनके लिए हमें कई लोगों ने कहा होगा कि तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। और जब कोई ये बात बार बार बोले, यही बात बार बार दोहराए, तो एक बार के लिए तो खुद के ऊपर भी डाउट होने लगता है कि यार क्या हम ये कर भी पाएंगे या नहीं। लेकिन आगे बढ़ते हुए कहीं भी आपको ऐसा ख्याल मन में आए तो दोस्त, याद करना उन सारे शब्दों को जो आपको हर वक्त डीमोटिवेट करते हैं, आपको गलत साबित करने में तुले होते हैं। लेकिन आपको उन लोगों को गलत प्रूफ करना है, उनकी बातों को, उनके शब्दों को गलत प्रूफ करना है कि आप नहीं कर पाएंगे। आपको ये प्रूफ करना है कि आप कर पाएंगे। आपको हारना नहीं है, बल्कि उन सबको हराना है जो आपकी हार में खुशी मनाते हैं।

Hi, I'm Dr. Amit Mehra. आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पे. लोगों को क्या होता है कि हम आज ब्रेसेस वाले डॉक्टर के पास आए हैं, उसके पास हैरी पॉटर जैसी कोई जादू की छड़ी होगी, वो कोई मंत्र बोलेगा और हमारे दांत ठीक हो जाएंगे. लोग उसको कोरिलेट करते हैं कि डॉक्टर साहब जब दांत में दर्द होता है आप तो इंजेक्शन देके निकाल देते हो, वो तो एक बारी में खत्म हो जाता है, फिर तो हम आपके पास आते ही नहीं है. मगर ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि ब्रेसेस के इलाज में हम धीरे धीरे दांत को एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन में लेके जाते हैं. अगर मैं आपसे मैथमेटिक्स की बात करूं तो हम महीने में दांत को सिर्फ 1 mm तक ही मूव करते हैं, इसलिए ब्रेसेस का ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है. अप्रोक्सीमेटली 16 to 18 months इज द टाइम पीरियड दैट वी रिक्वायर टू गिव सैटिस्फैक्ट्री रिजल्ट. ये है एक्टिव ट्रीटमेंट जिसके अंदर हमने दांत में ब्रेसेस लगाए हुए हैं और पेशेंट के खराब दांत की पोजीशन सही पोजीशन पे आ गए हैं दांत. इस एक्टिव ट्रीटमेंट के बाद एक रिटेंटिव फेज भी आता है जिसके अंदर पेशेंट को एक प्लेट दी जाती है उतारने और चढ़ाने वाली. रिटेंटिव फेज भी 6 to 9 months का होता है. तो अगर आप ओवरऑल टोटल करो एक्टिव ट्रीटमेंट प्लस रिटेंटिव पीरियड, सो 2 to 2.5 years का इलाज है ये. तो रूल हम पेशेंट को क्या बोलते हैं, दैट यू हैव टू बी अ वेरी पेशेंट पेशेंट. आप में पेशेंस होनी चाहिए ये इलाज करवाने के लिए.

0: Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio.
2: Walk Talk Radio.
3: Walk Talk.
0: Walk Talk Radio.
4: हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर. ड्रीम बिग एंड हाउ टू अचीव देम. सपने बड़े देखना आसान होता है लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है. ठीक वैसे ही जैसे हमें पहली बार स्कूल जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, मन नहीं लगता है, हम रोते हैं, मम्मी पापा को मिस करते हैं, लेकिन फाइनली हमें आदत लग जाती है. तो मेरा ऐसा ही मानना है कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस को पाने के लिए आपको पहले उस सक्सेस की सीढ़ी की आदत लगानी पड़ेगी. यू हैव टू वर्क हार्ड. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो पहली सीढ़ी पार करोगे जिसे कहते हैं सक्सेस की तरफ पहला कदम.

0: कभी दो पल खुद के साथ भी बिता के देखो, अच्छा लगता है। दुनिया की भीड़ से परे अपने अंदर की आवाज को सुन के देखो, अच्छा लगता है। सुबह से शाम ऑफिस में काम और घर आके आराम, इस सब से हट के बिना किसी टेंशन के कुछ देर अकेले बैठो और खुद से बातें करो। ट्रस्ट मी यार, आपसे बेहतर ना आपको कोई नहीं जान सकता। और सबसे अच्छी एडवाइस अगर लेनी हो तो खुद से पूछ के देखना, जवाब मिल जाएगा।
1: Walk Talk Radio, tune in for a better life.
2: इश्क तेरा तड़पावे। Hi everyone, this is Sukhbir और आप सुन रहे हैं

0: हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता। लाइफ में लर्निंग्स बहुत जरूरी है और हम ठोकर खा के ही लर्निंग सीखते हैं। कई बार हम भगवान को कोसते हैं, अपनों को कोसते हैं कि हमारे साथ ये क्यों हुआ, हमारा अपना हमसे क्यों रूठ गया, हमारा अपना हमसे क्यों छूट गया। एक्चुअली वो सब हमारी लर्निंग्स होती हैं। गॉड हमें थोड़ी थोड़ी देर में टेस्ट करते हैं। हमारी डेस्टिनी हमें हर जगह टेस्ट करती है। वो ये देखती है कि ये कितना तपा है, क्या ये कुंदन बनने लायक है। एग्जैक्टली, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। और लर्न आप तभी करते हैं जब आपको ठोकरें मिलती हैं। और उसके लिए सबसे पहले आपको अपने एम के लिए लॉयल रहना बहुत जरूरी है। लॉयल्टी की तो बहुत इम्पोर्टेंस है। आपको जो अचीव करना है जिंदगी में, जो पाना है, जो आपका मकसद है, जो भी है, आपको जो भी बनना है, जो भी पाना है, जिस भी मुकाम तक पहुंचना है, उन सब को पाने के लिए उसके रास्ते की लॉयल्टी बहुत जरूरी है।
1: Walk Talk Radio. Tune in for a better life. Tune in.

आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं कहानी वाला रजत और ये है मेरा शो सफरनामा। सफरनामा जहां पर हम कुछ ऐसे शहरों से आपको मिलवाते हैं जिनके इतिहास, जिनकी ज्योग्राफी, जिनकी बनावट और बसावट जान के आपको ऐसा लगेगा कि बस एक बार इस शहर तो जरूर जाना है। तो सफरनामा हमारा पहुँच गया है एक ऐसे शहर जिसे अजनबियों से मोहब्बत है। दुनिया में कुछ गिने चुने शहर ऐसे हैं जिन्हें इटर्नल सिटी कहा जाता है, यानी सनातन शहर। हमारे हिंदुस्तान की काशी नगरी या बनारस भी ऐसा ही एक शहर है। इसी तरह से यूरोप के रोम और एथेंस शहरों को इटर्नल सिटी का दर्जा दिया गया है। सनातन शहर या इटर्नल सिटी उन शहरों को कहा जाता है जो हजारों सालों से आबाद है। यहाँ पर लोगों के रहने के जो प्रमाण या सबूत है वो कई बरसों से मिलते हैं, मतलब कई हजारों सालों से। ग्रीस या यूनान की राजधानी एथेंस में भी हजारों साल पहले से इंसानों के रहने के सबूत मिले हैं। आज हम उसी एथेंस की बात करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक शहरों की बात करें तो एथेंस का कोई सानी नहीं, यहाँ के हर खंडर में इतिहास छुपा है। न सिर्फ यूनान का बल्कि पूरे यूरोप का और मानवता हर एक का एक शुरुआती इतिहास नजर आता है। एथेंस की हर गली से जुड़े हैं हजारों किस्से, हजारों दास्तानें। एथेंस को यूरोप की सभ्यता का केंद्र यानी कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। पश्चिमी देशों की सभ्यता की राजधानी कहा जाता है। एथेंस ने दुनिया को दार्शनिक दिए, लोकतंत्र दिया और नाटक कला की नेमत भी दी। एथेंस की इमारतें और खंडहर पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की बुनियाद मानी जाती है। एथेंस के खंडरों में ही आबाद है यूनान की बहुत पुरानी परंपरा। ग्रीक जबान में इसे फिलोजीनिया कहते हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है अजनबियों से मोहब्बत, फिलोजीनिया। हालांकि स्थानीय लोग इसे अब विदेशियों के प्रति गर्म जोशी मानते हैं, यानी उनका एक अच्छे खुले मन से स्वागत करना। आपको एथेंस पहुंचते ही गजब की गर्म जोशी और अपनेपन का एहसास होगा। एथेंस हाथ फैलाकर खुले दिल से हर आने जाने वाले का सम्मान और स्वागत करता है। लंदन से आकर एथेंस में बसने वाली जूलिया विलियम्स ने एक जगह इंटरव्यू में लिखा है कि एथेंस बहुत दोस्ताना शहर है। एथेंस के शानदार इतिहास को निहारने के लिए हर साल दुनिया भर से करीब 45 लाख लोग यहाँ आते हैं। लेकिन एथेंस ने अपने शानदार इतिहास में आधुनिकता के पन्ने भी जोड़ रखे हैं। आखिर क्यों लोग एथेंस को इतना पसंद करते हैं? तो एथेंस की रहने वाली क्रिसि मेनका कहती है कि बाहर के लोग हों या इसी वतन के, सबको ये शहर बहुत प्यारा है। जब भी आप इसकी गलियों में घूमेंगे तो यहाँ के कैफे और बार लोगों से आबाद नजर आएंगे। क्रिसि को एथेंस के सिटी सेंटर प्लाका के आसपास घूमना पसंद है। क्रिसि कहती है कि आसपास सैलानियों की भीड़ यानी टूरिस्ट को देखकर आपको ऐसा लगता है कि छुट्टियां चल रही हैं और आप पिकनिक पर निकले। गर्मी का मौसम भी सैलानियों के लिए बहुत खुशगवार होता है। साल में कम से कम 250 दिन यहाँ सूरज खिला हुआ देखने को मिलता है। अमरीकी सैलानी मीना एग्नोस कहती है कि यहाँ अप्रैल से अक्टूबर तक मौसम एकदम साफ रहता है, इसी वजह से आप एथेंस के आसपास मौजूद जजीरों पर घूमने जा सकते हैं। मीना एग्रॉस लोगों को करीब 35 समुद्री मील दूर स्थित हाइड्रा द्वीप पर जाने की सलाह देती है, जो एथेंस के पास में है, और लोग वहाँ उस आइलैंड पर जाना चाहें तो बेशक जाएं। ये बिल्कुल शांत है, यहाँ पर कारों को ले जाने की मनाही है, तो आपके लिए पैदल चलना या फिर साइकिल से घूमना आसान होता है। बहुत से सैलानी यहाँ गधों और खच्चरों की सवारी करते नजर आते हैं। ये द्वीप जो है ये बड़ा शांत है और आराम तलबी के लिए मशहूर है। यू जस्ट गो एंड रिलैक्स देयर, कुछ नहीं, कोई गाड़ी का आवाज नहीं, कोई शोर नहीं। द्वीप पर मौजूद कैफे में भी भीड़ कम ही रहती है। हाइड्रा द्वीप दुनिया भर के सेलिब्रिटीज के बीच काफी पॉपुलर रहा है। मीना कहती है कि एथेंस से पहाड़ी और जंगली इलाके भी ज्यादा दूर नहीं है। अगर किसी को शहर के शोर शराबे से डर है तो शांत पहाड़ी और जंगली इलाकों का रुख कर सकता है। माउंट हाइमिटस एथेंस से महज 5 से 6 किलोमीटर दूर है और यहाँ बाइकिंग के लिए जा सकते हैं। आखिर एथेंस में रहना हो तो एक ऐसा तजुर्बा होता है। मीना कहती है कि एथेंस जैसे पुराने शहर में रहने पर आपको इतिहास से मोहब्बत हो जाती है। हर गली, हर चौराहे पर आपको इतिहास का एक टुकड़ा निहारना अच्छा लगता है। शहर के मशहूर खंडर जैसे कि एक्रोपोलिस या टेंपल ऑफ ज्यूस तो खैर दुनिया भर में मशहूर है। इनके अलावा एथेंस में नए इलाके भी आबाद हुए, जैसे कि काउकाकी नाम की बस्ती जो दुनिया की सबसे कूल नई बस्ती का दर्जा हासिल कर चुकी। हाल ही में एथेंस में आधुनिक कला का एक म्यूजियम भी खोला गया है। कुछ लोग एक्सार्किया नाम के इलाके को देखने जाने की सलाह देते हैं। ये इलाका ऐतिहासिक भी है और ग्रीस की हालिया सियासी
उठापटक का गवाह भी। बाहर से आने वाले लोग यूं तो ऐतिहासिक ठिकानों और म्यूजियम के चक्कर ही लगाते रहते हैं, मगर एथेंस की गलियों में भी बहुत दिलचस्प राज छिपे हुए हैं। लेनेट से आकर एथेंस में बसने वाली बसी कैलेटिन अल्प कहती हैं कि एथेंस के पास अंगूरों के भी कई बाग हैं। इनमें से कई जगह बहुत उम्दा वाइन तैयार की जाती है। यू नो दैट ग्रीस में पिछले काफी दिनों से सियासी और आर्थिक उठापटक चल रही। पिछले दशक में आई मंदी का सबसे ज्यादा असर यहीं देखने को मिला था, इसलिए इन देशों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल गई। लोगों को उनके काम के एवज में ठीक से पैसे नहीं मिल रहे हैं। कुल मिलाकर ग्रीस के लोग अपने मौजूदा निजाम से यानी सरकार से और जो उन्हें चला रहे हैं उन लोगों से खुश नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एथेंस बहुत सस्ता शहर है। लंदन के मुकाबले यहाँ उसके आधे पैसे के खर्च में आपका काम चल जाता है। यहाँ घूमते हुए अगर आपको ग्रीक जबान नहीं भी आती तो काम चल जाएगा। बहुत से लोग यूनानी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, मगर गर्मजोशी बढ़ानी होगी यानी सबसे बातचीत करते रहना, तो थोड़ी बहुत ग्रीक बोलने में हाथ आजमाइए ताकि बातचीत होती रहे। लोग विदेशियों के मुंह से अपनी भाषा सुनकर यहाँ बहुत खुश होते हैं। फिर हो सकता है कि वो आपको शहर के कुछ ऐसे राज बता दें जो सिर्फ यहाँ के लोकल्स जानते हैं और किसी को जानने को नहीं मिलता। तो आज का जो मेरा सफरनामा था ये एथेंस के नाम था, एक ऐसा शहर जिसे अजनबियों से मोहब्बत है। कमाल का शहर है, देखने जरूर जाइए। और कैसा रहा एक्सपीरियंस ये आप हमसे शेयर कर सकते हैं वॉक टॉक पर। वॉक टॉक रेडियो पर मैं हूँ कहानी वाला रजत, ये है मेरा शो सफरनामा।

0: हो सकता है हमने ये बातें सुनी हो सकता है कई एक बार कही भी होंगी कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। एट द सेम टाइम हम लोगों ने ये बात भी कही है कि करना चाहिए तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। हाय, मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। बट सोच करके देखिए, मतलब कितनी अलग हैं ये बातें कि एक तरफ तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता। बट करने वालों ने तो अकेले बहुत कुछ किया है, अपने दम पर बहुत कुछ किया है। वो जज्बा होना चाहिए, वो आग होनी चाहिए, करने वाले कर लेते हैं। बट हाँ, जो काम टीम वर्क का है उसे टीम वर्क के साथ नहीं किया जा सकता है। मैं अगर जो कोशिश करूं कि मैं एक बिल्डिंग बनाऊंगा और मैं अकेले बनाऊंगा, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, तो शायद मुझे लंबा टाइम लगे, लंबा वक्त लगे, शायद वो क्वालिटी मैं ना दे पाऊं। बट ऐसा नहीं कि मैं बना नहीं सकता। मांझी जैसे इंसान ने पहाड़ अकेले ही काटा था, लेकिन वहीं पर अगर जो मांझी का सपोर्ट गांव वाले करते, आसपास वाले करते, तो यकीनन वो कम टाइम लगता और ज्यादा बेहतर काम हो सकता था। तो जो काम टीम के साथ में होता है उसमें क्वालिटी होती है। वापस लौट करके आते हैं अपने पॉइंट पर। पॉइंट ये था कि अकेला चना क्या कर सकता है या अकेले के से क्या हो सकता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। एक बार एक गांव में काफी लंबे टाइम तक बरसात बिल्कुल नहीं हुई थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था, उनकी फसलें खराब हो रही थी, बच्चे भूखे प्यासे मर रहे थे, मतलब एकदम अकाल वाली सिचुएशन होने वाली थी। उनको समझ नहीं आया कि क्या करना है। एंड फाइनली उसी गांव में एक विद्वान महात्मा रहते थे, वो सब गांव वाले मिलकर के उनके पास में गए। उन्होंने कहा कि इसका समाधान आप कुछ दीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, अब तो हमारे घर पे बच्चे प्यासे मरने लगे हैं। महात्मा ने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम कल मेरे पास में आना और मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल करके तुमको बताता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, ये मान लेना आप। तो बोले हाँ कोई बात नहीं, मैं कल तुमको बताता हूं। गांव वाले वापस चले गए। अगले दिन उन्हीं महात्मा के पास में गांव वाले वापस लौट करके आए। महात्मा ने कहा कि कल रात में मैंने सपना देखा है और सपने में भगवान आए हैं। भगवान ने यह कहा है कि गांव से बाहर का जो कुआं है उसमें सारे गांव वाले एक एक लोटा दूध अगर जो डालेंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और उसके बाद में मैं बारिश करा दूंगा। गांव वालों ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो गांव वालों में से सब लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम एक एक लोटा दूध लेकर के जाएंगे और उस कुएं में डाल करके रात में आ जाएंगे। उनमें से एक गांव वाले ने सोचा कि मैं एक लोटा दूध क्यों बर्बाद करूं, मतलब बाकी के सारे लोग दूध डालने वाले हैं, अगर मैं एक लोटा पानी भी डाल दूंगा तो किसी को क्या पता चलेगा, दूध में पानी जाके मिलता है तो पानी भी तो दूध ही कहता है। तो उसने ये सोचा और वो एक लोटा पानी भर के लेके गया और कुएं में डाल दिया और चला आया। अगले दिन सुबह महात्मा के साथ में सारे गांव वाले जब कुएं के पास में पहुंचे तो लोगों ने देखा कि वहां पर एक सिंगल लोटा दूध का नहीं पड़ा हुआ था, पूरा कुआं पानी से भरा हुआ था। यानी कि पूरे गांव में किसी एक सिंगल इंसान ने दूध से भरा हुआ लोटा नहीं डाला था उस कुएं में। सबने यही सोचा कि बाकी सब तो दूध डालने वाले हैं, मेरे अकेले के से क्या हो जाएगा, तो मैं पानी डाल देता हूं। सोचिए, इसी तरह की गलतियां हम अक्सर हमारी रियल लाइफ में करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे एक के कुछ ना करने से क्या होगा, या मेरे अकेले करने से क्या होगा, मैं अकेले अगर जो कचरा नहीं फेंकूंगा तो क्या होगा, मैं अकेले अगर जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करूंगा तो क्या होगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, और ये अकेले अकेले अकेले अकेले ऐसे मिलकर के कब जमाना हो जाता है, कब टीम हो जाती है, हमें पता नहीं चलता है। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में बदलाव आए तो वो बदलाव हमें हमारे से शुरू करना पड़ेगा, अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। सोचने वाली बात है ना ये, कि मतलब हम सब चाहते हैं कि हमारा जो देश है ये एकदम से अमेरिका जैसा हो जाए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो हो, ट्रैफिक ना मिले, सड़कें चौड़ी हो, कहीं पर भी कचरा ना मिले, धूल मिट्टी ना मिले, हम ये सब चाहते हैं। लेकिन क्या उस डायरेक्शन में हम कदम उठाते हैं? कार का शीशा डाउन करके अक्सर हम पैकेट यूं ही फेंक देते हैं, कार का गेट खोल करके पिचक मुंह के अंदर का जो गुटखा था वो हम यूं ही सड़क पर थूक देते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अमेरिका जैसे बन जाएं। कोसते हैं हम सरकार को, सरकार के बस का ये नहीं है, सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती, बट क्या हम हमारे हिस्से का करते हैं? आई एम वेरी मच श्योर कि बाहर के जो देश हैं, जो साफ हैं, वहां पर सरकार से ज्यादा एफर्ट्स लोग डालते हैं। बचपन में मैंने ये कहानी सुनी थी, आई डोंट नो कितनी सच है, बट उन दिनों किताबों में आया करता था कि जापान में जो लोग हैं वो अपने बैग में सुई धागा लेके चलते हैं। अगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं पर किसी भी बस का सीट फटा हुआ है तो वो लोग उस सुई धागे की मदद से उस सीट को सिल देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये उनके पैसे से खरीदी हुई बस है जिसका इस्तेमाल उनको ही करना है। और हमारे यहां क्या होता है, हमें हमारा विरोध जताना है, एक काम करो ट्रेन जला दो, पटरियां उखाड़ दो, हॉस्पिटल्स जला दो, बस जला दो, हम ये करते हैं। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हम प्रोग्रेस करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। कैसे? सिंपल सी बात कहने की इस पूरे एपिसोड में यही थी कि अगर आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है, अकेला चना भी भार फोड़ सकता है और बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो कभी भी किसी भी थॉट पर यह मत सोचिए कि सिर्फ मेरे करने से क्या होगा, क्योंकि आप ही के जैसे न जाने कितने लोग सिर्फ यही सोच के कुछ नहीं करते हैं कि सिर्फ मेरे करने से क्या होगा। आप करना शुरू करिए, जमाना करना शुरू कर देगा। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। स्टे ट्यून्ड।
1: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक ट्यूनिंग फॉर अ

0: इंसान पतला हो या फिर मोटा हो, सबके मन में एक ही सवाल होता है, अरे भैया मैं फिट कब होऊंगा, कब होगा, कैसे होगा। लेकिन भैया जैसे भी होगा, योगा से ही होने वाला है। हां जी, कितना सुनियो, दिस इज आरजे गौतम, शो चल रहा है गपशप जंक्शन। लेकिन आज इस शो पे एक बड़ी खास बात है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे, और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जिनको लगभग 35 साल का एक्सपीरियंस है योगा सिखाने का, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे कि IIT रुड़की, RIMC, IMA जैसे इंस्टीट्यूट में इन्होंने योगा सिखाया है। मिस्टर LS रावत, लाल सिंह रावत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉक टॉक रेडियो पर।
1: थैंक यू सर।
0: सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो इस दिन की
1: जी,
0: और आज का दिन आपने कैसे सेलिब्रेट करा, कैसे आपका दिन शुरू हुआ, और कैसे आपके लिए दिन अलग है बाकी दिनों से?
1: आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के अनुकूल है कि हमें अपना स्वास्थ्य साल में एक दिन तो बिल्कुल 100% ध्यान देना है कि हमें अपना स्वास्थ्य फिजिकली मेंटली बोथ साइड अच्छा बनाना है, तरोताजा बनाना है। तो इसके लिए इंटरनेशनल योगा डे जो 21 जून का दिन है, वेरी महत्वपूर्ण।

0: हेलो जी, मैं हूं राजीव ठाकुर और आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर द बेटर लाइफ।
1: वॉक टॉक रेडियो।

0: Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio.
0: Tune in for a better life.
2: Tune in for a better life.
3: हाय हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार मैं हूं शान और आप सुन रहे हैं मेरे गाने ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो एंजॉय द म्यूजिक एंड हैव अ बेटर फ्यूचर
4: तेरे रास्तों में होंगे अभी ये कदम सोचा न था।
5: सर एक बात हमने हमेशा से सुनी है कि अगर हम वर्जिश करते हैं मतलब एक्सरसाइज करते हैं तो बाहर का शरीर बनता है, लेकिन हम जब योगा करते हैं तो हमारे अंदर के शरीर में शुद्धि हो जाती है। वो कैसे होती है सर?
6: बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात कही आपने। स्थूल शरीर से बड़ा है सूक्ष्म शरीर, जो अंदर का शरीर है उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का डेवलपमेंट होगा तो हमारे स्थूल शरीर का और अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो भीतर के जो सूक्ष्म शरीर है इसकी कुछ क्रियाएं हैं, प्रैक्टिकल भी है, जैसे कुंजल क्रिया है, सूत्र नीति है, जल नीति है, और उसके बाद लगभग 48 लाइट माइक्रो एक्सरसाइज है।
5: अच्छा,
6: जो हमारे सूक्ष्म शरीर का डेवलपमेंट करती हैं। और जो ये हमारे सूक्ष्म शरीर है, प्रत्येक पार्ट्स हमारी बॉडी के जितने भी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स 48 हैं, और 48 ही एक्सरसाइज हैं, उन्हीं पे ध्यान लगाते हुए फिर ब्रीथिंग के साथ वो एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं। तो जैसे जैसे वहाँ ब्रीथिंग पहुँचेगी, ध्यान पहुँचेगा, उस शरीर का डेवलपमेंट होगा। जैसे वोकल कार्ड्स है, इम्प्रूवमेंट योर मेमोरी है, फॉर डेवलपमेंट योर इंटेलिजेंसी है, फॉर इम्प्रूवमेंट योर आईसाइट है, फॉर डेवलपमेंट योर चीक मसल्स है, और डेवलपमेंट पावर ऑफ हियरिंग है, कर्ण शक्ति विकास है संस्कृत में बोलते हैं उसको, तो उनका डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये एक्सरसाइज किसी अनुभवी योगचार्य की देखरेख में ही करें।
5: अच्छा, कोई भी इनमें से एक क्रियाएं जो आपने बताई, कोई भी अगर एक छोटी सी क्रिया आप करके दिखा सके अभी हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए?
6: बिल्कुल दिखा सकते हैं। इसमें आप ऐसा करें कि खड़े होके खड़े हो सकते हैं, अगर बैठे बैठे भी करें तो बैठे बैठे भी हो सकते हैं, लेकिन खड़े होकर करेंगे तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
5: अच्छा,
6: इसमें जैसे मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, दोनों पैर मिला के खड़े होना पड़ता है, दोनों पंजों में बराबर वेट और दोनों हाथ थाइस पे चिपका के, जैसे पहली एक्सरसाइज है उच्चारण शक्ति स्थल विशेषज्ञ के लिए, यानी फॉर इम्प्रूवमेंट योर ट्रीटमेंट योर वोकल कार्ड्स, वोकल कार्ड की एक्सरसाइज पे ध्यान लगाते हुए, अपने विशुद्ध चक्र पे ध्यान लगाते हुए 25 टाइम्स क्विकली ब्रीथिंग इस तरह से। फिर सेकंड एक्सरसाइज फॉर इम्प्रूवमेंट योर मेमोरी पावर, लुक अप, आईब्रो को देखते हुए 25 टाइम्स क्विकली ब्रीथिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर डेवलपमेंट योर इंटेलिजेंसी पावर, चिन को थॉट पे लगा के एंड डीप ब्रीथिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी फॉर इम्प्रूवमेंट योर आई साइट, लुक अप, ऊपर देखते हुए एक जगह पे पलके नहीं झपकानी है और सांस नॉर्मल। एक मिनट तक इस एक्सरसाइज को अगर 40 डेज आप रेगुलर कर लें तो आपके जो लगा हुआ चश्मा है वो उतर सकता है और आपकी आंखें 6x6 की हो जाएंगी।
5: क्या बात है,
6: बिल्कुल। इसमें आप अपना न्यूज पेपर वगैरह आराम से बिना चश्मे के पढ़ सकते हो, लेकिन 40 डेज आपको ये एक्सरसाइज करनी है,
5: लगातार करनी है।
6: फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है फॉर डेवलपमेंट योर चीक मसल्स, आपके जो गाल हैं ये एकदम रसीले रहेंगे और पिचके हुए नहीं रहेंगे। इसके लिए हाथ को ऐसे करिए, मुंह से सांस को पीना है यूं, और फिर मुंह फुलाना है, सांस रोकनी है मुंह के अंदर, और फिर थोड़ी देर बाद नाक से सांस छोड़नी है। ये चीक मसल्स की एक्सरसाइज है। हियरिंग पावर के लिए दोनों कान आपके बंद रहेंगे, सांस लेंगे मुंह से, फिर मुंह फुलाएंगे, सांस रोकेंगे, कान आंख बिल्कुल बंद, इस तरह से प्रैक्टिकली भी देखते जाए, धीरे धीरे नाक से छोड़ेंगे तो आपकी जो हियरिंग पावर है उसका इम्प्रूवमेंट होगा, इनका जो सुनने की शक्ति है वो बढ़ेगी।
5: मतलब सांस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आप आराम से थोड़ा सा बैठें, आपसे एक आधा सवाल और करें, और मुझे लगता है दर्शकों ने काफी सीख ली होंगी एक्सरसाइज।
6: बिल्कुल, नेक और नेक से ऊपर की एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट।

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी है, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो,
1: वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक ट्यूनिंग फॉर अ बेटर लाइफ।

सक्सेस का सीक्रेट क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: दोस्तों, हमारी जिंदगी कभी भी कुछ मिनटों की मेहमान नहीं होती जो गिनती के पलों में बदल जाए। पर हाँ, अगर आप अपने फैसले कुछ मिनटों के आधार पर लेते हैं तो वो आपकी जिंदगी को बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है, अपनी लाइफ के छोटे या बड़े फैसले हमेशा सोच समझ कर लेने चाहिए, तभी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।
1: अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कुछ बातों का ध्यान रख के कैसे आप अपनी सॉफ्ट स्किल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो सुनिए सॉफ्ट स्किल डेवलपर मानिक कौर को सिर्फ और सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक
2: रेडियो। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम ऐसा क्या करें प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हों और हम लोगों को बहुत इजीली इम्प्रेस कर सके। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, बी योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स। आप ये मत सोचिए कि कोई और बहुत सक्सेसफुल है, मुझे उसके जैसे चलना है, उसके जैसे बात करनी है, उसके जैसे पॉइंट ड्रेसअप होना है। बिल्कुल नहीं। हैव योर ओन यूनिक सेंस ऑफ स्टाइल, बी कॉन्फिडेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं शेयर करना चाहूंगी वो ये है दैट समथिंग लाइक इंग्लिश, especially in a country like ours, English is not our first language, but it has become very important in communication. Let's face it, ये सच्चाई है कि English एक बहुत बड़ा tool बन चुका है, but at the end of the day एक language ही है। ये हम सबको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप English में बहुत ज्यादा proficient नहीं है तो professionally आप उसे यूज कम करिए। आप हिंदी बोलिए या कोई भी ऐसी लैंग्वेज बोलिए जो आपके ऑफिस में इजिली एक्सेप्टेबल है, rather than making it, you know, like making it too obvious that you're not good with the language. उससे आपका नुकसान हो सकता है। आप हिंदी यूज कीजिए या कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज करिए, लेकिन अगर इंग्लिश इज रिक्वायर्ड, इन दैट केस आप इन अ प्रोफेशनल सेटअप इंग्लिश इन टर्म्स ऑफ वॉट काइंड ऑफ यूजेज इज देयर इन योर प्रोफेशन, आप उन फ्रेजेस को याद करिए और उसमें अपनी मास्टरी कीजिए। इट्स अ वेरी बिग टिप।
3: वॉक टॉक रेडियो।

0: जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है।
1: इश्क तेरा तड़पावे।
2: Hi everyone, this is Sukhbir और आप सुन रहे हैं

0: रेडियो।
1: हमेशा से ही एक बात हमें बहुत सताती है कि हमारा फ्यूचर कब ब्राइट होगा, हमारे सपने कब पूरे होंगे। लेकिन उससे पहले अगर ये समझा जाए कि तुम्हारे सपने क्या हैं और तुम प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, तो जिंदगी के आधे मसले यहीं पर खत्म हो जाएंगे।
0: वॉक टॉक रेडियो।

0: हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर भानुशाली यानी कि आपका देवानंद जूनियर। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला इंस्पिरेशनल ऐप वॉक टॉक रेडियो। जल्दी से जाओ और गूगल पे डाउनलोड करो प्ले स्टोर से।
1: अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कुछ बातों का ध्यान रखे कैसे आप अपनी सॉफ्ट स्किल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो सुनिए सॉफ्ट स्किल डेवलपर मानिक कौर को सिर्फ और सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो।
2: ये सोचना चाहिए कि हम जब लोगों के लिए मीन बातें बोलते हैं या उनके बारे में गॉसिप करते हैं बिहाइंड देयर बैक्स, या फेस पे उनके अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं लेकिन थोड़े टाइम के बाद पता लगता है कि दे हैव चीटेड ऑन यू और दे वर टॉकिंग बैड अबाउट यू और यू शेयर्ड समथिंग विद देम एंड इट्स ऑल ओवर द टाउन। सो ये सब बातें दे आर बैड प्रैक्टिसेस। द स्किल्स इन्वॉल्वड हियर आर एज सिंपल एज बेसिक ह्यूमैनिटी। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट स्पेशल स्किल्स। आई जस्ट फील दैट बेसिक ह्यूमैनिटी इज गोइंग मिसिंग। वी नीड टू रिवाइव दैट एंड हैव गुड कंडक्ट विद पीपल। अगर आपको कोई पसंद नहीं भी है तो भी आप उनके साथ पोलाइटली बात करें, कम बात कीजिए। अगर आपको कोई इंसान पसंद नहीं है, आपको जरूरी नहीं है उसको बताना है कि आपको दैट यू डोंट लाइक हिम और हर। बी पोलाइट इन योर कंडक्ट, बी केयरफुल इन योर कंडक्ट, बी माइंडफुल इन योर कंडक्ट। डोंट गैंग अप विद अदर पीपल एंड इंसल्ट दैट पर्सन। आज जितनी सोशल एंग्जाइटी है कभी नहीं थी। 10 लोगों के ग्रुप में से 9 लोगों को बुला के एक लोग बंदे को छोड़ देते हैं। पीपल हैव बिकम सो इनसेंसिटिव। लेकिन कोई 10 लोगों में आपको छोड़ के बाकी 9 को बुला ले तो आपको कैसा लगेगा? दिस इज समथिंग वेरी वेरी कॉमन अगेन इन सोशल सर्कल्स दैट इज हैपनिंग। पीपल आर फीलिंग, पीपल आर डूइंग दिस टू देम पर्पसली।
1: वॉक टॉक रेडियो।

उम्मीद कहते हैं उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए आपकी जिंदगी में। अगर आपको किसी मंजिल से मोहब्बत है, अब वो कोई काम हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई ख्वाहिश हो सकती है, तो बस उससे जुड़े रहो। उतार चढ़ाव आएंगे, अच्छा बुरा वक्त भी आएगा, लेकिन एक ना एक दिन

आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: कई लोगों को जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। अपनी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी प्यारी लगती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी गप देती है, क्योंकि शिकायतें तो वो भी करते हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।
1: हाय गाइस, मेरा नाम है खुसरो AKA टेक नाइट और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। वेल, जॉब और पैशन दोनों ही चीजें ऐसी हैं कि इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वेल, जॉब से आपका ब्रेड एंड बटर चलता है और पैशन जो है वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है, जिसको मैं बोलता हूँ। तो अगर आप जॉब के साथ साथ अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जॉब के साथ पैशन फॉलो करना, लेकिन अगर आपके अंदर सच में एक आग है अपने पैशन को फॉलो करने की, आप सच में अपने पैशन को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप किसी ना किसी तरह से अपने पैशन को फॉलो कर पाएंगे। चाहे आप भले ही कितना भी थके हुए हो, चाहे आपको नींद आ रही हो, आप भले ही एक घंटा कम सोएंगे, लेकिन आप अपने पैशन को टाइम जरूर दे पाएंगे। तो मैं भी अपने जॉब के साथ अपने पैशन यानी कि टेक कंटेंट क्रिएशन को कैसे मैनेज करता हूँ, तो मेरा भी यही सीन है। मैं ऑफिस से आने के बाद सबसे पहले, फ्रेश होने के बाद सबसे पहले अपना काम लेके बैठता हूँ, वीडियोस की प्लानिंग करता हूँ अगली वीडियोस की, कि क्या स्क्रिप्टिंग करना है, किस टॉपिक पर वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले मैं वो

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: फोकस ऐसा रखो कि आपके और आपके सपनों के बीच कोई ना आ सके, समझ रहे हैं आप।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: दोस्तों, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि आज की डेट में सबसे ज्यादा मुश्किल चीज कमाना क्या है, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप किसी बहुत महंगी, किसी लग्जरियस कार का नाम लेंगे और कहेंगे कि इसे कमाना बहुत मुश्किल है। शायद हो सकता है कि आप बहुत बड़े घर का नाम ले लें और कहेंगे कि उस बंगलो को खरीदना बेहद ही मुश्किल है। या हो सकता है कि आप ये कहें कि चांद पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन सबसे ज्यादा अगर हम अपनी हकीकत की दुनिया में वापस लौटे, तो शायद आज की डेट में सबसे ज्यादा महंगा है किसी का विश्वास जीतना, जिसे हम खरीद तक नहीं सकते। तो यदि जीतना है किसी को, तो किसी का भरोसा जीतिए, इंसान को जीतिए, बाकी के काम तो आपके बनते ही चले जाएंगे। ऐसे ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल बातों को सुनने के लिए बने रहिए वॉक टॉक रेडियो पर।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
2: वॉक टॉक रेडियो।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: ट्यून इन फॉर

आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: रेडियो।
1: दोस्त, खुद को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिर कब तक दूसरों के टाइम के लिए तरसते रहोगे? खुद को वैल्यू दो। हम लाइफ में बहुत कुछ प्लान करते हैं और सबके साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन क्या कभी खुद से कोई भी बात डिस्कस की आपने या करते हैं? अगर हमें कुछ भी बोलना है या फिर कुछ भी फैसले लेने हैं, तो क्या हम तनिक सा अपनी लाइफ के बारे में या खुद से सवाल करते हैं? लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो क्लियर नहीं होती। अगर आप एक बार खुद से बात करना शुरू कर दोगे ना, तो वो जो क्लैरिटी है वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में आने लगेंगी। इसीलिए खुद को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना खुद को टाइम दोगे उतना ही खुद को समझोगे। और कोई भी फैसला लेने से पहले ये सोचना जरूरी है कि ये जो फैसला है ये आपने खुद से लिया या दूसरों के कहने पे आप ये फैसला ले रहे हो।
0: वॉक टॉक रेडियो।
2: वॉक टॉक
3: रेडियो।
2: सक्सेस का सीक्रेट क्या है? क्या है मोटिवेशन का मंत्र? जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
4: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन।

0: मेरे दोस्त, सब्र करना पड़े तो कर लेना, दुनिया से लड़ना पड़े तो लड़ लेना, उगते सूरज को वो सलाम जरूर करेंगे। तुझे वक्त लगे अगर वो सूरज बनने में, तू चाहे वो वक्त ले।
1: ये है वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: क्योंकि अगर एक इंसान अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर सकता है, मैं चाहूंगा आप लोग गूगल पे जाएं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, एक दो पेज
1: दिमाग में आएगी भैया अब क्या करें, बढ़ तो रहे नहीं हम, मतलब क्या हम इसके लिए भी नहीं बने हुए क्या, तो बने किस चीज के लिए, वही नौकरी करने के लिए बने क्या 9 से 6 वाली, तब दिमाग में आया। मतलब कई हमने वीडियोस वगैरह देखी जिसमें लोग बता रहे हैं कि मतलब लोगों को बोलने का तरीका अच्छा लगता था मुझे कई कुछ वीडियोस में, और क्या हो पा रहा था कि हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे बेस, लेकिन ये चीज समझ में आ गई थी कि भैया कई लोगों को ट्रैवल करना है और पर कर वहां तक पहुंचना कैसा है वो किसी को पता नहीं है बेसिकली। तब मेरे दिमाग में प्लान आया कि भैया चलो एक काम करते हैं, हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे, लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे, तो हम वीडियो उठाते हैं भैया और बताते हैं लेकिन अपने स्टाइल में।

हाय, मेरा नाम है शार्दुल कोटियाल और आज मैं आया हूँ वॉक टॉक रेडियो में। मैं आपको सच बताऊँ, 2022 गया अभी ना, तो 2022 दिसंबर में ना हमें कुछ नहीं पता था। 2022 दिसंबर में हमारे जो चैनल पे ना 2000 सब्सक्राइबर थे, वो भी रोध होके। हमने एक चैलेंज चलाया था 30 दिन का, तो उसमें हमने मतलब 2000 गेन कर लिए थे। तो हमें लगा भैया कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन इस चीज को जो ये शॉर्ट बनाने

वाली चीज है ना, इसको रेगुलर रखते हैं। मतलब भाई जनवरी के बाद से जैसी हमने कंटेंट डालना शुरू करा एकदम से हाइप। भाई मैं अगले से पूछ रहा कहीं ये मतलब फेक तो नहीं है भाई, या देख ले ढंग से, मुझे तो क्योंकि फेक लग रहे एकदम से रातों रात कहां से आ गए उठ के। तो वो चीज सच बताऊं तो हमने ना प्लान करी थी ना सोची थी, और मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि भैया सच में 2 लाख हैं हमारे। मुझे अभी भी वो जैसे सपना जैसा ही लगता है भैया, फर्जी तो नहीं है कुछ। तो मैं कुछ ऐसा, क्योंकि अब मैं वही रेगुलर चीज डालता ना, तो मुझे पता था कि भाई चलने वाला है नहीं, क्योंकि मुझे जैसा तो पता नहीं कितने हर गली और नुक्कड़ में बैठे हुए, हर घर में ऐसा कॉन्टेंट क्रिएटर तो बैठा है। तो मैं अपनी उस रैप वाली चीज को जो मैं लिखता था उसको और इस ट्रैवल को मिक्स करना चाह रहा था बेसिकली, लेकिन अपने अंदाज में। कई लोगों ने मुझे बोला है कि भाई मैं बोलता बड़ा प्यारा हूँ, अब पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, पर कई लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। तब मेरे दिमाग में था कि भाई मैं लिखता भी अच्छा हूँ और बोलता भी अच्छा हूँ, एडिटर तो मेरे पे है ही बढ़िया वाला। तो फिर उस चीज से मतलब कई वीडियोस देखी मैंने कई लोगों की, तो वो मेरे दिमाग में बैठी और मैंने उसको करना शुरू कर दिया। थोड़ा वो मजाक करने वाला ह्यूमर भी है मेरे अंदर, तो स्क्रिप्ट में वो मजाक भी डाली, नॉलेज भी डाला, मजाक नॉलेज को मिक्स करके मैंने कॉन्टेंट बना दिया।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: मैं कर्नल अजय कोटिया हूँ। अगर आपके पास कोई अपनी स्टोरी होती है, कोई एक्सक्लूसिव फीलिंग होती है, तो आप वॉक टॉक रेडियो में आए और यहाँ पे आकर के अपना आइडिया शेयर करें और डाउनलोड करें वॉक टॉक रेडियो, बहुत सारे लोगों की अच्छी जानकारियों को जानने के लिए।
0: वॉक टॉक रेडियो,
2: टॉक रेडियो,
0: वॉक टॉक, वॉक टॉक रेडियो।
3: मेरा नाम सिद्धार्थ है और आप मुझको सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पे। मैं बेसिकली अपैरल इंडस्ट्री में काम करता हूँ। कोरोना काल में लोग वापस उन जगहों पे गए, उन चीजों में गए, उन हैबिट्स में गए जो हम छोड़ चुके थे। तो मैंने भी कोविड के दौरान ही ये साइकिलिंग का एक दौर मेरा शुरू हुआ, जहाँ मैंने बहुत ही निचले स्तर से शुरू करा, बिकॉज साइकिलिंग बिल्कुल छोड़ चुका था मैं। तो बस तब से साइकिलिंग करना स्टार्ट करा और मुझे साइकिलिंग करते हुए अभी आई थिंक 1.5 साल के आसपास हुए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन 1.5 साल में मैंने इतनी जगहों को एक्सप्लोर कर लिया है अपने देहरादून सिटी के अंदर ही। अभी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ शहर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे इतने हिडन स्पॉट्स हैं, इतने अच्छे ट्रेल्स हैं, जहाँ आप जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, आप नेचर के करीब जाते हैं। और चाहे वो मन की शांति हो, चाहे इंस्पिरेशनल, आप खुद एक इंस्पिरेशन बन जाते हो काफी लोगों के लिए और लोगों से इंस्पिरेशन लेके। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा 1.5 साल का, और मुझे एक बहुत बड़ा फोमो बोल सकते हैं ये रहेगा और है, जो कभी टाइम वापस नहीं आ सकता, कि मैंने साइकिलिंग और जल्दी शुरू क्यों नहीं करी। तो मैं अभी यहाँ पे हूँ, तो आप सबको एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहूंगा कि आप लोगों को ऐसा फोमो ना हो, तो देर आए दुरुस्त आए, जल्दी से अगर साइकिलिंग नहीं है आपके पास तो लीजिए, परचेज कीजिए, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट्स में आती है, कोई बहुत महंगी साइकिल भी नहीं आती, आप ले सकते हैं और अपनी जर्नी साइकिलिंग की स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर यू विल बी रियली हैप्पी आफ्टर डूइंग सर्टेन साइकिल ग्रुप राइड्स और सोलो राइड्स, आपको बहुत अच्छा लगेगा 4-5 राइड करने के बाद। एक वो एक्सपीरियंस ही बहुत ही अच्छा होता है जब आप सुबह सुबह 4 बजे उठ के घर से निकलते हैं और आपको खाली सड़क दिखती है, सूर्य उदय हो रहा होता है या अंधेरा होता है, तारों की छाओं में आप साइकिलिंग चला रहे होते हैं, वो एक एक्सपीरियंस जो है वो शायद हमें अपने कमरे में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के, टीवी के सामने शायद हमें कभी वो लुत्फ और वो एक्सपीरियंस कभी नहीं मिलेगा। और भी आपसे बातें करेंगे बस जरा सी देर में।
0: वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो।
4: इस दुनिया में सबसे अलग दिखोगे, अभी जितना अंधेरे में हो कल उतना ही उजाले में रहोगे।
0: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: मेरा नाम सिद्धार्थ है और आप मुझको सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पे। मोटिवेशन मुझे बहुत सारी चीजों से आया, बट अगर मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बोलूं तो मैं बहुत मोटिवेटेड स्पेशली साइकिलिंग करने का, कि मुझे साइकिलिंग ही करनी है। मैं थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हूं, आई हैव बीन वर्किंग आउट ऑन एंड ऑफ, बट हैवी वेट्स वगैरह नहीं, बट नॉर्मल कुछ ना कुछ मेरा रूटीन रहता है। लाइक आई एम मोर इन टू डांस ऑल्सो, मैं डांस वगैरह करता हूँ। तो मेरे बर्थडे में मेरे भाई ने बोला कि साइकिल लेनी है या ट्रेडमिल लेनी है, तो मेरा आंसर था कि ट्रेडमिल लेंगे तो फिर हम घर तक सीमित रहेंगे, और अगर हमने साइकिल ली तो हम साइकिलिंग तो करेंगे, नेचर के करीब जाएंगे, अलग अलग रूट्स फॉलो करेंगे। सेकंड, हमारी रोजाना जिंदगी में जो हमारे कुछ छोटे मोटे काम होते हैं, जो हम एक या तो टू व्हीलर या कार पे या वॉक करते जाते हैं, वॉक तो फॉर श्योर कर सकते हैं, बट वो टू व्हीलर या कार भी हम ट्रैफिक ऐड करते हैं अपनी सिटी में, अपनी सोसाइटी में, अपने एनवायरमेंट में, तो हम वो फुटप्रिंट्स कम कर सकते हैं और हम साइकिल को फॉलो कर सकते हैं। तो ये मेन मेरे दिमाग में ये था कि हम साइकिल लेके बहुत सारे फायदे हैं। दूसरा, देहरादून सिटी में हमारे ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे लोग साइकिलिंग से जुड़े हुए हैं। तो अभी इंस्टाग्राम एक अगर बोलें कि यहाँ से लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो वो थोड़ा देख के मुझे इंस्पिरेशन सा मिला, मोटिवेशन सा मिला कि यार जब हमारे रिटायर्ड लोग, 60 साल से प्लस लोग ये सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो जो लोग ये सुनेंगे उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी जो हैं उन्होंने अपना एक लंबी उम्र तक साइकिल ही चलाई है, और उन्होंने वैष्णो देवी जैसे टूर 3 बार साइकिल पर ही करे हैं, और उन्होंने भी अपनी लाइफ में सब स्ट्रगल किया है। तो उनकी जब 25th वेडिंग एनिवर्सरी थी तब हमने उनको पहली बार एक टू व्हीलर विच इज एक्टिवा गिफ्ट करी थी। उससे पहले वो अप्रॉक्स 50 साल की एज तक अपनी रोजाना जिंदगी में जो दौड़ भाग करते थे वो सिर्फ साइकिल पे करते थे। और आज मुझे इस बात का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पश्चाताप बोल सकते हैं, कि एक पीयर प्रेशर बोल सकते हैं, स्कूलिंग एनवायरमेंट बोल सकते हैं, कि मुझे कहीं ना कहीं शर्म सी आती थी कि मेरे स्कूल में मेरे पिताजी मुझको साइकिल पे छोड़ने आ रहे हैं, जबकि औरों के पिताजी मे भी कार में आ रहे हैं या टू व्हीलर में आ रहे हैं। तो मेरी पेरेंट्स मीटिंग होती थी या स्कूल की कोई एक्टिविटी होती थी, मैं कहीं ना कहीं प्रेफर करता था कि मेरी मदर आए। मेरी मदर ऑब्वियसली साइकिल पे नहीं आ रही है, बट वो चाहे पैदल आ रही है, बट वो साइकिल कहीं ना कहीं गायब है उस सीन से। तो वो मैं अवॉइड करता था कि साइकिल वहां पे ना रहे, क्योंकि तब थोड़ी सोच हमारी उतनी मैच्योर नहीं रहती, हम छोटे बच्चों की तरह ही होते हैं 12th स्टैंडर्ड तक। तो पीयर प्रेशर में जो दिख रहा है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो वो मैं आज के जो भी हमारे यूथ हैं, स्कूल गोइंग यूथ हैं, तो ये तो ऑलमोस्ट बहुत ही कोई इक्का दुक्का ऐसा बच्चा स्कूल का निकलेगा जिसके पिताजी अभी तक साइकिल यूज कर रहे हैं। मेन शहर में आपको नहीं दिखेगा कि उनकी फैमिली में किसी का साइकिल है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप खुद तो प्लीज यूज करें, और अगर आपके बुजुर्ग लोग जो पहले कभी यूज करते थे वो यूज करना चाहते हैं, और आपने कभी उनको ये बोल के कि साइकिल साइड रखवा दे कि शर्म आती है, हमारा स्टैंडर्ड लो होता है, ऐसा कुछ भी आपकी सोच थी, मुझे गारंटी नहीं पता बट शायद हो सकती है, तो प्लीज आप रिक्वेस्ट कीजिए उनको कि आप वापस साइकिलिंग करना स्टार्ट करें, और आप खुद भी अपने घर में, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, फ्रेंड्स, फैमिली, सब जगह पे साइकिलिंग का मैसेज लाएं और साइकिल यूज करें।
1: वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो।
2: जिंदगी में देखा जाए तो टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है।
1: वॉक टॉक रेडियो।

0: शैतान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।
1: हाय, मेरा नाम उपासना चौहान है एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। बेसिकली आई एम फ्रॉम पानीपत, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, एंड बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुरुग्राम, हरियाणा। सो आई डिड माय स्कूलिंग, कॉलेज एंड ऑल फ्रॉम हेयर, एंड बाय द टाइम स्टार्टिंग मैंने अपनी जर्नी जो है ग्रेजुएशन की, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी थी, क्योंकि उस टाइम पे क्रेज़ था कि हाँ भाई डी यू में जाना है, तो हम उसको बहुत हाई मानते थे। तो उस टाइम पे सारा फोकस जो था वो ये था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो वो मैंने ले लिया, तो वो मेरे लिए एक फर्स्ट सक्सेस पॉइंट था। एंड देन जब बीकॉम एडमिशन लिया, तो फिर ये सोचा है कि चलो कुछ अपने ही फील्ड का, मतलब हाई कुछ करते हैं, लाइक अपना प्रोफेशन में हाई माना जाता है CA, CS, कोस्ट अकाउंटेंसी। सो मैंने भी सोचा कि चलो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स लेते हैं, क्योंकि मेरी थ्योरी बहुत अच्छी है, तो मैंने वो स्टार्ट किया। तो जब स्टार्ट किया तो मेरा फर्स्ट लेवल क्लियर हो गया, करते करते साइड में मेरा बीकॉम भी चल रहा था, और बीकॉम के मैं सेकंड ईयर में भी आ गई थी, तो कॉलेज में और इंटरेस्ट भी आता चला गया, और इधर मतलब कि मैंने दोनों हाथों पे ले लिया, इधर से बीकॉम, इधर से कंपनी सेक्रेटरी। तो मुझे ऐसे लगा कि हाँ, मतलब कि एक टाइम पे एक चीज़ ही करनी चाहिए, तो मैंने थोड़ा उसको गैप दिया कि ठीक है कंपनी सेक्रेटरी अपना आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं। तो उस टाइम पे फिर सेकंड ईयर पे मैं कॉलेज में हमारे हुए थे यूनियन का, मैं पार्ट बन गई थी और मैं कॉलेज की वाइस प्रेसिडेंट बनी थी, तो वो भी एक फन पार्ट था। आप जब कॉलेज की को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेते हो, तो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज कॉलेज में कैसे क्या होता है, फेस्ट कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, टीचर्स के साथ कैसे रहते हैं, वाइस चांसलर्स के साथ बैठ के हम मीटिंग कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो लाइफ होती है हमने वो इंजॉय करी है। स्टडीज भी की है, ऐसा नहीं कि मस्ती एंड ऑल वगैरह करी है, तो साइड बाय साइड वो भी किया है। तो जैसे जैसे अपना डिग्री खत्म होता चला गया, फिर सोचा चलो लाइफ के बारे में और सीरियस हो जाते हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स मैंने कंटिन्यू किया, तो मेरा फिर सेकंड लेवल भी हो गया। तो सेकंड लेवल होते होते मेरी साइड बाय साइड एमकॉम भी हो गई, कि बस करते चलना है। तो जब कोविड आया, तो उसके बाद मतलब कि अपना स्टडीज वगैरह था, तो साइकोलॉजिकली वो माइंड में आ गया था, बस सबकॉन्शियसली मतलब कि वो कहता था अंदर से कि मतलब कि पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल थिंग जो होती है, वर्किंग स्टाइल जो होती है, वो नहीं आ रही, प्रोफेशनलिज्म लैक कर रहा है नॉर्मल उसमें। सो मैंने डिसाइड किया कि ये तो चल ही रहा है, तो साइड बाय साइड एक होता है कि अपना कॉर्पोरेट के लिए जो कहते हैं कि CS प्लस LLB बहुत अच्छा माना जाता है, तो मैंने ठीक है बीकॉम हो गया, एमकॉम हो गया, अब अपना CS चल ही रहा है, LLB भी स्टार्ट कर देते हैं। ग्रेजुअली जब मैं CS करती थी, तो मैं कंपनी लॉ जो था वो हमारे लिए प्रायोरिटी होता था CS प्रोफेशन में, तो एक लॉ से गो थ्रू हो गए थे। जब मैंने वो लॉ पढ़ा, उसकी इंटरप्रिटेशन की, उसको अंडरस्टैंड किया कहाँ कैसे क्या रिलेट करते हैं, तो मुझे समझ में आया कि लॉ तो इससे भी ज़्यादा वाइड स्कोप का है। तो अगर मैं कुछ चीज़ अगर करती हूँ, तो मेरी आदत है, हैबिट है कि मैं उसको इन डेप्थ करती हूँ, मतलब डीप स्टडी करती हूँ। मैंने मतलब लॉ में एडमिशन लिया है, तो ये नहीं कि जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी मैंने उसको लिया, मैंने बुक्स एंड ऑल वगैरह ली, तो मैंने इन डेप्थ स्टडी करी। जब मैंने इन डेप्थ स्टडी करी, मुझे अच्छा लगा पढ़ना, पढ़ते पढ़ते पढ़ते मुझे इंटरेस्ट आ गया कि मैं डेस्टिनी जो है मुझे करते करते वहाँ तक ले। और जिससे मैंने मतलब कि कोर्ट में एंट्री की, मतलब कि अगर मेरे को ये होता है कि समझ लो कि मैं अपने पैशन के पास, अपनी डेस्टिनी के पास सही डायरेक्शन में खुद को लेते हुए मैं सही टाइम पे और अब राइट प्लेस पे आई हूँ, ऐसा मुझे अंदर से फील होता है। चाहे सामने से पब्लिक कुछ भी बोले कि आप कहाँ आ गए हो, किस प्रोफेशन में आ गए हो, इसमें बहुत स्ट्रगल्स है, चैलेंजेस है, वो उनकी बात है, लेकिन आप अंदर से मतलब कि खुश जब फील करते हो ना, हैप्पी फील करते हो कि हाँ भाई आप अपने लिए कर रहे हो, वो मैटर ज़्यादा करता है। ये नहीं कि आप जस्ट फॉर्मेलिटी करने जा रहे हो, तो मेरे लिए ये बेस्ट जो मैं अपने लिए मानती हूँ कि हाँ कोई बात नहीं कि ऐसे ऐसे स्टेज से मैं आई हूँ, लेकिन जो मेरी ये जर्नी रही है उसने मुझे यही सिखाया कि मेरे डिसीजन बिल्कुल सही हैं।

0: रेडियो।
1: पता है बड़े बड़े लोगों के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो हम सबको इंस्पायर करती है, जैसे वो हमेशा आने वाले 10 साल की प्लानिंग पहले ही कर देते हैं। वो इस तरह से काम करते हैं कि उन्हें आने वाले 5 या 10 साल में कहाँ जाना है वो पहले से ही पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। अगर यही क्वालिटी आपके अंदर या हमारे अंदर आ जाए, सोचो उसके बाद क्या होगा। जिन्होंने बड़े बड़े एम्पायर खड़े करे हैं, जो जीरो से हीरो बने हैं, उनके अंदर भी तो यही क्वालिटी थी।
2: हाय, मेरा नाम उपासना चौहान है एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। सोशलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, एक कॉलेज लाइफ के बाद की जो होती है वो मैंने कभी नहीं देखी। जब मैंने कोर्ट में जाके देखा, मेरे लिए फर्स्ट क्वेश्चन यही आया था, ऐसी भी दुनिया होती है, ऐसे भी लोग होते हैं। मैंने जाके घर पे पापा से डिस्कस किया, मेरे को पापा, क्योंकि उनको तो पता है, वो तो देखते हुए आ रहे हैं। हमारे लिए न्यू थिंग थी कि पैर तो रख दिया है जर्नी में, उस प्रोफेशन में, अब इन्हें भी देखो। तो वहाँ पे हम एक तरफ कहते हैं अपने कोर्ट से बाहर की जो लाइफ होती है कि हम इतने मॉडर्न हो गए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और लेकिन ये सारी चीजें जस्ट एक ना कहीं वर्बल हैं। मतलब कि आप अगर इनको मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखोगे तो वहां पे तो ठीक है, ये मॉडर्नाइजेशन हम सही हैं, हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीजें। लेकिन जब आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज से अगर बाहर जाके देखोगे, गांव में जाओगे, बैकवर्ड उसमें जाओगे, विलेजेस वगैरह जाओगे, आज भी कहीं ना कहीं वहां पे वो चीज नहीं पहुंची है जो कि हम अपने थॉट्स में कहते हैं या फिर हम एक मैसेज पहुंचा रहे हैं मतलब लोगों तक कि लाइफ में मतलब कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो मतलब कि बहुत ही डिफरेंट थिंग है। कोर्ट के अंदर जो लोग आते हैं, जो एक सिस्टम है काम करने का तरीका, वो आज भी कहीं ना कहीं वो ही सिस्टम है जो एक अपना पहले हुआ करता था। तो समझने की बात तो ये है कि वो चीज मतलब पीक पॉइंट पे नहीं आए कि लोग आपस में समझ रहे हैं एक दूसरे को, वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी वाली थिंग है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हम बहुत हाई लेवल पे पहुंच गए हैं, ऐसा नहीं, अभी तो बहुत टाइम लगेगा उसके लिए। मतलब कि एक, अगर आप 10 जने हो तो 10 में से हार्डली एक या दो जने, अगर एक या दो जने को अगर थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज हो जाती है, वो अगर अपनी एजुकेशन दिखाता है तो उसको पागल बोल दिया जाता है, देखिए तो पागल बन रहा है, पागल है कुछ नहीं है। ये एक चीज होता है, अगर बोलते हैं कि चीजें अपनी देसी तरीके से चलती है। हरियाणा है, हरियाणा के अंदर चलो हम हैं, हम कॉर्पोरेट मतलब कि एजुकेटेड अपनी थोड़ी सी थिंकिंग लेवल मैच कर देते हैं। लेकिन जब बारी आ जाती है कि हाँ भाई एक एजुकेटेड इंसान है और एक अपना नॉर्मल इंसान है, देसी टाइप वाला है, वो तो अपनी चीज़ों से ही चलेगा। ये एक जनरेशन गैप भी जिसे हम कह देते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया है। कहाँ कौन क्या कह रहा है, बस चल रहे हैं, दिन निकल रहा है, फिर नेक्स्ट डे आ जाता है, नए गोल आ जाते हैं, फिर दिन निकल जाता है, फिर नए गोल आ जाते हैं। कभी कोई कहता है कि आप ठीक है, क्योंकि हमारी आदत क्या है ना कि हम औरों को सुनना पसंद करते हैं। हमारी आदत है कि हम 3 जने बैठे हैं 4 जने बैठे हैं, हम हर एक से वही क्वेश्चन पूछेंगे, या तू बता दे कि क्या सोल्यूशन है। वो एक आदत हैबिट हो गई है पूछने की ना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप सुनो सबकी, करो मन की, ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर आप 10 जने कहेंगे, आप 10 डायरेक्शन में चले जाओगे, उनका कुछ नहीं जाएगा, जाएगा आपका, आपकी लाइफ मैस हो जाएगी, आप डायरेक्शन लेस हो जाओगे, आपको नहीं समझ में आएगा क्या हो जाएगा। चाहे जो मैंने अपनी जर्नी से ये सीखा है कि चाहे टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन अपनी गट फीलिंग ही फॉलो करनी चाहिए, ये मैंने देखा है।

0: बुक रीडिंग हम में से बहुत लोगों को बहुत ही बोरिंग एस्पेक्ट लगता है, पता है क्यों? टाइम नहीं है यार, बहुत कुछ करने का है, बिजनेस है, फोन है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें करनी है और लोगों से बातें करनी है, जगहें देखनी है। किसी सफर पे अकेले निकलना, हम सब लोग ग्रुप में निकलते हैं, दोस्तों के साथ निकलते हैं, परिवार के साथ निकलते हैं, बट खुद के साथ नहीं निकलते क्योंकि डर लगता है। हम अपने दोस्त थोड़े ना है, हमें अपना अकेलापन खा जाता है। अगर खुद को फील करना है तो अकेले निकलिए सफर पे और एक किताब लेके निकलिए। लेकिन एक जो रीडिंग हैबिट होती है ना, वो आपको आपसे कनेक्ट करती है।
1: कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से।
0: किसी इंसान ने अपने 60 साल 70 साल का तजुर्बा 60 से 150 पन्ने की किताब में डाल दिया आपके लिए। अगर आप उस किताब के साथ दोस्ती कर लेंगे तो यकीन मानिए ये दोस्ती आपकी खुद से हो जाएगी, क्योंकि ये समय आपका

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: कई बार हम लाइफ में बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि किसके ऊपर भरोसा किया जाए और किसके ऊपर नहीं किया जाए, लेकिन दोस्तों भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी तीन बातें जान सके, हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का वो प्यार और आपके चुप रहने की वो वजह।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: हम सबके बचपन में कुछ फेवरेट सुपर हीरोज होते थे, जैसे कि सुपरमैन, बैटमैन। हमें लगता था यार इनके जैसी पावर्स चाहिए, लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हुए तो पता चला ये सब एक दिखावा है। असली हीरोज तो बॉर्डर पे हैं, हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन कुछ लोग ना शहर में रहते हुए भी हीरोज जैसा काम करते हैं। ऐसे ही एक हीरोज का ग्रुप है वेस्ट वॉरियर्स। वेस्ट वॉरियर्स ने पूरे शहर का, पूरी स्टेट का, पूरे हिमालय पर्वत का बेड़ा उठा रखा है, इनकी साफ सफाई का बेड़ा उठा रखा है। और आज वेस्ट वॉरियर्स से हमारे साथ हैं नवीन जी। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर।
3: थैंक यू गौतम, थैंक यू वेरी मच।
2: वॉक टॉक रेडियो में आप आए हैं तो कैसा आपको लग रहा है यहाँ पर आके?
3: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आज इन्वाइट किया और मुझे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और पब्लिक तक ये बात पहुंचेगी, इस चीज की मुझे बहुत खुशी है।
2: सर, वेस्ट वॉरियर्स के वर्ड खुद ही में इतना अट्रैक्टिव है, तो जो कि वेस्ट वॉरियर्स की जर्नी है, आपका मिशन है हिमालयस को साफ करने का, क्या चीज आपको इंस्पायर करती है और कितने टाइम से ये काम चल रहा है, ये सफाई का अभियान चल रहा है?
3: बताना चाहूंगा आपको कि 2012 में वेस्ट वॉरियर सोसाइटी जो है फॉर्म की गई थी। जोडी अंडरहिल और ताशी पारिक, ये दो लेडीज थी, महिलाएं थी, जिन्होंने मिल करके इसको पूरा फॉर्म किया। और उद्देश्य यही था कि जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, जो आप देखा जाए कि जहां पर से मेन जो पानी का स्रोत है हमारा, जो जंगल है, जो पर्वत है, उसमें कचरा जो है एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही थी, और उसी को ठीक करने के लिए, उस प्रबंधन के लिए ही जो है वेस्ट वॉरियर सोसाइटी को फॉर्म किया गया। और 2012 से इसकी शुरुआत की गई और आज 2023 हो चुका है, लगातार इस पे काम चल रहा है।
2: सर, बहुत ही अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और इसमें ना, इस काम में लोकल कम्युनिटीज का बड़ा साथ चाहिए होता है, तो उनके साथ आप कैसे एंगेजमेंट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं उनके साथ आप?
3: देखिए, कचरा प्रबंधन जब कहा जाता है या किस पे कुछ काम किया जाता है तो लोगों में कहता है कि कचरे की जिम्मेदारी तो यार सरकार की है। लोगों का बस ये होता है कि हमने तो कचरा घर से अलग कर दिया, अब सरकार की, हाँ, अब सरकार की जिम्मेदारी है, इसको अपने आप लेकर के जाएंगे, जैसे मर्जी इसको मैनेज करें। लेकिन आज ये एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, क्योंकि कचरा जो है वो एक मिश्रित मिक्स फॉर्म में आ रहा है और मिक्स होने के कारण जो है उसका कोई समाधान मिल नहीं पा रहा है। तो हम लोगों ने कम्युनिटी के साथ जाकर के उनको अवेयर करना स्टार्ट किया, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से लोगों को बताया कि भाई कैसे इसको ठीक किया जा सकता है और कैसे ये गंभीर समस्या बनता जा रहा है, इसका समाधान क्या होना चाहिए, इसका प्रबंधन कैसे होना चाहिए। पब्लिक तक वो सब चीजें पहुंचाई, कम्युनिटी ने इसका बहुत साथ दिया। देहरादून में अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर 97 हर्रावाला जिसे कहा जाता है, वहां के पूरे वार्ड का प्रबंधन अभी वेस्ट वॉरियर्स अपने आप कर रहा है, जहां पे हर घर के द्वारा जो है कूड़ा अलग करके दिया जाता है और वो कचरा अलग होने के बाद सीधा हमारा जो स्वच्छता केंद्र हर्रावाला पे स्थापित है वहां पर पहुंचता है। तो जब कचरा अलग होके जाता है तो उसका प्रबंधन भी उस तरह से अच्छे से किया जा पाता है। इसके साथ ही सेंसधारा हो गया, उसके लगते हुए गांव हो गए, मुनी की रेती हो गया, आपका कैंपटी फॉल एरिया हो गया, हर की दून ट्रैक हो गया पूरा आपका, वहां के गांव हो गए, रामनगर, जिम कॉर्बेट हो गया। तो उत्तराखंड में इन तमाम जगहों पर जो है हम लोग काम कर रहे हैं और ये काम तभी सफल हो पा रहा है कि इसमें जो लोग हैं उनकी भागीदारी पूरी हमें मिल पा रही है।

0: महाभारत में द्रौपदी के स्वयंवर की कहानी हम सब ने सुनी है। अर्जुन ने मछली की आंख को निशाना बनाकर स्वयंवर जीत लिया था। इतने सारे योद्धा थे लेकिन सिर्फ अर्जुन ही क्यों जीते? इसका कारण है कि अर्जुन अपने गोल, अपने एम को लेकर बहुत फोकस्ड थे। उन्हें उस मछली की आंख के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखा। ऐसा ही कुछ हमें अपने जीवन में करने की जरूरत है। जो भी आपका एम है, जो भी आपका गोल है, सिर्फ और सिर्फ उस पे फोकस करें, बाकी सब भूल जाएं। उस एम को पाने में क्या चैलेंज आएंगे, कितना टाइम लगेगा, इस बारे में सोचो ही मत, बस फोकस, फिर आपको जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता।
1: आपने अभी बात करी कचरा अलग रखने की। काफी लोगों को ना कचरे को सेग्रीगेट करने का मतलब नहीं पता, मतलब उनके लिए गीला कचरा भी एक ही बात है, सूखा कचरा भी एक ही बात है, तो इन दोनों को क्यों सेग्रीगेट करना चाहिए, ये आप बता दें।
2: एक शब्द जो कूड़े के लिए अक्सर इस्तेमाल होता है वो है कूड़ादान। तो हम लोगों से इसकी परिभाषा के लिए बात करते हैं कि कूड़ादान वर्ड क्यों बना है। और दान तभी होता है जब वो किसी अच्छे के भले के लिए होता है। तो जैसे आप नेत्र दान करते हैं, अंग दान करते हैं, रक्त दान करते हैं, कन्या दान करते हैं, गौ दान करते हैं, वैसे ही आप कूड़ा दान भी करते हैं। तो केवल कूड़े को इकट्ठा करके देना इज नॉट द दान, वो दान नहीं कहलाएगा। कूड़ा अगर अलग होगा तभी वो दान कहलाएगा। और अलग हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमें नेचर ने दी हैं, जो चीज़ें प्रकृति ने दी हैं, जिसमें आपका खाना हो गया, फल हो गए, सब्जियां हो गई, या फूल हो गए, पत्ते हो गए, ये वो चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं जो अपने आप डीकम्पोज हो जाती हैं, अपने आप जो है वो नेचर में ख़त्म हो जाती हैं। उसको अगर अलग किया जाए और वापस नेचर को दे दिया जाए, इन द सेंस कि मिट्टी में उसको दफना दिया जाए, तो अपने आप वो खाद बन जाती है। और जितना भी रिसाइकलेबल है, जो कि मैन मेड है, जिसमें प्लास्टिक खासकर आता है, पेपर आता है, कार्डबोर्ड आता है, मेटल आता है, ग्लास आता है, उसको अगर ढंग से अलग किया जाए और रिसाइकलिंग कंपनी को दिया जाए तो वापस एक नई चीज़ बन जाती है। तो लोगों तक हमने इस चीज़ को, मैसेज को बहुत क्लियरली पहुंचाया कि कूड़ादान केवल कूड़े देने से नहीं होगा, कूड़े को विभाजित करके सही तरीके से देना ही कूड़ादान कहलाएगा।
1: आपने बात करी कि 2012 में आपने शुरुआत की थी
2: जी,
1: तो उस टाइम पे लोगों की क्या मानसिकता थी, और आज जब आप 2023 में बैठे हैं, आपने इतना काम करा है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं, तो लोगों में क्या बदलाव देखते हैं आप?
2: 2012 में भी समस्या थी और आज हम 2023 में, तो तब भी समस्या यही है।
1: बिल्कुल।
2: और समस्या अब बहुत गंभीर हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जिस तरह से उत्तराखंड में टूरिस्ट हमारा जो है इंक्रीज हुआ है, क्योंकि चारधाम यात्रा पे आपको पता है कि हर साल लाखों जो है पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं, और वैसे भी ये पर्यटक नगरी कही जाती है, देवों की नगरी कहा जाता है उत्तराखंड को, तो तमाम पूरे प्रदेश से, पूरे देश से जो है लोग यहाँ पहुँचते हैं, तो उसी तेजी से जो है यहाँ पर कचरा भी यहाँ पर पहुँच रहा है। तो उसके प्रबंधन के लिए जो है हमने काम करना शुरू किया। समस्या गंभीर है और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, साथ में मुझे खुशी है कि सरकार भी इसमें हमारा बहुत सहयोग कर रही है, जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो भी इसमें हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं, और लोगों में अब ये मैसेज बहुत क्लियरली जा रहा है कि कूड़े को अलग करके जब आप देंगे तो ही इसका प्रबंधन हो पाएगा, नहीं तो कूड़े के पहाड़ बनते जाएंगे।
1: बिल्कुल, कूड़े के पहाड़ों की बात करी आपने, ये पहाड़ आज भी हैं और कल भी शायद होंगे, लेकिन आने वाले समय में वेस्ट वॉरियर और वेस्ट मैनेजमेंट मिलकर फ्यूचर में क्या ऐसा चेंज लाने वाले हैं, या क्या आपका ऐसा गोल है फ्यूचर में?
2: दो चीजों पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। पहला तो है कि मॉडल वार्ड बनाना और साथ में MRF को सेटअप करना। MRF मतलब हुआ कि मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, या इसको कह सकते हैं तो स्वच्छता केंद्र, मतलब कि जहां पर भी आप कूड़े को बात करते हैं अलग करने की, तो जब तक आपको अलग करने के बाद उसका समाधान आप नहीं दे पाएंगे, तो फिर वो उसका कुछ अलग करने का जो पर्पस है वो सब खत्म हो जाएगा। हर्रावाला में ही, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कि एक स्वच्छता केंद्र का निर्माण किया गया है, जो कि नगर निगम देहरादून के साथ मिलकर के किया गया है, वहां पर लोगों द्वारा अलग जो कूड़ा किया जाता है वो लेकर आया जाता है, गीले कचरे से वहां पर खाद बनाई जाती है, और जितना भी सूखा कचरा है उसको अलग अलग और विभाजित करने के बाद जो रिसाइकलर्स हैं वहां तक उनको पहुंचाया जाता है। तो हमारी पूरी कोशिश, पूरा प्रयास है कि ऐसे मॉडल्स को पूरे उत्तराखंड में, ना केवल पूरे भारत में, ऐसा एस्टैब्लिश किया जाए, ताकि जितना भी कूड़े का प्रबंधन है वो अच्छे तरीके, बेहतर तरीके से हो पाए। और कूड़ा जब तक एक मटेरियल रिकवरी सेंटर पे नहीं पहुंच पाएगा, या लोगों द्वारा अलग से उसको अलग नहीं किया जाएगा, तो ये कूड़े के पहाड़ जो है लगातार बनते जाएंगे। आने वाले समय में हम लोग इस पे ज्यादा काम करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक नया प्रोग्राम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम युवा है। युवा प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इसमें कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और जो हमारे स्कूल्स हैं उसमें इंटर कॉम्पिटिशन हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। अभी तक केवल वेस्ट वॉरियर्स या फिर ऐसे तमाम एनजीओस थे जो सफाई अभियान चलाया करते थे या फिर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया करते थे, बट अब एक नई पहल हम लोग करने जा रहे हैं कि कॉलेज इंस्टीट्यूट्स और जो हमारे स्कूल्स हैं वहाँ के जो बच्चे हैं उनको इतना मोटिवेट करें, उनको इतना एम्पावर करें कि वो खुद से अपने आप उठ करके आएं और अपने आप से वो सफाई अभियान चलाएं, अपने आप से वो लोग नुक्कड़ नाटक करें, इतने वो उनके अंदर इतनी पावर आ जाए कि वो अपने आप से जान सकें कैसे पीएल फाइल करनी है, कैसे आरटीआई फाइल करनी है, और उनकी आवाज़ इतनी बुलंद हो कि वो जो भी समस्याएं हैं खासकर कचरा प्रबंधन को लेकर के या पर्यावरण को लेकर जो अभी चिंताएं जो व्यक्त की जा रही हैं उसको लेकर वो लोग काम कर सकें। तो 1 सितंबर से पूरा प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है और मार्च 2024 तक ये पूरे के पूरे क्षेत्र में जो है प्रोग्राम चलाया जाएगा।

0: इन सभी के बीच में थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा ईमान बचा पाया हूँ। ये क्या कम है कि मैं अपनी पहचान बचा पाया हूँ, कुछ उम्मीदें, कुछ सपने, कुछ महकती यादें बचा पाया हूँ। जीने के लिए बस इतना ही सामान बचा पाया हूँ, इसीलिए मटेरियलिस्टिक चीजों से अच्छा अपनी रियलिस्टिक चीजों के लिए भागिए। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ रियलिस्टिक चीजें काम आती है, मटेरियलिस्टिक तो थोड़े दिन में खराब हो जाती है। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।
1: हाय दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कपरवान, वन ऑफ द मेंबर ऑफ कॉमेडी क्लब देहरादून, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पे। दो तीन बेरोजगारों ने सोचा क्यों ना कुछ करा जाए। कॉमेडी देहरादून में नहीं था, स्टैंड अप कॉमेडी आर्ट फॉर्म आई नहीं थी, पोइट्री चल रहा था, सिंगिंग चल रहा था, बट कॉमेडी की बड़ी जरूरत थी हम लोगों को। तो उसके बाद डिसाइड करा कि क्यों ना मिलके कुछ करा जाए। तो ऐसे ही कलेक्टिवली सब लड़के मिलके एक क्लब खोल दिया, उसको कॉमेडी क्लब देहरादून बोलते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी का तो देखो सिंपल है, अगर आपको अपनी इज्जत से बहुत प्यार है तब तो मत ही करो तो अच्छी बात है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्टेज में जाते हो और कोई नहीं हंसता, तो आपको तब अपने पे डाउट होने लग जाता है कि बेकार पढ़ाई करी, प्यार भी करा लड़की से, सब चीज में धोखा खाया और स्टैंड अप कॉमेडी भी खराब जा रही है। ये उसके लिए आई थिंक आपको बहुत फेलियर से इस पे फेस करना पड़ता है। आप 10 जोक लेके जाओगे स्टेज में और एक चलेगा, कभी एक भी नहीं चलेगा, तो आपको ऐसे उतरना पड़ेगा और बार बार ऐसे ओपन माइक करके आपके पास एक सेट बनता है, हम उसे 5 मिनट सेट कहते हैं। 5 मिनट के लिए आपके जोक्स बनते हैं जिसे हम टाइट 5 बोलते हैं, फिर वो आप जाके स्टेज पे करते हो, फिर उसमें भी गारंटी नहीं है कि 100% के लिए होगा, 95 समथिंग का रेशियो रहता है अटैक, तो इतना ईजी नहीं है, वो ट्राई करके ही पता चलेगा। जो भी एक बार आएगा स्टेज पे उसे पता चल जाएगा कि ये ऐसा करना है या नहीं करना है, या पढ़ाई पे ही ध्यान देना है।

0: समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भाग्य का निर्माता नहीं बन पाते।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

0: रेडियो। हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना। वॉक टॉक रेडियो।
1: हाय दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कपरवान, वन ऑफ द मेंबर ऑफ कॉमेडी क्लब देहरादून, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पे। स्टैंड अप कॉमेडी का क्या है कि जैसे आपको कुछ कहना है, आपको जोक्स लिख के लाइव आपको कहना है डायरेक्टली, आपको माइक पकड़ा दिया जाएगा सामने पे, ओपन माइक में 8-10 लोग रहेंगे और आपको उनको सुनाना है। अब वो बहुत रैंडम लोग हैं, वो जानते नहीं आपको, आप कहाँ से हो क्या हो, तो वो आपका टैलेंट है जोक्स के थ्रू। नहीं तो बहुत पॉसिबल ही नहीं है किसी को रैंडम इंसान को हंसाना अगर आपके जोक्स नहीं है, तो उसके पीछे पूरा स्ट्रक्चर होता है, राइटिंग स्ट्रक्चर होता है, तब जाके वो क्लिक होता है, तब लोग हंसते हैं। तो ऐसा रैंडम तो बहुत टफ हो जाता है। फिर मैंने तो घर वालों की उम्मीद पहले ही तोड़ दी थी, पढ़ाई से ही तोड़ दी थी मैंने, ऐसी ज़्यादा उम्मीद बना के नहीं रखी उनसे। मेरे पापा खुद स्टेज से रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन ही रहे हैं, आर्मी में वो करते थे, अभी भी करते हैं, स्टेज बहुत करते हैं, तो उनको पता है कि स्टेज में कैसा होता है क्या होता है। वो खुद मानते हैं बहुत टफ होता है आपको स्टेज में जाके किसी को हंसाना, तो पहले बोल देते हैं कि बहुत बड़ी बात है कर रहे हो, तो ये वैसे ही बहुत बड़ी बात है, इसका आगे हम इतना नहीं सोचेंगे। मेरा तो बहुत सपोर्ट करते हैं एंड शायद यहाँ पे जितने हैं सबका ही करते हैं, ऑडियंस का थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। आपने बहुत से ऐसे शोज भी देखे, मुझे याद है एक शोज कर रहा था मैं, यहाँ पे 600 की ऑडियंस थी। अब मिडिल ऑफ द शो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, साइड से एक मैनेजमेंट का आदमी आया, मुझे कहता है कि भाई अनाउंस कर दो कि गर्मा गर्म चाय और नमकीन कुरकुरे आपका इंतजार कर रहे हैं, और मेरे को मिड ऑफ द परफॉर्मेंस ही बोलना पड़ा। और देहरादून की जनता इतनी प्यारी है, सब उठ के चले गई चाय पीने, ऐसे लोग। एंड देन उसके बाद मेरे को बोलते कि लाओ स्टार्ट करो तो मैं कह रही यार यूट्यूब पे थोड़ी देख रहे हो तुम, कि सब पॉज कर दिया फिर स्टार्ट कर दिया तो बहुत होता है कॉमेडी में, लाइक अप्स एंड डाउन। आपको कुछ शो बहुत अच्छे जाते हैं, कुछ शो बहुत खराब जाते हैं, ऑडियंस पे डिपेंड करता है। जोक्स बेसिकली सब ऑडियंस पे ही डिपेंड करता है। सरकैज़म क्या ऑडियंस को समझ में आ रहा है, अवेयर भी होना चाहिए ना ऑडियंस। मैंने बात में किसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, उनको कोई फर्क ही नहीं है, तो 50% गेम ऑडियंस का है। अगर वो अवेयर नहीं है, उनको कुछ चीज़ पता नहीं है, किसी को समझ में नहीं आते जोक्स। जैसे अगर मैं किसी को बोलूँ कि यार मैं एक हॉन्टेड हाउस गया था, तो लोग सीरियस हो जाते हैं कि क्यों गए थे आप, कि वहाँ नहीं जाना चाहिए था, वो इतने सीरियस हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि आगे सुन ले क्या कह रहे हैं। नहीं, कॉन्टेक्स से कोई मतलब नहीं, बहुत सीरियस होकर सुनते हैं लोग कॉमेडी। कुछ कुछ है ऑडियंस, कुछ कुछ नहीं है, तो जो है हम उनके पास पहुँचने की कोशिश करते हैं फिलहाल।

हाय नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूं आप सभी के साथ किरण, और पॉडकास्ट की सीरीज में आज एक और गेस्ट के साथ मैं हाजिर हो चुकी हूं आप सभी के बीच में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊं रीजन के नाम से बहुत ज्यादा जाना जाता है। हालांकि बहुत सारी बोली भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको ये देखने को मिले कि एक गढ़वाली मुंडा जो है, अब मैं मुंडा यूज क्यों कर रही हूँ वो आपको पता चल जाएगा, एक गढ़वाली मुंडा जो है वो भांगड़ा कर रहा है, और इतना गजब का भांगड़ा कर रहा है, तो थोड़ा सा हम अचंभित हो जाते हैं ना, थोड़ा सा हमें सरप्राइजिंग लगता है। हालांकि लगना नहीं चाहिए, कोई भी डांस फॉर्म कोई भी कर सकता है, बट यूजुअली हमें ऐसे देखने के लिए नहीं मिलता है। तो आज के जो गेस्ट है ना, वो भी थोड़ा सा हटके है, क्योंकि है तो ये गढ़वाली, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि ये गढ़वाली है, क्योंकि ये पंजाब की तरह इनकी पर्सनालिटी है, पंजाबी लोगों की तरह पर्सनालिटी है, पंजाबी भांगड़ा डांस फॉर्म ये इतनी बेहतरीन तरीके से करते हैं, लोगों को सिखाते भी हैं। तो बिना किसी देरी के आप सभी से मुलाकात करवाती हूँ।

0: थैंक यू सो मच, हमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, हर पॉडकास्ट से मिलता भी है। और जैसे कि आपने बताया कि आज जो है हम लोगों के बीच में ये रखेंगे कि हमारा डीवीसी का मोटिव क्या है, हम क्या चाहते हैं, उस उन सारी बातों से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके बारे में पहले जानना चाहेंगे। अजय कौन है, कहाँ से आता है, क्या करता है, डीवीसी यानी कि देहरादून भांगड़ा क्लब कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बारे में बताइए।
1: बेसिकली अगर जर्नी देखे जाए और मेरे बारे में देखा जाए तो मैं डिफेंस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो अब एक डिफेंस फैमिली जब बिलोंग करती है तो वो हर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हम लोग देख के आए, और इस पंजाब से कनेक्टिविटी तब हुई थी जब मेरे फादर जो थे वो पोस्टेड थे पंजाब में, तो वहां से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ एक वाइब जो है वो मेरे अंदर आ गई है। और मेरी मम्मी की भी पढ़ाई पंजाबी लैंग्वेज में हुई है।
0: अच्छा,
1: यस। तो
0: ऐसे कैसे?
1: ये क्योंकि मेरे नाना जो थे वो एयरफोर्स में थे, तो उस समय वो चंडीगढ़ में पोस्टेड थे, तो वहां से ही मम्मी की पढ़ाई हुई। और मेरी मम्मी को पंजाबी में बोलना लिखना सब कुछ आता है, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एक वायरस तो नहीं कहूंगा मैं, एक छोटा सा कीड़ा कह सकते हैं, हाँ एक जीन में आ जाता है वो चीज। जर्नी मेरी भंगड़ा को लेके हुई थी जब मैं ग्राफिकेरा में मैंने एडमिशन लिया था, ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी में, और हमारा पहला बैच था मतलब 2011 का, उस समय फेस्ट होता था ग्राफिकेरा डीम्ड में। तो हिल में बस एक डिसीजन लिया गया कि यार चलो एक भंगड़ा भी हमारे यहाँ होना चाहिए, तो दो तीन चार लोग हम लोग दोस्त थे तो उन्होंने बोला यार अजय चलो भंगड़ा करते हैं, एक ग्रुप है वो हमें सिखा देगा, बाकी हम वीडियो को देख के सीख लेंगे।
0: अच्छा।
1: तो मैंने यार चलो ठीक है ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, और क्योंकि भंगड़े को सुन के ही सबके अंदर एक एनर्जी ऑलमोस्ट वो आई जाती है।
0: हाँ।
1: तो हमने वहां से उसको स्टार्ट किया और बस ऐसे ही किया था कि चलो फेस्ट आउट कर लेते हैं, और बस यही था हमारी जर्नी स्टार्ट भंगड़े के साथ कनेक्टिविटी। बट धीरे धीरे जैसे कॉलेज में हम लोग करते गए तो वो चीजें और आती गई कि हाँ यार अब तो और करना है और करना है। तो जब कोई चीज कनेक्टिविटी बन जाती है एक डांस फॉर्म के साथ तो डेफिनेटली इंसान उसको करने में पीछे हटता नहीं है, क्योंकि हमें भी करने में उसको अच्छा लगता था, लोगों को भी धीरे धीरे पसंद आ रहा था। तो मेरी जो जर्नी है वो भंगड़ा का लेके यहाँ से स्टार्ट हुई है।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर भानुशाली यानी कि आपका देवानंद जूनियर। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला इंस्पिरेशनल ऐप वॉक टॉक रेडियो। जल्दी से जाओ और गूगल पे डाउनलोड करो प्ले स्टोर से।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio. Walk Talk.
0: Walk Talk Radio.
2: Come, shall we do a radio talk with a radio called Say What? Walk Talk. Hi, मैं हूँ अनुष्का. I'm a singer, songwriter and rapper. और आप मुझे सुन रहे हैं Walk Talk Radio पर.
3: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी. वॉक टॉक रेडियो.
4: वॉक टॉक रेडियो.

वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: मैं तो थक ही गया।
1: अमिताभ बच्चन का नाम तो आपने सुना ही होगा, मैं सिर्फ उनकी आवाज निकाल रहा हूँ, उनके आसपास भी आप नहीं पहुंच सकते। मुझे लगता है कि ये आवाज निकाल के ना मैं कुछ कुछ उनके आसपास पहुंच जाता हूँ। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ कहानी वाला रजत। मेरे शो कहानी वाला में मैं कहानियां आपके लिए लेकर आता हूँ, और बच्चन साहब की आवाज से आज मैंने जो शुरुआत करी है अपने शो की, वो इसीलिए क्योंकि आज की कहानी उनकी जिंदगी से जुड़ी कहानी है। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लाइफ लेसन है जो उन्हें दिया था उनके पिता ने, यानी कि महान साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन, जिनकी लिखी मधुशाला तो आपने कई बार सुनी है। उनकी जिंदगी ने कुछ ऐसा दिया अमिताभ बच्चन साहब को जो उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है। आपको पता होगा कि बच्चन साहब ने अपने जमाने में बहुत स्ट्रगल किया। जैसे बताया जाता है कि 11-12 फ्लॉप फिल्में आने के बाद उन्हें एक बड़ी फिल्म ऑफर हुई, जंजीर, या फिर ऑल इंडिया रेडियो पर जब वो गए थे रेडियो जॉकी बनने तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, या 80s के दौर का वो महानायक 90s आने के बाद अचानक से अपनी जगह बचाने के लिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा था। आप मानिए ना मानिए, एक वक्त ऐसा था जब बच्चन साहब ने अपने घर से यश चोपड़ा जी के घर तक, जो उनके पड़ोस में ही रागा करते थे उस समय, नंगे पांव जाकर उनसे काम मांगा था। कहा था कि मुझे काम की सख्त जरूरत है, क्योंकि उनकी बनाई हुई कंपनी कर्ज में थी, उनकी फिल्में नहीं चल रही थी। उन्होंने म्यूजिक कैसेट्स में अपना एक वेंचर शुरू किया था, बिग बी म्यूजिक, ABCL नाम से एक कंपनी शुरू की थी जिससे वो फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे, और हर तरफ नुकसान हो रहा था और कर्ज बढ़ता जा रहा था। बच्चन साहब खुद कहते हैं कि उन्होंने उसके बाद हर एडवर्टाइजमेंट के लिए हाँ कहा, क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते थे। पर ये उनके स्ट्रगल की कहानी नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। जो कहानी मैं सुना रहा हूँ वो है उस दौर की कहानी जब वो कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे, या कहिए स्कूल के दिनों की बात। शेरवुड में वो पढ़ते थे, और शेरवुड में जब थिएटर वो कर रहे थे तब उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का मौका मिला था। वो नाटक का मेन किरदार था, वो चाहते थे कि उसमें जी जान लगा दे, उस किरदार को ऐसा निभाएं कि लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाए। उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। प्ले होने से कुछ दिन पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और अमिताभ बच्चन साहब का फ्रैक्चर हो गया। वो बेडरिडन थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे, और वहां से उस वक्त निकल पाना मुमकिन नहीं था। जहां वो पढ़ते थे वहां, ये मान लीजिए कि एक पहाड़ी के छोटे से हिस्से पर ऊपर की तरफ उनका कॉलेज था, जहां लाउडस्पीकर पे कुछ होता था तो नीचे के हिस्से में आवाज आया करती थी, और नीचे उनका हॉस्पिटल था, तो उन्हें उस प्ले की आवाजें आ रही थी। उन्हें पता चल रहा था कि वो उस प्ले का हिस्सा नहीं है, कोई और उनका किरदार निभा रहा है, और ये बात उन्हें बड़ी दुख दे रही थी, परेशान कर रही थी, रोना आ रहा था। हाथ से चीज फिसल गई, आप चाहते थे वो नहीं हुआ, और जो हुआ

कितना बुरा हुआ। तब बाबूजी आए उनसे मिलने, हरिवंश राय बच्चन, और उनका दुख कम करने के लिए बाबूजी ने कहा कि देखो जो हुआ वो अच्छा और जो नहीं हुआ वो और अच्छा, क्योंकि जो हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी शामिल थी, यानी तुम जो चाहते थे वो हो गया, लेकिन जो नहीं हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी नहीं थी पर खुदा की मर्जी उसमें शामिल थी, यानी ऊपर वाले की मर्जी थी उसमें। तो वो ऊपर वाला जो है वो नहीं चाहता, इसलिए वो चीज़ नहीं हुई है, और अगर नहीं हुई है तो कोई कारण होगा। वो कारण का पता चलेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हमेशा ये याद रखो कि जिंदगी में जो हुआ वो अच्छा और जो नहीं हुआ वो और अच्छा, क्योंकि जो नहीं हुआ वो खुदा की मर्जी है। याद रखिएगा, कभी भी डिसअपॉइंटमेंट, रिजेक्शन, कुछ भी अगर आपकी लाइफ में आया है उसे हैंडल करना है तो हमेशा जो हुआ वो अच्छा, जो नहीं हुआ वो और अच्छा। बड़ी छोटी सी कहानी है लेकिन बड़ा कमाल कर गई, बच्चन साहब के लिए तो करी गई, हमारे लिए भी कर जाएगी। अब सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ कहानी वाला रजत, लौटूंगा थोड़ी देर में एक और कहानी लेकर। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: मैं कर्नल अजय कोटिया हूँ। अगर आपके पास कोई अपनी स्टोरी होती है, कोई एक्सक्लूसिव फीलिंग होती है, तो आप वॉक टॉक रेडियो में आए और यहाँ पे आकर के अपना आइडिया शेयर करें और डाउनलोड करें वॉक टॉक रेडियो, बहुत सारे लोगों की अच्छी जानकारियों को जानने को।
0: वॉक टॉक रेडियो।

पैनिक अटैक जानते हैं क्या होता है? पैनिक अटैक ये वो चीज होती है जो आपको तब आती है जब आपकी लाइफ से कुछ छिन रहा हो, कुछ छूट रहा हो, वक्त कम पड़ गया हो, कोई डेडलाइन आ गई हो, या एक इमरजेंसी की सिचुएशन है और आपको उसे हैंडल करना है। तो अक्सर मेरा मानना है शायद 90% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पैनिक अटैक आ जाता है। कुछ ही ऐसे होते हैं जो महेंद्र सिंह धोनी की तरह कैप्टन कूल रह पाते हैं, इतने सारे शोर, इतनी सारी प्रेशर में भी अपना खेल स्मूथ और ओरिजिनल रख पाते हैं। सिचुएशन से जिनकी जिंदगी पर फर्क नहीं पड़ता वो कैप्टन कूल कहलाते हैं। असल आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं कहानी वाला रजत, शो चल रहा है कहानी वाला। और अब जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये उस सिचुएशन की है जब पैनिक अटैक आता है ना तो हमें पता नहीं होता करना क्या है। हम यहां वहां हेडलेस चिकन की तरह घूमते तो रहते हैं लेकिन वो डेडलाइन कैसे मीट करेंगे, उसका सोल्यूशन क्या होगा, इसके बारे में सोल्यूशन नहीं मिलता। तो उसे लेकर मैं कहानी लाया हूं। ये कहानी एक किसान की कहानी, किसान की घड़ी की कहानी सुनिए। तो एक दिन की बात है, एक किसान अपने खेत के पास जो अनाज की कोठी थी उसमें काम कर रहा था। काम करने के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वो घड़ी उसके पिताजी ने जब पहली बार वो खेत पर हल चलाने आया था, जब उसने पहली बार अच्छा काम करके दिखाया था, तो पिताजी ने खुश होकर वो घड़ी खरीद के उसे दी थी। जब किसान को घड़ी मिली थी ना तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ था, क्योंकि उस जमाने में घड़ी एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल था, हर एक के हाथ में नहीं होती थी। जिसके हाथ में है उसका वक्त अच्छा चल रहा है, ये बात वो घड़ी साबित कर देती थी। घड़ी को लेकर एक छोटा सा किस्सा है कि दो लोग थे, दो दोस्त थे, दोनों ने हाथ में घड़ी पहनी थी। तो एक के हाथ में एक मामूली सी घड़ी थी, दूसरे के हाथ में एक बहुत स्टाइलिश ब्रांडेड घड़ी। तो दूसरे ने, जो दोस्त था जिसने मामूली घड़ी पहनी थी, उसने मजाक में कहा कि यार देख मेरी 200 रुपए की है, तेरी 2000 की, लेकिन वक्त तो सेम बताती है। तो जिसकी 2000 की घड़ी थी उसने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो घड़ी ये बता रही है कि तेरा वक्त कैसा चल रहा है और ये घड़ी ये बता रही है कि मेरा वक्त कैसा चल रहा है। सोच सोच का फर्क है। वापस आते हैं हमारी किसान की घड़ी पर। तो किसान की वो जो बहुत ही खास घड़ी थी जो उसके फादर ने उसे गिफ्ट करी थी, उसके पापा ने, वो खो गई। और उसका बड़ा अटैचमेंट था उस घड़ी से, उस स्टेटस सिंबल के साथ साथ में उसके पापा की निशानी भी थी। उसने वो घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की, उस कोठी का हर कोना कोना छान मारा लेकिन घड़ी नहीं मिली। वहां बहुत सारा अनाज था, बोरियां थी, एक छोटा सा कमरा था, अंधेरा था, लेकिन घड़ी नहीं मिली। आखिरकार वो बिल्कुल निराश हो गया और कोठी के बाहर आ गया। वहां देखा तो कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसने बच्चों को पास बुलाकर अपने पिताजी की वो घड़ी खोजने का काम सौंपा। उसने कहा कि जो घड़ी ढूंढ देगा उसको मैं इनाम दूंगा। इनाम का लालच था तो बच्चे लगे घड़ी ढूंढने। कोठी के अंदर जाकर बच्चों ने घड़ी ढूंढने के लिए अपनी जान लगा दी। इधर उधर, यहाँ वहां, हर जगह खोजने पर घड़ी नहीं मिली। बच्चे थक गए, उन्होंने हार मान ली। किसान ने अब घड़ी मिलने की उम्मीद खो दी थी। बच्चों के जाने के बाद वो कोठरी में उदास बैठा रहा। तभी एक बच्चा वापस आया। उसने किसान से बोला कि वो एक बार फिर से ढूंढने की कोशिश करेगा। किसान ने कहा ढूंढ लो, पर अब मुझे देर हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। तो किसान को जाने की जल्दी भी थी। बच्चा जो था वो कोठी के अंदर गया और कुछ देर बाद वो अकेला ही था उस कोठी में। उस वक्त कोठी बंद की अंधेरे में, कुछ देर बाद वो वहां से बाहर आया और उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने वो घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ और उसने पूछा कि आखिर तुम कैसे ढूंढ पाए इसे, जब कोई और बच्चा नहीं ढूंढ पाया, मैं भी नहीं ढूंढ पाया, तो तुम्हें कैसे मिली। पूछने पर बच्चे ने कहा कि कोठी के अंदर जाकर ना वो एकदम चुपचाप अंधेरे में जाकर एक कोने में खड़ा हो गया और बस ध्यान लगाकर सुनने लगा। उस घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे उसका इंतजार कर रहा था और आखिर वो सुनाई दी। उसी डायरेक्शन में ढूंढा तो पता चला कि अनाज का एक बोरा था, उस बोरे के पीछे की तरफ एक आला था, एक शेल्फ। उस शेल्फ में वो घड़ी पहुंच गई थी किसी तरह से। किसान ने बच्चे को शाबाशी दी, इनाम दिया, और उस बच्चे ने किसान की उस घड़ी के साथ में हमें दे दिया एक छोटा सा लेसन, एक कहानी के फॉर्म में। शांति, पीस हमारे मन और हमारे दिमाग दोनों को ना फोकस्ड फॉर्म में ले आती है, उसे एकाग्र कर देती है। जब हमारे मन की स्थिति एकाग्रचित होंगे, जब हम एक डायरेक्शन पर फोकस कर पाएंगे, तब जिंदगी में फैसले लेना आसान होगा। ऐसे ही जब कोई पैनिक सिचुएशन आएगी उसमें जब आप फोकस्ड होकर डिसीजन लेंगे, आपका जो मन है वो आपके काबू में रहेगा। अगर अंदर एक शांति होगी तो आप घड़ी की टिक टिक सुन पाएंगे, आप वो सही डायरेक्शन ढूंढ पाएंगे जहां पहुंचकर आप अपनी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। तो जिंदगी में परेशानियां बहुत आएंगी, जिंदगी में बहुत मुश्किलें आएंगी, जिंदगी में ऐसे पैनिक सिचुएशंस बहुत आएंगे जब आपको समझ नहीं आएगा करना क्या है। 2 मिनट रुककर अपने मन के अंदर ना वो एकाग्रचित वाला भाव लाने की कोशिश करना, वो शांति, वो पीस लाने की कोशिश करना, देन यू विल फाइंड आउट द वे, यू विल फाइंड आउट द डायरेक्शन वेयर टू गो। समझे? सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो, यहाँ पर हम जिंदगी बदलने की कहानियां सुना रहे हैं आपको। शो का नाम है कहानी वाला, मैं हूँ कहानी वाला रजत, और आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: हाय, लगी तो नहीं?
1: आई एम गुड, आई एम गुड।
0: चलो मैं सिखाती हूँ।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: बुक रीडिंग हम में से बहुत लोगों को बहुत ही बोरिंग एस्पेक्ट लगता है, पता है क्यों? टाइम नहीं है यार, बहुत कुछ करने का है। बिजनेस है, फोन है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें करनी है और लोगों से बातें करनी है, जगहें देखनी है। किसी सफर पे अकेले निकलना, हम सब लोग ग्रुप में निकलते हैं, दोस्तों के साथ निकलते हैं, परिवार के साथ निकलते हैं, बट खुद के साथ नहीं निकलते क्योंकि डर लगता है। हम अपने दोस्त थोड़े ना है, हमें अपना अकेलापन खा जाता है। अगर खुद को फील करना है तो अकेले निकलिए सफर पे और एक किताब लेके निकलिए। लेकिन एक जो रीडिंग हैबिट होती है ना, वो आपको आपसे कनेक्ट करती है।
2: कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से।
1: किसी इंसान ने अपने 60 साल 70 साल का तजुर्बा 60 से 150 पन्ने की किताब में डाल दिया आपके लिए। अगर आप उस किताब के साथ दोस्ती कर लेंगे तो यकीन मानिए ये दोस्ती आपकी खुद से हो जाएगी, क्योंकि ये समय आपका खुद का है।

कभी कभी कुछ बातें जो किस्से कहानियों में नहीं समझ आती वो शेर शायरी कविताएं समझा देती हैं। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, एक ऐसी जगह जहां पर जिंदगी बदलने की छोटी सी कोशिश की जाती है। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूं कहानी वाला रजत, शो का नाम कहानी वाला। किस्से कहानियां सुनाने के साथ साथ मुझे लगा कि आज कुछ शायरियां आपको सुना दूं जो जिंदगी पर लिखी हैं कुछ महान शायरों ने, द ग्रेट राइटर्स, जैसे जॉन एलिया साहब। उन्होंने लिखा, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। बहुत कम शब्दों में बड़ी बात कही। बशीर बद्र साहब ने लिखा है कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। और इमाम बख्श साहब ने कुछ ऐसा लिखा है जो आप बरसों से सुनते आए लेकिन आपको नाम नहीं पता था कि लिखा किसने। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ये फिल्मों में डायलॉग्स थे ना, ऐसा लगता था किसी फिल्मी राइटर ने लिखा होगा। और फिराक गोरखपुरी साहब, एक बहुत ही फेमस लिरिसिस्ट भी रहे, वो लिखते हैं कि मौत का भी इलाज हो शायद, जिंदगी का कोई इलाज नहीं है। बहरहाल ये तो जिंदगी के नाम लिखी वो शायरियां हैं जो जिंदगी की डेफिनेशन बनाने में मदद करती हैं। तो वाकई मौत का इलाज है, जिंदगी का नहीं है। जिंदगी अपने दर्द देती है, अपने रास्ते भी बताती है, फिर भी हम इसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसी कोशिश में कहानी सुन लेते हैं। ये बेंगलुरु की कहानी है। बेंगलुरु के गोल्फ क्लब में कैडी, आपको पता है गोल्फ में कैडी क्या होता है? कैडी होता है खिलाड़ियों के पीछे बैग जो होता है ना उनका, वो गोल्फ जिसमें सारी स्टिक्स होती हैं उनको उठाकर चलने वाला लड़का। तो जो कैडी का काम करता था उस लड़के की कहानी है। उसका नाम है चिन्ना स्वामी मनियप्पा। तो ये लड़का जो कैडी का काम करता है, जिसके माँ बाप उस गोल्फ क्लब में मजदूरी किया करते थे, उसने कमाल करके दिखाया और वही कमाल कहानी बनी। कमाल था कि चिन्ना स्वामी मनियप्पा ने 11 अक्टूबर 2009 को $12.5 लाख की हीरो होंडा इंडियन ओपन चैंपियनशिप जीतकर सबका सर चकरा दिया था। जब डीएलएफ गुड़गांव गोल्फ क्लब के मैदान पर चिन्ना स्वामी ने साउथ कोरिया के सबसे प्रेस्टीजियस खिलाड़ी ली सुंग को हराया ना, तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ। कर्नाटक के चिन्ना स्वामी मनियप्पा के बिना, उन्होंने बिना किसी कोच के अपनी मेहनत और लगन के दम पर यह कंपटीशन जीत कर ये साबित कर दिया कि अगर आप पूरी लगन, पूरे डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस के साथ कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो वो कर लेते हैं। कमाल की बात है कि चिन्ना स्वामी आज तक कर्नाटक गोल्फ क्लब के मेंबर नहीं बन पाए। जैसा मैंने बताया था कि उनके माँ बाप कर्नाटक के उसी गोल्फ क्लब के मजदूर हुआ करते थे और आज बेटा वहाँ गोल्फ प्रैक्टिस करता है। चिन्ना स्वामी ने गोल्फ की बारीकियां कैडी का काम करते करते सीखी और वो प्रोफेशनल गोल्फर बन गए। मतलब ये वही हुआ कि कोई लड़का है जो किसी वर्कशॉप में मैकेनिक है और एक दिन उसी ने वो गाड़ी बनाई और वो उस वर्कशॉप को अब ओन करता है और वो गाड़ियां भी बनाता है। भाई हमें गर्व है एक ऐसे हिंदुस्तानी पर जिसने एक इंस्पायर किया हर एक शख्स को और बताया कि आर्थिक मजबूरी, फाइनेंशियल सेटबैक्स अगर आपकी लाइफ में रहे हैं तो वो चैलेंजेस नहीं है, आप उसको बड़े आराम से पार कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर एक कैडी गोल्फर बन सकता है, $12.5 लाख का एक गोल्फ चैंपियनशिप जीत सकता है, तो आप उससे बहुत बेटर सिचुएशन में हैं अपनी जिंदगी में। आप सोचिए आप क्या नहीं कर सकते। मुझे यकीन है आप कर सकते हैं, बस किसी ने आपको यह एहसास नहीं दिलाया कभी कि आप बहुत स्पेशल हैं। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, यकीन मानिए। मैं हूं कहानी वाला रजत, कहानियां सुनाता हूं इसीलिए ताकि उन कहानियों में से कुछ ऐसा आपकी जिंदगी में चला जाए जो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग थॉट बनकर सामने आए। एक लाइफ चेंजिंग थॉट भी काफी है, शुरुआत तो बस सोच से होती है जनाब। सुधरे वॉक टॉक रेडियो, कहानियां सुनाऊंगा, कहानियों के साथ साथ दूंगा कुछ ऐसी एडवाइस जो शायद आपकी जिंदगी बदलने में आपके काम आए। मैं हूं कहानी वाला रजत, ये है वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: वॉक टॉक सक्सेस का सीक्रेट क्या है मोटिवेशन का मंत्र जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ वॉक टॉक रेडियो
2: वॉक टॉक रेडियो फ्रेंड्स इफ यू आर गेटिंग स्केयर्ड एवरी टाइम व्हाइल टेकिंग अ स्टेप

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं जो जब अपनी टीनेज में रहे होंगे तो हर छोटी छोटी बात पर हमने अपने घर पे कितनी जिद की होगी ना। कभी आइसक्रीम वाले का भौंपू सुनते ही रोज आइसक्रीम खाने की जिद, बाजार गए तो महंगे अच्छे कपड़े लेने की जिद, हर बार नए नए जूते खरीदने की जिद। तब माँ बाप की कही बातों के मायने हमें समझ नहीं आते थे, लेकिन आज जब हम उस जगह पहुंचते हैं, उस स्टेज पर पहुंचते हैं, तो वो सारी बातें हम समझ पाते हैं। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि जो बात आपको पसंद नहीं आ रही वो आपके लिए अच्छी नहीं है, क्या पता उसी बात में आपका ही भला छुपा हो।
0: Tune in for a better life.
2: Tune in for a better life.
3: On the stage. Right now.

कुछ कहानियां इसलिए नहीं जरूरी होती कि वो आपकी जिंदगी में कुछ ऐड कर देती हैं या आपको एक जिंदगी का लेवल अप करने का मौका देती हैं। कुछ कहानियां इसलिए जरूरी होती हैं क्योंकि वो आपको वो चीजें याद दिलाती हैं जो आप भूल गए हैं, और शायद उन्हें याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं

आने वाला रजत और कहानियाँ सुनाना मेरा काम है, ये तो आप जानते ही हैं। आप जो कहानियाँ मैं सुनाता हूँ वो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी कहानियाँ होती हैं। तो अगली कहानी देखते हैं। अगली कहानी है एक घंटा। शाम का वक्त था, ऑफिस से घर आने के बाद पापा जो थे वो बहुत ज़्यादा बिजी थे ऑफिस की फाइल्स में, तो टेबल पर बैठ गए और पूरा ध्यान फाइल्स में था। तभी उनका 7 साल का बेटा उनके पास आया, रात के 9 बजे थे। बोला, पापा क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो बिना फाइलों से नज़र हटाए पापा बिजी थे, पापा ने बोला, हाँ पूछो। उसने, पापा आप एक घंटे का कितना कमा लेते हैं? बहुत अजीब सवाल था, पापा को गुस्सा आ गया। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इससे, क्यों बेकार के सवाल पूछ के मेरा टाइम खराब कर रहे हो, देखते नहीं मैं काम कर रहा हूँ। पापा मैं बस जानना चाहता हूँ, प्लीज बताइए ना आप एक घंटे का कितना कमा लेते हैं। तो बेटा जिद करने लगा। पापा ने कहा, 500 रुपए। ओ 500 रुपए? तो बेटा सर झुकाकर कुछ सोचने लगा, फिर उठकर बोला, पापा आप मुझे 300 रुपए उधार दे देंगे? ये सुनना था कि पापा को गुस्सा आ गया। वो पापा को बोले, बेटे को बोले कि अच्छा तो तुम इसीलिए मुझसे मेरी सैलरी पूछ रहे थे क्योंकि तुम्हें कोई खिलौना खरीदना है या कोई चीज लेनी है? अब एक शब्द बिना कहे ना अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, मैं इतनी मेहनत से पैसे इसलिए नहीं कमाता कि तुम्हारे फालतू डिमांड्स पूरी करता रहूं बस, जाओ। बेटे का चेहरा उतर गया, भारी कदमों से वो वहां से चला गया। पापा कुछ देर तक तो बेटे की बात पर नाराज रहे और काम में लग गए। काम खत्म हुआ, तकरीबन रात के 11 बज चुके थे। पापा की नाराजगी भी खत्म हो गई, उनको लगा कि बेटे के लिए वो काफी रूड रहे। वो सोचने लगे कि बेटे ने यार सच में कोई जरूरी चीज हो सकता है उसे खरीदनी हो तभी 300 रुपए मांगे, क्योंकि वो पहले कभी पैसे नहीं मांगता इस तरह से। फिर वो अपने बेटे के कमरे में गए, देखा तो उनका जो बेटा था वो बिस्तर पर लेटा था। तो उन्होंने पूछा कि सो गए क्या बेटा? तो उठकर बोला, नहीं पापा मैं तो जागा हूँ। तो बोले कि बेटा मैं काम की वजह से थोड़ा परेशान था, पर तुम बुरा मत मानना, मेरा गुस्सा तुम पर निकल गया, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ये 300 रुपए लो, जो टाइम उस टाइम तुम मुझसे मांग रहे थे ना ये लो। उसने कहा कि थैंक यू पापा। 300 रुपए एक तरफ रखकर उसने अपने तकिए के नीचे से कुछ नोट निकाले और उन्हें गिनने लगा। पापा ने देखा कि इसके पास पैसे हैं फिर भी मांग रहा है, फिर गुस्सा हो गया। बोले, जब तुम्हारे पास पहले से पैसे थे तो मुझसे क्यों मांग रहे थे? तो उसने कहा, पापा मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे ना, अब है। ये सब मिला के और वो 300 रुपए मिला के पापा पूरे 500 हो गए। ये लीजिए 500 रुपए, क्या मैं आपका एक घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज आप कल घर जल्दी आना ना, अपन डिनर साथ में करेंगे, और काम मत करना कम से कम उस एक घंटे में। बेटे की बात सुन के पापा शॉक थे। हम पैसे कमाने की जद्दोजहद में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारी जो फैमिली है ये पीछे छूट जाती है। हमारे पास अपने फैमिली, हमारे रिलेटिव्स के साथ बिताने के लिए वक्त नहीं है। ये वक्त धीरे धीरे हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है और ये बीता समय कभी लौटेगा नहीं। ऑफिस में हमारा रिप्लेसमेंट आसानी से मिल जाता है, लेकिन फैमिली में क्या कोई हमें रिप्लेस कर पाएगा? अब सोचिए कि आपको किसे ज्यादा वक्त देना है, ऑफिस, फैमिली, पैसे या काम? सोचिएगा इस पर। मैं हूँ कहानी वाला रजत, कुछ कहानियां आपको सुनाता हूँ। बस यूं ही बैठे रहिए और मेरे साथ मेरी कहानियां एंजॉय करते रहिए। वॉक टॉक रेडियो पर ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टे ट्यून्ड ऑन वॉक टॉक रेडियो।

बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जब ही बोलें, हमेशा नाप तोल कर बोलें। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: जब भी आपकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आए तो थोड़ा सा ठहर जाना, एक लंबी सी गहरी सांस तुम लेना, अपने अच्छे से अच्छे वक्त को उस वक्त तुम याद करना, अपनी मंजिल को तुम याद करना, खुद से वादा तुमने जो किया है उस वादे पर ध्यान करना। अगर सपने बड़े हैं तो मुश्किलें भी बड़ी होंगी, बस इरादे पक्के होने चाहिए। इसलिए जिंदगी में जब भी अप्स एंड डाउन्स आए तो थोड़ा सा खुद के बारे में जरूर सोचिएगा।
1: कपड़े तो पहन ले।
2: दादी मिल गई से।
1: मतलब ये उन लोगों में से है।
3: कल्चर की तो कुछ परवाह कर।
4: ऐसा ही होगा। लड़की मेरा चल।

अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आज की आखिरी कहानी है। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं कहानी वाला रजत। कहानी वाला शो पर लेकर आया हूं एक कहानी एक लड़के की। ये कहानी ये सिखाती है हमको कि जिंदगी में ना नथिंग कैन बी, यू कैन नेवर बी लेट फॉर समथिंग, इन अ वे इट्स नेवर टू लेट। कैसे, कहानी सुनते हैं। एक लड़का जो जब 5 साल का था तब उसके फादर की डेथ हो गई। माँ नौकरी पर जाती थी तो वो घर पर खाना बनाता। अब वो लड़का 7th क्लास तक स्कूल गया, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी, माँ ने दूसरी शादी कर ली और ये जो लड़का था ये घर से भाग गया। तो शुरुआती जिंदगी में तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। कभी स्टीम बोट में नौकरी की, फिर एक इंश्योरेंस कंपनी में सेल्समैन बनने की कोशिश की, फिर रेल रोड में फायरमैन का काम किया। 16 साल की उम्र हुई ना तो अपनी उम्र गलत बताकर वो आर्मी में शामिल हो गया, क्यूबा में नौकरी करने लगे। 1-2 साल में वहां से भी उनकी छुट्टी हुई। 20 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और बताते हैं कि कुछ साल बाद ही उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर चली गई क्योंकि उनके पास काम नहीं था, वो बेरोजगार हो गए थे या फिर पैसे कमाने के जरिए नहीं थे। उनकी एक बेटी भी थी, वो चाहते थे कि बेटी को अपने पास रखे चाहे वाइफ उन्हें छोड़ जाए तो भी। तो उन्होंने अपनी बेटी को ही किडनैप करने की कोशिश की, बट दैट वॉज अ फेल्ड अटेम्प्ट। अब सवाल यह हुआ कि उन्हें अपनी वाइफ को मनाना पड़ा कि तुम वापस घर आ जाओ। तुम्हारी वाइफ ने कहा तुम काम शुरू करो, तो उनके पास करने के लिए काम नहीं था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या काम करें। फाइनली उन्हें पता चला कि वो एक ही चीज सबसे अच्छी करते हैं और वो खाना बनाने का काम, जो बचपन में किया करते थे ना वो, और उसमें भी चिकन बहुत कमाल का बनाते हैं। तो 40 साल की उम्र में वो चिकन बनाते थे और जो उनके सर्विस स्टेशन पे या जहां पर वो चिकन बनाते थे वहां रुकता था वो उनका चिकन जरूर खाता था। अब तब वो पॉपुलर तो हो रहे थे पर उनके पास कोई रेस्टोरेंट नहीं था। चिकन की क्वालिटी ऐसी कमाल की बनाने लगे, उनकी बिक्री बढ़ने लगी और फिर वो 142 सीटर होटल के मेन शेफ बन गए। तब ये बहुत बड़ी बात थी। वहीं पर उन्होंने चिकन पकाते पकाते ना एक नया तरीका इजाद किया, जैसे प्रेशर फ्रायर चिकन कहने लगे लोग। अब तक आपको समझ आ चुका होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि 60 साल की उम्र ना रिटायरमेंट की उम्र होती है। इस शख्स ने अपनी रिटायरमेंट की उम्र से पहले कई बार हाथ पांव मारे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, कोई एक ऊंचाई पर पहुंचने के लिए, पर किस्मत ने उनका साथ ही नहीं दिया। फिर एक मौका आया, एक मौका ऐसा आया कि उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी ना वेस्ट हो गई है, वो अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाए, एक शेफ रहे उससे ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए। तब उनकी जो वाइफ थी वो उन्हें छोड़कर जा चुकी थी और पैसा जो था वो कमाया, लेकिन जब नौकरी छोड़ी तो उन्हें सरकार की तरफ से $105 की एक पेंशन मिली, जिसके बाद ये साबित हो गया कि यार मैंने शायद अपनी जिंदगी में वो किया ही नहीं जो मुझे करना था। वो एक आम सी जिंदगी, एक बिलो एवरेज जिंदगी लेकर अपनी जिंदगी खत्म करने वाले थे। उनको लग रहा था कि बस अब मैं अपनी वसीयत लिख देता हूँ, जो मेरे पास है वो मेरी फैमिली को मिल जाए, मेरा कोई भरोसा नहीं। 60 साल की उम्र में उन्होंने जब अपनी वसीयत लिखने का फैसला किया, ही रोट दैट डॉक्यूमेंट, और लिखते लिखते उन्होंने लिखा कि कितना मुश्किल था अपनी वाइफ को उनके लिए मनाना, फिर भी वो मनाकर वापस लाए सिर्फ इस दम पर कि वो बहुत अच्छे कुक थे, तो उन्हें खाना बनाना तो आता था, उन्होंने तो चिकन की नई रेसिपी भी इजाद की थी, क्यों ना वो उसे बेचे। वही लिखते लिखते उन्हें जब ख्याल आया तो उन्होंने रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खटखटाने शुरू किए। ऐसे ही रूमर्स भी हैं और लोग कहते भी हैं कि उन्होंने 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खटखटाए थे और हर एक ने उन्हें मना कर दिया था कि नहीं, हम आपकी ये रेसिपी नहीं ले सकते। धीरे धीरे करके जब वो इतनी बार ना सुनते गए तब फाइनली एक रेस्टोरेंट, सोचिए 1000 रिजेक्शंस झेलने के बाद एक रेस्टोरेंट ऐसा था जो तैयार हुआ कि हाँ हम आपकी रेसिपी को ट्राई करें। उन्होंने वो चिकन वहां पर सेल किया और वो पॉपुलर हो गया। इस बिजनेस की शुरुआत, इस चिकन को बेचने की शुरुआत उन्होंने केंटकी में की थी। उनका बिजनेस जबरदस्त पॉपुलैरिटी के आसमान को छू रहा था। केंटकी के जो गवर्नर थे रूबी लफून, 1935 में उन्होंने इस शख्स को एक उपाधि दी, एक टाइटल दिया, केंटकी कर्नल, क्योंकि कभी ये फौज में रहे थे। तो केंटकी कर्नल सॉन्डर्स ने शुरुआत की KFC की, केंटकी फ्राइड चिकन। आपने देखा होगा ना वो KFC के बकेट्स जो लोग लिए बैठे रहते हैं KFC के कॉर्नर्स पर, जिनका वो लिप स्मैकिंग टेस्ट, वो डिलिशियस स्वाद, वो जो भी, अगर आप चिकन लवर हैं तो यू मस्ट बी नोइंग दैट थिंग, दैट जूसी फ्राइड चिकन जो वहां पर सर्व होता है, इट इज कम्प्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एक ऐसी यूनिक रेसिपी है जिसकी वजह से KFC की जब शुरुआत हुई तब, मतलब आप सोचिए 1964 में $2 मिलियन में KFC का हिस्सा कर्नल ने 1964 में बेचा था,
कर्नल ने कनाडा में अपनी फ्रेंचाइजी बेची और खूब पैसा कमाया, मतलब इतना पैसा जो बाकी की पूरी जिंदगी के लिए काफी था, लेकिन इस चीज की शुरुआत 60 साल की उम्र में हुई। ये कितनी बड़ी बात है कि इस शख्स ने अपनी ढलती हुई उम्र को अपने हार जाने का कारण नहीं माना और जीतने के लिए कोशिश करी उस चीज के दम पर जो उसके लिए सबसे खास थी, कुकिंग। ऐसे ही कोई एक आपकी यूनिक स्ट्रेंथ होगी जो आपके लिए खास है, जो आपको खास बना सकती है। आप बस उसका इस्तेमाल करके देखिए, मैं कह रहा हूं जिंदगी बदल जाएगी। हमने सुनी है आज कर्नल सॉन्डर्स की कहानी। इनका पूरा नाम है हार्लन डेविड सॉन्डर्स। कर्नल इन्हें एक उपनाम मिला था, एक तरह का टाइटल मिला था फ्रॉम द गवर्नर ऑफ केंटकी, जहां पर इन्होंने शुरुआत की थी केंटकी फ्राइड चिकन की। केंटकी को KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन के लिए हमेशा सदियों तक जाना जाएगा। 5 साल की उम्र में वो लड़का जब अपने घर पे खाना बनाता था, जब उसकी माँ नौकरी पर जाती थी, तब उसने नहीं सोचा था कि एक दिन यही चीज उसके इतने काम आएगी जो KFC बनकर दुनिया के सामने आएगी। हमें नहीं पता कि पजल के कौन से पीस से कौन सी पिक्चर बनने वाली है, पर ये छोटे छोटे हिस्से, वो छोटी छोटी कोशिशें हैं जो हम कर रहे हैं अपनी जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी बनाने की। वॉक टॉक रेडियो पर कहानी वाला के साथ आज कहानियों का सफर बस यहीं तक। मेरे जाने का वक्त हो चला है, मैं भी चलता हूँ, फिर भी यहीं मिलता हूँ वॉक टॉक रेडियो पर, जो आपकी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहा है। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूँ कहानी वाला रजत, जल्द फिर मिलेंगे।

नशीली वो रातों में, गहरी सी अपनी वो यादों में मैं रहा, अनकही सी बातों में, मीठी सी वो मुलाकातों में मैं रहा। बहुत सहा मेरे सारे जख्मों को दिए तूने बहुत दवा, लोग साले अपनों को देते रहते बहुत धक्का, बहुत खफा इन सपनों से बहुत खफा। तू भूल जाती झपकों में अपनों को बंद कमर।

उम्मीद रखूं तेरे ताने सुन लेता तो गाना ये आज मेरे साथ ना रहता। काश बहाने ना देता तो तू शायद आज मेरे साथ ही रहता। काश ये काश का जिक्र ना रहता, सियाही भी पन्नों से बस कफा रहता, और आज भी खुद को मैं कहता ही रहता तू साथ में।

0: Walk Talk Radio.
1: हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।

0: Fuck Doc, tune in for a better life. Fuck Doc, tune in for a better life.
1: अवसर उसी को मिलता है जिसमें काबिलियत होती है। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते।
2: Mock Duck Radio, tune in for a better life.

0: तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज की दुनिया में बहुत से दोगले लोग पाए जाते हैं जो अगर आपके दोस्त बन जाए तो दुश्मनों की भी कमी नहीं महसूस होने देते। इसीलिए मैं आप सभी से ये गुजारिश करती हूँ कि ऐसे लोगों से बचे रहे और हमेशा अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपके लिए सिर्फ अच्छा सोचते हैं और आपको हमेशा सही राह दिखाते हैं। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहे वॉक टॉक रेडियो।
1: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही छोटे छोटे एफर्ट से आपका गोल धीरे धीरे पूरा होता है। हर दिन की मेहनत काउंट होती है। एक एक दिन जब आपने अपनी नींद को सैक्रिफाइस किया, आपके दोस्त घूम रहे थे लेकिन आप अपने गोल को पाने के लिए काम कर रहे थे, यही तो टेस्ट है मेरे दोस्त। सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन पूरे मन से पूरी लगन से लगे रहना, और जब आखिरकार वो गोल आप अचीव करोगे तो ट्रस्ट मी, माउंट एवरेस्ट चढ़ना और वो गोल अचीव करना एक ही जैसी फीलिंग होगी।
1: वॉक टॉक सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: कुछ करके दिखाने की चाह रखने वाले रास्ते में आने वाले पहाड़ों से नहीं डरते। कुछ ऐसी ही बुलंद हौसले रखने वाले एक इंडियन, जिनके बारे में हमने अपनी किताबों में भी पढ़ा है, अनसंग चैंपियंस में आज मैं उनकी कहानी लाई हूँ, जिन्होंने एवरेस्ट के साथ साथ हमारे दिलों पे भी एक हिम्मत की छाप छोड़ दी। कहानी है बछेंद्री पाल की, उत्तराखंड में जन्मी एक ऑर्डिनरी लेडी की, जिन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट से हम देशवासियों को सिखाया कि जो आपकी ट्रू कॉलिंग है वो आपको किसी भी तरह से अपने पास बुला ही लेती है। बछेंद्री जी का जन्म भारत की देवभूमि यानी उत्तराखंड में नाकोरी गांव में 1954 में हुआ था। उनके पिताजी श्री कृष्ण सिंह पाल जी एक किराने की दुकान चलाते थे। बछेंद्री जी एक बैकवर्ड गांव से बिलोंग करती हैं। आज के टाइम पे इतनी अवेयरनेस के बाद भी गांव के लोगों की मेंटेलिटी थोड़ा नैरो ही होती है, तो सोचिए उस समय कितना मुश्किल रहा होगा अपने मन की इच्छा पूरी करना और सोसाइटी के संग चलना। बछेंद्री जी को पढ़ाई से बहुत प्यार था। गांव में लड़कों को तो पढ़ाया जाता था, पर लड़कियों के लिए 10वीं पार करना भी बहुत ही बड़ी बात हो जाती थी। बछेंद्री जी को लोगों ने पढ़ने से बहुत रोका टोका, फिर भी बछेंद्री जी जिद्दी थी कि उन्हें पढ़ना है, तो उन्होंने घर पे खुद से ही पढ़ना शुरू कर दिया। साथ ही घर के कामों में भी हाथ बटाती थी। अपनी एक कजन सिस्टर जिन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की थी, उनसे बुक्स लेके बछेंद्री घर पे खुद से पढ़ाई करती थी। उनका डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्टेबल नहीं थी। फाइनेंशियल स्ट्रेन कम करने और अपनी पढ़ाई सपोर्ट करने के लिए वो 5-5 रुपए के लिए लोगों के कपड़े सिला करती थी। एजुकेशनल बैकग्राउंड उनके गांव में उनके जानने वालों का कुछ भी नहीं था, तो उन्हें बिल्कुल गाइडेंस नहीं मिली। कोई बताने वाला तक नहीं था कि उनको क्या कोर्स करना चाहिए, और उस टाइम तो इंटरनेट भी नहीं होता था। बछेंद्री जी भी बढ़ रही थी डॉक्टर बनने की तरफ, लेकिन फिर उन्हें रियलाइज होने लगा कि उनका इंक्लिनेशन स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा है। वो कॉलेज में भी स्पोर्ट्स चैंपियन थी और फिर उन्होंने अपनी एजुकेशन लाइन शिफ्ट करी। बछेंद्री ने एमए किया संस्कृत में और देहरादून के डीएवी कॉलेज से बीएड भी किया, और वो अपने गांव से पहली लड़की थी जिन्होंने डिग्री हासिल की थी। एजुकेशन खत्म होने के बाद बछेंद्री जॉब ढूंढ रही थी और एक साल तक बेरोजगार बैठी रही। उनको एम ए बी एड के अराउंड ही जॉब चाहिए थी। कहते हैं कि वो बहुत कठिन समय था उनके लिए, क्योंकि इतनी मुश्किलों से लड़कर पैसे इकट्ठा करके पढ़ाई पूरी करी, लेकिन उसके बावजूद उनको अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। लोगों से ताने भी पड़ने लगे कि पढ़ाई लिखाई करके घर पे बैठी हैं। उस दौरान बछेंद्री की मुलाकात कर्नल प्रेमचंद से हुई, जो एक रिनाउंड माउंटेनियर थे। उन्होंने बछेंद्री को सजेस्ट किया कि तुम स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड हो और पढ़ी लिखी भी हो, तो तुम माउंटेनियरिंग को एज अ करियर क्यों नहीं चुन लेती। वो माउंटेनियरिंग का कोर्स करने के लिए बछेंद्री को कहीं जाने की जरूरत भी नहीं थी, उनके घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो बछेंद्री ने अप्लाई किया और बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करना शुरू कर दिया। इसी बीच बछेंद्री को एक चिट्ठी आई इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन से कि वो प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए सिलेक्ट हो गई है, और बछेंद्री को उसका विलिंगनेस का रिस्पॉन्स भेजना था, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। लकीली उन्हें वहां से फिर एक रिमाइंडर आया, तो अब वो चिट्ठी लेके गई अपने कोच के पास और उन्होंने समझाया बछेंद्री को कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारा डोर नॉक कर रही है, इसे मत जाने दो। यहाँ से संघर्ष शुरू हुआ उनका एवरेस्ट चढ़ने की तैयारी का। बछेंद्री कहती हैं कि उस समय वो 100% फोकस्ड हो चुकी थीं और उन्हें एवरेस्ट किसी भी कीमत पे चढ़ना था। जब हम कुछ भी बड़ा करने लगते हैं तो हमारे रास्तों में मुश्किलें तो आती ही हैं। जब उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी तो गांव के लोग उन्हें ताने सुनाने लगे। पिताजी की तरफ से उनको ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, लेकिन उनकी माँ को नहीं पसंद था उनका ऐसे पहाड़ों पे जॉगिंग जाना, लोगों के ताने सुनना। इसलिए कोई ये ना बोले कि बछेंद्री टाइम वेस्ट कर रही है, वो पहाड़ों से लकड़ियाँ चुनके ले आती थी। इससे दोनों काम हो जाते थे, उनकी प्रैक्टिस भी और घर का काम भी। बछेंद्री काफी जिद्दी थी अपने गोल्स के लिए। जैसे उन्हें पढ़ाई पूरी करनी थी वो उनका पहला गोल था, वो पूरा करके दिखाया। फिर उन्हें एवरेस्ट पार करना था, वो भी पूरी लगन के साथ कर रही थी। लाइफ में ना आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे दूर चली जाती है। जैसे ही आप उसे जाने देते हो और फोकस शिफ्ट करते हो तो वो चीज आपके लिए वर्कआउट कर जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ बछेंद्री के साथ। जैसे ही प्रैक्टिस का थोड़ा फोकस शिफ्ट हुआ, उनको आया टाटा से जॉब ऑफर। उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। उनके छोटे से गांव में ऐसा ऑफर आना, वो भी किसी लड़की के लिए, बहुत ही सम्मान की बात थी। गांव की तरफ से जो सोशल प्रेशर पड़ रहा था उस पे रोक लग गई थी। फिर उन्होंने अपनी ट्रू कॉलिंग सुनी। निकल पड़ी बछेंद्री एवरेस्ट के सफर पे। चढ़ते हुए भी सफर बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन वो ऑलरेडी लाइफ का एक एवरेस्ट पार कर चुकी थी, पढ़ाई करके, जॉब करके। तो इस एवरेस्ट को पार करने के लिए उनमें पूरी क्षमता थी। एवरेस्ट चढ़ते समय एक बार आधी रात को उन्हें एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज आई। पहले उन्हें लगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा, लेकिन फिर समझ आया कि उनकी बॉडी पे इतना वेट पड़ रहा है और वो एवलांच के नीचे

गई हैं। एक पल के लिए उन्होंने मान लिया कि अब बच पाना मुश्किल है, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उनके टेंट पार्टनर के पास नाइफ था और नाइफ के कारण दोनों बच गए। अपनी जान बचाकर उन्होंने अपनी साथ वालों को भी वहां से निकाला। आसान तो बिल्कुल भी नहीं था यह सफर। माउंटेनियरिंग बहुत ब्रेवरी स्पोर्ट है और छोटे से गांव से आई हमारी आज की चैंपियन ने माउंट एवरेस्ट के साथ साथ लाइफ के भी एवरेस्ट का सामना किया और पद्मश्री, पद्मभूषण और अर्जुन अवार्ड्स जैसे अवार्ड्स अपने नाम किए। देश के हर उस सिटीजन के लिए जिन्हें लगता है कि उनके पास एक्सपोजर नहीं है लाइफ में, उन सब के लिए एक मिसाल बनी बछेंद्री पाल। ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानी। ऐसी ही कुछ और कहानियों के साथ लौटेंगे ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: हम हमेशा उपवास रखते हैं खाने का, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? उपवास लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध, गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। सिर्फ अपनी बॉडी को डिटॉक्स मत करिए, अपने मन को भी करिए। अपने दिमाग से जो आपके बेकार थॉट्स हैं, उनको भी निकालिए।
0: Tune in for a better life.

दोस्तों, हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ के सक्सेस का इंतजार करने लगते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और कोशिश करना छोड़ देते हैं। पर हमेशा याद रखिए, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप भी सपनों का खिताब जीतना चाहते हो तो मेहनत के मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा।

रा के बसा न तुझको जो तू अब जमा गई है आके दीवानी तू है मगन हूँ मैं भी इसमें शामिल दिया है सब कुछ पर कर न पाया कुछ भी हासिल न हो कुछ टचवुड वो भी जाए तो ठहरे कातिल था मेरा सब कुछ अब आंसू

से डरे उजाले जिनके मुंह पे तो ये सूरज भी जले। मांगी मन्नते भी काफी जन्नत है जहाँ की, तू अमर रहे सदा ही बातें बाकी। सफर में काटे काफी गम को हम बाटे तो ये दिल क्यों मांगे माफी। क्यों खुश होता तेरी

कई लोगों को जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। अपनी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी प्यारी लगती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी गप देती है, क्योंकि शिकायतें तो वो भी करते हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

मेरे दोस्त, सब्र करना पड़े तो कर लेना, दुनिया से लड़ना पड़े तो लड़ लेना, उगते सूरज को वो सलाम जरूर करेंगे, तुझे वक्त लगे अगर वो सूरज बनने में, तू चाहे वो वक्त ले ले।

कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है।

बात है 2018 वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप्स की। सबकी नजरें थी ट्रैक पे भागते हुए खिलाड़ियों पर और उन्हीं खिलाड़ियों में भाग रही थी हिंदुस्तान की बेटी, जिसको उस समय शायद ही कोई जानता था, या यूं कहें कि शायद ही किसी को पता था कि ऐसी कोई लड़की भारत को वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में रिप्रेजेंट करने भी गई है। रेस खत्म होते ही इतिहास रचने की खुशी मनाती हुई और भारत का नाम ऊंचा करने वाली उस चैंपियन की बात कर रही हूँ मैं आज आपके साथ कविता, और शो का नाम है अनसंग चैंपियंस, जहां मैं आपके लिए रोज लेकर आती हूं दुनिया के ऐसे दमदार चैंपियंस की कहानियां, जिन्होंने अपने सपनों के सामने दुनिया की किसी भी मुश्किल को कभी ना आने दिया और मिसाल बने हम सबके लिए अपने जोश और जुनून से। आज हम शो में बात करेंगे भारत के लिए 2018 में IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला गोल्ड लाकर इतिहास रचने वाली हिमा दास की। अब तक हिमा दास कई सारे मेडल्स देश के लिए ला चुकी हैं और ये असम की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हिमा ने मात्र 18 साल की उम्र में इतिहास रचने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब तक भारत का नाम बहुत से इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में रोशन करके हमें गर्व करने का मौका दिया है। हिमा के मन में बचपन से इंडियन जर्सी पहनने का जुनून था। वो सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श मानती थी और ये अक्सर उनको अपने इंटरव्यूज में कहते सुना गया है। हिमा की माने तो सचिन ही उनकी इंस्पिरेशन है, जिनके कारण उनके मन में इंडियन जर्सी पहनने का सपना घर कर गया था। यूं तो हिमा खेलना सिर्फ

ले चाहती थीं क्योंकि वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थीं और साथ ही साथ उनको लगता था कि स्पोर्ट्स की वजह से उनकी अच्छी नौकरी लग जाएगी। पर जब उन्होंने सचिन को जर्सी में देखा तो वो इंडियन जर्सी पहनना उनका लक्ष्य बन गया था। वो एक ऐसा सपना था जो हिमा किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती थी। हिमा दास के जन्म और घर की बात करें तो हिमा का जन्म 9 जनवरी 2000 को असम के नागांव जिले के ढिंग गांव में हुआ था और इसी वजह से वो ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जानी जाती हैं। हिमा एक फार्मर्स की फैमिली से बिलोंग करती हैं और वो 6 भाई बहन हैं। हिमा को बचपन से स्पोर्ट्स में रुचि थी। उनके पापा भी फुटबॉल प्लेयर रहे हैं और काफी क्लब्स के लिए वो फुटबॉल खेलते थे, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो इसे आगे ना ले जा सके। उनसे इंस्पायर होकर ही हिमा ने फुटबॉल खेलना शुरू किया और यही एक कारण है कि उनको अपने पिता का हमेशा सपोर्ट मिलता रहा, क्योंकि वो खुद एक स्पोर्ट्समैन थे और हिमा को समझ सकते थे। हिमा फुटबॉल तो अच्छा खेलती ही थी और उसमें आगे भी जाना चाहती थी, पर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने फुटबॉल छोड़कर ट्रैक स्पोर्ट्स में अपना नाम बनाया? चलो ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हिमा ने ट्रैक गेम्स को ज्वाइन किया और इतनी छोटी सी उम्र में इतना काम कर लिया। हिमा को स्पोर्ट्स में खूब दिलचस्पी थी और वो स्कूल के हर एक इवेंट में भी भाग लेती थी। रेसिंग, शॉट पुट, लॉन्ग जंप और बाकी और सब में गोल्ड हासिल करती थी, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि वो एक अद्भुत खिलाड़ी थी। हिमा के पास ना ही फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा ग्राउंड होता था और ना ही अच्छे जूते, इसलिए वो अपने खेत में गांव के बच्चों के साथ खेला करती थी। कुछ समय बाद स्कूलों में प्रतियोगिताएं खत्म हो गईं। तब उनके स्कूल में एक योगा का नोटिस आया। ये एक महीने का कैंप था और सुबह 4:30 बजे से 6 बजे तक हिमा रोज इसमें जाती थी। हिमा योग को जिस डिसिप्लिन से फॉलो किया करती थी, उसी डिसिप्लिन को देख के हिमा के पीटी टीचर ने उन्हें एथलीट बनने का सुझाव दिया। उनका सुझाव मानकर हिमा ने इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। जिस तरह के बैकग्राउंड से वो आती थी, उन्हें डर था कि इस मुकाबले में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगी, पर पहुंचने पर हिमा को रियलाइज हुआ कि उनके पास भागने के लिए स्पाइक्स वाले जूते भी नहीं थे। हिमा ने जूतों की परवाह ना करते हुए रेस में पार्टिसिपेट किया और वो अपने साधारण जूतों में भागी और नागांव डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर हिमा दास डिस्ट्रिक्ट खेलती रही और उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। ऐसे स्ट्रगल करते करते धीरे धीरे हिमा ने अपने सपने को पाने की शुरुआत की। अब हिमा ने डिस्ट्रिक्ट लेवल में अपना नाम बना लिया था, पर ऐसे जाने माने डिस्ट्रिक्ट के मैचेस तो साल में एक ही बार होते थे, तो अब सवाल ये था कि बाकी के समय क्या करें। ढिंग गांव में इतनी प्रैक्टिस के ज्यादा साधन तो नहीं थे, इसलिए उन्होंने दोबारा से क्लब में जाकर फुटबॉल खेलना शुरू किया ताकि उनका खेल से संबंध बना रहे। कुछ समय बाद 2017 आसाम गवर्नमेंट की तरफ से एक महीने के लिए फंड रेजिंग कैंप का आयोजन किया गया, तो हिमा ने उसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने वहां मन लगाकर अभ्यास किया। हिमा के इस लगन और अभ्यास को फंड रेजिंग कैंप में दो शख्स गौर से नोटिस कर रहे थे। वो शख्स थे निपुण दास जी और अभिजीत जी। उन्होंने हिमा को गुवाहाटी आने को कहा क्योंकि वो हिमा की प्रतिभा जान गए थे। इस सुझाव को लेकर हिमा वापस अपने घर गई और उन्होंने अपने पेरेंट्स से इस विषय पर चर्चा की। इस बात से उनकी माँ ज्यादा खुश नहीं थी, पर उनके पापा का उनको पूरा सहयोग था। उनके पिता रंजीत दास जी जानते थे कि एक प्लेयर का दिल कैसा होता है। वो हिमा का जज्बा समझते थे और आपको तो पता है माँ का दिल कैसा नरम होता है। वो नहीं चाहती थी कि हिमा उनसे दूर जाए, पर हिमा के जुनून ने अपनी माँ को भी मना ही लिया। जेब में सिर्फ 350 रुपए लेकर हिमा अपने गांव से गुवाहाटी को चली। हिमा मात्र 17 साल की थी। उनका इस जगह रहने का कोई ठिकाना न था। काफी दिक्कतों के बाद निपुण दास जी और अभिजीत जी ने गुवाहाटी के एक डॉक्टर के सहयोग से हिमा के रहने और खाने का इंतजाम किया। गुवाहाटी में 2 महीने प्रैक्टिस करने के बाद हिमा को खेलने के लिए हैदराबाद जाने का मौका मिला। उनका जो बचपन से सपना था कि वो एक दिन इंडियन जर्सी पहने, वो आखिर पूरा हो गया था। हैदराबाद में जूनियर यूथ एशियन चैंपियनशिप की एक सिलेक्शन लिस्ट निकली और उसमें बैंकॉक जाने की टीम में हिमा का भी नाम आया। हिमा फिर बैंकॉक गई
वहाँ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, पर हिमा

अब वहाँ सिक्स्थ पोजीशन पे आई। जाहिर सी बात है वहाँ का कंपटीशन लेवल भी बहुत हायर रहा होगा, लेकिन हिमा सिक्स्थ आने से बिल्कुल निराश नहीं हुई, क्योंकि वो जूनियर यूथ एशिया चैंपियनशिप में जरूर सिक्स्थ आई थी, पर इंडिया से तो वो पहली लड़की थी जिसका सिलेक्शन हुआ था, और इस बात की खुशी हिमा को कई ज्यादा थी। और इस इंडियन जर्सी पहनने का और इंडिया को रिप्रेजेंट करने की इच्छा का पहला कदम पूरा हुआ। जूनियर यूथ एशियन चैंपियनशिप के बाद हिमा वापस गुवाहाटी जाकर प्रैक्टिस करने लगी। तब उनके कोच निपुण जी ने हिमा को कहा कि अब सीनियर लेवल की तैयारियां शुरू करो। तो 18 साल की हिमा ने सीनियर लेवल की ट्रेनिंग शुरू कर दी और चेन्नई जाकर सीनियर लेवल पर परफॉर्म किया। उस कॉम्पिटिशन में हिमा सबसे छोटी थी और अपने से उम्र और तजुर्बे में बड़े प्रतियोगियों को देख के हिमा डर सी गई और ठीक परफॉर्म नहीं कर पाई। उस परफॉर्मेंस को देखकर उनके कोच से उनको काफी डांट पड़ी, और डांट का असर कुछ ऐसा हुआ कि अगले दिन हिमा ने फिर गोल्ड लाके दिखाया। इस रेस को फेडरेशन के मेंबर्स भी परख रहे थे। कुछ समय बाद निपुण दास जी को फेडरेशन मेंबर्स ने कॉल करके कहा कि हिमा को इंडियन टीम भेज दो। हिमा की लाइफ का ये एक टर्निंग पॉइंट था। हिमा काफी खुश थी। हिमा ने लगन के साथ इंडियन टीम के सीनियर से ट्रेनिंग ले, पटियाला, पोलैंड और भी अलग अलग जगहों पर जाकर ट्रेनिंग ले, और इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में बैक टू बैक इतिहास रचा। उनकी इस उपलब्धि के बाद एडिडास जैसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड ने उनको घर आते ही अपना ब्रांड एम्बेसडर तो बनाया ही, साथ ही साथ उनके नाम के कस्टमाइज शूज भी बनवाए। जरा सोचिए कैसा रहा होगा वो पल एक लड़की के लिए जिसके लिए बचपन में कभी शूज अफोर्ड करना ही एक स्ट्रगल था, जो अपने साधारण जूतों पर एडिडास लिखा करती थी। आज वो उसी ब्रांड की एम्बेसडर बन गई हैं। 2019 का जुलाई का महीना हिमा का रहा। 20 दिनों के अंतराल में 5 गोल्ड मेडल, एक बड़ी उपलब्धि हिमा ने देश के लिए हासिल करी। हिमा दास ने अपने हुनर के बलबूते पर फेमिना, वोग जैसी मैगजीन के कवर पर अपना चमकता चेहरा पहुंचाया। ये वो मैगजीन्स हैं जिसपे खूबसूरती के मानक तय होते हैं। ऐसे मुकाम पर हिमा सिर्फ अपनी काबिलियत से पहुंची हैं। हिमा दास की कहानी हमें बताती है कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करने की ठान लें, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको नहीं रोक सकती। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ खुद को पहचानने की और मेहनत की। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये इंस्पायरिंग स्टोरी आपको पसंद आई होगी। फिर से लाऊंगी कल एक और ऐसी कहानी। मैं कविता, शो का नाम है अनसंग चैंपियंस, और सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: जिस दिन आपको पता चल गया कि आप कर सकते हैं, तो फिर आप कर लेंगे।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

तो दोस्तों, अगर हम कर्म की बात करें तो वो हमेशा कहता है कि जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही वो लौटकर आपके पास आएगा। तो अगर कभी भी आपकी जिंदगी में ऐसा हो कि आप किसी के साथ अच्छा करने चले हैं और वो आपके साथ हमेशा बुरा ही करता है, तो अच्छा करने से पहले कभी मत सोचना कि ये मेरे साथ बुरा करता है तो मैं भी इसके साथ बुरा ही करूँगा, क्योंकि जो भी हो कर्म हमेशा लौट कर आता है और जीवन में एक ऐसा समय लाता है जब कुछ लोग पछताते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत या धोखा क्यों किया। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहें मॉक टॉक रेडियो।

0: टॉक टॉक रेडियो।
1: लोगों को जानने से अच्छा है खुद को जानने की कोशिश करो। दोस्तों, दूसरों में कमियां निकालने से पहले खुद की कमियों को पहचानो और उनको ठीक करने की कोशिश करो। यस, जिंदगी यही कहती है कि हम लोग अपने आसपास हर चीज में कमी, दोष और सब चीजें ढूंढते रहते हैं, बट जो खुद नहीं देख पाते खुद में, अगर हम खुद में जान के देखते हैं और खुद से बात करते हैं तो हमें पता चलता है हम सब में कमी है, बट हम सब लोग एडमिट नहीं करते हैं। तो जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए अपने आप को पहचानिए और उसी को कुछ चेंज करके एक नए रूप में जीने की शुरुआत करिए।

0: रेडियो।
1: क्यों इतना डरते हो जिंदगी से? क्या होगा, कैसे होगा, जो भी होगा आगे तजुर्बा ही होगा, और तजुर्बा ही इंसान को जीना सिखलाता है।
0: Thank you.

हाय, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में, जिसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। कोशिश इतनी सी है कि आपकी जिंदगी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ पाए। है वैसे, मुझे पता है, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले लोगों में से एक हैं। लेकिन स्टिल कभी कभी होता है ना ऐसा कि बहुत ज्यादा अपन लो फील करते हैं, या हमको थोड़ा सा लगता है कि यार हमारे साथ में कुछ भी सही क्यों नहीं हो रहा है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन कितनी जल्दी हार मानता है, किसमें कितना पेशेंस है। और जितना ज्यादा पेशेंस है ना हमारे अंदर, या जितना ज्यादा हम कहते ना कि धैर्य रखने वाले लोगों में से हैं, उतनी ही हमारी जिंदगी इजी गोइंग रहेगी। क्योंकि ऐसे लोगों को हड़बड़ी नहीं होती। हालांकि बहुत ज्यादा धैर्य भी नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत तो जल्दबाजी भी होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं वही वाली चीज कि हर एक चीज स्वादानुसार होनी चाहिए, मिर्च हो या नमक। हद से ज्यादा चीनी भी चीज को कड़वा बना सकती है, भले ही उसका टेस्ट मीठा होता हो। तो वो वाली चीज है, पेशेंस भी एक लिमिट का होना चाहिए, और इंपेशेंट भी अगर आप हैं तो वो एक लिमिट तक होना चाहिए। इंपेशेंट कुछ चीजों को लेकर के होना चाहिए। आप यूं ही हर एक चीज को ओके ठीक है आ जाएगी, कल को आपको एकदम से ब्लड की जरूरत है और आप आराम से धैर्य से बैठे हैं, कभी कोई आएगा तो मिल जाए, वो नहीं चल सकता ना। ऑपरेशन अगर जो अभी होना है तो ब्लड अभी चाहिए, वहां आपका धैर्य काम नहीं आएगा। वहां पर आपको जल्दबाजी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जाके लेना पड़ेगा, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो इंपेशेंट होना भी थोड़ा सा जरूरी है। एट द सेम टाइम जिंदगी की जो मुश्किलें हैं, इनके साथ में किस तरह से सर्वाइव करना है, इनके साथ में जिंदगी जीना किस तरह से सीखना है, ये हमें ही देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि इस दुनिया में कोई भी बीमारी नहीं है। इतनी सारी बीमारियां आई, नई नई इंट्रोड्यूस हो रही हैं, और उनके साथ में हम कहीं ना कहीं जिंदगी को जीना सीख रहे हैं। जैसे अभी देख लीजिए ना, अनलॉक के फेज चल रहे हैं। अभी हम कोरोना के साथ में अपनी जिंदगी को सेटल करने की कोशिश में हैं। इनफैक्ट काफी हद तक कर चुके हैं। प्रॉपर सेफ्टी के साथ में हम बाहर निकल रहे हैं, हम हमारी रूटीन लाइफ को वापस लेकर के आ रहे हैं, और यही तो एक तरीका है। ये कोरोना जैसी चुनौतियां हैं, इनके साथ में अपनी जिंदगी में किस तरह से एडजस्ट करना है, ये हम ऑटोमेटिकली सीख रहे हैं, क्योंकि ये हमारी नीड बन चुकी है। ठीक वैसे ही हमारी मंजिल तक पहुंचने में जो मुश्किलें हैं, उनके साथ में हमको आगे बढ़ना सीखना होगा। हम ये चाहे कि नहीं यार मुश्किलें ही नहीं आए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। जिस रास्ते में कोई मोड़ नहीं होते, वो रास्ता कहीं के लिए नहीं जाता। तो अगर जो कहीं जाना है तो रास्ते में मोड़ तो होंगे ही होंगे। रास्ते के गड्ढे भी जरूरी हैं जनाब, वरना अक्सर हम अपना ध्यान इधर उधर भटका लेते हैं। तो आज एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं कि ये जो चैलेंजेस हैं, ये हमारी जिंदगी में कितने जरूरी हैं, वरना उनका क्या असर हो सकता है। तो जापानीज का क्या है कि इनको ना मछलियां सालों से बहुत ज्यादा पसंद है। इनका जो फूड है, इनकी जो डाइट है, उसका एक ऐसा पार्ट है जिनको ये शामिल करते ही करते हैं। और जो फ्रेश मछलियां हैं, उनका टेस्ट इन लोगों को बहुत पसंद है। लेकिन होता है ना कि जब आप बहुत ज्यादा चीजों को खाते हैं या जानते हैं, तो उनका टेस्ट आप यूं पकड़ लेते हैं। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है। तो ऐसा ही इनके साथ में भी हुआ कि जो मछलियां हैं, उनको मछुआरे समुद्र के बीच में से जाकर के लेके आते थे, लेकिन जब तक वो आती थी, शहर के अंदर आती थी, तब तक वो मर जाती थी, बासी हो गई। अब समस्या ये है कि वो फ्रेश मछलियों वाला टेस्ट तो उसमें आ ही नहीं रहा, तो लोगों ने बासी मछलियां खरीदना कम कर दिया। तो जो मछुआरे थे, उन्होंने दिमाग लगाया कि क्या किया जाए ताकि लोग और ज्यादा खरीदें, ये बासी ना हो। तो मछुआरों ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, हमारी बोट में फ्रीजर लगा देते हैं, वो मछलियां पकड़ते उनको फ्रीजर में डाल देते हैं, ताकि वो लंबे समय तक ताजी बनी रहती। लेकिन लोगों ने फ्रीजर में रखी मछलियों का भी टेस्ट पहचान लिया, उनको वो फ्रेश वाली मिली नहीं रही, उतनी टेस्टी नहीं है ये। तो ऐसे में लोगों ने उनको भी खरीदना कम कर दिया। मछुआरे फिर से एक बार टेंशन में कि अब क्या करें। फिर से उनकी पूरी मीटिंग हुई, बाकायदा सोचा, आइडियाज लिए गए, एक सोल्यूशन मिल गया। सभी मछुआरों ने अपनी बोट में एक फिश टैंक बनवा लिया, मछलियां पकड़ते और उन्हें पानी से भरे हुए फिश टैंक में डाल देते, और इस तरह से ताजी और जिंदा मछलियां बाजार तक लाने लगे। लेकिन अब इसमें भी समस्या, फिश टैंक में मछलियां कुछ देर तक तो इधर उधर चलती, लेकिन जगह ज्यादा नहीं थी तो एक ही जगह रुक जाती। अब जब तक मछुआरे किनारे तक पहुंचते, वो सांस तो ले रही होती, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली समुद्र में वो खुले में इधर उधर घूम रही हैं, तो न तो उनके अंदर वो एनर्जी है, तो उनका जो टेस्ट है वो भी बदल जाता, और लोगों ने चेक करके ये भी अंतर पहचान लिया कि ये ताजी तो नहीं है। मछुआरों को समझ नहीं आ रहा ये क्या करें क्या, टेंशन में आ गए वो, पूरा उनका एसोसिएशन, पूरा यूनियन बैठ करके डिसाइड कर रहा था कि क्या करें क्या करें, लोगों को बोलें कि हम फ्रेश नहीं दे पाएंगे। तो अचानक से एक छोटा सा बच्चा साइड से बोला, उसने कहा इसकी जरूरत ही नहीं है, आपको प्रॉब्लम ये है ना कि फिश टैंक में मछलियां एक जगह रुक जाती हैं और इस वजह से उनकी उनका जो टेस्ट है वो बदल जाता है। अब एक काम करिए, एक छोटी सी शार्क लीजिए और उन मछलियों के बीच में डाल दीजिए। लोगों ने ये सुना, उनको आइडिया अच्छा लगा, और उसके बाद में उन्होंने यही किया। उन्होंने फिश टैंक में मछलियां डालने के बाद एक शार्क उसमें डालनी शुरू कर दी।
अब वो जो शार्क थी वो फिश टैंक के अंदर की कुछ मछलियों को खा तो जाती थी, थोड़ा सा नुकसान होता था, लेकिन जो मछलियां किनारे तक पहुंचती थी उनमें एनर्जी और ताजगी बनी रहती थी, क्योंकि शार्क है, उनसे बचने के लिए मछलियां भागती रहती थी, शार्क उनके पीछे, वो इधर उधर भाग रही है, डर के मारे पूरे समय इधर उधर मछलियां भाग रही है। यानी कि टैंक में है वो, लेकिन फिर भी फ्रेश है, और लोगों ने बड़े चाव से उनको लेना, खरीदना और खाना शुरू किया। उस छोटे से बच्चे की सजेशन की वजह से जापानीज मछुआरे जो थे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लिया। और यही तो हमारी जिंदगी में होता है। हमारी जिंदगी में भी ये शार्क के रूप में जो चैलेंजेस है ना, ये जब तक नहीं आते हम ऐसे ही बेजान पड़े रहते हैं। सांस तो ले रहे होते हैं लेकिन जिंदा दिली हमें होती ही नहीं है, एक ही रूटीन में बंद के रह जाते हैं। 9 से 5, ये 9 से 5 इतना ज्यादा बोरिंग क्यों माना जाता है? क्योंकि लाइफ में कुछ और डिफरेंट है नहीं। सुबह उठकर के ऑफिस जाना, ऑफिस में पूरे दिन काम करना, शाम को वापस आना, सो जाना, खाना खाके और वही रिपीट करना। इसीलिए तो वीकेंड्स दिए गए ताकि हमारा रूटीन थोड़ा सा चेंज होता रहे, हम हमारी जिंदगी में कुछ नया करें, उन मछलियों की तरह बस एक धर्रे पर ना चले। और यही ट्राई करिए, चैलेंजेस हैं तो उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एट द सेम टाइम एक जगह मत पड़े रहिए, बोरिंग हो जाती है जिंदगी, और छोटी सी जिंदगी, एंजॉय करो इसको जो पल मिले। कुछ लोग होते हैं ना जो एक्स्ट्रा टाइम ऑफिस में देते हैं, बैठे हैं आराम से, वीडियोस देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है, बाहर इतनी बड़ी दुनिया है, बाहर इतने सारे लोग हैं, निकलिए, दुनिया को देखिए, जिए। वैसे भी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट हम ऑफिस के अंदर ही दे रहे हैं, 24 घंटे में से हर दिन 9 घंटे ऑफिस के अंदर। इससे ज्यादा वक्त मत दो, स्मार्टली काम करो, टाइम पर काम निपटाओ और निकलो। और ये चैलेंजेस जो है इनको एक्सेप्ट करो, इनके साथ में रहना सीखो, इनके साथ में आगे बढ़ना सीखो, और उसके बाद में जो जीत होगी वो हमारी होगी। और ये हमें क्यों लगता है कि चैलेंजेस सिर्फ हमारी जिंदगी में है? जितनी बड़ी मंजिल उतने बड़े चैलेंजेस। जो हमारी मंजिल है ना वो भी उस समय पर जाते ही सफर हो जाएगा, यकीन मानिए। अगले एपिसोड में बात करेंगे इसी बारे में, मंजिल और सफर में क्या डिफरेंस है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। स्टे ट्यून्ड।

0: आपके और आपकी सफलता के बीच में आपकी सोच खड़ी है। अगर आपने खुद को काबू करना सीख लिया तो आपके सपने भी कबूल हो जाएंगे।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

दोस्तों, हमारी जिंदगी कभी भी कुछ मिनटों की मेहमान नहीं होती जो गिनती के पलों में बदल जाए। पर हाँ, अगर आप अपने फैसले कुछ मिनटों के आधार पर लेते हैं तो वो आपकी जिंदगी को बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है, अपनी लाइफ के छोटे या बड़े फैसले हमेशा सोच समझ कर लेने चाहिए, तभी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

वेलकम बैक, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो, एक कोशिश छोटी सी आपको मोटिवेट रखने की, आपको पॉजिटिव रखने की, और आपकी जिंदगी की जो समस्याएं हैं कोशिश करते हैं कि उनका हल थोड़ा सा मिल सके, ताकि आपकी जो स्माइल है ये खूबसूरत वाली ये यूं ही बरकरार रहे, आपका चेहरा खिला खिला रहे और सेल्फी के लिए एक्स्ट्रा पाउट की जरूरत ना पड़े, ऐसे ही स्माइल आप कर सके। सो बेसिकली आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मंजिल और सफर के बीच के अंतर की। एक बात समझिए, एक छोटी सी बात, कि हमारा जो आज है ये भी एक दिन कल हो जाएगा, और हमारा आने वाला जो कल है वो भी किसी दिन आज होगा, और वो भी गुजरा हुआ कल हो जाएगा। This is how it works. I mean, यही तो है पूरा प्रोसेस। हर किसी ने लाइफ में ना अपने टारगेट सेट कर रखे हैं, गोल सेट कर रखा है। हमको लगता है कि हमारी मंजिल, एक तो ना मुझे मंजिल वाली चीजें कभी समझ नहीं आती, क्योंकि इस दुनिया में ना ट्रस्ट मी मंजिल जैसी कोई चीज है ही नहीं। मैं दुनिया से बिल्कुल ही उलट बोल रहा हूं, लेकिन अब मैं प्रूव करूंगा मेरी बात को कि मंजिल जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये एक इमेजिनरी दुनिया है जो हमने सोच ली है कि मंजिल मिल जाएगी, मंजिल मिल जाएगी। मुकाम बोल सकते हो आप, लेकिन मंजिल नहीं है। मंजिल का मतलब ये हुआ कि अब आपका सफर हो गया है खत्म, आप पहुंच गए आपको जहां जाना था। सपोज आपको दूध लेने के लिए जाना है और आपको दुकान तक जाना है, आपकी दुकान है आपकी मंजिल, उसके बाद खत्म हो गया आगे का प्रोसेस, चलिए ठीक है इग्नोर कर दीजिए। ऑफिस से आपको घर पहुंचना है, घर आपकी मंजिल है, आप घर पहुंच गए, आप घर रुक जाइए, सफर का अंत हो गया, ये है मंजिल। तो क्या हमारी जिंदगी में सच में कोई मंजिल है? नहीं, मुकाम बोल सकते हैं हम उसको, क्योंकि मुकाम किसी भी चीज का एंड पॉइंट नहीं है, मुकाम के साथ में भी जर्नी तो कंटिन्यू है। मंजिल हम क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हर किसी की जिंदगी में ना हमने अलग अलग कुछ गोल सेट किए होते हैं। किसी इंसान का गोल है कि उसके अकाउंट में कम से कम इतना पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए, किसी इंसान का गोल है कि उसको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, किसी इंसान का गोल है कि उसको मैनेजरियल पोजीशन पर जाना है, मैनेजर बनना है, किसी इंसान का गोल कुछ और है। हर किसी के गोल अलग हैं, वो गोल तक पहुंचने को हम मंजिल मिलना तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एंड पॉइंट नहीं है। इनफैक्ट वहां से एक अलग सफर शुरू होता है, थोड़ा ज्यादा जिम्मेदार सफर शुरू होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। सपोज मेरा सपना है कि मुझे अपना एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना है जो कि इस शहर में सबसे बड़ा हो, जिसके बहुत सारे कंज्यूमर्स हों। मैंने बिजनेस खड़ा कर लिया, मैं वहां तक पहुंच गया, क्या मुझे मेरी मंजिल मिल गई? नहीं, सफर तो जाने मन अब शुरू हुआ है, बड़े चैलेंजेस तो अब आएंगे। छोटे रास्तों पर आप आराम से चल सकते हैं, बड़े रास्तों पर ज्यादा केयरफुली चलना पड़ता है। वही वाली बात कि जितने बड़े गोल्स होते हैं उतने बड़े चैलेंजेस भी होते हैं। तो मंजिल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में, मुकाम होते हैं। तो मुकाम के पीछे भागिए, मंजिल के पीछे नहीं, क्योंकि आप वहां पहुंचे और वहां पहुंचते ही आपके फिर गोल बदल जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा ना, जैसे हम जब छोटे होते हैं तो बड़े छोटे छोटे से गोल्स होते हैं हमारे, बड़ी ही छोटी छोटी सी मंजिल होती है। जब तक हमारी जॉब नहीं लगी होती, हमको लगता है 15-20 हज़ार की कोई जॉब मिल जाए जिसमें हम हमारे खर्चे पूरे कर सकें, होता ना, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, मुझे मेरे घर वालों से पैसे नहीं लेना पड़े, मेरी जिम की फीस, मेरा पेट्रोल, मेरा ये वो, हमारी बस इतनी सी ख्वाहिश होती है। जब 15-20 हज़ार रुपए की जॉब मिल जाती है, फिर हमको लगता है यार 50-60 हज़ार तो हूं कम से कम, यहां तक पहुंचते हैं तो फिर लाखों में होने लगता है। धीरे धीरे धीरे धीरे इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, और जैसे जैसे हम हमारे गोल्स को अचीव करते जाते हैं, हमारे नए गोल सेट होते जाते हैं। कभी हमारा सपना सिर्फ साइकिल का होता था, फिर बाइक का हो गया जब साइकिल मिल गई, तो फिर जब बाइक मिल गई तो कार का हो गया, जब कार मिल गई तो फिर ऑडी BMW का हो गया। बदलती जाती हैं चीजें, ये कभी खत्म नहीं हो सकती, और मुझे लगता है कि इच्छाओं को खत्म करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इच्छाएं खत्म हो गई ना तो जिंदगी से रंग चले जाएंगे। हमारी इच्छाएं हैं और हम उन्हीं को पाने की या पूरी करने की कोशिश करते हैं, और वही तो फन है जिंदगी का। वरना एक पेड़ को देख लीजिए ना, बड़ा होता है, एक ही जगह रहता है और वैसा ही खत्म हो जाता है, सालों साल तक वही चलता रहता है प्रोसेस। उसकी जिंदगी में डिफरेंट कुछ नहीं है, सीजन आता है, फल आते हैं, लोगों को फल देता है, वापस पतझड़। हमारी जिंदगी, हम इंसानों की जिंदगी अलग है, क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी में इतने सारे रंग हैं। जानवर हैं, उनके कोई ऐसे गोल्स नहीं है, उनका बस एक सर्कल चल रहा है, एक साइकिल चल रहा है कि उनको खाना है, सोना है, खाना है, सोना है। मतलब इस एपिसोड में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, एक तो मंजिल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में, मंजिल है ही नहीं कोई, पूरी जिंदगी सफर में जाती है और फाइनली गुजर जाते हैं हम। मिली है आज तक किसी को मंजिल? आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से जो मंजिल है सफर वहां पर भी है।
रास्तों की तरह, जो एंड पॉइंट सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, जहां सड़क खत्म हो रही है, आपको लग रहा है कि ये खत्म है यहां पर सड़क, वहां जैसे ही पहुंचते हैं तो वो एंड पॉइंट और आगे बढ़ जाता है और सड़क कहीं और खत्म हो रही होती है, बट असल में सड़क कहीं खत्म होती ही नहीं। यही बात है कि मंजिल जैसी कोई चीज नहीं है, मुकाम होते हैं और उन मुकाम की लड़ाई है हमारी ये पूरी जिंदगी जो हम लड़ते हैं, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं। दूसरा, इच्छाएं खत्म नहीं होनी चाहिए, जीने का मजा ना खत्म हो जाता है, आप प्रोग्रेस करना बंद कर देते हैं, आप आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। लोग इसको लालच बोलते हैं, बट मुझे लगता है ये लालच नहीं है, ये पुश है। हम अगर जो सोचेंगे नहीं, उसके सपने नहीं देखेंगे तो उसको पाएंगे कैसे? और कोई बुराई नहीं है इसमें, आज मेरे पास बाइक है, मुझे कार की चाहत है, आज मेरे पास कार है तो मुझे, अब सपोज मेरे पास हैचबैक है, मुझे एसयूवी चाहिए या फिर मुझे जीप चाहिए, तो मैं उसके लिए मेहनत करूंगा, मैं पैसे इकट्ठा करूंगा और वही तो फन है। ये लालच नहीं है, ये आगे बढ़ने का एक जुनून है, एक पुश है जो हमें पीछे से मिल रहा है और जो बहुत जरूरी है। तो अपनी इच्छाओं को बरकरार रखिए, मंजिल की लड़ाई मत लड़िए, मुकाम की लड़ाई लड़िए, क्योंकि मंजिल है ही नहीं इस दुनिया में। ये बार बार मैं रिपीट इसलिए भी कर रहा हूं ताकि ये चीजें आपको समझ आए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिस भी हालात में है, हंसिए और मुस्कुराइए। एक बात बताइए, आज आपका बुरा वक्त चल रहा है या कुछ ऐसा हुआ जो आपके हिसाब से सही नहीं है? आपके हिसाब से इसलिए मैंने थोड़ा सा जोर देके बोला है क्योंकि कुछ चीजें हमारे लिए सही होती हैं जो आज गलत हैं। हम आज देख नहीं सकते उनका पॉजिटिव साइड, जिस तरह से दवा कड़वी होती है लेकिन अल्टीमेटली उसका जो इफेक्ट है वो हमारे भले के लिए है, ठीक वैसे ही आज की मुश्किलें, आज का बुरा वक्त किसी ना किसी के अच्छे दिन के लिए ही बना हुआ है। वो उस वक्त जाके हमको रियलाइज होता है कि अच्छा यार ये हुआ, अच्छा ही हुआ। तो इसलिए आज का जो बुरा वक्त है, क्या हम इसका कुछ कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो फिर टेंशन किस बात की, और अगर नहीं कर सकते तो भी टेंशन किस बात की। जीरो से शुरू किया था आपने, यहां तक खुद के बलबूते पर पहुंचे हो, ये याद रखना। और जब आप यहां तक पहुंच सकते हो ना, तो कितने ही नीचे गिर जाओ, आप फिर से वापस उतना ही ऊंचाई पर पहुंच सकते हो। फेलियर्स को कभी भी दिल पे मत लेना, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में, स्टे ट्यून्ड।

जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हों, तुम कभी कमजोर मत होना, क्योंकि सूरज के तपन से समुद्र कभी सूखा नहीं करते।

वेलकम बैक, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। कैसे हैं आप? पहले से ज्यादा खूबसूरत ऑफ कोर्स होंगे यार। ट्रांसफॉर्मर्स की कोशिश भी यही है कि थोड़े से आप स्माइल करते रहिए, और ये स्माइल है ना, ये बेस्ट मेकअप है इन दिस वर्ल्ड। आप थोड़ा सा स्माइल करिए, आप यूं ही खूबसूरत लगने लगते हैं। एक कहावत मेरे आसपास के जितने भी बुजुर्ग हैं वो जरूर कहा करते थे, मैंने बचपन में ये कहावत बड़ी सुनी है, तो वो ये बोला करते थे कि अपने मरने से ही स्वर्ग मिलता है। बेसिकली इस कहावत का मतलब ये था कि आपको जो काम करना है आप खुद करो, तभी आप उसको बेहतर कर पाओगे। अपने मरने से ही स्वर्ग मिलता है, किसी और के मरने से आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो आप जैसा चाहते हो वैसा काम कोई और करके दे नहीं सकता। अगर आप किसी काम को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो तो कोशिश करो कि उसको खुद करो, क्योंकि जब आप खुद करोगे तो अपने तरीके से कर पाओगे। किसी और पर डिपेंडेंट रहोगे तो उसमें आपका ही नुकसान है। एक कहानी सुनाता हूं इससे जुड़ी हुई। तो एक बार एक गांव में किसान रहता था। उसके गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था उसका। फसल बोने के कुछ दिनों के बाद में उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ वक्त बीता, चिड़िया ने वहां पर दो अंडे दे दिए। उन अंडों में से दो छोटे छोटे बच्चे निकल आए और बड़े मजे से आराम से वो खेत में रह रहे हैं। कुछ महीनों के बाद में फसल की कटाई का वक्त आ गया। तब तक वो बच्चे भी बड़े बड़े हो गए। गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों को ये टेंशन कि अब उनको इस खेत को छोड़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि अब फसल की कटाई होगी तो उनका घोंसला वैसे ही बिगड़ना है। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को यह कहते हुए सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसको खेत में भेजूंगा ताकि वो फसल

कट सके। और ये सुनकर के चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वो वापस लौटी तो बच्चों ने उसको बताया कि ऐसे ऐसे किसान आया था और वो ये बोल रहा था कि अपने पड़ोसी को भेजेगा और ये फसल कटवाएगा। आज हमारा आखिरी दिन है यहाँ पर, हमें रात में ही किसी दूसरी जगह के लिए निकल लेना चाहिए। चिड़िया ने कहा, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। इसके बाद में आराम से वो सो गए और चिड़िया की बात एकदम सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई नहीं हो सकी। शाम को किसान फिर से खेत में आया। खेत को जैसे का तैसा देख करके बुदबुदाने लगा कि यार ये पड़ोसी तो नहीं आया, ऐसा करता हूं कल अपने किसी रिश्तेदार को यहां पर भेजता हूं, वो फसल काटेगा। चिड़िया के बच्चों ने फिर से सुनी। चिड़िया जब वापस लौट करके आई, उसको फिर से बताया कि ये किसान आज बोल रहा था कि मैं किसी रिश्तेदार को भेजूंगा। चिड़िया फिर से मुस्कुराई, बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज की रात तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन किसान का रिश्तेदार नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान कि उसकी माँ जो बोल रही है उसकी सब बातें सही साबित हो रही हैं, ऐसे कैसे पता है इसको कि वो आएगा या नहीं आएगा। अगले दिन शाम को फिर से किसान खेत में पहुंचा। खेत की फसल देखी तो वैसी की वैसी खड़ी हुई है। बुदबुदाने लगा कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए आते नहीं है, कल मैं खुद आकर के अपनी फसल की कटाई शुरू करूंगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात सुनी। जब उनकी माँ लौट के आई तो उन्होंने बताया कि आज किसान ये बोल रहा था कि कल मैं खुद आकर के अपनी कटाई करूंगा। तो चिड़िया बोली, बच्चों अब समय आ गया है इस खेत को छोड़ने का, हम आज की रात ही ये खेत छोड़ करके दूसरी जगह चले जाएंगे। अब दोनों बच्चे हैरान कि इस बार में ऐसा क्या है जो माँ ने खेत छोड़ने को कहा है। उन बच्चों ने चिड़िया से पूछा कि आपको कैसे पता कि वो अब आएगा ही आएगा, दो बार उसने और भी बोला था तब भी तो नहीं आया कोई। तो चिड़िया ने कहा कि देखो, पिछली दो बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट था, उसने दूसरों को कह करके अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार उसने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है और इसीलिए वो जरूर आएगा। और उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत से उड़ करके कहीं और चले गए। अगले दिन किसान आया, उसने अपनी कटाई शुरू कर दी। कहने का मतलब, दूसरों से हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि तय समय पर खत्म हो और परफेक्शन के साथ में हो, वैसा ही जैसा आप चाहते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी खुद लीजिए। दूसरे भी मदद उसी की करते हैं जो अपनी मदद करता है। ये चीजें हमारे पापाओं से बहुत सीखने को मिलती है। अक्सर वो ताने मारने में कह देते हैं ना कि तुमसे काम करने से बेहतर है हम खुद ही कर लें। तो उसका रीजन भी यही है, क्योंकि जैसा काम वो चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता। कभी आपने नोटिस किया है घर में ऐसा होता है, जो हमारे दादाजी होते हैं या बड़े लोग होते हैं, पापा जी चाचा जी, वो लोग हमसे काम करने को बोलते हैं, एंड ये बचपन में ज्यादा होता है। हमारा किया हुआ काम उनको पसंद ही नहीं आता है, कुछ ना कुछ कमी वो निकाल ही लेते हैं। मेरे दादाजी के साथ में ऐसा था, वो मुझे किसी काम के लिए बोला करते थे, मैं करता था, उनको पसंद ही नहीं आता था, चार कमियां निकाल के मेरा माथा खराब, एक तो काम करो ऊपर से इनकी मीन मेक सुनो, हर एक बात में कमी निकालने की क्या जरूरत है, कभी तो कोई अच्छा काम करा ही होगा ना मैंने। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, आज इतना बड़ा हुआ हूं, तो मुझे रियलाइज हुआ है कि वो हमको काम के लिए बोलते तो थे, लेकिन उनके पैरामीटर्स अलग थे, उनके हिसाब से थे, और मैं काम करता था मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो टेक्निकली तो यहां पर दोनों ही थोड़े थोड़े गलत थे। खैर, इस चीज को जज नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों को सिखाना भी जरूरी है उनके ऊपर जिम्मेदारियां डाल के, तो उनका वो वाला पॉइंट में भी रहा होगा। बट आप अगर जो चाहते हो कि आपका काम उसी तरीके से हो जैसा आप चाहते हैं, उतने ही परफेक्शन के साथ में और ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो काम, तो आप खुद करिए या खुद उसकी जिम्मेदारी लीजिए, औरों को अपने सामने लगा करके काम करवाइए। तो बस ये ध्यान रखिए कि खुद के मरने से ही स्वर्ग मिलता है, खुद के खाने से ही भूख मरती है, खुद के कपड़े पहनने से ही तन ढकता है। खुद पर डिपेंडेंट रहें, खुद से एक्सपेक्टेशंस रहें, दूसरों से उम्मीदें जितनी कम होंगी आपका दिल टूटने का चांस उतना कम होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। भरोसा करें तो खुद पे करें।

0: रेडियो।
1: आपके अंदर का टैलेंट क्या है ये सिर्फ आपको ही पता है। हमें किस काम में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है ये सिर्फ आपको ही पता है। दूसरे जो लोग हैं वो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर के टैलेंट को तो आपको खुद ही पहचानना होगा। वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, और उसके बाद उस पर काम करना शुरू कर दो कि आपको उस काम को कितना बेहतर से बेहतर तरीके से करना है या आप कर सकते हैं। प्लानिंग करो कितना क्रिएटिव तरीके से उस काम को कर सकते हो। देखो जो भी करो दिल और शिद्दत से करो, उसके बाद जमाना खुद ही आपके लिए तालियां मारेगा। लेकिन उससे पहले अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: जिंदगी में अगर एक बार भरोसा टूट जाए ना, फिर चाहे आप लाख कोशिश कर लो, वो भरोसा आप दोबारा कायम या फिर जीत नहीं सकते। भरोसा किसी भी काम को लेकर हो सकता है, ऑफिस में बॉस का आपके ऊपर भरोसा, आपके लाइफ पार्टनर का आपके ऊपर भरोसा, खुद के सपनों को पूरा करने का भरोसा, किसी भी चीज को पाने का भरोसा। लाइफ में भरोसे की अहमियत अक्सर टूट जाने के बाद ही पता चलती है। इसीलिए लाइफ में आप कहीं पर भी हो, किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर क्यों ना हो, लेकिन भरोसा मत टूटने देना, भरोसे पर कायम रहना। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब सामने वालों को आपके भरोसे की अहमियत के बारे में पता चलेगा।
0: वक्त

हाय, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिस पर दुनिया चल रही है, एक ऐसी चीज जो बड़े से बड़े झगड़े को यूं खत्म करा सकती है, एक ऐसी चीज जो अगर जो हारने वाला कर दे तो जीतने वाले का जश्न थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, एक ऐसी चीज जो रिश्तों को मजबूत कर सकती है। स्माइल की बात हो रही है, ये वो मुस्कुराहट है, इसमें इतनी ताकत है। हम कितने ही गम में हो, हम कितने ही परेशान हो, अगर जो हम स्माइल करेंगे तो जमाने को एक पॉजिटिव संदेश जाएगा। इनफैक्ट हम खुद भी अच्छा फील करेंगे, हमारा वो जो दर्द है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कभी परेशानी में मुस्कुरा के देखिए जनाब, रीजन हो तब तो जमाना मुस्कुराता है। सेलिब्रेट करिए, बहुत ही छोटी सी जिंदगी है, लेकिन अफसोस हमारी जिंदगी कितनी कीमती है और कितनी छोटी है, इसका रियलाइजेशन हमको तब होता है जब हमारी जिंदगी के आखिरी लम्हों में होते हैं। फिर जब हम काउंट करते हैं ना कि हमने क्या किया, तो समझ आता है कि क्या फायदा यार। एक बात बताओ, अभी आपको लगता होगा ना जो आपकी स्कूल लाइफ थी कितनी अच्छी थी यार, लेकिन स्कूल लाइफ में क्या करते थे हम? स्कूल लाइफ में हम इस लाइफ के आने का इंतजार करते थे कि हम जब पैसे कमाएंगे, हमारे पास में पैसा होगा, फ्रीडम होगा, हम जब चाहे दोस्तों के पास जा सकेंगे, उनके यहां पर रुकने के लिए हमें मम्मी पापा से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम घूम सकेंगे, हमें तब ये चाहिए था। अब हमें वो चाहिए। हर एक फेज हसीन है, चाहे वो बचपना हो, चाहे वो जवानी और बैचलरहुड हो, या फिर शादीशुदा जिंदगी हो, हर चीज के अपने मजे हैं, हर चीज का अपना फील है। उस फील को महसूस करिए और मुस्कुराइए और खुश रहिए, हर पल को सेलिब्रेट करो। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं ये जरूरी नहीं है, मुस्कुराइए क्योंकि आप दुनिया में हैं, मुस्कुराइए क्योंकि आप स्वस्थ हैं, क्योंकि न जाने कितने सारे लोग नहीं हैं, मुस्कुराइए क्योंकि आपको भरपेट रोटी मिल रही है, न जाने कितने लोगों को नहीं मिल रही है, मुस्कुराइए क्योंकि आपके पास में कुछ पैसा है, बहुतों के पास नहीं है, मुस्कुराइए क्योंकि आपके पास में अपने हैं, उनसे पूछिए जिनके पास में अपने नहीं है, मुस्कुराइए क्योंकि आपके पास में आपका लाइफ पार्टनर है, बहुत सारे लोग आज भी अधूरे जी रहे। 50 रीजन है मुस्कुराने के और खुश होने के, और कौन से रीजन चाहिए हमको? वो इमेजिनरी आर्टिफिशियल रीजन जो कि कुछ टाइम के लिए होते हैं, तो हम गलत हैं, हमको सही डायरेक्शन में जाने की जरूरत है। मुस्कुराइए, बेवजह मुस्कुराइए, ठोकर लगे मुस्कुराइए, दुख हो मुस्कुराइए, कोई गलत करके जाए मुस्कुराइए, आपके साथ में गलत हो जाए मुस्कुराइए, आप अच्छा करिए मुस्कुराइए, आपके साथ में कोई और बुरा करके चला जाए मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी जो हंसी है, आपकी जो मुस्कुराहट है, ये आपसे है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार की बात है, यूनान के जो किंग थे वो किसी बात से अपने मंत्री से नाराज हो गए, और नाराजगी में उन्होंने मंत्री के लिए फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। कहा कि शाम को 6 बजे कैसे भी करके वजीर को फांसी दे देनी चाहिए। जब उनको फांसी की सजा दी गई थी, वजीर उस वक्त दरबार में नहीं थे। सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और जाकर के वजीर को बता दो कि शाम को ठीक 6 बजे उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। सम्राट का आदेश मानकर के सैनिक की एक टुकड़ी पहुंची वजीर के घर और उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ सैनिक घर के अंदर गए तो जाकर के देखा कि वहां पर तो एकदम जश्न का माहौल है। उस दिन वजीर का बर्थडे था, उसके घर पर रिश्तेदार थे, दोस्त थे, खूब चहल पहल थी, म्यूजिक बज रहा था, नाच गाना चल रहा था, पकवानों की खुशबू फैली हुई थी, कुल मिलाकर के माहौल बड़ा ही अच्छा था। सैनिकों ने भरी महफिल में ऐलान कर दिया कि वजीर को आज शाम के 6 बजे फांसी दे दी जाएगी, और जैसे ही ये सुना, वहां पर जितने भी लोग थे वो हैरान रह गए। फौरन म्यूजिक रुक गया, नाच गाना रुक गया, रिश्तेदार, दोस्त, परिवार वाले सभी उदास हो गए। तभी कमरे में से वजीर की आवाज गूंजी, बोले, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि उन्होंने फांसी के लिए शाम के 6 बजे तक का वक्त दिया है, तब तक तो हम सब सेलिब्रेट कर सकते, मेरा बर्थडे है आज। और उसके बाद में दोस्तों और रिश्तेदारों ने कहा, कैसी बात कर रहे हो यार, तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई और तुम जश्न मनाना चाहते हो। तो वजीर ने किसी तरह से सबको समझाया और एक बार फिर से जश्न शुरू करवाया। दोस्त उदास थे, घर वालों को बुरा लग रहा था, लेकिन वजीर की खुशी के लिए सभी लोग जश्न में शामिल हो गए। म्यूजिक बजने लगा, डांस होने लगा, खाना पीना चलने लगा। ये बात सैनिकों ने सम्राट तक पहुंचाई। सम्राट पूरा माजरा समझने के लिए वजीर के घर पे पहुंचे। वहां पहुंचकर जब उन्होंने देखा कि सब लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो भी हैरान। उन्होंने कहा, ये क्या है, तुमको पता है ना कि मैंने तुमको फांसी दी है, वजीर से उन्होंने पूछा, और तुम सेलिब्रेट कर रहे हो। वजीर बड़े ही अदब से बोला कि हुजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फांसी का वक्त शाम के 6 बजे का मुकर्रर किया, और इस तरह से मुझे शाम के 6 बजे तक का वक्त मिल गया। अगर आप मुझे ये वक्त नहीं देते तो मैं अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ये सेलिब्रेशन कैसे कर पाता। फांसी पर लटकने से पहले मेरे पास आज शाम तक का वक्त है, और मैं ये क्यों जाया करूं, इसको रोने में बिता दूं मैं। मेरे पास जितना भी वक्त है उसे मैं खुशी खुशी गुजारना चाहता हूं। वजीर ने कहा, तो ये सुनकर के राजा ने एकदम से वजीर को गले लगा लिया, कहा कि ये कमाल की बात बोली तुमने, मोटिवेट कर दिया। मतलब जिस इंसान को वक्त की कदर है, वो जिंदगी का हर एक लम्हा खुशी खुशी गुजारना चाहता है, उसको मौत कैसे दी जा सकती है, ये तो औरों के लिए इंस्पिरेशन है।
तुम्हें जीने का पूरा हक है और तुम्हारी बातों ने हमारा न सिर्फ दिल खुश किया है बल्कि हमको एक नई सीख दी है कि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए रोते रहते हैं। हमने तुमको मौत की सजा सुनाई लेकिन उसके बाद में भी तुम परेशान नहीं हुए। तुम्हारी फांसी की सजा माफ। राजा ने कहा, वजीर खुश, रिश्तेदार खुश, दोस्त खुश, फिर से जश्न, और अब रियल जश्न शुरू हो गया क्योंकि उनकी जिंदगी बच गई। समझिए आप इस चीज को कि जिंदगी खूबसूरत है लेकिन इसका हर लम्हा खुशी के साथ गुजारें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हालांकि ये जरूर है कि जिंदगी में कई एक बार ऐसा वक्त आता है जबकि बहुत ज्यादा मुश्किलें हमारे सामने होती हैं, हम परेशान हो जाते हैं और ऐसे में हम जिंदगी जीना छोड़ देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। मुश्किलों से हारे नहीं, मुस्कुराहट के साथ में उनका सामना करें। जो भी समय आपके पास में बहुत लिमिटेड है उसका पूरा सदुपयोग करें। जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली, ये हमेशा ध्यान रखें। पिज्जा घर में आता है तो जम के खाते हैं ना उसको, एंजॉय करके। वैसे खत्म होने से पहले जिंदगी को भरपूर जी लो। आपके हिस्से की जिंदगी कोई और नहीं जी सकता और ये मुश्किलें तो आती रहेंगी, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, बट ये मुस्कुराहट गई या रो करके आपने वक्त गुजारा उसका कोई सेंस नहीं है। एक दिन जाना सब नहीं है तो उसको लेकर के परेशान होने का क्या मतलब। वो होता है ना जब हम किसी ऐसे इंसान से आखिरी बार मिलते हैं जिसको हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं, और हमको पता है कि अब इससे दूर होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा, तो जो भी कुछ लम्हे हैं उनको हम भरपूर जी लें, या तो उसके साथ में या फिर परेशान होकर के रो करके बिता दें, हमारे ऊपर है। बेहतर ये होगा कि जो भी लम्हे उसके साथ में मिले हैं उनको भरपूर जिया जाए, प्यार के साथ में सारे अरमान पूरे किए जाए, क्योंकि रोना तो बाद में भी है ना, उससे दूर जाने के बाद में। बस वैसे ही जो भी लम्हे आपके पास में हैं उन्हें भरपूर जिए, ये बहुत जरूरी है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर।

बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जब ही बोलें, हमेशा नाप तोल कर बोलें। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: दोस्तों, लाइफ में बैलेंस रहना है तो सबसे पहले तो अपने खुशी और गम के इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। जैसे जब हमारा कोई काम सही हो जाता है तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वहीं अगर हमारा काम खराब हो जाए तो इतना बुरा लगता है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाते हैं। बस यही तो वो गलती है जो हम अक्सर कर बैठते हैं। अगर हम इन इमोशंस को कंट्रोल करके अपने काम पर कंसिस्टेंट रहें तो हम और हमारी कामयाबी कहीं नहीं अटकती। तो बैलेंस्ड रहिए और सुकून में रहिए।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: घायल तो यहाँ पर हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जी हाँ, चोट किसको नहीं लगती, फेलियर कौन नहीं होता, जिंदगी में परेशानियां किसकी लाइफ में नहीं आती, लेकिन उन सब का सामना करके, उसका एक्सपीरियंस करके, अपनी गलतियों से सबक लेकर, जो फिर एक नई तैयारी के साथ उठता है, फिर आगे बढ़ता है, वही इंसान है।
0: Walk Talk Radio.
2: Yeah, be cool, Ross, baby. Lost in your love.

यार बैठे नाड़ दिंदा नहीं अटेंशन मैं कोई परी महफिल च तेरा ही ख्याल लेंदे आ।

0: जिंदगी बड़ी आसान है, लेकिन इसको जीना कैसे है, बस उसको सीखने की जरूरत है। कई प्रॉब्लम्स भी आएंगी और कई खुशियां भी आएंगी, लेकिन आगे कैसे बढ़ना है, बस इसको सीखने की जरूरत है।
1: वाह।

देखो दोस्त, अगर किसी को कुछ देना हो ना, तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हो, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते।

धोखा भी तो उसी को मिलता है जो इजिली दूसरों पर भरोसा करता है। बिना किसी को जाने पहचाने किसी पर विश्वास करना जरूरी नहीं है कि आपके मुंह के सामने तारीफ करने वाले पीठ पीछे भी आपकी तारीफ करें। इसीलिए किसी पर भरोसा करने से पहले उस इंसान के बारे में जानना पहचानना बहुत जरूरी है कि वो इंसान वाकई आपको समझता है या फिर आपको यूज कर रहा है। और जिस दिन आप ये जान लोगे आप खुद को कभी भी कोसोगे नहीं।

0: वॉक टॉक,
1: छोटी सी है जिंदगी, इसे हंस कर जियो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। कोशिश ये करिए कि अपनी लाइफ के हर पल को खुशनुमा बनाइए, लेकिन ये कैसे होगा जब आप अपने माइंड को टेंशन फ्री रखेंगे। तो जो भी टेंशन आपकी लाइफ में चल रही है, उनका सलूशन ढूंढ के उनको खत्म करिए और लाइफ को खुश होकर जी लीजिए।

परिवर्तन इस संसार का नियम है। जो आया है वो जाएगा, सुबेरे हुई है शाम होगी, कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं बदलती। लेकिन अगर हम हार्डकोर हो जाते हैं, किसी बात पे अड़ जाते हैं, तो दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाती है। परिवर्तन संसार का नियम है, बदलिए और देखिए, आप खुद नहीं बदलेंगे, आप अपने आसपास की सिचुएशन को भी बदलने का मौका देंगे। संघर्ष से डरना, पीछे रह जाना, हमेशा डरते रहना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। हिम्मत करिए और फेस करिए अपनी उस प्रॉब्लम को, ऐसा फेस करिए कि प्रॉब्लम भी आपसे डर जाए, और देखिए जिन चीजों से आपको डर लग रहा था वो कितनी आसानी से दूर हो जाती हैं। कोशिश तो करके देखिए।

0: बुक रीडिंग हम में से बहुत लोगों को बहुत ही बोरिंग एस्पेक्ट लगता है, पता है क्यों? टाइम नहीं है यार, बहुत कुछ करने का है, बिजनेस है, फोन है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें करनी है और लोगों से बातें करनी है, जगहें देखनी है। किसी सफर पे अकेले निकलना, हम सब लोग ग्रुप में निकलते हैं, दोस्तों के साथ निकलते हैं, परिवार के साथ निकलते हैं, बट खुद के साथ नहीं निकलते क्योंकि डर लगता है। हम अपने दोस्त थोड़े ना है, हमें अपना अकेलापन खा जाता है। अगर खुद को फील करना है तो अकेले निकलिए सफर पे और एक किताब लेके निकलिए। लेकिन एक जो रीडिंग हैबिट होती है ना, वो आपको आपसे कनेक्ट करती है।
1: कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से।
0: किसी इंसान ने अपने 60 साल 70 साल का तजुर्बा 60 से 150 पन्ने की किताब में डाल दिया आपके लिए। अगर आप उस किताब के साथ दोस्ती कर लेंगे तो यकीन मानिए ये दोस्ती आपकी खुद से हो जाएगी, क्योंकि ये समय आपका खुद का।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: हमारी जिंदगी में कई पल ऐसे आते हैं जब हम अपने किसी न किसी अपने से कुछ न कुछ कहना चाहते हैं, पर पता नहीं क्या सोचकर नहीं कह पाते। पता नहीं क्या सोचकर हम रुक जाते हैं। झिझक हमारे अंदर रहती है कि अगर हमने सामने वाले को वो मन की बात कह दी तो उसका क्या रिएक्शन आएगा। लेकिन इस सोच के चलते वक्त बीत जाता है, इंसान भी चला जाता है और रह जाता है तो सिर्फ एक रिग्रेट कि हमने तब वो बात क्यों नहीं कही, क्योंकि अब वो इंसान ना हमारे सामने है ना हमारे पास है कि हम उससे अपने दिल की बात कह दे। दोस्त, एक दिन हम सब अपनी अपनी चुप्पियों को लेकर ऐसे ही रह जाएंगे और हमारा सबसे आखिरी ख्याल ये होगा कि हमें उस वक्त बोल देना चाहिए था। तो झिझकिए मत, अपनी बात को बेबाकी के साथ रखिए और खुश रहिए।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

अगर आपकी लाइफ में जितना स्ट्रगल होगा सफलता भी उतनी बड़ी होगी। राहों में बस कहीं तुम भटक मत जाना, चलते चलते कहीं तुम थक मत जाना। ठान लिया है ना अगर मंजिल को पाना, बस मुसाफिर बनकर चलते रहो, कदम से कदम आगे बढ़ाते रहो। क्योंकि जिंदगी में स्ट्रगल जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही बड़ी होगी। और हर इंसान सफल होने के लिए ही कड़ी मेहनत करता है, कड़ी धूप में चलता है।

0: ज़मीर ज़िंदा रख, कबीर ज़िंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर ज़िंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख।
1: जिम शिम जाता हूँ तेरे लिए, मैं बॉडी बनाता हूँ तेरे लिए, मैं अंडे शंडे खाता हूँ तेरे लिए, मैं बाइक

0: रेडियो।
1: जिंदगी में देखा जाए तो टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है।

तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज की दुनिया में बहुत से दोगले लोग पाए जाते हैं जो अगर आपके दोस्त बन जाए तो दुश्मनों की भी कमी नहीं महसूस होने देते। इसीलिए मैं आप सभी से ये गुजारिश करती हूँ कि ऐसे लोगों से बचे रहे और हमेशा अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपके लिए सिर्फ अच्छा सोचते हैं और आपको हमेशा सही राह दिखाते हैं। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहे वॉक टॉक रेडियो।

0: रेडियो।
1: कोई नामुमकिन सी बात को तू मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, तू भीड़ से अलग चलकर दिखा।

0: Radio.
1: हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।

0: रेडियो।
1: प्रयास करने का एक सबूत होती हैं गलतियां। मेहनत पर एतबार करने वालों को अपने काम में खुदा नजर आता है। ऊपर उठना है तो गिरने का भय मिटाना होगा।
0: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

रेडियो। उम्मीद कहते हैं उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए आपकी जिंदगी में। अगर आपको किसी मंजिल से मोहब्बत है, अब वो कोई काम हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई ख्वाहिश हो सकती है, तो बस उससे जुड़े रहो। उतार चढ़ाव आएंगे, अच्छा बुरा वक्त भी आएगा, लेकिन एक ना एक दिन आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। बस हारना मत है।

पता है बड़े बड़े लोगों के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो हम सबको इंस्पायर करती है। जैसे वो हमेशा आने वाले 10 साल की प्लानिंग पहले ही कर देते हैं। वो इस तरह से काम करते हैं कि उन्हें आने वाले 5 या 10 साल में कहाँ जाना है वो पहले से ही पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। अगर यही क्वालिटी आपके अंदर या हमारे अंदर आ जाए सोचो उसके बाद क्या होगा। जिन्होंने बड़े बड़े एम्पायर खड़े करे हैं, जो जीरो से हीरो बने हैं, उनके अंदर भी तो यही क्वालिटी थी।

दोस्तों, हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ के सक्सेस का इंतजार करने लगते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और कोशिश करना छोड़ देते हैं। पर हमेशा याद रखिए, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप भी सपनों का खिताब जीतना चाहते हो तो मेहनत के मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा।

0: कभी सोचा है कि हम चैलेंजेस लेने से क्यों घबराते हैं? नहीं दोस्तों, नॉलेज कभी भी एक दायरे में रहने से नहीं बढ़ती, नॉलेज तो एक्सपेरिमेंट से बढ़ती है। तो अगर आपके पास चैलेंज फेस करने का मौका मिलता है तो घबराए नहीं, क्योंकि उन्हीं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके ही आप वो गेन करेंगे जो आप दुनिया को बता पाएंगे, दुनिया को प्रूफ कर पाएंगे। याद रखे कि ज्ञान हमेशा चुनौतियों को अपनाने से ही बढ़ता है, ना कि चुनौतियों से दूर भागने से। और हो सकता है कि आपका कमाया हुआ यही ज्ञान कल के दिन किसी और के काम आ जाए।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: कोई टूटे तो उसे बनाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। सीखो, रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। अगर ये आपको आ गया ना, तो आपके रिश्ते बहुत आगे तक जाएंगे। वॉक टॉक रेडियो।

0: दोस्तों, यदि अपने सपनों को पूरा करते हुए आप कहीं इस उम्मीद में हैं कि आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानने वाला या आपका कोई खास अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके ही सपनों को पूरा करने में लग जाए, तो शायद ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई यहाँ अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। तो अपने गोल्स के लिए किसी और के भरोसे न रहें, क्योंकि आपके सक्सेस और आपके फेलियर के लिए आप खुद जिम्मेदार होते हैं।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

0: रेडियो।
1: नाम उन्हीं का होता है जो बस्ती से निकलकर हस्ती बन जाते हैं। आप कहीं भी हैं, ये मत सोचिए कि मैं लो बैकग्राउंड से हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। आप क्या बन सकते हैं ये आपकी मेहनत तय करती है। तो उठिए, मेहनत करिए और अपने एम को पाने में लग जाइए।

0: बुक रीडिंग हम में से बहुत लोगों को बहुत ही बोरिंग एस्पेक्ट लगता है, पता है क्यों? टाइम नहीं है यार, बहुत कुछ करने का है, बिजनेस है, फोन है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें करनी है और लोगों से बातें करनी है, जगहें देखनी है। किसी सफर पे अकेले निकलना, हम सब लोग ग्रुप में निकलते हैं, दोस्तों के साथ निकलते हैं, परिवार के साथ निकलते हैं, बट खुद के साथ नहीं निकलते क्योंकि डर लगता है। हम अपने दोस्त थोड़े ना है, हमें अपना अकेलापन खा जाता है। अगर खुद को फील करना है तो अकेले निकलिए सफर पे और एक किताब लेके निकलिए। लेकिन एक जो रीडिंग हैबिट होती है ना, वो आपको आपसे कनेक्ट करती है।
1: कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से।
0: किसी इंसान ने अपने 60 साल 70 साल का तजुर्बा 60 से 150 पन्ने की किताब में डाल दिया आपके लिए। अगर आप उस किताब के साथ दोस्ती कर लेंगे तो यकीन मानिए ये दोस्ती आपकी खुद से हो जाएगी, क्योंकि ये समय आपका खुद का है।

जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे ये दर्द सताएगा और उसी दर्द का फायदा बिना चूके ये डर उठाएगा, तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख के दे पाएगा कि तू हार जाएगा। डर से मत डरो यार, कुछ अलग करो और जिंदगी में कुछ बड़ा करो, इस डर को हरा दो और सब हासिल कर लो।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: मैं कर्नल अजय कोटिया हूँ। अगर आपके पास कोई अपनी स्टोरी होती है, कोई एक्सक्लूसिव फीलिंग होती है, तो आप वॉक टॉक रेडियो में आए और यहाँ पे आकर के अपना आइडिया शेयर करें और डाउनलोड करें वॉक टॉक रेडियो, बहुत सारे लोगों की अच्छी जानकारियों को जानने के लिए।
0: वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो।

हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर भानुशाली यानी कि आपका देवानंद जूनियर। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला इंस्पिरेशनल ऐप वॉक टॉक रेडियो। जल्दी से जाओ और गूगल पे डाउनलोड करो प्ले स्टोर से।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio. Walk Talk.
0: Walk Talk Radio.
2: Come, shall we do a radio talk with a radio called Say What? Walk Talk. Hi, मैं हूँ अनुष्का. I'm a singer, songwriter and rapper. और आप मुझे सुन रहे हैं Walk Talk Radio पर.
3: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी. वॉक टॉक रेडियो.
4: वॉक

वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: मैं तो थक ही गया।
1: अमिताभ बच्चन का नाम तो आपने सुना ही होगा, मैं सिर्फ उनकी आवाज निकाल रहा हूँ, उनके आसपास भी आप नहीं पहुंच सकते। मुझे लगता है कि ये आवाज निकाल के ना मैं कुछ कुछ उनके आसपास पहुंच जाता हूँ। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ कहानी वाला राजा। मेरे शो कहानी वाला में मैं कहानी आपके लिए लेकर आता हूँ, और बच्चन साहब की आवाज से आज मैंने जो शुरुआत करी है अपने शो की, वो इसीलिए क्योंकि आज की कहानी उनकी जिंदगी से जुड़ी कहानी है। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लाइफ लेसन है जो उन्हें दिया था उनके पिता ने, यानी कि महान साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन, जिनकी लिखी मधुशाला तो आपने कई बार सुनी है। उनकी जिंदगी ने कुछ ऐसा दिया अमिताभ बच्चन साहब को जो उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है। आपको पता होगा कि बच्चन साहब ने अपने जमाने में बहुत स्ट्रगल किया। जैसे बताया जाता है कि 11-12 फ्लॉप फिल्में आने के बाद उन्हें एक बड़ी फिल्म ऑफर हुई, जंजीर, या फिर ऑल इंडिया रेडियो पर जब वो गए थे रेडियो जॉकी बनने तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, या 80s के दौर का वो महानायक 90s आने के बाद अचानक से अपनी जगह बचाने के लिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा था। आप मानिए ना मानिए, एक वक्त ऐसा था जब बच्चन साहब ने अपने घर से यश चोपड़ा जी के घर तक, जो उनके पड़ोस में इलाका करते थे उस समय, नंगे पांव जाकर उनसे काम मांगा था। कहा था कि मुझे काम की सख्त जरूरत है, क्योंकि उनकी बनाई हुई कंपनी कर्ज में थी, उनकी फिल्में नहीं चल रही थी। उन्होंने म्यूजिक कैसेट्स में अपना एक वेंचर शुरू किया था, बिग बी म्यूजिक, ABCL नाम से एक कंपनी शुरू की थी जिससे वो फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे, और हर तरफ नुकसान हो रहा था और कर्ज बढ़ता जा रहा था। बच्चन साहब खुद कहते हैं कि उन्होंने उसके बाद हर एडवर्टीजमेंट के लिए हाँ कहा, क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते थे। पर ये उनके स्ट्रगल की कहानी नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। जो कहानी मैं सुना रहा हूँ वो है उस दौर की कहानी जब वो कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे, या कहिए स्कूल के दिनों की बात। शेरवुड में वो पढ़ते थे, और शेरवुड में जब थिएटर वो कर रहे थे तब उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का मौका मिला था। वो नाटक का मेन किरदार था, वो चाहते थे कि उसमें जी जान लगा दे, उस किरदार को ऐसा निभाएं कि लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाए। उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। प्ले होने से कुछ दिन पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और अमिताभ बच्चन साहब का फ्रैक्चर हो गया। वो बेड रिडन थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे, और वहां से उस वक्त निकल पाना मुमकिन नहीं था। जहां वो पढ़ते थे वहां, ये मान लीजिए कि एक पहाड़ी के छोटे से हिस्से पर ऊपर की तरफ उनका कॉलेज था, जहां लाउडस्पीकर पे कुछ होता था तो नीचे के हिस्से में आवाज आया करती थी, और नीचे उनका हॉस्पिटल था, तो उन्हें उस प्ले की आवाजें आ रही थी। उन्हें पता चल रहा था कि वो उस प्ले का हिस्सा नहीं है, कोई और उनका किरदार निभा रहा है, और ये बात उन्हें बड़ी दुख दे रही थी, परेशान कर रही थी, रोना आ रहा था। हाथ से चीज फिसल गई, आप चाहते थे वो नहीं हुआ, और जो हुआ कितना बुरा हुआ। तब बाबूजी आए उनसे मिलने, हरिवंश राय बच्चन, और उनका दुख कम करने के लिए बाबूजी ने कहा कि देखो जो हुआ वो अच्छा, और जो नहीं हुआ वो और अच्छा, क्योंकि जो हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी शामिल थी, यानी तुम जो चाहते थे वो हो गया, लेकिन जो नहीं हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी नहीं थी पर खुदा की मर्जी उसमें शामिल थी, यानी ऊपर वाले की मर्जी थी उसमें, तो वो ऊपर वाला जो है वो नहीं चाहता इसलिए वो चीज नहीं हुई है, और अगर नहीं हुई है तो कोई कारण होगा। वो कारण कब पता चलेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हमेशा ये याद रखो कि जिंदगी में जो हुआ वो अच्छा, और जो नहीं हुआ वो और अच्छा, क्योंकि जो नहीं हुआ वो खुदा की मर्जी है। याद रखिएगा, कभी भी डिसअपॉइंटमेंट, रिजेक्शन, कुछ भी अगर आपकी लाइफ में आया है उसे हैंडल करना है तो हमेशा जो हुआ वो अच्छा, जो नहीं हुआ वो और अच्छा। बड़ी छोटी सी कहानी है लेकिन बड़ा कमाल कर गई, बच्चन साहब के लिए तो करी गई, हमारे लिए भी कर जाएगी। अब सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ कहानी वाला रजत, लौटूंगा थोड़ी देर में एक और कहानी लेकर। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: मैं कर्नल अजय कोठिया हूँ। अगर आपके पास कोई अपनी स्टोरी होती है, कोई एक्सक्लूसिव फीलिंग होती है, तो आप वॉक टॉक रेडियो में आए और यहाँ पे आकर के अपना आइडिया शेयर करें और डाउनलोड करें वॉक टॉक रेडियो, बहुत सारे लोगों की अच्छी जानकारियों को जानने को।
0: वॉक टॉक

पैनिक अटैक जानते हैं क्या होता है? पैनिक अटैक ये वो चीज होती है जो आपको तब आती है जब आपकी लाइफ से कुछ छिन रहा हो, कुछ छूट रहा हो, वक्त कम पड़ गया हो, कोई डेडलाइन आ गई हो, या एक इमरजेंसी की सिचुएशन है और आपको उसे हैंडल करना है। तो अक्सर मेरा मानना है शायद 90% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पैनिक अटैक आ जाता है। कुछ ही ऐसे होते हैं जो महेंद्र सिंह धोनी की तरह कैप्टन कूल रह पाते हैं, इतने सारे शोर, इतनी सारी प्रेशर में भी अपना खेल स्मूथ और ओरिजिनल रख पाते हैं। सिचुएशन से जिनकी जिंदगी पर फर्क नहीं पड़ता वो कैप्टन कूल कहलाते हैं। असल आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं कहानी वाला रजत। शो चल रहा है कहानी वाला, और अब जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये उस सिचुएशन की है जब पैनिक अटैक आता है ना, तो हमें पता नहीं होता करना क्या है। हम यहां वहां हेडलेस चिकन की तरह घूमते तो रहते हैं, लेकिन वो डेडलाइन कैसे मीट करेंगे, उसका सोल्यूशन क्या होगा, इसके बारे में सोल्यूशन नहीं मिलता। तो उसे लेकर मैं एक कहानी लाया हूं। ये कहानी एक किसान की कहानी, किसान की घड़ी की कहानी, सुनिए। तो एक दिन की बात है, एक किसान अपने खेत के पास जो अनाज की कोठी थी उसमें काम कर रहा था। काम करने के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वो घड़ी उसके पिताजी ने जब पहली बार वो खेत पर हल चलाने आया था, जब उसने पहली बार अच्छा काम करके दिखाया था, तो पिताजी ने खुश होकर वो घड़ी खरीद के उसे दी थी। जब किसान को घड़ी मिली थी ना, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ था, क्योंकि उस जमाने में घड़ी एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल था, हर एक के हाथ में नहीं होती थी। जिसके हाथ में है उसका वक्त अच्छा चल रहा है, ये बात वो घड़ी साबित कर देती थी। घड़ी को लेकर एक छोटा सा किस्सा है कि दो लोग थे, दो दोस्त थे, दोनों ने हाथ में घड़ी पहनी थी। तो एक के हाथ में एक मामूली सी घड़ी थी, दूसरे के हाथ में एक बहुत स्टाइलिश ब्रांडेड घड़ी। तो दूसरे ने, जो दोस्त था जिसने मामूली घड़ी पहनी थी, उसने मजाक में कहा कि यार देख,

आखिरकार वो बिल्कुल निराश हो गया और कोठी के बाहर आ गया। वहां देखा तो कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसने बच्चों को पास बुलाकर अपने पिताजी की वो घड़ी खोजने का काम सौंपा। उसने कहा कि जो घड़ी ढूंढ देगा उसको मैं इनाम दूंगा। इनाम का लालच था तो बच्चे लगे घड़ी ढूंढ। कोठी के अंदर जाकर बच्चों ने घड़ी ढूंढने के लिए अपनी जान लगा दी। इधर उधर यहाँ वहां हर जगह खोजने पर घड़ी नहीं मिली। बच्चे थक गए, उन्होंने हार मान ली। किसान ने अब घड़ी मिलने की उम्मीद खो दी थी। बच्चों के जाने के बाद वो कोठरी में उदास बैठा रहा। तभी एक बच्चा वापस आया। उसने किसान से बोला कि वो एक बार फिर से ढूंढने की कोशिश करेगा। किसान ने कहा ढूंढ लो, पर अब मुझे देर हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। तो किसान को जाने की जल्दी भी थी। बच्चा जो था वो कोठी के अंदर गया और कुछ देर बाद वो अकेला ही था उस कोठी में। उस वक्त कोठी बंद की अंधेरे में कुछ देर बाद वो वहां से बाहर आया और उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने वो घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ और उसने पूछा कि आखिर तुम कैसे ढूंढ पाए इसे, जब कोई और बच्चा नहीं ढूंढ पाया, मैं भी नहीं ढूंढ पाया, तो तुम्हें कैसे मिली। पूछने पर बच्चे ने कहा कि कोठी के अंदर जाकर ना वो एकदम चुपचाप अंधेरे में जाकर एक कोने में खड़ा हो गया और बस ध्यान लगाकर सुनने लगा। उस घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे उसका इंतजार कर रहा था और आखिर वो सुनाई दी। उसी डायरेक्शन में ढूंढा तो पता चला कि अनाज का एक बोरा था। उस बोरे के पीछे की तरफ एक आला था, एक शेल्फ। उस शेल्फ में वो घड़ी पहुंच गई थी किसी तरह से। किसान ने बच्चे को शाबाशी दी, इनाम दिया और उस बच्चे ने किसान की उस घड़ी के साथ में हमें दे दिया एक छोटा सा लेसन, एक कहानी के फॉर्म में। शांति, पीस हमारे मन और हमारे दिमाग दोनों को ना फोकस्ड फॉर्म में ले आती है, उसे एकाग्र कर देती है। जब हमारे मन की स्थिति एकाग्रचित होंगे, जब हम एक डायरेक्शन पर फोकस कर पाएंगे, तब जिंदगी में फैसले लेना आसान होगा। ऐसे ही जब कोई पैनिक सिचुएशन आएगी उसमें जब आप फोकस्ड होकर डिसीजन लेंगे, आपका जो मन है वो आपके काबू में रहेगा। अगर अंदर एक शांति होगी तो आप घड़ी की टिक टिक सुन पाएंगे, आप वो सही डायरेक्शन ढूंढ पाएंगे जहां पहुंच कर आप अपनी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। तो जिंदगी में परेशानियां बहुत आएंगी, जिंदगी में बहुत मुश्किलें आएंगी, जिंदगी में ऐसे पैनिक सिचुएशंस बहुत आएंगी जब आपको समझ नहीं आएगा करना क्या है। दो मिनट रुक कर अपने मन के अंदर ना वो एकाग्र चित्त वाला भाव लाने की कोशिश करना, वो शांति, वो पीस लाने की कोशिश करना, देन यू विल फाइंड आउट द वे, यू विल फाइंड आउट द डायरेक्शन वे टू गो। समझे? सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो, यहाँ पर हम जिंदगी बदलने की कहानियां सुना रहे हैं आपको। शो का नाम है कहानी वाला, मैं हूँ कहानी वाला रजत और आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: हाय, लगी तो नहीं?
1: आई एम गुड, आई एम गुड।
0: चलो मैं सिखाती हूँ।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: बुक रीडिंग हम में से बहुत लोगों को बहुत ही बोरिंग एस्पेक्ट लगता है, पता है क्यों? टाइम नहीं है यार, बहुत कुछ करने का है। बिजनेस है, फोन है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें करनी है और लोगों से बातें करनी है, जगहें देखनी है। किसी सफर पे अकेले निकलना, हम सब लोग ग्रुप में निकलते हैं, दोस्तों के साथ निकलते हैं, परिवार के साथ निकलते हैं, बट खुद के साथ नहीं निकलते क्योंकि डर लगता है। हम अपने दोस्त थोड़े ना है, हमें अपना अकेलापन खा जाता है। अगर खुद को फील करना है तो अकेले निकलिए सफर पे और एक किताब लेके निकलिए। लेकिन एक जो रीडिंग हैबिट होती है ना, वो आपको आपसे कनेक्ट करती है।
2: कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से।
1: किसी इंसान ने अपने 60 साल 70 साल का तजुर्बा 60 से 150 पन्ने की किताब में डाल दिया आपके लिए। अगर आप उस किताब के साथ दोस्ती कर लेंगे तो यकीन मानिए ये दोस्ती आपकी खुद से हो जाएगी, क्योंकि ये समय आपका खुद का है।

कभी कभी कुछ बातें जो किस्से कहानियों में नहीं समझ आती वो शेर शायरी कविताएं समझा देती हैं। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, एक ऐसी जगह जहां पर जिंदगी बदलने की छोटी सी कोशिश की जाती है। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूँ कहानी वाला रजत, शो का नाम कहानी वाला। किस्से कहानियां सुनाने के साथ साथ मुझे लगा कि आज कुछ शायरियां आपको सुना दूं जो जिंदगी पर लिखी हैं कुछ महान शायरों ने, द ग्रेट राइटर्स, जैसे जॉन एलिया साहब। उन्होंने लिखा, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। बहुत कम शब्दों में बड़ी बात कही। बशीर बद्र साहब ने लिखा है कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। और इमाम बख्श साहब ने कुछ ऐसा लिखा है जो आप बरसों से सुनते आए लेकिन आपको नाम नहीं पता था कि लिखा किसने। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ये फिल्मों में डायलॉग्स थे ना, ऐसा लगता था किसी फिल्मी राइटर ने लिखा होगा। और फिराक गोरखपुरी साहब, एक बहुत ही फेमस लिरिसिस्ट भी रहे, वो लिखते हैं कि मौत का भी इलाज हो शायद, जिंदगी का कोई इलाज नहीं है। बहरहाल ये तो जिंदगी के नाम लिखी वो शायरियां हैं जो जिंदगी की डेफिनेशन बनाने में मदद करती हैं। तो वाकई मौत का इलाज है, जिंदगी का नहीं है। जिंदगी अपने दर्द देती है, अपने रास्ते भी बताती है, फिर भी हम इसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसी कोशिश में कहानी सुन लेते हैं। ये बेंगलुरु की कहानी। बेंगलुरु के गोल्फ क्लब में कैडी, आपको पता है गोल्फ में कैडी क्या होता है? कैडी होता है खिलाड़ियों के पीछे बैग जो होता है ना उनका, वो गोल्फ जिसमें सारी स्टिक्स होती हैं, उनको उठाकर चलने वाला लड़का। तो जो कैडी का काम करता था उस लड़के की कहानी है। उसका नाम है चिन्ना स्वामी मनियप्पा। तो ये लड़का जो कैडी का काम करता है, जिसके माँ बाप उस गोल्फ क्लब में मजदूरी किया करते थे, उसने कमाल करके दिखाया और वही कमाल कहानी बनी। कमाल था कि चिन्ना स्वामी मनियप्पा ने 11 अक्टूबर 2009 को $12.5 लाख की हीरो होंडा इंडियन ओपन चैंपियनशिप जीतकर सबका सर चकरा दिया था। जब डीएलएफ गुड़गांव गोल्फ क्लब के मैदान पर चिन्ना स्वामी ने साउथ कोरिया के सबसे प्रेस्टीजियस खिलाड़ी ली सुंग को हराया ना, तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ। कर्नाटक के चिन्ना स्वामी मनियप्पा के बिना, उन्होंने बिना किसी कोच के अपनी मेहनत और लगन के दम पर यह कॉम्पिटिशन जीत कर ये साबित कर दिया कि अगर आप पूरी लगन, पूरे डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस के साथ कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो वो कर लेते हैं। कमाल की बात है कि चिन्ना स्वामी आज तक कर्नाटक गोल्फ क्लब के मेंबर नहीं बन पाए। जैसा मैंने बताया था कि उनके माँ बाप कर्नाटक के उसी गोल्फ क्लब के मजदूर हुआ करते थे और आज बेटा वहाँ गोल्फ प्रैक्टिस करता है। चिन्ना स्वामी ने गोल्फ की बारीकियां कैडी का काम करते करते सीखी और वो प्रोफेशनल गोल्फर बन गए। मतलब ये वही हुआ कि कोई लड़का है जो किसी वर्कशॉप में मैकेनिक है और एक दिन उसी ने वो गाड़ी बनाई और वो उस वर्कशॉप को अब ओन करता है और वो गाड़ियां भी बनाता है। भाई हमें गर्व है एक ऐसे हिंदुस्तानी पर जिसने एक इंस्पायर किया हर एक शख्स को और बताया कि आर्थिक मजबूरी, फाइनेंशियल सेटबैक्स अगर आपकी लाइफ में रहे हैं तो वो चैलेंजेस नहीं है, आप उसको बड़े आराम से पार कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर एक कैडी गोल्फर बन सकता है, $12.5 लाख का एक गोल्फ चैंपियनशिप जीत सकता है, तो आप उससे बहुत बेटर सिचुएशन में हैं अपनी जिंदगी में। आप सोचिए आप क्या नहीं कर सकते। मुझे यकीन है आप कर सकते हैं, बस किसी ने आपको यह एहसास नहीं दिलाया कभी कि आप बहुत स्पेशल हैं। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, यकीन मानिए। मैं हूं कहानी वाला रजत, कहानियां सुनाता हूं इसीलिए ताकि उन कहानियों में से कुछ ऐसा आपकी जिंदगी में चला जाए जो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग थॉट बनकर सामने आए। एक लाइफ चेंजिंग थॉट भी काफी है, शुरुआत तो बस सोच से होती है जनाब। सुधरे वॉक टॉक रेडियो, कहानियां सुनाऊंगा, कहानियों के साथ साथ दूंगा कुछ ऐसी एडवाइस जो शायद आपकी जिंदगी बदलने में आपके काम आए। मैं हूं कहानी वाला रजत, ये है वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो।
2: वॉक टॉक रेडियो। फ्रेंड्स, इफ यू आर गेटिंग स्केयर्ड एवरी टाइम व्हाइल टेकिंग अ स्टेप, यू विल नेवर बी एबल टू टेक दैट स्टेप। द ओनली थिंग व्हिच इज होल्डिंग यू बैक is that the scenario which you've created in your mind that I can't do it, which stops you. I would advise you, don't be your enemy. Just take that step forward, because as you move in your life, whatever the problems comes in, solutions are also there. It's only courage, determination and hardship which is needed. There is no easy path for everyone or anyone. It is the journey which has to be there. And the steps which has to be taken up. So take that step.
3: Walk Talk

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं जो जब अपनी टीनेज में रहे होंगे तो हर छोटी छोटी बात पर हमने अपने घर पे कितनी जिद की होगी ना। कभी आइसक्रीम वाले का भौंपू सुनते ही रोज आइसक्रीम खाने की जिद, बाजार गए तो महंगे अच्छे कपड़े लेने की जिद, हर बार नए नए जूते खरीदने की जिद। तब माँ बाप की कही बातों के मायने हमें समझ नहीं आते थे, लेकिन आज जब हम उस जगह पहुंचते हैं, उस स्टेज पर पहुंचते हैं, तो वो सारी बातें हम समझ पाते हैं। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि जो बात आपको पसंद नहीं आ रही वो आपके लिए अच्छी नहीं है, क्या पता उसी बात में आपका ही भला छुपा हो।
0: Tune in for a better life.
2: Tune in for a better life.
3: On the stage, right now.

कुछ कहानियां इसलिए नहीं जरूरी होती कि वो आपकी जिंदगी में कुछ ऐड कर देती हैं या आपको एक जिंदगी का लेवल अप करने का मौका देती हैं। कुछ कहानियां

इसलिए जरूरी होती हैं क्योंकि वो आपको वो चीजें याद दिलाती हैं जो आप भूल गए, और शायद उन्हें याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं कहानी वाला रजत, और कहानियां सुनाना मेरा काम है, ये तो जानते ही हैं आप। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो आपकी जिंदगी से जुड़ी कहानियां होती हैं। तो अगली कहानी देखते हैं। अगली कहानी है एक घंटा। शाम का वक्त था, ऑफिस से घर आने के बाद पापा जो थे वो बहुत ज्यादा बिजी थे ऑफिस की फाइल्स में, तो टेबल पर बैठ गए और पूरा ध्यान फाइल्स में था। तभी उनका 7 साल का बेटा उनके पास आया, रात के 9 बजे थे। बोला, पापा क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो बिना फाइलों से नजर हटाए पापा बिजी थे, पापा ने बोला, हाँ पूछो। उसने, पापा आप एक घंटे का कितना कमा लेते हैं? बहुत अजीब सवाल था, पापा को गुस्सा आ गया। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इससे, क्यों बेकार के सवाल पूछ के मेरा टाइम खराब कर रहे हो, देखते नहीं मैं काम कर रहा हूँ? पापा मैं बस जानना चाहता हूँ, प्लीज बताइए ना आप एक घंटे का कितना कमा लेते हैं। तो बेटा जिद करने लगा। पापा ने कहा, 500 रुपए। ओ 500 रुपए? तो बेटा सर झुकाकर कुछ सोचने लगा, फिर उठकर बोला, पापा आप मुझे 300 रुपए उधार दे देंगे? ये सुनना था कि पापा को गुस्सा आ गया। वो पापा को बोले, बेटे को बोले कि अच्छा तो तुम इसीलिए मुझसे मेरी सैलरी पूछ रहे थे क्योंकि तुम्हें कोई खिलौना खरीदना है या कोई चीज लेनी है? अब एक शब्द बिना कहे ना अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मैं इतनी मेहनत से पैसे इसलिए नहीं कमाता कि तुम्हारे फालतू डिमांड्स पूरी करता रहूं, बस जाओ। बेटे का चेहरा उतर गया, भारी कदमों से वो वहां से चला गया। पापा कुछ देर तक तो बेटे की बात पर नाराज रहे और काम में लग गए। काम खत्म हुआ, तकरीबन रात के 11 बज चुके थे। पापा की नाराजगी भी खत्म हो गई, उनको लगा कि बेटे के लिए वो काफी रूड रहे। वो सोचने लगे कि बेटे ने यार सच में कोई जरूरी चीज हो सकता है उसे खरीदनी हो तभी 300 रुपए मांगे, क्योंकि वो पहले कभी पैसे नहीं मांगता इस तरह से। फिर वो अपने बेटे के कमरे में गए, देखा तो उनका जो बेटा था वो बिस्तर पर लेटा था। तो उन्होंने पूछा कि सो गए क्या बेटा? तो उठकर बोला, नहीं पापा मैं तो जागा हूँ। तो बोले कि बेटा मैं काम की वजह से थोड़ा परेशान था, पर तुम बुरा मत मानना, मेरा गुस्सा तुम पर निकल गया, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ये 300 रुपए लो, जो टाइम उस टाइम तुम मुझसे मांग रहे थे ना ये लो। उसने कहा कि थैंक यू पापा। 300 रुपए एक तरफ रखकर उसने अपने तकिए के नीचे से कुछ नोट निकाले और उन्हें गिनने लगा। पापा ने देखा कि इसके पास पैसे हैं फिर भी मांग रहा है, फिर गुस्सा हो गया। बोले, जब तुम्हारे पास पहले से पैसे थे तो मुझसे क्यों मांग रहे थे? तो उसने कहा, पापा मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे ना, अब हैं, ये सब मिला के और वो 300 रुपए मिला के पापा पूरे 500 हो गए, ये लीजिए 500 रुपए, क्या मैं आपका एक घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज आप कल घर जल्दी आना ना, अपन डिनर साथ में करेंगे, और काम मत करना कम से कम उसे एक घंटे में। बेटे की बात सुन के पापा शॉक थे, हम पैसे कमाने की जद्दोजहद में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारी जो फैमिली है ये पीछे छूट जाती है, हमारे पास अपने फैमिली हमारे रिलेटिव्स के साथ बिताने के लिए वक्त नहीं है, ये वक्त धीरे धीरे हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है और ये बीता समय कभी लौटेगा नहीं। ऑफिस में हमारा रिप्लेसमेंट आसानी से मिल जाता है लेकिन फैमिली में क्या कोई हमें रिप्लेस कर पाएगा? अब सोचिए कि आपको किसे ज्यादा वक्त देना है, ऑफिस, फैमिली, पैसे या काम, सोचिएगा इस पर। मैं हूँ कहानी वाला रजत, कुछ कहानियां आपको सुनाता हूँ, बस यूं ही बैठे रहिए और मेरे साथ मेरी कहानियां एंजॉय करते रहिए वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ, स्टे ट्यून्ड ऑन वॉक टॉक रेडियो।

बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जब ही बोलें, हमेशा नाप तोल कर बोलें। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: जब भी आपकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आए तो थोड़ा सा ठहर जाना, एक लंबी सी गहरी सांस तुम लेना, अपने अच्छे से अच्छे वक्त को उस वक्त तुम याद करना, अपनी मंजिल को तुम याद करना, खुद से वादा तुमने जो किया है उस वादे पर ध्यान करना। अगर सपने बड़े हैं तो मुश्किलें भी बड़ी होंगी, बस इरादे पक्के होने चाहिए। इसलिए जिंदगी में जब भी अप्स एंड डाउन्स आए तो थोड़ा सा खुद के बारे में जरूर सोचिएगा।
1: कपड़े तो पहन ले
2: दादी मिल गई से।
1: मतलब ये उन लोगों में से है।
3: कल्चर की तो कुछ परवाह कर।
4: मैं आपको समझता हूँ,
3: कैसा ही होगा।
4: लड़की मेरा चल

अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आज की आखिरी कहानी है। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं कहानी वाला रजत। कहानी वाला शो पर लेकर आया हूं एक कहानी एक लड़के की। ये कहानी ये सिखाती है हमको कि जिंदगी में ना नथिंग कैन बी, यू कैन नेवर बी लेट फॉर समथिंग। इन अ वे इट्स नेवर टू लेट। कैसे, कहानी सुनते हैं। एक लड़का जो जब 5 साल का था तब उसके फादर की डेथ हो गई। माँ नौकरी पर जाती थी तो वो घर पर खाना बनाता। अब वो लड़का 7th क्लास तक स्कूल गया, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी, माँ ने दूसरी शादी कर ली और ये जो लड़का था ये घर से भाग गया। तो शुरुआती जिंदगी में तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। कभी स्टीम बोट में नौकरी की, फिर एक इंश्योरेंस कंपनी में सेल्समैन बनने की कोशिश की, फिर रेल रोड में फायरमैन का काम किया। 16 साल की उम्र हुई ना तो अपनी उम्र गलत बताकर वो आर्मी में शामिल हो गया, क्यूबा में नौकरी करने लगे। 1-2 साल में वहां से भी उनकी छुट्टी हुई। 20 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और बताते हैं कि कुछ साल बाद ही उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर चली गई क्योंकि उनके पास काम नहीं था, वो बेरोजगार हो गए थे या फिर पैसे कमाने के जरिए नहीं थे। उनकी एक बेटी भी थी, वो चाहते थे कि बेटी को अपने पास रखे चाहे वाइफ उन्हें छोड़ जाए तो भी। तो उन्होंने अपनी बेटी को ही किडनैप करने की कोशिश की, बट दैट वॉज अ फेल्ड अटेम्प्ट। अब सवाल ये हुआ कि उन्हें अपनी वाइफ को मनाना पड़ा कि तुम वापस घर आ जाओ। तुम्हारी वाइफ ने कहा तुम काम शुरू करो, तो उनके पास करने के लिए काम नहीं था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या काम करें। फाइनली उन्हें पता चला कि वो एक ही चीज सबसे अच्छी करते हैं और वो खाना बनाने का काम, जो बचपन में किया करते थे ना वो, और उसमें भी चिकन बहुत कमाल का बनाते हैं। तो 40 साल की उम्र में वो चिकन बनाते थे और जो उनके सर्विस स्टेशन पे या जहां पर वो चिकन बनाते थे वहां रुकता था वो उनका चिकन जरूर खाता था। अब तब वो पॉपुलर तो हो रहे थे पर उनके पास कोई रेस्टोरेंट नहीं था। चिकन की क्वालिटी ऐसी कमाल की बनाने लगे, उनकी बिक्री बढ़ने लगी और फिर वो 142-सीटर होटल के मेन शेफ बन गए। तब ये बहुत बड़ी बात थी। वहीं पर उन्होंने चिकन पकाते पकाते एक नया तरीका इजाद किया जिसे प्रेशर फ्रायर चिकन कहने लगे लोग। अब तक आपको समझ आ चुका होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि 60 साल की उम्र ना रिटायरमेंट की उम्र होती है। इस शख्स ने अपनी रिटायरमेंट की उम्र से पहले कई बार हाथ पांव मारे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, कोई एक ऊंचाई पर पहुंचने के लिए, पर किस्मत ने उनका साथ ही नहीं दिया। फिर एक मौका आया, एक मौका ऐसा आया कि उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी ना वेस्ट हो गई है, वो अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाए, एक शेफ रहे उससे ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए। तब उनकी जो वाइफ थी वो उन्हें छोड़कर जा चुकी थी और पैसा जो था वो कमाया, लेकिन जब नौकरी छोड़ी तो उन्हें सरकार की तरफ से $105 की एक पेंशन मिली, जिसके बाद ये साबित हो गया कि यार मैंने शायद अपनी जिंदगी में वो किया ही नहीं जो मुझे करना था। वो एक आम सी जिंदगी, एक बिलो एवरेज जिंदगी लेकर अपनी जिंदगी खत्म करने वाले थे। उनको लग रहा था कि बस अब मैं अपनी वसीयत लिख देता हूँ, जो मेरे पास है वो मेरी फैमिली को मिल जाए, मेरा कोई भरोसा नहीं। 60 साल की उम्र में उन्होंने जब अपनी वसीयत लिखने का फैसला किया, ही रोट दैट डॉक्यूमेंट, और लिखते लिखते उन्होंने लिखा कि कितना मुश्किल था अपनी वाइफ को उनके लिए मनाना, फिर भी वो मनाकर वापस लाए सिर्फ इस दम पर कि वो बहुत अच्छे कुक थे, तो उन्हें खाना बनाना तो आता था, उन्होंने तो चिकन की नई रेसिपी भी इजाद की थी, क्यों ना वो उसे बेचे। वही लिखते लिखते उन्हें जब ख्याल आया तो उन्होंने रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खटखटाने शुरू किए। ऐसे ही रूमर्स भी हैं और लोग कहते भी हैं कि उन्होंने 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खटखटाए थे और हर एक ने उन्हें मना कर दिया था कि नहीं, हम आपकी रेसिपी नहीं ले सकते। धीरे धीरे करके जब वो इतनी बार ना सुनते गए तब फाइनली एक रेस्टोरेंट, सोचिए 1000 rejections झेलने के बाद एक रेस्टोरेंट ऐसा था जो तैयार हुआ कि हाँ हम आपकी रेसिपी को ट्राई करें। उन्होंने वो चिकन वहां पर सेल किया और वो पॉपुलर हो गया। इस बिजनेस की शुरुआत, इस चिकन को बेचने की शुरुआत उन्होंने केंटकी में की थी। उनका बिजनेस जबरदस्त पॉपुलैरिटी के आसमान को छू रहा था। केंटकी के जो गवर्नर थे रूबी लफून, 1935 में उन्होंने इस शख्स को एक उपाधि दी, एक टाइटल दिया, केंटकी कर्नल, क्योंकि कभी ये फौज में रहे थे। तो केंटकी कर्नल सॉन्डर्स ने शुरुआत की KFC की, केंटकी फ्राइड चिकन। आपने देखा होगा ना वो KFC के बकेट्स जो लोग लिए बैठे रहते हैं KFC के कॉर्नर्स पर, जिनका वो लिप स्मैकिंग टेस्ट, वो डिलिशियस स्वाद, वो जो भी, अगर आप चिकन लवर हैं तो यू मस्ट बी नोइंग दैट थिंग, दैट जूसी फ्राइड चिकन जो वहां पर सर्व होता है, इट इज कम्प्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एक ऐसी यूनिक रेसिपी है जिसकी वजह से KFC की जब शुरुआत हुई तब, मतलब आप सोचिए 1964 में $2 मिलियन में KFC का हिस्सा कर्नल ने 1964 में बेचा था,
कर्नल ने कनाडा में अपनी फ्रेंचाइजी बेची और खूब पैसा कमाया, मतलब इतना पैसा जो बाकी की पूरी जिंदगी के लिए काफी था, लेकिन इस चीज की शुरुआत 60 साल की उम्र में हुई। ये कितनी बड़ी बात है कि इस शख्स ने अपनी ढलती हुई उम्र को अपने हार जाने का कारण नहीं माना और जीतने के लिए कोशिश करी उस चीज के दम पर जो उसके लिए सबसे खास थी, कुकिंग। ऐसे ही कोई एक आपकी यूनिक स्ट्रेंथ होगी जो आपके लिए खास है, जो आपको खास बना सकती है। आप बस उसका इस्तेमाल करके देखिए, मैं कह रहा हूं जिंदगी बदल जाएगी। हमने सुनी है आज कर्नल सॉन्डर्स की कहानी। इनका पूरा नाम है हार्लन डेविड सॉन्डर्स। कर्नल इन्हें एक उपनाम मिला था, एक तरह का टाइटल मिला था फ्रॉम द गवर्नर ऑफ केंचुकी, जहां पर इन्होंने शुरुआत की थी केंचुकी फ्राइड चिकन की। केंचुकी को KFC यानी केंचुकी फ्राइड चिकन के लिए हमेशा सदियों तक जाना जाएगा। 5 साल की उम्र में वो लड़का जब अपने घर पे खाना बनाता था, जब उसकी माँ नौकरी पर जाती थी, तब उसने नहीं सोचा था कि एक दिन यही चीज उसके इतने काम आएगी जो KFC बनकर दुनिया के सामने आएगी। हमें नहीं पता कि पजल के कौन से पीस से कौन सी पिक्चर बनने वाली है, पर ये छोटे छोटे हिस्से, वो छोटी छोटी कोशिशें हैं जो हम कर रहे हैं अपनी जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी बनाने की। वॉक टॉक रेडियो पर कहानी वाला के साथ आज कहानियों का सफर बस यहीं तक। मेरे जाने का वक्त हो चला है, मैं भी चलता हूँ, फिर भी यहीं मिलता हूँ वॉक टॉक रेडियो पर, जो आपकी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहा है। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूँ कहानी वाला रजत, जल्द फिर मिलेंगे।

नशीली वो रातों में, गहरी सी अपनी वो यादों में मैं रहा, अनकही सी बातों में, मीठी सी वो मुलाकातों में मैं रहा। बहुत सहा मेरे सारे जख्मों को दिए तूने बहुत दवा, लोग साले अपनों को देते रहते बहुत धक्का, बहुत खफा इन सपनों से बहुत खफा। तू भूल जाती झपकों में अपनों को, बंद कमरों में बैठा के देता हूँ गर्मों को, कुछ शर्तों पे रहना होता लड़कों को, कहते कि दर्द नहीं होता सारे मर्दों को, पर वो रोते अपने

ना रहता, काश बहाने ना देता तो तू शायद आज मेरे साथ ही रहता। काश ये काश का जिक्र ना रहता, सियाही भी पन्नों से बस कफा रहता, और आज भी खुद को मैं कहता ही रहता तू साथ में।

0: Radio.
1: हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।

0: Fucked up, tune in for a better life. Fucked up, fucked up, tune in for a better life.
1: अवसर उसी को मिलता है जिसमें काबिलियत होती है। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते।
2: Mock Duck Radio, tune in for a better life.

0: जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही छोटे छोटे एफर्ट से आपका गोल धीरे धीरे पूरा होता है। हर दिन की मेहनत काउंट होती है। एक एक दिन जब आपने अपनी नींद को सैक्रिफाइस किया, आपके दोस्त घूम रहे थे लेकिन आप अपने गोल को पाने के लिए काम कर रहे थे, यही तो टेस्ट है मेरे दोस्त। सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन पूरे मन से, पूरी लगन से लगे रहना, और जब आखिरकार वो गोल आप अचीव करोगे तो ट्रस्ट मी, माउंट एवरेस्ट चढ़ना और वो गोल अचीव करना एक ही जैसी फीलिंग होगी।
1: वॉक टॉक सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो।
2: कुछ करके दिखाने की चाह रखने वाले रास्ते में आने वाले पहाड़ों से नहीं डरते। कुछ ऐसी ही बुलंद हौसले रखने वाली एक इंडियन, जिनके बारे में हमने अपनी किताबों में भी पढ़ा है, अनसंग चैंपियंस में आज मैं उनकी कहानी लाई हूँ, जिन्होंने एवरेस्ट के साथ साथ हमारे दिलों पे भी एक हिम्मत की छाप छोड़ दी। कहानी है बछेंद्री पाल की, उत्तराखंड में जन्मी एक ऑर्डिनरी लेडी की, जिन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट से हम देशवासियों को सिखाया कि जो आपकी ट्रू कॉलिंग है वो आपको किसी भी तरह से अपने पास बुला ही लेती है। बछेंद्री जी का जन्म भारत की देवभूमि यानी उत्तराखंड में नाकोरी गांव में 1954 में हुआ था। उनके पिताजी श्री कृष्ण सिंह पाल जी एक किराने की दुकान चलाते थे। बछेंद्री जी एक बैकवर्ड गांव से बिलोंग करती हैं। आज के टाइम पे इतनी अवेयरनेस के बाद भी गाँव के लोगों की मेंटेलिटी थोड़ा नैरो ही होती है, तो सोचिए उस समय कितना मुश्किल रहा होगा अपने मन की इच्छा पूरी करना और सोसाइटी के संग चलना। बछेंद्री जी को पढ़ाई से बहुत प्यार था। गांव में लड़कों को तो पढ़ाया जाता था, पर लड़कियों के लिए 10वीं पार करना भी बहुत ही बड़ी बात हो जाती थी। बछेंद्री जी को लोगों ने पढ़ने से बहुत रोका टोका, फिर भी बछेंद्री जी जिद्दी थी कि उन्हें पढ़ना है, तो उन्होंने घर पे खुद से ही पढ़ना शुरू कर दिया। साथ ही घर के कामों में भी हाथ बटाती थी। अपनी एक कजन सिस्टर

जिन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की थी उनसे बुक्स लेके बछेंद्री घर पे खुद से पढ़ाई करती थी। उनका डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्टेबल नहीं थी। फाइनेंशियल स्ट्रेन कम करने और अपनी पढ़ाई सपोर्ट करने के लिए वो 5-5 रुपए के लिए लोगों के कपड़े सिला करती थी। एजुकेशनल बैकग्राउंड उनके गांव में उनके जानने वालों का कुछ भी नहीं था, तो उन्हें बिल्कुल गाइडेंस नहीं मिली। कोई बताने वाला तक नहीं था कि उनको क्या कोर्स करना चाहिए, और उस टाइम तो इंटरनेट भी नहीं होता था। बछेंद्री जी भी बढ़ रही थी डॉक्टर बनने की तरफ, लेकिन फिर उन्हें रियलाइज होने लगा कि उनका इंक्लिनेशन स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा है। वो कॉलेज में भी स्पोर्ट्स चैंपियन थी और फिर उन्होंने अपनी एजुकेशन लाइन शिफ्ट करी। बछेंद्री ने एमए किया संस्कृत में और देहरादून के डीएवी कॉलेज से बीएड भी किया, और वो अपने गांव से पहली लड़की थी जिन्होंने डिग्री हासिल की थी। एजुकेशन खत्म होने के बाद बछेंद्री जॉब ढूंढ रही थी और एक साल तक बेरोजगार बैठी रही। उनको एमए बीएड के अराउंड ही जॉब चाहिए थी। कहते हैं कि वो बहुत कठिन समय था उनके लिए, क्योंकि इतनी मुश्किलों से लड़कर पैसे इकट्ठा करके पढ़ाई पूरी करी, लेकिन उसके बावजूद उनको अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। लोगों से ताने भी पड़ने लगे कि पढ़ाई लिखाई करके घर पे बैठी हैं। उस दौरान बछेंद्री की मुलाकात कर्नल प्रेमचंद से हुई, जो एक रिनाउंड माउंटेनियर थे। उन्होंने बछेंद्री को सजेस्ट किया कि तुम स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड हो और पढ़ी लिखी भी हो, तो तुम माउंटेनियरिंग को एज अ करियर क्यों नहीं चुन लेती। वो माउंटेनियरिंग का कोर्स करने के लिए बछेंद्री को कहीं जाने की जरूरत भी नहीं थी, उनके घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो बछेंद्री ने अप्लाई किया और बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करना शुरू कर दिया। इसी बीच बछेंद्री को एक चिट्ठी आई इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन से कि वो प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए सिलेक्ट हो गई हैं, और बछेंद्री को उसका विलिंगनेस का रिस्पॉन्स भेजना था, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। लकीली उन्हें वहां से फिर एक रिमाइंडर आया, तो अब वो चिट्ठी लेके गई अपने कोच के पास, और उन्होंने समझाया बछेंद्री को कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारा डोर नॉक कर रही है, इसे मत जाने दो। यहाँ से संघर्ष शुरू हुआ उनका एवरेस्ट चढ़ने की तैयारी का। बछेंद्री कहती हैं कि उस समय वो 100% फोकस्ड हो चुकी थी और उन्हें एवरेस्ट किसी भी कीमत पे चढ़ना था। जब हम कुछ भी बड़ा करने लगते हैं तो हमारे रास्तों में मुश्किलें तो आती ही हैं। जब उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी तो गांव के लोग उन्हें ताने सुनाने लगे। पिताजी की तरफ से उनको ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, लेकिन उनकी माँ को नहीं पसंद था उनका ऐसे पहाड़ों पे जॉगिंग जाना, लोगों के ताने सुनना। इसलिए कोई ये ना बोले कि बछेंद्री टाइम वेस्ट कर रही है, वो पहाड़ों से लकड़ियाँ चुनके ले आती थी। इससे दोनों काम हो जाते थे, उनकी प्रैक्टिस भी और घर का काम भी। बछेंद्री काफी जिद्दी थी अपने गोल्स के लिए। जैसे उन्हें पढ़ाई पूरी करनी थी वो उनका पहला गोल था, वो पूरा करके दिखाया। फिर उन्हें एवरेस्ट पार करना था, वो भी पूरी लगन के साथ कर रही थी। लाइफ में ना आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे दूर चली जाती है। जैसे ही आप उसे जाने देते हो और फोकस शिफ्ट करते हो तो वो चीज आपके लिए वर्कआउट कर जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ बछेंद्री के साथ। जैसे ही प्रैक्टिस का थोड़ा फोकस शिफ्ट हुआ, उनको आया टाटा से जॉब ऑफर। उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। उनके छोटे से गांव में ऐसा ऑफर आना, वो भी किसी लड़की के लिए, बहुत ही सम्मान की बात थी। गांव की तरफ से जो सोशल प्रेशर पड़ रहा था उस पे रोक लग गई थी। फिर उन्होंने अपनी ट्रू कॉलिंग सुनी। निकल पड़ी बछेंद्री एवरेस्ट के सफर पे। चढ़ते हुए भी सफर बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन वो ऑलरेडी लाइफ का एक एवरेस्ट पार कर चुकी थी, पढ़ाई करके जॉब करके। तो इस एवरेस्ट को पार करने के लिए उनमें पूरी क्षमता थी। एवरेस्ट चढ़ते समय एक बार आधी रात को उन्हें एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज आई। पहले उन्हें लगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा, लेकिन फिर समझ आया कि उनकी बॉडी पे इतना वेट पड़ रहा है और वो एवलांच के नीचे दब गई हैं। एक पल के लिए उन्होंने मान लिया कि अब बच पाना मुश्किल है, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उनके टेंट पार्टनर के पास नाइफ था और नाइफ के कारण दोनों बच गए। अपनी जान बचाकर उन्होंने अपने साथ वालों को भी वहां से निकाला। आसान तो बिल्कुल भी नहीं था यह सफर। माउंटेनियरिंग बहुत ब्रेवरी स्पोर्ट है
और छोटे से गांव से आई हमारी आज की चैंपियन ने माउंट एवरेस्ट के साथ साथ लाइफ के भी एवरेस्ट का सामना किया और पद्मश्री, पद्मभूषण और अर्जुन अवार्ड्स जैसे अवार्ड्स अपने नाम किए। देश के हर उस सिटीजन के लिए जिन्हें लगता है कि उनके पास एक्सपोजर नहीं है लाइफ में, उन सब के लिए एक मिसाल बनी बछेंद्री पाल। ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानी। ऐसी ही कुछ और कहानियों के साथ लौटेंगे ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: हम हमेशा उपवास रखते हैं खाने का, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? उपवास लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध, गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। सिर्फ अपनी बॉडी को डिटॉक्स मत करिए, अपने मन को भी करिए। अपने दिमाग से जो आपके बेकार थॉट्स हैं, उनको भी निकालिए।
0: Tune in for a better life.

दोस्तों, हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ के सक्सेस का इंतजार करने लगते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और कोशिश करना छोड़ देते हैं। पर हमेशा याद रखिए, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप भी सपनों का खिताब जीतना चाहते हो तो मेहनत के मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा।

तुझको जो तू अब समा गई है आके दीवानी तू है मगन हूँ मैं भी इसमें शामिल दिया है सब कुछ पर कर ना पाया कुछ भी हासिल ना हो कुछ टचवुड वो भी जाए तो ठहरे कातिल था मेरा सब कुछ अब आंसू

छोटी बातों से डरे, उजाले जिनके मुंह पे तो ये सूरज भी जले। मांगी मन्नतें भी काफी, जन्नत है जहाँ की, तू अमर रहे सदा ही, बातें बाकी। सफर में काटे काफी गम को हम बांटे, तो ये दिल क्यों मांगे माफी। क्यों खुश होता तेरी खुशी के साथ, क्यों

कई लोगों को जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। अपनी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी प्यारी लगती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो वो भी करते हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

मेरे दोस्त, सब्र करना पड़े तो कर लेना, दुनिया से लड़ना पड़े तो लड़ लेना, उगते सूरज को वो सलाम जरूर करेंगे, तुझे वक्त लगे अगर वो सूरज बनने में, तू चाहे वो वक्त ले ले।

कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है।

बात है 2018 वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप्स की। सबकी नजरें थी ट्रैक पे भागते हुए खिलाड़ियों पर और उन्हीं खिलाड़ियों में भाग रही थी हिंदुस्तान की बेटी, जिसको उस समय शायद ही कोई जानता था, या यूं कहें कि शायद ही किसी को पता था कि ऐसी कोई लड़की भारत को वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में रिप्रेजेंट करने भी गई है। रेस खत्म होते ही इतिहास रचने की खुशी मनाती हुई और भारत का नाम ऊंचा करने वाली उस चैंपियन की बात कर रही हूँ मैं आज आपके साथ कविता, और शो का नाम है अनसंग चैंपियंस, जहां मैं आपके लिए रोज लेकर आती हूं दुनिया के ऐसे दमदार चैंपियंस की कहानियां, जिन्होंने अपने सपनों के सामने दुनिया की किसी भी मुश्किल को कभी ना आने दिया और मिसाल बने हम सबके लिए अपने जोश और जुनून से। आज हम शो में बात करेंगे भारत के लिए 2018 में IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला गोल्ड लाकर इतिहास रचने वाली हिमा दास की। अब तक हिमा दास कई सारे मेडल्स देश के लिए ला चुकी हैं और ये असम की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हिमा ने मात्र 18 साल की उम्र में इतिहास रचने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब तक भारत का नाम बहुत से इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में रोशन करके हमें गर्व करने का मौका दिया है। हिमा के मन में बचपन से इंडियन जर्सी पहनने का जुनून था। वो सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श मानती थी और ये अक्सर उनको अपने इंटरव्यूज में कहते सुना गया है। हिमा की माने तो सचिन ही उनकी इंस्पिरेशन है, जिनके कारण उनके मन में इंडियन जर्सी पहनने का सपना घर कर गया था। यूं तो हिमा खेलना सिर्फ इसलिए चाहती थी क्योंकि वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थी और साथ ही साथ उनको लगता था कि स्पोर्ट्स की वजह से उनकी अच्छी नौकरी लग जाएगी। पर जब उन्होंने सचिन को जर्सी में देखा तो वो इंडियन जर्सी पहनना उनका लक्ष्य बन गया था। वो एक ऐसा सपना था जो हिमा किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती थी। हिमा दास के जन्म और घर की बात करें तो हिमा का जन्म 9 जनवरी 2000 को असम के नागांव जिले के ढिंग गांव में हुआ था और इसी वजह से वो ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जानी जाती हैं। हिमा एक फार्मर्स की फैमिली से बिलोंग करती हैं और वो 6 भाई बहन हैं। हिमा को बचपन से स्पोर्ट्स में रुचि थी। उनके पापा भी फुटबॉल प्लेयर रहे हैं और काफी क्लब्स के लिए वो फुटबॉल खेलते थे, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो इसे आगे ना ले जा सके। उनसे इंस्पायर होकर ही हिमा ने फुटबॉल खेलना शुरू किया और यही एक कारण है कि उनको अपने पिता का हमेशा सपोर्ट मिलता रहा, क्योंकि वो खुद एक स्पोर्ट्समैन थे और हिमा को समझ सकते थे। हिमा फुटबॉल तो अच्छा खेलती ही थी और उसमें आगे भी जाना चाहती थी, पर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने फुटबॉल छोड़कर ट्रैक स्पोर्ट्स में अपना नाम बनाया? चलो ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हिमा ने ट्रैक गेम्स को ज्वाइन किया और इतनी छोटी सी उम्र में इतना काम कर लिया। हिमा को स्पोर्ट्स में खूब दिलचस्पी थी और वो स्कूल के हर एक इवेंट में भी भाग लेती थी। रेसिंग, शॉट पुट, लॉन्ग जम्प और बाकी और सब में गोल्ड हासिल करती थी, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि वो एक अद्भुत खिलाड़ी थी। हिमा के पास ना ही फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा ग्राउंड होता था और ना ही अच्छे जूते, इसलिए वो अपने खेत में गांव के बच्चों के साथ खेला करती थी। कुछ समय बाद स्कूलों में प्रतियोगिताएं खत्म हो गईं। तब उनके स्कूल में एक योगा का नोटिस आया। ये एक महीने का कैंप था और सुबह 4:30 बजे से 6 बजे तक हिमा रोज इसमें जाती थी। हिमा योग को जिस डिसिप्लिन से फॉलो किया करती थी, उसी डिसिप्लिन को देख के हिमा के पीटी टीचर ने उन्हें एथलीट बनने का सुझाव दिया। उनका सुझाव मानकर हिमा ने इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। जिस तरह के बैकग्राउंड से वो आती थी, उन्हें डर था कि इस मुकाबले में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगी, पर पहुंचने पर हिमा को रियलाइज हुआ कि उनके पास भागने के लिए स्पाइक्स वाले जूते भी नहीं थे। हिमा ने जूतों की परवाह ना करते हुए रेस में पार्टिसिपेट किया और वो अपने साधारण जूतों में भागी और नागांव डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर हिमा दास डिस्ट्रिक्ट खेलती रही और उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। ऐसे स्ट्रगल करते करते धीरे धीरे हिमा ने अपने सपने को पाने की शुरुआत की। अब हिमा ने डिस्ट्रिक्ट लेवल में अपना नाम बना लिया था, पर ऐसे जाने माने डिस्ट्रिक्ट के मैचेस तो साल में एक ही बार होते थे, तो अब सवाल ये था कि बाकी के समय क्या करें। ढिंग गांव में इतने प्रैक्टिस के ज्यादा साधन तो नहीं थे, इसलिए उन्होंने दोबारा से क्लब में जाकर फुटबॉल खेलना शुरू किया,
ताकि उनका खेल से संबंध बना रहे। कुछ समय बाद 2017 आसाम गवर्नमेंट की तरफ से एक महीने के लिए फंड रेजिंग कैंप का आयोजन किया गया, तो हिमा ने उसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने वहां मन लगाकर अभ्यास किया। हिमा के इस लगन और अभ्यास को फंड रेजिंग कैंप में दो शख्स गौर से नोटिस कर रहे थे। वो शख्स थे निपुण दास जी और अभिजीत जी। उन्होंने हिमा को गुवाहाटी आने को कहा क्योंकि वो हिमा की प्रतिभा जान गए थे। इस सुझाव को लेकर हिमा वापस अपने घर गई और उन्होंने अपने पेरेंट्स से इस विषय पर चर्चा की। इस बात से उनकी माँ ज्यादा खुश नहीं थी, पर उनके पापा का उनको पूरा सहयोग था। उनके पिता रंजीत दास जी जानते थे कि एक प्लेयर का दिल कैसा होता है। वो हिमा का जज्बा समझते थे और आपको तो पता है माँ का दिल कैसा नरम होता है। वो नहीं चाहती थी कि हिमा उनसे दूर जाए, पर हिमा के जुनून ने अपनी माँ को भी मना ही लिया। जेब में सिर्फ 350 रुपए लेकर हिमा अपने गांव से गुवाहाटी को चली। हिमा मात्र 17 साल की थी। उनका इस जगह रहने का कोई ठिकाना न था। काफी दिक्कतों के बाद निपुण दास जी और अभिजीत जी ने गुवाहाटी के एक डॉक्टर के सहयोग से हिमा के रहने और खाने का इंतजाम किया। गुवाहाटी में 2 महीने प्रैक्टिस करने के बाद हिमा को खेलने के लिए हैदराबाद जाने का मौका मिला। उनका जो बचपन से सपना था कि वो एक दिन इंडियन जर्सी पहने, वो आखिर पूरा हो गया था। हैदराबाद में जूनियर यूथ एशियन चैंपियनशिप की एक सिलेक्शन लिस्ट निकली और उसमें बैंकॉक जाने की टीम में हिमा का भी नाम आया। हिमा फिर बैंकॉक गई। वहाँ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, पर हिमा वहाँ 6th पोजीशन पे आई। साहिर सी बात है, वहाँ का कंपटीशन लेवल भी बहुत हायर रहा होगा, लेकिन हिमा 6th आने से बिल्कुल निराश नहीं हुई, क्योंकि वो जूनियर यूथ एशिया चैंपियनशिप में जरूर 6th आई थी, पर इंडिया से तो वो पहली लड़की थी जिसका सिलेक्शन हुआ था। और इस बात की खुशी हिमा को कई ज्यादा थी। और इस इंडियन जर्सी पहनने का और इंडिया को रिप्रेजेंट करने की इच्छा का पहला कदम पूरा हुआ। जूनियर यूथ एशियन चैंपियनशिप के बाद हिमा वापस गुवाहाटी जाकर प्रैक्टिस करने लगी। तब उनके कोच निपुण जी ने हिमा को कहा कि अब सीनियर लेवल की तैयारियां शुरू करो। तो 18 साल की हिमा ने सीनियर लेवल की ट्रेनिंग शुरू कर दी और चेन्नई जाकर सीनियर लेवल पर परफॉर्म किया। उस कॉम्पिटिशन में हिमा सबसे छोटी थी और अपने से उम्र और तजुर्बे में बड़े प्रतियोगियों को देख के हिमा डर सी गई और ठीक परफॉर्म नहीं कर पाई। उस परफॉर्मेंस को देखकर उनके कोच से उनको काफी डांट पड़ी और डांट का असर कुछ ऐसा हुआ कि अगले दिन हिमा ने फिर गोल्ड लाके दिखाया। इस रेस को फेडरेशन के मेंबर्स भी परख रहे थे। कुछ समय बाद निपुण दास जी को फेडरेशन मेंबर्स ने कॉल करके कहा कि हिमा को इंडियन टीम भेज दो। हिमा की लाइफ का ये एक टर्निंग पॉइंट था। हिमा काफी खुश थी। हिमा ने लगन के साथ इंडियन टीम के सीनियर से ट्रेनिंग ली। पटियाला, पोलैंड और भी अलग अलग जगहों पर जाकर ट्रेनिंग ली और इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में बैक टू बैक इतिहास रचा। उनकी इस उपलब्धि के बाद एडिडास जैसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड ने उनको घर आते ही अपना ब्रांड एम्बेसडर तो बनाया ही, साथ ही साथ उनके नाम के कस्टमाइज शूज भी बनवाए। जरा सोचिए कैसा रहा होगा वो पल एक लड़की के लिए जिसके लिए बचपन में कभी शूज अफोर्ड करना ही एक स्ट्रगल था, जो अपने साधारण जूतों पर एडिडास लिखा करती थी। आज वो उसी ब्रांड की एम्बेसडर बन गई हैं। 2019 का जुलाई का महीना हिमा का रहा। 20 दिनों के अंतराल में 5 गोल्ड मेडल, एक बड़ी उपलब्धि हिमा ने देश के लिए हासिल करी। हिमा दास ने अपने हुनर के बलबूते पर फेमिना, वोग जैसी मैगजीन के कवर पर अपना चमकता चेहरा पहुंचाया। ये वो मैगजीन्स हैं जिसपे खूबसूरती के मानक तय होते हैं। ऐसे मुकाम पर हिमा सिर्फ अपनी काबिलियत से पहुंची हैं। हिमा दास की कहानी हमें बताती है कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करने की ठान लें, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको नहीं रोक सकती। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ खुद को पहचानने की और मेहनत की। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये इंस्पायरिंग स्टोरी आपको पसंद आई होगी। फिर से लाऊंगी कल एक और ऐसी कहानी। मैं कविता, शो का नाम है अनसंग चैंपियंस और सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: जिस दिन आपको पता चल गया कि आप कर सकते हैं, तो फिर आप कर लेंगे।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

तो दोस्तों, अगर हम कर्म की बात करें तो वो हमेशा कहता है कि जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही वो लौटकर आपके पास आएगा। तो अगर कभी भी आपकी जिंदगी में ऐसा हो कि आप किसी के साथ अच्छा करने चले हैं और वो आपके साथ हमेशा बुरा ही करता है, तो अच्छा करने से पहले कभी मत सोचना कि ये मेरे साथ बुरा करता है तो मैं भी इसके साथ बुरा ही करूँगा। क्योंकि जो भी हो, कर्म हमेशा लौट कर आता है। और जीवन में एक ऐसा समय आता है जब कुछ लोग पछताते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत या धोखा क्यों किया। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहें मॉक टॉक रेडियो।

लोगों को जानने से अच्छा है खुद को जानने की कोशिश करो। दोस्तों, दूसरों में कमियां निकालने से पहले खुद की कमियों को पहचानो और उनको ठीक करने की कोशिश करो। यस, जिंदगी यही कहती है कि हम लोग अपने आसपास हर चीज में कमी, दोष और सब चीजें ढूंढते रहते हैं, बट जो खुद नहीं देख पाते खुद में, अगर हम खुद में झांक के देखते हैं और खुद से बात करते हैं तो हमें पता चलता है हम सब में कमी है, बट हम सब लोग एडमिट नहीं करते हैं। तो जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए अपने आप को पहचानिए और उसी को कुछ चेंज करके एक नए रूप में जीने की शुरुआत करिए।

0: रेडियो।
1: क्यों इतना डरते हो जिंदगी से? क्या होगा, कैसे होगा, जो भी होगा आगे तजुर्बा ही होगा, और तजुर्बा ही इंसान को जीना सिखलाता है।
0: Thank you.

हाय, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में, जिसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। कोशिश इतनी सी है कि आपकी जिंदगी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ पाए। है वैसे, मुझे पता है, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले लोगों में से एक हैं। लेकिन स्टिल कभी कभी होता है ना ऐसा कि बहुत ज्यादा अपन लो फील करते हैं, या हमको थोड़ा सा लगता है कि यार हमारे साथ में कुछ भी सही क्यों नहीं हो रहा है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन कितनी जल्दी हार मानता है, किसमें कितना पेशेंस है। और जितना ज्यादा पेशेंस है ना हमारे अंदर, या जितना ज्यादा हम कहते ना कि धैर्य रखने वाले लोगों में से हैं, उतनी ही हमारी जिंदगी इजी गोइंग रहेगी। क्योंकि ऐसे लोगों को हड़बड़ी नहीं होती। हालांकि बहुत ज्यादा धैर्य भी नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत तो जल्दबाजी भी होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं वही वाली चीज कि हर एक चीज स्वादानुसार होनी चाहिए, मिर्च हो या नमक। हद से ज्यादा चीनी भी चीज को कड़वा बना सकती है, भले ही उसका टेस्ट मीठा होता हो। तो वो वाली चीज है, पेशेंस भी एक लिमिट का होना चाहिए, और इंपेशेंट भी अगर आप हैं तो एक लिमिट तक होना चाहिए। इंपेशेंट कुछ चीजों को लेकर के होना चाहिए। आप यूं ही हर एक चीज को ओके ठीक है आ जाएगी, कल को आपको एकदम से ब्लड की जरूरत है और आप आराम से धैर्य से बैठे हैं, कभी कोई आएगा तो मिल जाए, वो नहीं चल सकता ना। ऑपरेशन अगर जो अभी होना है तो ब्लड अभी चाहिए, वहां आपका धैर्य काम नहीं आएगा। वहां पर आपको जल्दबाजी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी।

हमारी रूटीन लाइफ को वापस लेकर के आ रहे हैं, और यही तो एक तरीका है। ये कोरोना जैसी चुनौतियां हैं, इनके साथ में अपनी जिंदगी में किस तरह से एडजस्ट करना है, ये हम ऑटोमेटिकली सीख रहे हैं, क्योंकि ये हमारी नीड बन चुकी है। ठीक वैसे ही हमारी मंजिल तक पहुंचने में जो मुश्किलें हैं, उनके साथ में हमको आगे बढ़ना सीखना होगा। हम ये चाहे कि नहीं यार मुश्किलें ही नहीं आए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। जिस रास्ते में कोई मोड़ नहीं होते, वो रास्ता कहीं के लिए नहीं जाता। तो अगर जो कहीं जाना है, तो रास्ते में मोड़ तो होंगे ही होंगे। रास्ते के गड्ढे भी जरूरी हैं जनाब, वरना अक्सर हम अपना ध्यान इधर उधर भटका लेते हैं। तो आज एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं कि ये जो चैलेंजेस हैं, ये हमारी जिंदगी में कितने जरूरी हैं, वरना उनका क्या असर हो सकता है। तो जापानीज का क्या है कि इनको ना मछलियां सालों से बहुत ज्यादा पसंद है। इनका जो फूड है, इनकी जो डाइट है, उसका एक ऐसा पार्ट है जिनको ये शामिल करते ही करते हैं। और जो फ्रेश मछलियां हैं, उनका टेस्ट इन लोगों को बहुत पसंद है। लेकिन होता है ना कि जब आप बहुत ज्यादा चीजों को खाते हैं या जानते हैं, तो उनका टेस्ट आप यूं पकड़ लेते हैं। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है। तो ऐसा ही इनके साथ में भी हुआ कि जो मछलियां हैं, उनको मछुआरे समुद्र के बीच में से जाकर के लेके आते थे, लेकिन जब तक वो आती थी, शहर के अंदर आती थी, तब तक वो मर जाती थी, बासी हो गई। अब समस्या ये है कि वो फ्रेश मछलियों वाला टेस्ट तो उसमें आ ही नहीं रहा, तो लोगों ने बासी मछलियां खरीदना कम कर दिया। तो जो मछुआरे थे, उन्होंने दिमाग लगाया कि क्या किया जाए ताकि लोग और ज्यादा खरीदें, ये बासी ना हो। तो मछुआरों ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, हमारी बोट में फ्रीजर लगा देते हैं, वो मछलियां पकड़ते उनको फ्रीजर में डाल देते हैं, ताकि वो लंबे समय तक ताजी बनी रहती। लेकिन लोगों ने फ्रीजर में रखी मछलियों का भी टेस्ट पहचान लिया, उनको वो फ्रेश वाली मिली नहीं रही, उतनी टेस्टी नहीं है ये। तो ऐसे में लोगों ने उनको भी खरीदना कम कर दिया। मछुआरे फिर से एक बार टेंशन में कि अब क्या करें। फिर से उनकी पूरी मीटिंग हुई, बाकायदा सोचा, आइडियाज लिए गए, एक सोल्यूशन मिल गया। सभी मछुआरों ने अपनी बोट में एक फिश टैंक बनवा लिया, मछलियां पकड़ते और उन्हें पानी से भरे हुए फिश टैंक में डाल देते, और इस तरह से ताजी और जिंदा मछलियां बाजार तक लाने लगे। लेकिन अब इसमें भी समस्या, फिश टैंक में मछलियां कुछ देर तक तो इधर उधर चलती, लेकिन जगह ज्यादा नहीं थी तो एक ही जगह रुक जाती। अब जब तक मछुआरे किनारे तक पहुंचते, वो सांस तो ले रही होती, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली समुद्र में वो खुले में इधर उधर घूम रही हैं, तो न तो उनके अंदर वो एनर्जी है, तो उनका जो टेस्ट है वो भी बदल जाता, और लोगों ने चक करके ये भी अंतर पहचान लिया कि ये ताजी तो नहीं है। मछुआरों को समझ नहीं आ रहा ये क्या करें, क्या टेंशन में आ गए वो, पूरा उनका एसोसिएशन, पूरा यूनियन बैठ करके डिसाइड कर रहा था कि क्या करें क्या करें, लोगों को बोलें कि हम फ्रेश नहीं दे पाएंगे। तो अचानक से एक छोटा सा बच्चा साइड से बोला, उसने कहा इसकी जरूरत ही नहीं है, आपको प्रॉब्लम ये है ना कि फिश टैंक में मछलियां एक जगह रुक जाती हैं और इस वजह से उनकी उनका जो टेस्ट है वो बदल जाता है। अब एक काम करिए, एक छोटी सी शार्क लीजिए और उन मछलियों के बीच में डाल दीजिए। लोगों ने ये सुना, उनको आइडिया अच्छा लगा, और उसके बाद में उन्होंने यही किया। उन्होंने फिश टैंक में मछलियां डालने के बाद एक शार्क उसमें डालनी शुरू कर दी। अब वो जो शार्क थी, वो फिश टैंक के अंदर की कुछ मछलियों को खा तो जाती थी, थोड़ा सा नुकसान होता था, लेकिन जो मछलियां किनारे तक पहुंचती थी, उनमें एनर्जी और ताजगी बनी रहती थी, क्योंकि शार्क है, उनसे बचने के लिए मछलियां भागती रहती थी, शार्क उनके पीछे, वो इधर उधर भाग रही है, डर के मारे पूरे समय इधर उधर मछलियां भाग रही हैं। यानी कि टैंक में है वो, लेकिन फिर भी फ्रेश है, और लोगों ने बड़े चाव से उनको लेना, खरीदना और खाना शुरू किया। उस छोटे से बच्चे की सजेशन की वजह से जापानीज मछुआरे जो थे, उन्होंने अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया। और यही तो हमारी जिंदगी में होता है। हमारी जिंदगी में भी ये शार्क के रूप में जो चैलेंजेस है ना, ये जब तक नहीं आते, हम ऐसे ही बेजान पड़े रहते हैं। सांस तो ले रहे होते हैं, लेकिन जिंदा दिली हमें होती ही नहीं है, एक ही रूटीन में बंद के रह जाते हैं, 9 से 5। ये 9 से 5 इतना ज्यादा बोरिंग क्यों माना जाता है? क्योंकि लाइफ में कुछ और डिफरेंट है नहीं। सुबह उठकर के ऑफिस जाना, ऑफिस में पूरे दिन काम करना, शाम को वापस आना, सो जाना, खाना खाके, और वही रिपीट करना। इसीलिए तो वीकेंड्स दिए गए, ताकि हमारा रूटीन थोड़ा सा चेंज होता रहे, हम हमारी जिंदगी में कुछ नया करें, उन मछलियों की तरह बस एक धर्रे पर ना चले। और यही ट्राई करिए, चैलेंजेस हैं तो उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एट द सेम टाइम एक जगह मत पड़े रहिए, बोरिंग हो जाती है जिंदगी, और छोटी सी जिंदगी, एंजॉय करो इसको जो पल मिले। कुछ लोग होते हैं ना जो एक्स्ट्रा टाइम ऑफिस में देते हैं, बैठे हैं आराम से, वीडियोस देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। जरूरत ही नहीं है, बाहर इतनी बड़ी दुनिया है, बाहर इतने सारे लोग हैं, निकलिए, दुनिया को देखिए, जिए। वैसे भी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट हम ऑफिस के अंदर ही दे रहे हैं, 24 घंटे में से हर दिन 9 घंटे ऑफिस के अंदर। इससे ज्यादा वक्त मत दो, स्मार्टली काम करो, टाइम पर काम निपटाओ और निकलो,
और ये चैलेंजेस जो है इनको एक्सेप्ट करो, इनके साथ में रहना सीखो, इनके साथ में आगे बढ़ना सीखो, और उसके बाद में जो जीत होगी वो हमारी होगी।

ये हमें क्यों लगता है कि चैलेंजेस सिर्फ हमारी जिंदगी में है? जितनी बड़ी मंजिल उतने बड़े चैलेंजेस। जो हमारी मंजिल है ना, वो भी उस समय पर जाते ही सफर हो जाएगा, यकीन मानिए। अगले एपिसोड में बात करेंगे इसी बारे में, मंजिल और सफर में क्या डिफरेंस है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। स्टे ट्यून्ड।

0: आपके और आपकी सफलता के बीच में आपकी सोच खड़ी है। अगर आपने खुद को काबू करना सीख लिया तो आपके सपने भी कबूल हो जाएंगे।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

दोस्तों, हमारी जिंदगी कभी भी कुछ मिनटों की मेहमान नहीं होती जो गिनती के पलों में बदल जाए। पर हाँ, अगर आप अपने फैसले कुछ मिनटों के आधार पर लेते हैं तो वो आपकी जिंदगी को बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है, अपनी लाइफ के छोटे या बड़े फैसले हमेशा सोच समझ कर लेने चाहिए, तभी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

वेलकम बैक, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो, एक कोशिश छोटी सी आपको मोटिवेट रखने की, आपको पॉजिटिव रखने की, और आपकी जिंदगी की जो समस्याएं हैं कोशिश करते हैं कि उनका हल थोड़ा सा मिल सके, ताकि आपकी जो स्माइल है ये खूबसूरत वाली, ये यूं ही बरकरार रहे, आपका चेहरा खिला खिला रहे और सेल्फी के लिए एक्स्ट्रा पाउट की जरूरत ना पड़े, ऐसे ही स्माइल आप कर सकें। सो बेसिकली आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मंजिल और सफर के बीच के अंतर की। एक बात समझिए, एक छोटी सी बात, कि हमारा जो आज है ये भी एक दिन कल हो जाएगा, और हमारा आने वाला जो कल है वो भी किसी दिन आज होगा, और वो भी गुजरा हुआ कल हो जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई मीन यही तो है पूरा प्रोसेस। हर किसी ने लाइफ में ना अपने टारगेट सेट कर रखे हैं, गोल सेट कर रखा है। हमको लगता है कि हमारी मंजिल, एक तो ना मुझे मंजिल वाली चीजें कभी समझ नहीं आती, क्योंकि इस दुनिया में ना ट्रस्ट मी मंजिल जैसी कोई चीज है ही नहीं। मैं दुनिया से बिल्कुल ही उलट बोल रहा हूं, लेकिन अब मैं प्रूव करूंगा मेरी बात को कि मंजिल जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये एक इमेजिनरी दुनिया है जो हमने सोच ली है कि मंजिल मिल जाएगी, मंजिल मिल जाएगी। मुकाम बोल सकते हो आप, लेकिन मंजिल नहीं है। मंजिल का मतलब ये हुआ कि अब आपका सफर हो गया है खत्म, आप पहुंच गए आपको जहां जाना था। सपोज आपको दूध लेने के लिए जाना है और आपको दुकान तक जाना है, आपकी दुकान है आपकी मंजिल, उसके बाद खत्म हो गया। आगे का प्रोसेस चलिए ठीक है, इग्नोर कर दीजिए। ऑफिस से आपको घर पहुंचना है, घर आपकी मंजिल है, आप घर पहुंच गए, आप घर रुक जाइए, सफर का अंत हो गया, ये है मंजिल। तो क्या हमारी जिंदगी में सच में कोई मंजिल है? नहीं, मुकाम बोल सकते हैं हम उसको, क्योंकि मुकाम किसी भी चीज का एंड पॉइंट नहीं है। मुकाम के साथ में भी जर्नी तो कंटिन्यू है। मंजिल हम क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हर किसी की जिंदगी में ना हमने अलग अलग कुछ गोल सेट किए होते हैं। किसी इंसान का गोल है कि उसके अकाउंट में कम से कम इतना पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए, किसी इंसान का गोल है कि उसको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, किसी इंसान का गोल है कि उसको मैनेजरियल पोजीशन पर जाना है, मैनेजर बनना है, किसी इंसान का गोल कुछ और है। हर किसी के गोल अलग है, वो गोल तक पहुंचने को हम मंजिल मिलना तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एंड पॉइंट नहीं है। इनफैक्ट वहां से एक अलग सफर शुरू होता है, थोड़ा ज्यादा जिम्मेदार सफर शुरू होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। सपोज मेरा सपना है कि मुझे अपना एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना है जो कि इस शहर में सबसे बड़ा हो, जिसके बहुत सारे कंज्यूमर्स हों। मैंने बिजनेस खड़ा कर लिया, मैं वहां तक पहुंच गया, क्या मुझे मेरी मंजिल मिल गई? नहीं, सफर तो जाने मन अब शुरू हुआ है, बड़े चैलेंजेस तो अब आएंगे। छोटे रास्तों पर आप आराम से चल सकते हैं, बड़े रास्तों पर ज्यादा केयरफुली चलना पड़ता है। वही वाली बात कि जितने बड़े गोल्स होते हैं उतने बड़े चैलेंजेस भी होते हैं। तो मंजिल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में, मुकाम होते हैं। तो मुकाम के पीछे भागिए, मंजिल के पीछे नहीं, क्योंकि आप वहां पहुंचे और वहां पहुंचते ही आपके फिर गोल बदल जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा ना, जैसे हम जब छोटे होते हैं तो बड़े छोटे छोटे से गोल्स होते हैं हमारे, बड़ी ही छोटी छोटी सी मंजिल होती है। जब तक हमारी जॉब नहीं लगी होती, हमको लगता है 15-20 हज़ार की कोई जॉब मिल जाए जिसमें हम हमारे खर्चे पूरे कर सकें, होता ना, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, मुझे मेरे घर वालों से पैसे नहीं लेना पड़े, मेरी जिम की फीस, मेरा पेट्रोल, मेरा ये वो, हमारी बस इतनी सी ख्वाहिश होती है। जब 15-20 हज़ार रुपए की जॉब मिल जाती है, फिर हमको लगता है यार 50-60 हज़ार तो हूं कम से कम, यहां तक पहुंचते हैं तो फिर लाखों में होने लगता है। धीरे धीरे धीरे धीरे इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, और जैसे जैसे हम हमारे गोल्स को अचीव करते जाते हैं, हमारे नए गोल सेट होते जाते हैं। कभी हमारा सपना सिर्फ साइकिल का होता था, फिर बाइक का हो गया जब साइकिल मिल गई, तो फिर जब बाइक मिल गई तो कार का हो गया, जब कार मिल गई तो फिर ऑडी BMW का हो गया। बदलती जाती हैं चीजें, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि इच्छाओं को खत्म करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इच्छाएं खत्म हो गई ना तो जिंदगी से रंग चले जाएंगे। हमारी इच्छाएं हैं और हम उन्हीं को पाने की या पूरी करने की कोशिश करते हैं, और वही तो फन है जिंदगी का। वरना एक पेड़ को देख लीजिए ना, बड़ा होता है, एक ही जगह रहता है और वैसा ही खत्म हो जाता है, सालों साल तक वही चलता रहता है प्रोसेस। उसकी जिंदगी में डिफरेंट कुछ नहीं है, सीजन आता है, फल आते हैं, लोगों को फल देता है, वापस पतझड़। हमारी जिंदगी, हम इंसानों की जिंदगी अलग है। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी में इतने सारे रंग हैं। जानवर हैं, उनके कोई ऐसे गोल्स नहीं है, उनका बस एक सर्कल चल रहा है, एक साइकिल चल रहा है कि उनको खाना है, सोना है, खाना है, सोना है। मतलब इस एपिसोड में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। एक तो मंजिल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में, मंजिल है ही नहीं कोई, पूरी जिंदगी सफर में जाती है और फाइनली गुजर जाते हैं हम। मिली है आज तक किसी को मंजिल? आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से जो मंजिल है सफर वहां पर भी है।
रास्तों की तरह जो एंड पॉइंट सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, जहां सड़क खत्म हो रही है, आपको लग रहा है कि ये खत्म है यहां पर सड़क, वहां जैसे ही पहुंचते हैं तो वो एंड पॉइंट और आगे बढ़ जाता है और सड़क कहीं और खत्म हो रही होती है, बट असल में सड़क कहीं खत्म होती ही नहीं। यही बात है कि मंजिल जैसी कोई चीज नहीं है, मुकाम होते हैं और उन मुकाम की लड़ाई है हमारी ये पूरी जिंदगी जो हम लड़ते हैं, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं। दूसरा, इच्छाएं खत्म नहीं होनी चाहिए, जीने का मजा ना खत्म हो जाता है, आप प्रोग्रेस करना बंद कर देते हैं, आप आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। लोग इसको लालच बोलते हैं, बट मुझे लगता है ये लालच नहीं है, ये पुश है। हम अगर जो सोचेंगे नहीं, उसके सपने नहीं देखेंगे तो उसको पाएंगे कैसे? और कोई बुराई नहीं है इसमें, आई मीन आज मेरे पास बाइक है, मुझे कार की चाहत है, आज मेरे पास कार है तो मुझे, अब सपोज मेरे पास हैचबैक है, मुझे एसयूवी चाहिए या फिर मुझे जीप चाहिए, तो मैं उसके लिए मेहनत करूंगा, मैं पैसे इकट्ठा करूंगा और वही तो फन है। ये लालच नहीं है, ये आगे बढ़ने का एक जुनून है, एक पुश है जो हमें पीछे से मिल रहा है और जो बहुत जरूरी है। तो अपनी इच्छाओं को बरकरार रखिए, मंजिल की लड़ाई मत लड़िए, मुकाम की लड़ाई लड़िए, क्योंकि मंजिल है ही नहीं इस दुनिया में। ये बार बार मैं रिपीट इसलिए भी कर रहा हूं ताकि ये चीजें आपको समझ आए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिस भी हालात में हैं, हंसिए और मुस्कुराइए। एक बात बताइए, आज आपका बुरा वक्त चल रहा है या कुछ ऐसा हुआ जो आपके हिसाब से सही नहीं है? आपके हिसाब से इसलिए मैंने थोड़ा सा जोर देके बोला है क्योंकि कुछ चीजें हमारे लिए सही होती हैं जो आज गलत हैं। हम आज देख नहीं सकते उनका पॉजिटिव साइड, जिस तरह से दवा कड़वी होती है लेकिन अल्टीमेटली उसका जो इफेक्ट है वो हमारे भले के लिए है, ठीक वैसे ही आज की मुश्किलें, आज का बुरा वक्त किसी न किसी के अच्छे दिन के लिए ही बना हुआ है। वो उस वक्त जाके हमको रियलाइज होता है कि अच्छा यार ये हुआ, अच्छा ही हुआ। तो इसलिए आज का जो बुरा वक्त है, क्या हम इसका कुछ कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो फिर टेंशन किस बात की, और अगर नहीं कर सकते तो भी टेंशन किस बात की। जीरो से शुरू किया था आपने, यहां तक खुद के बलबूते पर पहुंचे हो, ये याद रखना। और जब आप यहां तक पहुंच सकते हो ना, तो कितने ही नीचे गिर जाओ आप फिर से वापस उतना ही ऊंचाई पर पहुंच सकते हो। फेलियर्स को कभी भी दिल पे मत लेना, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में, स्टे ट्यून्ड।

जीवन में कितने भी परेशानियाँ क्यों ना आए, कितने भी दिक्कतें क्यों ना हो, तुम कभी कमजोर मत होना, क्योंकि सूरज के तपन से समुद्र कभी सूखा नहीं करते।

मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसे ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

वेलकम बैक, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। कैसे हैं आप? पहले से ज्यादा खूबसूरत ऑफकोर्स होंगे यार। ट्रांसफॉर्मर्स की कोशिश भी यही है कि थोड़े से आप स्माइल करते रहिए, और ये स्माइल है ना, ये बेस्ट मेकअप है इन दिस वर्ल्ड। आप थोड़ा सा स्माइल करिए, आप यूं ही खूबसूरत लगने लगते हैं। एक कहावत मेरे आसपास के जितने भी बुजुर्ग हैं वो जरूर कहा करते थे, मैंने बचपन में ये कहावत बड़ी सुनी है, तो वो ये बोला करते थे कि अपने मरने से ही स्वर्ग मिलता है। बेसिकली इस कहावत का मतलब ये था कि आपको जो काम करना है आप खुद करो, तभी आप उसको बेहतर कर पाओगे। अपने मरने से ही स्वर्ग मिलता है, किसी और के मरने से आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो आप जैसा चाहते हो वैसा काम कोई और करके दे नहीं सकता। अगर आप किसी काम को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो तो कोशिश करो कि उसको खुद करो, क्योंकि जब आप खुद करोगे तो अपने तरीके से कर पाओगे। किसी और पर डिपेंडेंट रहोगे तो उसमें आपका ही नुकसान है। एक कहानी सुनाता हूं इससे जुड़ी हुई। तो एक बार एक गांव में किसान रहता था। उसके गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। उसका फसल बोने के कुछ दिनों के बाद में उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ वक्त बीता, चिड़िया ने वहां पर दो अंडे दे दिए। उन अंडों में से दो छोटे छोटे बच्चे निकल आए और बड़े मजे से आराम से वो खेत में रह रहे हैं। कुछ महीनों के बाद में फसल की कटाई का वक्त आ गया। तब तक वो बच्चे भी बड़े बड़े हो गए। गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों को ये टेंशन कि अब उनको इस खेत को छोड़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि अब

फसल की कटाई होगी तो उनका घोंसला वैसे ही बिगड़ना है। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को यह कहते हुए सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसको खेत में भेजूंगा ताकि वो फसल कट सके। और ये सुनकर के चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वो वापस लौटी तो बच्चों ने उसको बताया कि ऐसे ऐसे किसान आया था और वो ये बोल रहा था कि अपने पड़ोसी को भेजेगा और ये फसल कटवाएगा। आज हमारा आखिरी दिन है यहाँ पर, हमें रात में ही किसी दूसरी जगह के लिए निकल लेना चाहिए। चिड़िया ने कहा, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। इसके बाद में आराम से वो सो गए और चिड़िया की बात एकदम सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई नहीं हो सकी। शाम को किसान फिर से खेत में आया। खेत को जैसे का तैसा देख करके बुदबुदाने लगा कि यार ये पड़ोसी तो नहीं आया, ऐसा करता हूं कल अपने किसी रिश्तेदार को यहां पर भेजता हूं, वो फसल काटेगा। चिड़िया के बच्चों ने फिर से सुनी। चिड़िया जब वापस लौट करके आई, उसको फिर से बताया कि ये किसान आज बोल रहा था कि मैं किसी रिश्तेदार को भेजूंगा। चिड़िया फिर से मुस्कुराई, बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज की रात तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन किसान का रिश्तेदार नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान कि उसकी माँ जो बोल रही है उसकी सब बातें सही साबित हो रही हैं, ऐसे कैसे पता है इसको कि वो आएगा या नहीं आएगा। अगले दिन शाम को फिर से किसान खेत में पहुंचा, खेत की फसल देखी तो वैसी की वैसी खड़ी हुई। बुदबुदाने लगा कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए आते नहीं है, कल मैं खुद आकर के अपनी फसल की कटाई शुरू करूंगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात सुनी। जब उनकी माँ लौट के आई तो उन्होंने बताया कि आज किसान ये बोल रहा था कि कल मैं खुद आकर के अपनी कटाई करूंगा। तो चिड़िया बोली, बच्चों अब समय आ गया है इस खेत को छोड़ने का, हम आज की रात ही ये खेत छोड़ करके दूसरी जगह चले जाएंगे। अब दोनों बच्चे हैरान कि इस बार में ऐसा क्या है जो माने खेत छोड़ने को कहा है। उन बच्चों ने चिड़िया से पूछा कि आपको कैसे पता कि वो अब आएगा ही आएगा, दो बार उसने और भी बोला था तब भी तो नहीं आया कोई। तो चिड़िया ने कहा कि देखो, पिछली दो बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट था, उसने दूसरों को कह करके अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार उसने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है और इसीलिए वो जरूर आएगा। और उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत से उड़ करके कहीं और चले गए। अगले दिन किसान आया, उसने अपनी कटाई शुरू कर दी। कहने का मतलब, दूसरों से हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि तय समय पर खत्म हो और परफेक्शन के साथ में हो, वैसा ही जैसा आप चाहते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी खुद लीजिए। दूसरे भी मदद उसी की करते हैं जो अपनी मदद करता है। ये चीजें हमारे पापाओं से बहुत सीखने को मिलती हैं। अक्सर वो ताने मारने में कह देते हैं ना कि तुमसे काम करने से बेहतर है हम खुद ही कर लें, तो उसका रीजन भी यही है, क्योंकि जैसा काम वो चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता। कभी आपने नोटिस किया है घर में ऐसा होता है, जो हमारे दादाजी होते हैं या बड़े लोग होते हैं, पापा जी चाचा जी, वो लोग हमसे काम करने को बोलते हैं, एंड ये बचपन में ज्यादा होता है। हमारा किया हुआ काम उनको पसंद ही नहीं आता है, कुछ ना कुछ कमी वो निकाल ही लेते हैं। मेरे दादाजी के साथ में ऐसा था, वो मुझे किसी काम के लिए बोला करते थे, मैं करता था, उनको पसंद ही नहीं आता था, चार कमियां निकाल के मेरा माथा खराब, एक तो काम करो ऊपर से इनकी मीन मेक सुनो, हर एक बात में कमी निकालने की क्या जरूरत है, कभी तो कोई अच्छा काम करा ही होगा ना मैंने। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, आज इतना बड़ा हुआ हूं, तो मुझे रियलाइज हुआ है कि वो हमको काम के लिए बोलते तो थे लेकिन उनके पैरामीटर्स अलग थे, उनके हिसाब से थे, और मैं काम करता था मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो टेक्निकली तो यहां पर दोनों ही थोड़े थोड़े गलत थे। खैर, इस चीज को जज नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों को सिखाना भी जरूरी है उनके ऊपर जिम्मेदारियां डाल के, तो उनका वो वाला पॉइंट में भी रहा होगा। बट आप अगर जो चाहते हो कि आपका काम उसी तरीके से हो जैसा आप चाहते हैं, उतने ही परफेक्शन के साथ में, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो काम, तो आप खुद करिए या खुद उसकी जिम्मेदारी लीजिए, औरों को अपने सामने लगा करके काम करवाइए। तो बस ये ध्यान रखिए कि खुद के मरने से ही स्वर्ग मिलता है, खुद के खाने से ही भूख मरती है, खुद के कपड़े पहनने से ही तन ढकता है। खुद पर डिपेंडेंट रहें, खुद से एक्सपेक्टेशंस रहें, दूसरों से उम्मीदें जितनी कम होंगी आपका दिल टूटने का चांस उतना कम होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। भरोसा करें तो खुद पे करें।

0: रेडियो।
1: आपके अंदर का टैलेंट क्या है ये सिर्फ आपको ही पता है। हमें किस काम में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है ये सिर्फ आपको ही पता है। दूसरे जो लोग हैं वो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर के टैलेंट को तो आपको खुद ही पहचानना होगा। वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, और उसके बाद उस पर काम करना शुरू कर दो कि आपको उस काम को कितना बेहतर से बेहतर तरीके से करना है या आप कर सकते हैं। प्लानिंग करो कितना क्रिएटिव तरीके से उस काम को कर सकते हो। देखो जो भी करो दिल और शिद्दत से करो, उसके बाद जमाना खुद ही आपके लिए तालियां मारेगा। लेकिन उससे पहले अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो।
0: वक्त

0: Walk Talk Radio.
1: जिंदगी में अगर एक बार भरोसा टूट जाए ना, फिर चाहे आप लाख कोशिश कर लो, वो भरोसा आप दोबारा कायम या फिर जीत नहीं सकते। भरोसा किसी भी काम को लेकर हो सकता है। ऑफिस में बॉस का आपके ऊपर भरोसा, आपके लाइफ पार्टनर का आपके ऊपर भरोसा, खुद के सपनों को पूरा करने का भरोसा, किसी भी चीज को पाने का भरोसा। लाइफ में भरोसे की अहमियत अक्सर टूट जाने के बाद ही पता चलती है। इसीलिए लाइफ में आप कहीं पर भी हो, किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर क्यों ना हो, लेकिन भरोसा मत टूटने देना, भरोसे पर कायम रहना। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब सामने वालों को आपके भरोसे की अहमियत के बारे में पता चलेगा।

हाय, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिस पर दुनिया चल रही है, एक ऐसी चीज जो बड़े से बड़े झगड़े को यूं खत्म करा सकती है, एक ऐसी चीज जो अगर जो हारने वाला कर दे तो जीतने वाले का जश्न थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, एक ऐसी चीज जो रिश्तों को मजबूत कर सकती है। स्माइल की बात हो रही है, वो मुस्कुराहट है, इसमें इतनी ताकत है। हम कितने ही गम में हो, हम कितने ही परेशान हो, अगर जो हम स्माइल करेंगे तो जमाने को एक पॉजिटिव संदेश जाएगा। इनफैक्ट हम खुद भी अच्छा फील करेंगे, हमारा वो जो दर्द है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कभी परेशानी में मुस्कुरा के देखिए जनाब, रीजन हो तब तो जमाना मुस्कुराता है। सेलिब्रेट करिए, बहुत ही छोटी सी जिंदगी है, लेकिन अफसोस हमारी जिंदगी कितनी कीमती है और कितनी छोटी है, इसका रियलाइजेशन हमको तब होता है जब हमारी जिंदगी के आखिरी लम्हों में होते हैं। फिर जब हम काउंट करते हैं ना कि हमने क्या किया, तो समझ आता है कि क्या फायदा यार। एक बात बताओ, अभी आपको लगता होगा ना जो आपकी स्कूल लाइफ थी कितनी अच्छी थी यार, लेकिन स्कूल लाइफ में क्या करते थे हम? स्कूल लाइफ में हम इस लाइफ के आने का इंतजार करते थे कि हम जब पैसे कमाएंगे, हमारे पास में पैसा होगा, फ्रीडम होगा, हम जब चाहे दोस्तों के पास जा सकेंगे, उनके यहां पर रुकने के लिए हमें मम्मी पापा से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम घूम सकेंगे, हमें तब ये चाहिए था। अब हमें वो चाहिए। हर एक फेज हसीन है, चाहे वो बचपना हो, चाहे वो जवानी और बैचलरहुड हो, या फिर शादीशुदा जिंदगी हो, हर चीज के अपने मजे हैं, हर चीज का अपना फील है। उस फील को महसूस करिए और मुस्कुराइए और खुश रहिए, हर पल को सेलिब्रेट करो। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं ये जरूरी नहीं है, मुस्कुराइए क्योंकि आप दुनिया में हैं, मुस्कुराइए क्योंकि आप स्वस्थ हैं, क्योंकि न जाने कितने सारे लोग नहीं हैं, मुस्कुराइए क्योंकि आपको भरपेट रोटी मिल रही है, न जाने कितने लोगों को नहीं मिल रही है, मुस्कुराइए क्योंकि आपके पास में कुछ पैसा है, बहुतों के पास नहीं है, मुस्कुराइए क्योंकि आपके पास में अपने हैं, उनसे पूछिए जिनके पास में अपने नहीं है, मुस्कुराइए क्योंकि आपके पास में आपका लाइफ पार्टनर है, बहुत सारे लोग आज भी अधूरे जी रहे हैं। 50 रीजन है मुस्कुराने के और खुश होने के, और कौन से रीजन चाहिए हमको? वो इमेजिनरी आर्टिफिशियल रीजन जो कि कुछ टाइम के लिए होते हैं, तो हम गलत हैं। हमको सही डायरेक्शन में जाने की जरूरत है। मुस्कुराइए, बेवजह मुस्कुराइए, ठोकर लगे मुस्कुराइए, दुख हो मुस्कुराइए, कोई गलत करके जाए मुस्कुराइए, आपके साथ में गलत हो जाए मुस्कुराइए, आप अच्छा करिए मुस्कुराइए, आपके साथ में कोई और बुरा करके चला जाए मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी जो हंसी है, आपकी जो मुस्कुराहट है, ये आपसे है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार की बात है, यूनान के जो किंग थे वो किसी बात से अपने मंत्री से नाराज हो गए, और नाराजगी में उन्होंने मंत्री के लिए फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। कहा कि शाम को 6 बजे कैसे भी करके वजीर को फांसी दे देनी चाहिए। जब उनको फांसी की सजा दी गई थी, वजीर उस वक्त दरबार में नहीं थे। सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और जाकर के वजीर को बता दो कि शाम को ठीक 6 बजे उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। सम्राट का आदेश मानकर के सैनिक की एक टुकड़ी पहुंची वजीर के घर और उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ सैनिक घर के अंदर गए तो जाकर के देखा कि वहां पर तो एकदम जश्न का माहौल है। उस दिन वजीर का बर्थडे था, उसके घर पर रिश्तेदार थे, दोस्त थे, खूब चहल पहल थी, म्यूजिक बज रहा था, नाच गाना चल रहा था, पकवानों की खुशबू फैली हुई थी, कुल मिलाकर के माहौल बड़ा ही अच्छा था। सैनिकों ने भरी महफिल में ऐलान कर दिया कि वजीर को आज शाम के 6 बजे फांसी दे दी जाएगी, और जैसे ही ये सुना वहां पर जितने भी लोग थे वो हैरान रह गए। फौरन म्यूजिक रुक गया, नाच गाना रुक गया, रिश्तेदार, दोस्त, परिवार वाले सभी उदास हो गए। तभी कमरे में से वजीर की आवाज गूंजी, बोले, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि उन्होंने फांसी के लिए शाम के 6 बजे तक का वक्त दिया है, तब तक तो हम सब सेलिब्रेट कर सकते हैं, मेरा बर्थडे है आज। और उसके बाद में दोस्तों रिश्तेदारों ने कहा, कैसी बात कर रहे हो यार, तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई और तुम जश्न मनाना चाहते हो? तो वजीर ने किसी तरह से सबको समझाया और एक बार फिर से जश्न शुरू करवाया। दोस्त उदास थे, घर वालों को बुरा लग रहा था, लेकिन वजीर की खुशी के लिए सभी लोग जश्न में शामिल हो गए। म्यूजिक बजने लगा, डांस होने लगा, खाना पीना चलने लगा। ये बात सैनिकों ने सम्राट तक पहुंचाई। सम्राट पूरा माजरा समझने के लिए वजीर के घर पे पहुंचे। वहां पहुंचकर जब उन्होंने देखा कि सब लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो भी हैरान। उन्होंने कहा, ये क्या है, तुमको पता है ना कि मैंने तुमको फांसी दी है? वजीर से उन्होंने पूछा, और तुम सेलिब्रेट कर रहे हो? वजीर बड़े ही अदब से बोला कि हुजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फांसी का वक्त शाम के 6 बजे का मुकर्रर किया, और इस तरह से मुझे शाम के 6 बजे तक का वक्त मिल गया। अगर आप मुझे ये वक्त नहीं देते तो मैं अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ये सेलिब्रेशन कैसे कर पाता? फांसी पर लटकने से पहले मेरे पास आज शाम तक का वक्त है, और मैं ये क्यों जाया करूं, इसको रोने में बिता दूं? मैं, मेरे पास जितना भी वक्त है उसे मैं खुशी खुशी गुजारना चाहता हूं। वजीर ने कहा, तो ये सुनकर के राजा ने एकदम से वजीर को गले लगा लिया, कहा कि ये कमाल की बात बोली तुमने, मोटिवेट कर दिया। मतलब जिस इंसान को वक्त की कदर है, वो जिंदगी का हर एक लम्हा खुशी खुशी गुजारना चाहता है, उसको मौत कैसे दी जा सकती है? ये तो औरों के लिए इंस्पिरेशन है।
तुम्हें जीने का पूरा हक है और तुम्हारी बातों ने हमारा न सिर्फ दिल खुश किया है बल्कि हमको एक नई सीख दी है कि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए रोते रहते हैं। हमने तुमको मौत की सजा सुनाई लेकिन उसके बाद में भी तुम परेशान नहीं हुए। तुम्हारी फांसी की सजा माफ, राजा ने कहा। वजीर खुश, रिश्तेदार खुश, दोस्त खुश, फिर से जश्न, और अब रियल जश्न शुरू हो गया क्योंकि उनकी जिंदगी बच गई। समझिए आप इस चीज को कि जिंदगी खूबसूरत है लेकिन इसका हर लम्हा खुशी के साथ गुजारें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हालांकि ये जरूर है कि जिंदगी में कई एक बार ऐसा वक्त आता है जबकि बहुत ज्यादा मुश्किलें हमारे सामने होती हैं, हम परेशान हो जाते हैं और ऐसे में हम जिंदगी जीना छोड़ देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। मुश्किलों से हारे नहीं, मुस्कुराहट के साथ में उनका सामना करें। जो भी समय आपके पास में बहुत लिमिटेड है उसका पूरा सदुपयोग करें, जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली, ये हमेशा ध्यान रखें। पिज्जा घर में आता है तो जम के खाते हैं ना उसको एंजॉय करके। वैसे खत्म होने से पहले जिंदगी को भरपूर जी लो। आपके हिस्से की जिंदगी कोई और नहीं जी सकता और ये मुश्किलें तो आती रहेंगी, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, बट ये मुस्कुराहट गई या रो करके आपने वक्त गुजारा उसका कोई सेंस नहीं है। एक दिन जाना सब नहीं है तो उसको लेकर के परेशान होने का क्या मतलब। वो होता है ना जब हम किसी ऐसे इंसान से आखिरी बार मिलते हैं जिसको हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं, और हमको पता है कि अब इससे दूर होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा, तो जो भी कुछ लम्हे हैं उनको हम भरपूर जी लें या तो उसके साथ में या फिर परेशान होकर के रो करके बिता दें, हमारे ऊपर है। बेहतर ये होगा कि जो भी लम्हे उसके साथ में मिले हैं उनको भरपूर जिया जाए, प्यार के साथ में सारे अरमान पूरे किए जाए, क्योंकि रोना तो बाद में भी है ना, उससे दूर जाने के बाद में। बस वैसे ही जो भी लम्हे आपके पास में हैं उन्हें भरपूर जिए, ये बहुत जरूरी है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर।

बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जब ही बोलें, हमेशा नाप तोल कर बोलें। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: दोस्तों, लाइफ में बैलेंस रहना है तो सबसे पहले तो अपने खुशी और गम के इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। जैसे जब हमारा कोई काम सही हो जाता है

0: घायल तो यहां पर हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जी हां, चोट किसको नहीं लगती, फेलियर कौन नहीं होता, जिंदगी में परेशानियां किसकी लाइफ में नहीं आती, लेकिन उन सब का सामना करके, उसका एक्सपीरियंस करके, अपनी गलतियों से सबक लेकर जो फिर एक नई तैयारी के साथ उठता है, फिर आगे बढ़ता है, वही इंसान है।
1: Walk Talk Radio.
2: Yeah, be cool, Ross, baby. Lost in your love.

0: रेडियो।
1: जिंदगी बड़ी आसान है, लेकिन इसको जीना कैसे है, बस उसको सीखने की जरूरत है। कई प्रॉब्लम्स भी आएंगी और कई खुशियां भी आएंगी, लेकिन आगे कैसे बढ़ना है, बस इसको सीखने की जरूरत है।

देखो दोस्त, अगर किसी को कुछ देना हो ना तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हो, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते।

धोखा भी तो उसी को मिलता है जो इजिली दूसरों पर भरोसा करता है। बिना किसी को जाने पहचाने किसी पर विश्वास करना जरूरी नहीं है कि आपके मुंह के सामने तारीफ करने वाले पीठ पीछे भी आपकी तारीफ करें। इसीलिए किसी पर भरोसा करने से पहले उस इंसान के बारे में जानना पहचानना बहुत जरूरी है कि वो इंसान वाकई आपको समझता है या फिर आपको यूज कर रहा है। और जिस दिन आप ये जान लोगे आप खुद को कभी भी कोसोगे नहीं।

0: वॉक टॉक,
1: छोटी सी है जिंदगी, इसे हंस कर जियो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। कोशिश ये करिए कि अपनी लाइफ के हर पल को खुशनुमा बनाइए, लेकिन ये कैसे होगा जब आप अपने माइंड को टेंशन फ्री रखेंगे। तो जो भी टेंशन आपकी लाइफ में चल रही है, उनका सलूशन ढूंढ के उनको खत्म करिए और लाइफ को खुश होकर जी लीजिए।

0: रेडियो।
1: परिवर्तन और संघर्ष से डरने वाला व्यक्ति कभी भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता। परिवर्तन इस संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा, सुबेरे हुई है शाम होगी। कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं बदलती? लेकिन अगर हम हार्डकोर हो जाते हैं, किसी बात पे अड़ जाते हैं, तो दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाती है। परिवर्तन संसार का नियम है, बदलिए और देखिए, आप खुद नहीं बदलेंगे, आप अपने आसपास की सिचुएशन को भी बदलने का मौका देंगे। संघर्ष से डरना, पीछे रह जाना, हमेशा डरते रहना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। हिम्मत करिए और फेस करिए अपनी उस प्रॉब्लम को। ऐसा फेस करिए कि प्रॉब्लम भी आपसे डर जाए, और देखिए जिन चीजों से आपको डर लग रहा था वो कितनी आसानी से दूर हो जाती हैं। कोशिश तो करके देखिए।
0: वॉक टॉक

0: बुक रीडिंग हम में से बहुत लोगों को बहुत ही बोरिंग एस्पेक्ट लगता है, पता है क्यों? टाइम नहीं है यार, बहुत कुछ करने का है, बिजनेस है, फोन है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें करनी है और लोगों से बातें करनी है, जगहें देखनी है। किसी सफर पे अकेले निकलना, हम सब लोग ग्रुप में निकलते हैं, दोस्तों के साथ निकलते हैं, परिवार के साथ निकलते हैं, बट खुद के साथ नहीं निकलते क्योंकि डर लगता है। हम अपने दोस्त थोड़े ना है, हमें अपना अकेलापन खा जाता है। अगर खुद को फील करना है तो अकेले निकलिए सफर पे और एक किताब लेके निकलिए। लेकिन एक जो रीडिंग हैबिट होती है ना, वो आपको आपसे कनेक्ट करती है।
1: कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से।
0: किसी इंसान ने अपने 60 साल 70 साल का तजुर्बा 60 से 150 पन्ने की किताब में डाल दिया आपके लिए। अगर आप उस किताब के साथ दोस्ती कर लेंगे तो यकीन मानिए ये दोस्ती आपकी खुद से हो जाएगी, क्योंकि ये समय आपका खुद का।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक
1: रेडियो। हमारी जिंदगी में कई पल ऐसे आते हैं जब हम अपने किसी न किसी अपने से कुछ न कुछ कहना चाहते हैं, पर पता नहीं क्या सोचकर नहीं कह पाते। पता नहीं क्या सोचकर हम रुक जाते हैं। झिझक हमारे अंदर रहती है कि अगर हमने सामने वाले को वो मन की बात कह दी तो उसका क्या रिएक्शन आएगा। लेकिन इस सोच के चलते वक्त बीत जाता है, इंसान भी चला जाता है और रह जाता है तो सिर्फ एक रिग्रेट कि हमने तब वो बात क्यों नहीं कही, क्योंकि अब वो इंसान ना हमारे सामने है ना हमारे पास है कि हम उससे अपने दिल की बात कह दे। दोस्त, एक दिन हम सब अपनी अपनी चुप्पियों को लेकर ऐसे ही रह जाएंगे और हमारा सबसे आखिरी ख्याल ये होगा कि हमें उस वक्त बोल देना चाहिए था। तो झिझकिए मत, अपनी बात को बेबाकी के साथ रखिए और खुश रहिए।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

अगर आपकी लाइफ में जितना स्ट्रगल होगा सफलता भी उतनी बड़ी होगी। राहों में बस कहीं तुम भटक मत जाना, चलते चलते कहीं तुम थक मत जाना। ठान लिया है ना अगर मंजिल को पाना, बस मुसाफिर बनकर चलते रहो, कदम से कदम आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि जिंदगी में स्ट्रगल जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही बड़ी होगी। और हर इंसान सफल होने के लिए ही कड़ी मेहनत करता है, कड़ी धूप में चलता है।

0: ज़मीर ज़िंदा रख, कबीर ज़िंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर ज़िंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख।
1: जिम शिम जाता हूँ तेरे लिए, मैं बॉडी बनाता हूँ तेरे लिए, मैं

रेडियो। जिंदगी में देखा जाए तो टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है।

तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज की दुनिया में बहुत से दोगले लोग पाए जाते हैं जो अगर आपके दोस्त बन जाए तो दुश्मनों की भी कमी नहीं महसूस होने देते। इसीलिए मैं आप सभी से ये गुजारिश करती हूँ कि ऐसे लोगों से बचे रहें और हमेशा अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपके लिए सिर्फ अच्छा सोचते हैं और आपको हमेशा सही राह दिखाते हैं। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो।

0: रेडियो।
1: कोई नामुमकिन सी बात को तू मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, तू भीड़ से अलग चलकर दिखा।

0: रेडियो।
1: हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।

0: रेडियो।
1: प्रयास करने का एक सबूत होती है गलतियां। मेहनत पर एतबार करने वालों को अपने काम में खुदा नजर आता है। ऊपर उठना है तो गिरने का भय मिटाना होगा।
0: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

उम्मीद कहते हैं उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए आपकी जिंदगी में। अगर आपको किसी मंजिल से मोहब्बत है, अब वो कोई काम हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई ख्वाहिश हो सकती है, तो बस उससे जुड़े रहो। उतार चढ़ाव आएंगे, अच्छा बुरा वक्त भी आएगा, लेकिन एक ना एक दिन आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। बस हारना मत है।

पता है, बड़े बड़े लोगों के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो हम सबको इंस्पायर करती है। जैसे वो हमेशा आने वाले 10 साल की प्लानिंग पहले ही कर देते हैं। वो इस तरह से काम करते हैं कि उन्हें आने वाले 5 या 10 साल में कहाँ जाना है वो पहले से ही पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। अगर यही क्वालिटी आपके अंदर या हमारे अंदर आ जाए, सोचो उसके बाद क्या होगा। जिन्होंने बड़े बड़े एम्पायर खड़े करे हैं, जो जीरो से हीरो बने हैं, उनके अंदर भी तो यही क्वालिटी थी।

दोस्तों, हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ के सक्सेस का इंतजार करने लगते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और कोशिश करना छोड़ देते हैं। पर हमेशा याद रखिए, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप भी सपनों का खिताब जीतना चाहते हो तो मेहनत के मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा।

0: कभी सोचा है कि हम चैलेंजेस लेने से क्यों घबराते हैं? नहीं दोस्तों, नॉलेज कभी भी एक दायरे में रहने से नहीं बढ़ती, नॉलेज तो एक्सपेरिमेंट से बढ़ती है। तो अगर आपके पास चैलेंज फेस करने का मौका मिलता है तो घबराए नहीं, क्योंकि उन्हीं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके ही आप वो गेन करेंगे जो आप दुनिया को बता पाएंगे, दुनिया को प्रूफ कर पाएंगे। याद रखें कि ज्ञान हमेशा चुनौतियों को अपनाने से ही बढ़ता है, ना कि चुनौतियों से दूर भागने से। और हो सकता है कि आपका कमाया हुआ यही ज्ञान कल के दिन किसी और के काम आ जाए।
1: Walk Talk Radio, tune in for a better life.

0: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्रा, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: Your first workout will be bad. Your first podcast will be bad. Your first speech will be bad. Your first video will be bad. Your first anything will be bad. But you can't make it 100 without making your first. So put everything aside and just start doing it. No matter what happens, no matter what

0: Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio.
2: Walk Talk Radio.
3: Walk Talk.
4: Walk Talk Radio.
5: मजबूत होने का मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। अपने आसपास बहुत लोग हो सकते हैं आपके जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हो, डरा रहे हो, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। क्या फर्क पड़ता है, शायद वो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाए या उसी सिचुएशन में उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी सोच और ऐसे लोगों से अपने आप को सतर्क रखिए, क्योंकि उनसे सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिविटी, डराना यही मिल सकता है। अगर किसी के पास सॉल्यूशन है तो वो आप खुद हैं। खुद से बात करिए, खुद की सोच और खुद के निर्णय पे यकीन करिए, उस पे आगे बढ़िए और देखिए आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी आपके खुद के भरोसे से, जो आपका खुद पे होगा।
4: Walk Talk.

0: ये है वॉक टॉक रेडियो.
1: वॉक टॉक रेडियो,
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ.
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ.
3: वॉक टॉक रेडियो.
4: वॉक टॉक.
5: कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर आप किसी को अपना दुख बताओगे तो सामने वाला आपको अपना 4 गुना दुख बताएगा. इसीलिए किसी को अपने दुख बताने से बेटर है आप उन्हें खुद ब खुद सॉल्व करें, तभी आप खुश रह पाओगे.
6: Tune in for a better life.

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो,
1: वॉक टॉक रेडियो,
2: वॉक टॉक, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: दोस्तों, हर दिन में कई ऐसे मौके आते हैं जब हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा काम करूं, कौन सा छोड़ दूं। करियर में आगे बढ़ते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि एक साथ हमें दो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं और तब ये मिक्स इमोशंस वाली सिचुएशन बन जाती है, जिसकी खुशी भी है और दुख भी है। खुशी इस बात की कि दो अच्छे अवसर हमें मिले, दुख इस बात का कि दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। यहाँ कंफ्यूज होने के बजाय खुद पर भरोसा करके एक को चुन लो, क्योंकि दोस्त ऑप्शंस आपके लिए अच्छे और बुरे दोनों आपकी काबिलियत से ही बनते हैं।
2: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: कई लोगों को जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। अपनी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी प्यारी लगती है, तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो वो भी करते हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: दोस्तों, हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ के सक्सेस का इंतजार करने लगते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और कोशिश करना छोड़ देते हैं। पर हमेशा याद रखिए, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप भी सपनों का खिताब जीतना चाहते हो तो मेहनत के मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो।
1: हमेशा रिश्तों की वैल्यू को समझना बड़ा जरूरी है। रिश्ते किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, भाई बहन का रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, अपनों के साथ गहरा रिश्ता, उसकी वैल्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बुरे से बुरे वक्त में यही लोग काम आते हैं, यही है जो वाकई हमें अपना समझते हैं, सही डायरेक्शन देते हैं। ऐसे रिश्तों की कद्र करना, वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम लाइफ में इतना घुल मिल जाते हैं कि हमें समझ नहीं होती कि सही कौन है, गलत कौन है, अपने कौन है, पराए कौन है। जिनको हम अपना समझते हैं वो पराए निकलते हैं, और जिनको पराए समझते हैं वो कभी कभी अपना निकल जाते हैं। इसलिए हमेशा अपनों पर विश्वास करना और उनके साथ चलना बहुत ज़रूरी है।

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो,
1: वॉक टॉक रेडियो,
2: वॉक टॉक, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: उम्मीद, कहते हैं उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आपकी जिंदगी में अगर आपको किसी मंजिल से मोहब्बत है, अब वो कोई काम हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई ख्वाहिश हो सकती है, तो बस उससे जुड़े रहो। उतार चढ़ाव आएंगे, अच्छा बुरा वक्त भी आएगा, लेकिन एक ना एक दिन आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। बस हारना मत है।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio. Walk Talk.
0: Walk Talk Radio.
2: जिंदगी में देखा जाए तो टेंशन ही

0: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: दूसरों की नकल कब तक करते रहोगे, दूसरों का हाथ पकड़कर आखिर कब तक चलते रहोगे। अगर लाइफ में खुद का कुछ करना है ना, तो खुद का एक रास्ता बनाए कि तुम्हें चलना कहाँ है और तुम्हारी मंजिल कहाँ है।

0: आपके पहले जोश भरे कदम से पता चलता है कि आपकी सफलता कितनी बड़ी होगी।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो,
1: वॉक टॉक रेडियो,
2: वॉक टॉक ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: वॉक टॉक रेडियो,
4: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
5: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, तुम जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। कहने का मतलब है, काम ऐसा करो, इतना हटके करो कि तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए। किसी को कॉपी मत करो यार।
6: वॉक टॉक रेडियो,
7: वॉक

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio. Walk Talk.
2: Walk Talk Radio.
3: नाम उन्हीं का होता है जो बस्ती से निकलकर हस्ती बन जाते हैं। आप कहीं भी हैं, ये मत सोचिए कि मैं लो बैकग्राउंड से हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। आप क्या बन सकते हैं ये आपकी मेहनत तय करती है। तो उठिए, मेहनत करिए और अपने एम को पाने में लग जाइए।

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो,
1: वॉक टॉक रेडियो,
2: वॉक टॉक, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: ये है वॉक टॉक रेडियो,
4: वॉक टॉक रेडियो,
3: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ,
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
5: जिन लोगों को दूसरे के सुनने की आदत नहीं है, छोटी छोटी बातों पर आप परेशान हो जाते हैं, आपको आगे बढ़ते देखने में बाकी हर मुमकिन कोशिश करते हैं आपको भटकाने की, तो आपसे मेरा यही कहना है कि सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि इस दुनिया में रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो दोस्तों, क्योंकि यहां टांग खींचने वालों की कमी नहीं है।
3: Walk Talk Radio, tune in for a better life.

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio. Walk Talk.
0: ये है Walk Talk Radio.
2: Walk Talk Radio.
3: दोस्तों, जिंदगी के हर पड़ाव में कुछ ना कुछ जरूर होना तय है। अब वो अच्छा होगा या बुरा, ये किसी को नहीं पता होता। लेकिन ये सोचकर हम आगे बढ़ना बंद तो नहीं कर सकते, इसलिए आगे बढ़ते जाइए। क्या पता बुरे दौर में भी क्या ऐसा हो जाए जो आपको कुछ अच्छे की तरफ मोड़ दे। दौर बुरा हो या अच्छा, हौसला मत हारिए। वक्त ही तो है, एक दिन सबका बदलता है।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जब ही बोलें, हमेशा नाप तोल कर बोलें। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: पुराने दोस्त और स्कूल के दिन काफी प्रीशियस होते हैं हमारी जिंदगी में। स्कूल जहाँ से हमारे नए सफर की शुरुआत होती है, नए दोस्तों से मिलना, जहाँ हम ढेर सारी मस्तियां करते हैं, जहाँ हम हंसते भी हैं, खेलते भी हैं और सीखते भी हैं। लाइफ में चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमें आज भी पता है हर सब्जेक्ट के टीचर का नाम, कौन सा टीचर हमारा फेवरेट था और किससे हमें सबसे ज्यादा डांट पड़ती थी, किस किस तरह से गेम्स हम खेलते थे, हमारे स्कूल के दोस्त, वो सारी चीजें हमें हमेशा जो है याद रहती है। जिंदगी में सब कुछ आगे निकल जाता है, लेकिन स्कूल के वो पल हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं।
2: वॉक टॉक रेडियो।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ.
1: मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है. डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है. ऐसी ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ.

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: क्यों इतना डरते हो जिंदगी से? क्या होगा, कैसे होगा, जो भी होगा आगे तजुर्बा ही होगा, और तजुर्बा ही इंसान को जीना सिखलाता है।

0: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: आपके पहले जोश भरे कदम से पता चलता है कि आपकी सफलता कितनी बड़ी होगी।
4: Walk Talk Radio, tune in for a better life.

मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। अगर आपने सफर शुरू कर दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। तो अपने एम की तरफ बढ़ते रहिए। रुकना और वापस जाना, ये वर्ड अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए।

0: जैसे को तैसा, ये कहावत हम सब ने सुनी होगी, लेकिन जरा खुद सोचो, अगर हम रियल लाइफ में भी ऐसा ही करें तो हम में और उस इंसान में जिसने हमारे साथ गलत किया है क्या फर्क रह जाएगा। ये जिंदगी बहुत छोटी है जनाब, माफ करना सीखो। एक इंसान की सबसे अच्छी क्वालिटी है माफ करना, और वो भी तब जब वो खुद सही और सामने वाला गलत हो। तो जैसे के साथ तैसा नहीं, बल्कि उसे माफ करो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो।
1: Walk Talk Radio, tune in for a better life.

दोस्तों, हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ के सक्सेस का इंतजार करने लगते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और कोशिश करना छोड़ देते हैं। पर हमेशा याद रखिए, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप भी सपनों का खिताब जीतना चाहते हो तो मेहनत के मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा।

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है। सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हम नहीं, सारे ही ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, I call this community transmission. अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा, एंड तब तो भौकाल मच जाएगा। आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ। परसिस्टेंस ओवर परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आज परसिस्टेंट हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ, rather than being perfect, I think results आएंगे after some time. मुझे पूरा भरोसा रहता है if I am persistent. और perfection को अगर हम obviously कई days पे हमारा perfect output आता है, कई days पे थोड़ा कम अच्छा output आता है, कई days हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम humans है, सबके साथ होता है, but then रोज थोड़ा थोड़ा करना is very important. Walk Talk Radio.

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर। अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं। सबकी पर्सनालिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है, तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम, देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग। सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनालिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं। देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो, जिसमें कि यू नो हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग। तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो। इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड। हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर। एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे, वो उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स। देन वी ट्राइड टू यूज जूट instead of you know cloth and synthetic cloth and nylons जो environment को harm करते हैं, हमने reusable cloth जो कि जूट है वो maximum जगहों पे use करा। then we try to avoid using iron structures as much as possible and we tried using more of bamboo structures, हमने bamboo and लकड़ी से कुछ structures create किए। vinyl को ना use करके हमने for welcome boards and flex हमने banana leaves use किए, हमने जूट यूज किया इंस्टेड ऑफ फ्लेक्स। तो इस तरीके से हमने उनकी वेडिंग को जस्टिस करने का ट्राई किया। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ हाउ वी टेक इनपुट्स फ्रॉम द कपल्स पर्सनालिटी एंड ट्राई टू क्यूरेट समथिंग आउट ऑफ इट। वॉक टॉक रेडियो।

मजबूत होने का मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। अपने आसपास बहुत लोग हो सकते हैं आपके जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हो, डरा रहे हो, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। क्या फर्क पड़ता है, शायद वो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाए या उसी सिचुएशन में उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी सोच और ऐसे लोगों से अपने आप को सतर्क रखिए, क्योंकि उनसे सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिविटी, डराना यही मिल सकता है। अगर किसी के पास सॉल्यूशन है तो वो आप खुद हैं। खुद से बात करिए, खुद की सोच और खुद के निर्णय पे यकीन करिए, उस पे आगे बढ़िए और देखिए आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी आपके खुद के भरोसे से, जो आपका खुद पे होगा। Walk, talk,

0: हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। किसी भी ह्यूमन बीइंग का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है मेरे हिसाब से। जब व्हेन आई वाज अ चाइल्ड तब मेरी मदर मेरे को खाना बनाना कहती थी कि सीखो एंड यू शुड नो हाउ टू कुक। मैं उन पे बहुत गुस्सा हुआ करती थी कि यू नो मम्मी आप भाई को क्यों नहीं कहते, आप मुझे ही क्यों कहते हो कि खाना बनाना सीखो। उस टाइम मैं बहुत गुस्सा हुआ करती थी, बट व्हेन आई स्टार्टेड लिविंग अवे फ्रॉम माय हाउस आई अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ कुकिंग फूड फॉर योरसेल्फ। जितना यू नो तुम बाहर पैसा वेस्ट करते हो खाने पे, वो कितना बचता है इफ यू कुक योरसेल्फ। तुम कहीं पहाड़ों में कहीं अनकन्वेंशनल जगह पे चले जाओ, इफ यू हैव द बेसिक रॉ इंग्रेडिएंट्स तुम अपना पेट भर सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरीके से इंडिपेंडेंट होना एंड अपनी लाइफ को सस्टेन करना, खुद कमाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना खुद के लिए खाना बनाना है। क्योंकि यू नो इतने सारे हम इंसिडेंट सुनते हैं जिसमें यू नो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है एंड यू नो फीमेल्स को अपने गांव से बाहर आने का मौका नहीं मिल रहा। मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि अगर मैं एक भी फीमेल की लाइफ ऑल्टर कर पाऊँ वो मेरे लिए एक बहुत पुण्य का काम होगा। मेरी टीम में भी अगर आप देखें देर आर 80-90% फीमेल्स इन माई टीम। और उस चीज को अगर हम ध्यान में रखें और हम फीमेल्स को सपोर्ट करें, अपलिफ्ट करें, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि फीमेल रन ऑर्गेनाइजेशंस और फीमेल लेड ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं। उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज मेल रन। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ रिसर्च कि हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा होता है।
1: वॉक टॉक रेडियो।

0: रॉक टॉक
1: रेडियो। जीवन में कोई भी काम तब तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम नहीं बढ़ाते। अगर आप कहीं जा रहे हैं और सोचे कि बहुत दूर है और वहाँ के लिए आप निकल ही ना पाओ, तो जहाँ हो वहीं रह जाओगे। लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदम ही सही अपने एम की तरफ बढ़ाते हो, तो धीरे धीरे करके रास्ता पार हो ही जाएगा।